0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आपके मस्तिष्क में भर दी गई वह ढेर सारी जानकारी और सूचना शिक्षा नहीं है, जो जीवन के लिए अनुपयुक्त होने के कारण जीवन भर उसमें उत्पात मचाती रहती है। हम में जीवन निर्माण, मानवीयता निर्माण और चरित्र निर्माण करने वाले विचार होने चाहिए। यदि ऐसे 5 विचार भी आप आत्मसात कर लेते हैं, उन्हें अपना जीवन चरित्र बना लेते हैं, तो आप उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा शिक्षित हैं जिसने पूरा पुस्तकालय कंठस्थ कर रखा हो। हमें उस शिक्षा की जरूरत है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो, मनोबल में वृद्धि हो, प्रज्ञा का विस्तार हो और जिसके बल पर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जाने क्यों और कैसे हम किताबी ज्ञान को, स्कूली पढ़ाई को ही शिक्षित होना मान बैठे हैं। अभिभावकों से लेकर शिक्षकों तक हर किसी का पूरा ध्यान स्कूली पढ़ाई की ओर ही हो गया है। कोई बालक यदि जीवन के ही विज्ञान से अनभिज्ञ बना रहता है तो विज्ञान पढ़कर भी वह भला क्या कर लेगा। हम अपने बच्चों को इतिहास पढ़ने और उसे रटने के लिए तो कहते हैं, लेकिन हम उन्हें इतिहास रचने के लिए नहीं कहते। कोई बालक अपनी पहली, दूसरी या तीसरी भाषा के साथ क्या कर लेगा यदि उसमें संवाद का कौशल, दूसरे तक अपनी बात स्पष्ट ढंग से पहुंचाने का कौशल विकसित नहीं हो सका। यहाँ हमारे भाव को गलत ना समझें। हम यह नहीं कहना चाहते कि किताबी ज्ञान व्यर्थ है। हम तो इस बात पर बल दे रहे हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान शिक्षा को कभी पूरा

किताबी ज्ञान बालक के विकास का एक पक्ष तो है, लेकिन एकमात्र पक्ष नहीं है। वह जीवन में सहायक तो है, लेकिन यही एकमात्र जीवन नहीं है। जीवन कुछ और भी है। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाला अपने जीवन में भी सर्वोच्च रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। और यह भी जरूरी नहीं है कि सारे बैक बेंचर यानी कक्षा में पीछे बैठने वाले अपने जीवन में भी बैक बेंचर ही रहते हो। सचमुच हम अक्सर देखते हैं 98% अंक पाने वाला जीवन की औसत समझ लिए हुए अंततः उस 72% अंक पाने वाले के लिए काम कर रहा होता है, जिसमें जीवन की समग्र समझ होती है। संबंध ही जीवन का असली ताना बाना है। संवाद ही संबंधों की जीवन रेखा होती है। सफलता केवल नेतृत्व से जुड़ी होती है। या तो आप नेतृत्व कर रहे होते हैं, या फिर किसी के नेतृत्व का अनुसरण कर रहे होते हैं। जहां आप अपना समय लगाते हैं, आपका भविष्य भी वहीं से बनता है। इसीलिए संक्षेप में समय प्रबंधन का कौशल ही जीवन का कौशल है। आप या तो निर्भर करने योग्य होते हैं, या फिर किसी पर निर्भर होने योग्य, और यह आपकी उस छवि पर निर्भर करता है जो आपने खुद अपने लिए बना ली है। कटु सत्य यह है कि जीवन की इन अनिवार्यताओं में से कोई भी हमारे स्कूली या किताबी ज्ञान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो अभिभावकों से, शिक्षकों से और अन्य उन सभी से जिनके हाथ में बच्चों का भविष्य है, अनुरोध है कि कृपा करके बच्चों को किसी पाठ्यक्रम से न बांधे। बच्चों

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। ये आपके भीतर संतोष का बीज बोता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

किसी काम को जब रुचि से किया जाता है तो उस काम को करने में आनंद आता है, और अंततः जब वह पूरा हो जाता है तो आपको उपलब्धि की अनुभूति होती है। जो काम आपको ऐसी अनुभूति देता है उसे आप बार बार करना चाहते हैं। इसके विपरीत, काम को जब एक विवशता, एक बाध्यता के रूप में समझा व किया जाता है तो जो काम आप कर रहे होते हैं उससे आप जूझ रहे होते हैं, और आखिर जब वह पूरा हो जाता है तो आपको चलो जान छूटी का एहसास होता है। जो काम आपको जान छूटी का एहसास देता है, भविष्य में आप उससे बचना चाहते हैं। आप यदि उसे दोबारा भी कर रहे होते हैं तब भी उसे आधे अधूरे मन से, अरुचि व अनिच्छा से ही कर रहे होते हैं। जो लोग हर काम को रुचि से करते हैं वे जीवन में उपलब्धियों से भरे होते हैं, इसलिए वे जीवन के प्रति बहुत अभिलाषित रहते हैं। जो लोग हर काम को एक विवशता, एक बाध्यता के रूप में लेते हैं वे जीवन से थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, और इसलिए जीवन से छुटकारा पाने की इच्छा की हद तक चले जाते हैं। लोग अपने जीवन के दैनिक कामकाज करने में भी अरुचि व अनिच्छा वाले हो गए हैं। लोग खाना बनाने में भी अनिच्छुक हो गए हैं। क्या प्री कुक्ड फूड, फास्ट फूड, फ्रोजन फूड और रेडीमेड फूड ने आज हर रसोई में घुसपैठ नहीं कर ली है? लोग आराम से बैठकर भोजन का स्वाद लेने के भी अनिच्छुक होते जा रहे हैं। नाश्ता करना छोड़ देना और लंच के लिए समय न निकाल पाना क्या आम बात नहीं होती जा रही है? बच्चे स्कूल जाने के लिए अनिच्छुक नहीं हैं? जितने वयस्क लोग काम पर जाने में अनिच्छुक होते जा रहे हैं, सोमवार की सुबह पड़ने वाले दिल के दौरों की बढ़ती संख्या का क्या आप कोई और कारण बता सकते हैं?

जीवन से जुड़ी अनिवार्यताओं को यदि एक विवशता की तरह, एक बाध्यता की तरह देखा जाएगा और हर काम के पूरा हो जाने पर छुटकारा पाने के एहसास वाली लंबी सांस ली जाएगी, तो हम अपने जीवन की गुणवत्ता में विकास कैसे कर पाएंगे? देखिए, हम जो भी करें उसे उत्सव की तरह करें। उफ, तो मुझे यह करना ही पड़ेगा वाली प्रवृत्ति के बजाय मैं यह करना चाहता हूँ वाली प्रवृत्ति को अपनाएं। हमारा हर कार्य कुछ इस तरह से हो कि उसका आरंभ रुचि के साथ हो, करना आनंद के साथ हो और समापन उपलब्धि की अनुभूति के साथ हो। जो काम हमें करना ही है तो फिर उसे आनंद के साथ ही क्यों न किया जाए। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप ज्ञान प्राप्ति से पहले भी केवल कुएं से जल खींचते थे और लकड़ियां काटते थे, और ज्ञान प्राप्ति के बाद भी आप वही कर रहे हैं। आपके कार्य में तो मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु का उत्तर था, हाँ, मेरे कार्य में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जिस गुणवत्ता से मैं यह कार्य कर रहा हूँ उसमें परिवर्तन आ गया है। कन्फ्यूशियस ने ठीक ही कहा था, वह रोजगार चुने जिसमें आपकी रुचि है तो फिर आपको जीवन में एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा। खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं है, खुशी खुद ही वह रास्ता है। तो हमेशा हर कार्य को करने के लिए खुशी वाला रास्ता अपनाएं, खुशी के साथ हर कार्य करें, तो आपको जरूर उस कार्य की पूर्ति होने के बाद उपलब्धि की अनुभूति होगी। कुछ आपने पाया है यह आप महसूस कर पाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: एक जौहरी की नजर बेहद पारखी होती है, उसे रत्नों की पहचान और उनका मूल्य पता होता है। संसार के सबसे बड़े जौहरे परमात्मा शिव ने भी सृष्टि पर नई दुनिया की रचना करने के लिए चुन चुन कर हीरे तलाशे और उन्हें मधुबन की इस बगिया की शोभा बनाया। दादी रत्न मोहनी जी उनमें से एक हैं। परमात्मा पर अटूट एवं दृढ़ निश्चय रखते हुए उन्होंने न सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की बल्कि दृढ़ता की जीती जागती मिसाल बनकर अनेक मनुष्यात्माओं में उमंग उत्साह भरा। यूथ दादी के रूप में उन्होंने पीढ़ियों के बीच के अंतर को यूं खत्म कर दिया कि कोई भी युवा उनके समक्ष अपने विचार खुलकर व्यक्त कर सकता है। दादी अपने प्रगतिशील एवं आधुनिक सोच से कई बार उन्हें हैरान भी कर देती हैं। ऐसी हैं यज्ञ रक्षक एवं परमात्मा प्रेम में मग्न रहने वाली दादी रत्न मोहनी जी। शक्ति वंदन की इस कड़ी में बीके दिव्येश सुना रहे हैं कि कैसे दादी ने उनके अंदर छिपी विशेषता को देखा और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।
1: शक्तिवंदन में आइए सुनते हैं उन महानुभावों से जिन्होंने दादी रतन मोहिनी जी के अंग संग रहकर उनके सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में अनेक शिक्षाएं प्राप्त की, उनके जीवन से ओतप्रोत होकर अपने आप को धन्य महसूस किया। सुनते हैं उनके अनुभव उन्हीं के मुखारविंद से।
2: दिव्येश, यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। यू आर इन योर 20s जब आप दादी से मिले, और दादी क्लोज टू 90s में थी या शी वॉज इन हर 80s?
3: यस।
2: हाउ डिड इट बिल्ड द कनेक्शन? आप कैसे कनेक्ट कर पाए, या आपकी मैजिक थी या दादी की मैजिक थी?
3: सो यस, दादी वॉज डेफिनेटली इन हर 90s। शी हैड टच्ड 90 दैट टाइम। 89-90 का दादी का पार्ट चल रहा था उस समय, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एंड यस, आई वाज इन माय 20s। बट उनसे मिलकर ऐसा लगा कि पहली बात तो ब्रह्म कुमारीज में हमारी रतन मोहिनी दादी यूथ दादी के नाम से फेमस है, बिकॉज बहुत एक्टिव और बहुत एक्यूरेसी उनके हर काम में। हम देखते थे दादी का दिनचर्या था, सुबह 4 बजे उठना, वापस फिर सभी के लिए क्लास कराना, सारा दिन चक्कर लगाना, देश विदेश की ट्रैवलिंग करना, लेकिन उनकी हर कर्म में एवरी एक्शन वाज फिल्ड विद एक्सट्रीम एक्यूरेसी बिकॉज़ हर योगिक पावर्स एंड हर मेडिटेशन पावर एंड हर कनेक्शन विद गॉड वाज सच दैट शी कुड यू नो कनेक्ट विद गॉड, टेक एनर्जी एंड कैरी ऑन विद हर डेली टास्क्स। और जो आपने प्रश्न पूछा कि ये एज डिफरेंस, अभी जब मैं सोचता हूँ उस बात के बारे में तो ऐसा कुछ एज डिफरेंस की फीलिंग ही नहीं है। बस दादी ने मेरे को जाना, मेरी विशेषताओं को पहचाना, और मैंने दादी को जाना और समझ लिया कि ये दादी के द्वारा कार्य कराने वाला भगवान है। जब दादी देखती थी, दादी बोलती थी, दादी कुछ यू नो प्रसाद खिलाती थी, तो ऐसा लगता था कि ये तो भगवान का प्रतिरूप है, ये तो भगवान की परछाया है। और इतना सुंदर अनुभव होता था कि कभी ये दादी ऐसी बुजुर्ग है और है ना, शी इज नॉट समवन हु इज अप्रोचेबल, ऐसा फील ही नहीं होता था। इतना अप्रोचेबल दादी थी, इतनी वंडरफुल तरीके से हम उनसे मिल सकते थे, कनेक्ट हो सकते थे। एक बात मैंने उनकी विशेषता ये नोटिस करी कि जो पीस प्रोजेक्ट के बारे में जब हमने काफी सारे लोगों से बात करी, एजुकेटेड लोगों से बात करी, यंग लोगों से बात करी, उनको उस प्रोजेक्ट की सक्सेस के बारे में डाउट था। शायद कई भाई बहनों ने तो ना भी कर दिया था कि ऐसा प्रोजेक्ट तो आई डोंट थिंक टेक ऑफ हो सकता है, लेकिन दादी ने पहली बार में इवन एट द एज ऑफ 90 एक आधुनिक सेवा को, एक एक्सट्रीमली मॉडर्न तरीके की सेवा, जो कल्चरल के थ्रू हम पीस का मैसेज फैलाने वाले थे, एक विश्व शांति ज्योति प्रज्वलित करके पीस का मैसेज फैलाने वाले थे, इंटरनेशनल स्कूल्स को अप्रोच करके पीस का मैसेज फैलाने वाले थे, एक ऐसी मॉडर्न तरीके की सेवा को भी दादी इन हर लेट 80s एंड 90s could understand and recognize, which not even the young people could understand. तो I would say, you know, दादी in the true sense is a very modern and a very young दादी, because उनकी सोच बहुत forward है. तो I think now, when I think about it, तो उनकी इस विशेषता के कारण कभी एज गैप, कभी डिफरेंस का ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ.
2: लौकिक में हम देखते हैं यूजुअली कि जो यंग जनरेशन होती है वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, एंड हम ये भी देखते हैं कि उनको इतनी समझ नहीं होती है कि हम क्या करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, अभी वर्तमान में संसार में क्या चल रहा है, क्या आवश्यकता है, ये सभी चीजें. लेकिन जब आपका अनुभव सुनते हैं तो ये चीजें हमें भी महसूस नहीं होती है. सो दिव्येश, आपकी फैमिली सपोर्ट कितनी रही?
3: फैमिली का सपोर्ट एक्चुअली शुरू से ही मेरे को था, काफी था. पीस प्रोजेक्ट भी जब हमने किया और जब दादी आई तब भी हमारी फैमिली जुड़ी थी, और पहले तो मैंने राजयोग सीखा और फिर हमारी फैमिली ने राजयोग सीखा. मेरी फैमिली में किसी ने भी राजयोग का अभ्यास पहले ना सुना था, ना ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में सुना था, ना कोई जानता था, कुछ भी उस समय मालूम ही नहीं था. मैंने सिर्फ देखा बोर्ड राजयोगा मेडिटेशन का, राजयोगा सीखा, और फिर उसके बाद माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट एंड ऑल ऑफ दैट है ना, उन्होंने फिर राजयोगा मेडिटेशन सीखा और वो लोग भी दादी से मिले, और उनको भी काफी समय तक समझ नहीं आया कि इन दोनों का ऐसा क्या संबंध है, कि दादी ने इसमें क्या देखा और इसने दादी में क्या देखा. ये जैसे कि एक कहावत है ना, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने की, कि ये कोई जान नहीं सकता है कि, और सभी लोग देखते थे कि दादी इसका हाथ पकड़ रही है, दादी इसको साथ में लेके जा रही है, तो क्या है इसकी विशेषता जो किसी को नहीं, हालांकि आई थिंक पेरेंट्स को भी विशेषता नहीं मालूम थी जो दादी ने रिकग्नाइज करी थी, और दादी को भी विशेषता नहीं मालूम थी जो दादी ने रिकग्नाइज करी थी. और दादी हमेशा कहती थी कि दिवेश भाई, और बालक बोलती थी, तो बालक आप आपके अंदर विशेषता जो भी है, अगर आप उसको भगवान के कार्य में यूज करते हो तो वो विशेषता बढ़ेगी, नहीं तो उस विशेषता का कोई फायदा नहीं है. तो ये बात मैंने एक बहुत बड़ी सीख दादी की अभी तक, आज दिन तक भी अपने साथ रखी है, कि जो भी टैलेंट दिया है वो भगवान का दिया हुआ है, और भगवान के कार्य में सभी को मदद करने में, स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ होप एंड पीस, इस कार्य में हमको भगवान की मदद से ही ये कार्य करना है. तो लौकिक कार्य भी जो करते हैं, जॉब भी जो करते हैं, उसमें अपना मेडिटेशन हमेशा साथ रखते हैं, और जब ये मेडिटेशन साथ रखते हैं तो और शक्ति और एनर्जी मिलती है, और लोगों को फील होता है कि हाँ ये अलग है, इनका बोलना सच है, और इनके इंटेंशंस बहुत प्योर है, इनका नेचर बहुत अच्छा है, इनको गुस्सा कभी नहीं आता है. तो ये सब चीजें जब वो देखते हैं तो वो खुद ही रियलाइज करते हैं कि हाँ ये अलग है. और जब पूछते हैं कि आप ऐसे इतने अलग क्यों हो, तो हम बोलते हैं कि राजयोगा मेडिटेशन से हम ऐसे बने हैं. तो फिर उनको भी राजयोगा मेडिटेशन सीखने का उमंग उत्साह आता है. तो पेरेंट्स ने भी देखा कि ये इतना खुश है, जो हेल्थ मेरी काफी ठीक नहीं रहती थी पहले, लेकिन राजयोगा सीखने से मेरी हेल्थ और काफी सारे हेल्थ के इश्यूज भी क्लियर होने लग गए. तो वो देखते थे कि राजयोगा के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स दे कुड सी इन मी, तो उनका भी सपोर्ट काफी था. और पीस प्रोजेक्ट में भी कई तरीकों से फैमिली ने भी हेल्प किया था, और दादी को बुलाने में भी उनका सपोर्ट काफी था. तो आई थिंक आई वाज जस्ट ब्लेस्ड, और भगवान को वो कार्य कराना था, तो द एटमॉस्फेयर, द पीपल, एवरीथिंग वाज कंड्यूसिव, द एटमॉस्फेयर वाज वेरी कंड्यूसिव फॉर दैट सेवा टू हैपन. आज हम जब सोचता हूँ मैं कि वो कैसे हुआ, दादी कैसे आ गई उस निमंत्रण पे, 18 साल 19 साल के मेरे निमंत्रण पे, और अभी तक वंडर लगता है कि ऐसा भी कुछ हुआ था एक सपने की तरह.
2: So nice. तो आपकी जो जर्नी है दादी के साथ सिर्फ प्रोजेक्ट तक तो सीमित नहीं रही, उसके बाद आपने दादी के साथ के अनुभव या फिर दादी के बारे में भी आपने बुक्स भी लिखे हैं.
3: करें करें
2: So please share about that journey.
3: जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ, एक्चुअली दैट प्रोजेक्ट बिकेम अ स्टार्टिंग पॉइंट दैट ब्रॉट मी क्लोजर टू द ब्रह्मकुमारीज एंड ऑफ कोर्स वेरी वेरी क्लोज टू दादी. दादी रियलाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज समथिंग इन मी विच इवन आई कुड नॉट रियलाइज एंड रिकॉग्नाइज. जो पोटेंशियल उन्होंने मेरे लिए देखा, जो विजन मेरे फ्यूचर के लिए उनका था, इतने हाई लेवल का और इतना श्रेष्ठ ऊंचा विजन शायद मेरा भी अपने जीवन के लिए नहीं था. तो सोल कॉन्शियसनेस के बारे में और आध्यात्मिक दुनिया की बहुत गहरी बातें मैं दादी के साथ बैठ के चिटचैट करता था, सुनता था. कभी कभी आई वॉज फॉर्चुनेट कि दो दो घंटे दादी के साथ उनके कॉटेज में बैठ करके मेरे को कई सारी बातें करने का चांस मिलता था. और हम दादी जैसे जैसे बोलती थी कि कैसे उन्होंने भगवान के साथ अपनी जर्नी करी, कैसे आत्मा और परमात्मा का

0: अनुभव उन्होंने किया, कैसे ये संस्था बढ़ी, उनका रोल क्या था, ये सारी बातें जब दादी शेयर करती थी तो इतना इंस्पिरेशनल फील होता था, इतना मोटिवेशनल फील होता था कि लगता था कि अरे ये तो इसकी एक किताब बननी चाहिए, क्योंकि द रियल एक्सपीरियंस, द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शुड बी रिकॉर्डेड। और उस समय ब्रह्मा कुमारीज में रतन मोहिनी दादी के एक्सपीरियंसेस की कोई किताब थी नहीं, उनके क्लासेस की कोई किताब थी नहीं, तो मेरे को एक थॉट आया कि आई शुड राइट समथिंग बेस्ड ऑन दादीज टीचिंग्स एंड दादीज फिलोसफी एंड दादीज लर्निंग्स। फिर उनकी ही क्लासेस, वो उस किताब में जस्ट द मीडियम एंड इंस्ट्रूमेंट वॉज माई पेन, बट सारी दादी की ही फर्स्ट हैंड बातें हैं जो हमने सिर्फ ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखी है उस किताब में। इट इज कॉल्ड पर्ल्स ऑफ पीस, क्योंकि कनेक्टेड टू रतन मोहिनी दादी, रतन इज ऑल्सो कैन बी ट्रांसलेटेड एज अ पर्ल, तो पर्ल्स ऑफ पीस के नाम से। और मैंने इट बिकेम अनदर वेरी बिग टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, क्योंकि जैसे मैं किताब लिख रहा था मेरे को आध्यात्मिक दुनिया के रहस्य मालूम चल रहे थे कि दादी ने कैसे अपना कनेक्शन भगवान के साथ रखा, दादी ने कैसे जो स्टेज प्राप्त करी वो कैसे करी। दादी हमेशा एक बात कहती थी कि देवेश भाई आप रियलाइज करो, आप रियलाइज करो आप एक शुद्ध आत्मा हो, आप एक शुद्ध आत्मा हो। और जब दादी वो बात कहती थी तो लगता था अरे ये तो परम पूज्य शुद्ध आत्मा अपने मुख से बोल रही है कि आप रियलाइज करो आप शुद्ध आत्मा हो। तो दादी के नयन में इतनी एकाग्रता, जैसे ही वो देखती थी लगता था कि भगवान उनकी आंखों के द्वारा मुझे देख रहा है, वो एक कनेक्शन उनके बोलने में इतना गहरा महसूस होता था कि दैट पुल्ड मी क्लोजर टू राजयोगा मेडिटेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो वैसे स्टार्ट हुई इस प्रोजेक्ट के बाद की जर्नी दादी के साथ। बहुत अटेंशन रहता था दादी को कि मैं, फिर दादी फोन करके पूछती भी थी कि बालक आपका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, और आप है ना राजयोगा का अभ्यास करने आश्रम पे जाते हो नहीं जाते हो, और आपने कितने आप समान आपने कितने बनाए हैं, ये दादी हमेशा पूछती थी कि कितने लोगों को आपने राजयोगा मेडिटेशन सिखाया। तो दादी को मेरी जर्नी के ऊपर भी काफी अटेंशन रहता था। कभी जब दादी को फोन करते थे तो दादी बोलती थी अरे मैं तो अभी आपको याद ही कर रही थी, लगता था कि कितना गहरा दिल का संबंध है कि यहाँ मैंने दादी को याद किया और वहां दादी को महसूस हुआ और मेरी याद जैसे कि उनको पहुंची और उनको रियल फील हुआ कि इस भाई का जैसे कि फोन आने वाला है। तो ऐसा दिल का कनेक्शन रहता था। जब भी आबू में दादी से मिलने आते भी थे तो दादी बहुत अटेंशन से प्यार से मिलती थी, पालना देती थी, टोली खिलाती थी। और मुरली क्लास जो ब्रह्म कुमारीज में क्लासेस चलती है उस क्लास में भी दादी का डायरेक्शन था कि आपको फर्स्ट रो में बैठना है, और दादी की दृष्टि हमेशा रहती थी कि है ना ये आगे बढ़े, और सचमुच उन्होंने ही आगे बढ़ाया और उनके ही मार्गदर्शन से मेरा जीवन इतना श्रेष्ठ और ऊंचा बना। तो उनके किताब लिखने से ज्यादा बेनिफिट तो मेरा पर्सनली मेरा ही हुआ है और मेरी ही उन्नति हुई है, ऐसा मुझे अभी भी फील होता है।
1: ये बात तो सच है, हम कोई भी चीज़ लिखने बैठते हैं तो हम उसको गहराई से समझते हैं और उसकी एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू भी चलता है और एक्सपेरिमेंटेशन होता है, तभी हम लिख पाते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव सीन इन योरसेल्फ थ्रू दैट जर्नी? हेल्थ के ऊपर तो आपने असर देखा, बट आपकी व्यवहार में, पर्सनालिटी में किस प्रकार का बदलाव देखा आपने जब दादी की जो शिक्षाएं हैं उसको आपने किताब का रूप दिया?
0: तो दादी की जो किताब के अंदर हमने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, दोज आर वेरी वेरी रियल एक्सपीरियंसेस, दे आर प्रैक्टिकली लिव्ड एक्सपीरियंसेस। तो उन एक्सपीरियंसेस से जो सीख और सबक हमको मिला वो बहुत ऊंचा था। सो आई वॉज रियलाइजिंग द रियलिटीज ऑफ लाइफ, आई वॉज रियलाइजिंग हु आई एम, वॉट माई जर्नी इन लाइफ शुड बी, कैसे मेरे को आगे बढ़ना है, कैसे मेरे को अपना काम करते हुए आध्यात्मिकता को अपना सेंट्रल कोर बना के रखना है। ये सारी बातें दादी की क्लासेस ट्रांसलेट करते समय मेरे को फील हुआ। मतलब सोल कॉन्शियसनेस तो राजयोगा ने मेरे को, जब मैंने राजयोगा का कोर्स किया तब सीखा तो था, उसका अभ्यास भी कर रहा था, लेकिन उसकी जो गहराई है वो मेरे को दादी की क्लासेस से ही मिली। सोल कॉन्शियसनेस क्या होता है और आध्यात्मिक जर्नी में अपने आप को सोल की तरह रियलाइज करके आगे बढ़ना क्या होता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये सारा कुछ उस किताब को ट्रांसलेट करने के समय ही मेरे को मिला. इट वॉज लाइक अ डेफिनेटली अ वेरी वेरी मूविंग जर्नी कि पता चला कि अच्छा ऐसा भी होता है और ऐसा भी अनुभव किसी ने किया है और अगर दादी ने किया है और दादी कह रही है हम कर सकते हैं तो देन आई शुड डेफिनेटली ट्राई इट. और उनकी किताब में फिर हमने बताया कि है ना ये सारी जो जर्नी है कैसे जो उन्होंने सीखा कैसे उन्होंने फिर उन बातों को अपने जीवन में धारण किया तो ये फिर उनकी किताब ट्रांसलेट करने के समय ही फील हुआ. एंड लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो गॉट मोटिवेटेड थ्रू दैट बुक और उनको भी रियलाइज हुआ कि अच्छा ये सारी चीजें होती है और ऐसे ऐसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो बहुत लोगों को उस बुक से प्रेरणा मिली. जैसे एक मेरे को याद आता है उस किताब में दादी ने लिखा था कि गॉड हैज अ मर्सीफुल विजन फॉर ऑल हिज चिल्ड्रन एंड एवरीवन शुड रियलाइज गॉड इन हिज ट्रू सेंस. एवरीवन शुड रियलाइज हु दे आर इन देयर ट्रू सेंस एंड देन कनेक्ट विद गॉड. तो ये सारी बातें, दिस इज अ कोट फ्रॉम दादीज बुक, तो ये सारी बातें जब हम पढ़ते थे तो सच में गॉड के साथ नजदीकता का भी अनुभव होता था. सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी ग्रेट लर्निंग फ्रॉम द बुक एंड इट पुल्ड मी क्लोजर टू गॉड एंड आई स्टार्टेड यूजिंग गॉड एंड गॉड्स पावर इन माय डेली लाइफ टू कैरी ऑन विद व्हाटएवर वर्क आई वाज डूइंग विद स्कूल्स कॉलेजेस और व्हाटएवर टीचिंग वर्क आई वाज डूइंग. आई गेन्ड द स्ट्रेंथ टू डू इट बेटर.
1: दैट्स वंडरफुल. सो आप कुछ ब्लेसिंग्स शेयर करना चाहेंगे? जब भी आप दादी से मिलते हैं तो आपको ब्लेसिंग कार्ड्स भी बहुत मिले होंगे. सो डू यू रिमेम्बर व्हाट वाज दैट फर्स्ट ब्लेसिंग दैट यू गॉट फ्रॉम दादी?
0: सो आई हैव एक्चुअली रिटन इट. तो दादी ने एक बार कहा कि भगवान आपसे काम करा रहा है, जरूर उसकी रिजल्ट अच्छी निकलेगी. फिर एक और बार दादी ने कहा भगवान को याद करो और आपको सफलता जरूर मिलेगी. और फिर एक और बार जब दादी से मुलाकात हुई तो दादी ने कहा कि जो संकल्प करो उस संकल्प का एक प्रोग्राम बनाओ और भगवान तो बैठा है पहले से ही आपको प्रोग्राम के सक्सेस की मुबारक दे रहा है. भगवान आपको आगे बढ़ाएगा, नए नए प्रोग्राम आप करते रहेंगे, आपको भगवान का आशीर्वाद है और अलग अलग तरीके के प्रोग्राम आप बना सकते हो. और एक बार दादी ने कहा सदा संतुष्ट रहो और आप बहुत बहुतों की सेवा के आप निमित्त बनेंगे. ये दादी के कुछ कहे हुए महावाक्य मेरे को तो मैंने अपने फोन में नोट करके रखे थे.
1: इट्स सो वंडरफुल. इट लुक्स लाइक जैसे कि आपको दादी विजन देती जा रही है स्टेप बाय स्टेप. एक प्रोग्रेसिव स्टोरी है इसमें भी.
0: एब्सोल्युटली.
1: तो ये सारी जो भी 6-7 लाइन आपने कही आपकी पूरी जर्नी का एक सार है.
0: बहुत अच्छा लग रहा है ये सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए क्योंकि आई एम ऑल्सो गोइंग डाउन द मेमोरी लेन एंड रिवाइजिंग है ना दादीज विजन फॉर मी. इफ यू नो आई हैव फॉरगॉटन इट डाउन द वे आई एम. मेरे को भी अभी बहुत अच्छा लग रहा है शेयर करके कि अच्छा दादी का ऐसा ऐसा विजन मेरे लिए था. तो ये सारी बातें शेयर करते हुए इट इज वेरी फीलिंग वेरी नाइस दैट आई एम रीलिविंग दैट जर्नी एंड दोस डेज दैट यू नो आई स्पेंट विद दादी सो क्लोजली.
2: दादी रत्न मोहनी जी जैसे स्वयं गुणों की खान है वैसे ही वे हर व्यक्ति को विशेष मानती हैं, उनमें विशेषता देखती हैं. दादी को सदा यह स्मृति में रहता है कि हर एक व्यक्ति में निहित विशेषता परमात्मा की देन है और जब उन विशेषताओं को ईश्वरीय सेवा के कार्य में लगाया जाता है तो न सिर्फ अमुक मनुष्यात्मा का उत्थान होता है बल्कि कार्य में भी सफलता मिलती है. मैं मधुबन भी विशेष हूं, तीर्थों में महान तीर्थ हूं. इस पवित्र पावन भूमि पर हर किसी के संकल्प सिद्ध होते हैं. धन्य हूं मैं जो दादी रत्न मोहनी जी जैसी दिव्य श्रेष्ठ एवं महान आत्मा के सानिध्य में एक आध्यात्मिक क्रांति की धरनी बन सका हूं.

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। खुद को पहचानने का ये सफर हम काफी अच्छी तरह से तय कर चुके हैं। पहचाना खुद को और उसके अलावा उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बहुत कुछ जान लिया हमने जिसके थ्रू हमारे तक ये ज्ञान आ रहा था। अब बात आगे बढ़ती है कि मैं जो सोचता हूँ उससे मेरी आगे की जिंदगी जो है वो सही हो सकती है, लेकिन जो मेरे आसपास हो रहा है क्या उसका भी मुझ पर असर होता है। ऐसी कई और बातें हैं जो कि जिंदगी से जुड़ी हुई अभी भी बाकी हैं। तो चलिए एक बार फिर इस सफर को शुरू करते हैं और हर बार की तरह हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सोल कॉन्शियसनेस में रहने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि हम कौन हैं, और लम्हा लम्हा उसमें अगर हम रह पाए तो उसे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये जो पूरी कॉन्शियसनेस है, ये अवेयरनेस है, इसमें मेरे आसपास जो हो रहा है, खासकर मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ क्या है, वो भी तो बहुत डिपेंड करता होगा। जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
1: सबसे पहले जब हमने थॉट्स टू डेस्टिनी का साइकिल देखा था तो हमने देखा थॉट्स किस बेसिस पर क्रिएट होते हैं। थॉट्स गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंफॉर्मेशन दैट वी टेक इन। इन्फॉर्मेशन अर्थात इन कर्म इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी अंदर हम लेते हैं, जो कुछ हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हम फील करते हैं, वो इम्पल्स थॉट्स पर इफेक्ट करता। और इस मुख द्वारा जो कुछ हम खाते हैं अंदर, वो भी मन पर इफेक्ट करता है। दैट्स अ फैक्टर विच वी डोंट रियली पे टू मच अटेंशन टू। लेकिन वर्तमान समय, क्योंकि साइंस हमेशा रिसर्च करके हमारे सामने नई नई बातों को रखती है, तो एक नया कॉन्सेप्ट जो अब इंडस्ट्री में आया है, स्पेशली इन द हेल्थ इंडस्ट्री, इट सेज यू आर व्हाट यू ईट, यू नो। यही बात और डीपर लेवल पर हमने इंडियन कल्चर में शुरू से ही सुनी कि जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर हमें प्योर मन चाहिए जिसमें से नेगेटिविटी, इम्प्योरिटी हटती जा रही है धीरे धीरे,
0: अगेन इस फास्ट लाइफ में कुकिंग, हाउ आई कैन इनकॉर्पोरेट इट, आई कम टू दैट वो थोड़ा लेटर स्टेज में। लेकिन पहले एक बहुत बड़ा इशू आज के आई थिंक वर्ल्ड ओवर ये सवाल बहुत ज्यादा, पहले तो विदेशों में इतना सवाल नहीं था, ये वेजिटेरियन फूड एंड नॉन वेजिटेरियन फूड।

0: think we all know what is wrong with it.
1: Is he going to kill somebody?
0: Killing somebody is, of course, deep-rooted. आपकी consciousness आपको अगर allow करती है, तो वो ही हमें सबसे fundamental level पर तो तभी समझ में आ जाता कि जब एक जीव की हत्या करके हम उसको अपना भोजन बनाकर स्वीकार करेंगे, तो उस भोजन में कहाँ की purity होगी, या कहाँ की positivity होगी? वो तो शायद एक बच्चे को भी समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं. तो अगर फिजिकल लेवल पर भी देखें, तो आज मेडिकल साइंस भी हमें ये समझा देती है कि नॉनवेज इज हार्मफुल फॉर द कॉस्ट्यूम, फॉर द बॉडी. ह्यूमन बींग्स की जो इंटेस्टाइन्स है, दे आर लॉन्ग इंटेस्टाइन, एंड वेयर इज जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, उनकी इंटेस्टाइन्स स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं. अब नॉनवेज भोजन जब अंदर जाता है तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जेनरेट करता है. अब लॉन्ग इंटेस्टाइन होने के कारण ये इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज्यादा समय तक रहता है, एंड ऑब्वियसली फिर उसके वो केमिकल्स जो जेनरेट होते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता. और वर्तमान समय तो कितना ज्यादा अवेयरनेस इस बारे में जनरेट हो गया कि जो एनिमल्स को स्लॉटर हाउस में रखा जाता है उनकी कैसे ट्रीटमेंट की जाती है. यू नो, वी आर ऑल अवेयर ऑफ उनके साथ क्या नहीं होता है, क्योंकि उनको बहुत अच्छा, यू नो, जो कहें बहुत मोटा बनाने के लिए बहुत अच्छी तरह से उनको आर्टिफिशियल मीन्स से केमिकल्स, हॉर्मोन्स, ये सारे उनके अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसके कारण कार्सिनोजेनिक केमिकल्स जेनरेट होते हैं, और उसी के कारण कैंसर, जो लिवर का कैंसर या कोलोन का कैंसर, वो उसी के कारण बढ़ता है.
1: इसी दौरान डिजीजेस भी कई बार आ जाते
0: उसी के बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो उस जानवर के अंदर डिजीज होगी तो भी ऑटोमेटिकली टेकन दैट डिजीज. और कहा जाता है कि जब उस जानवर का स्लॉटर होता है तो जो फ्लैश होती है वो इमिजिएटली डीकलर हो जाती है, यू नो, इट बिकम्स वेरी ग्रीनिश ग्रेश. लेकिन जो हमें मार्केट में मिलता है दैट इज एब्सोल्युटली रेड इन कलर, तो उसको आर्टिफिशियल तरह से केमिकल्स, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स उसके अंदर इंजेक्ट करके उसको वो रेड कलरेशन दी जाती है, और ये केमिकल्स बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं. तो एक तरफ से वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट के पेस्टिसाइड्स नहीं होने चाहिए, यू नो, जो फल और सब्जियां हम खाते हैं, और दूसरी तरफ से हम ये सारे केमिकल्स, ये सारे आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर डाले जाते हैं, इसको किस मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका हमारे शरीर के ऊपर तो असर पड़ने ही वाला है, दैट इज डेफिनेट. बट उससे भी ज्यादा डीप इम्पैक्ट जो पड़ता है दैट इज ऑन द माइंड.
1: दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, कि क्या वो मैं इनटेक जो ले रहा हूँ जो नॉन वेजिटेरियन का है बॉडी पे पड़ रहा है. People, in fact, at times, you know, let it be. कि मैं और भी तो काफी सारी चीजें खा रहा हूँ तो ठीक है, क्योंकि ये taste developed है. But how does it affect my mind, you know, my thoughts?
0: आप एक क्षण के लिए इमेजिन करें कि हमें अभी कैप्टिव रखा गया है और कोई आ रहा है सामने से, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा है और वो हमें अभी काटने वाला है, तो हमारे मन में किस तरह के थॉट्स क्रिएट हो रहे होंगे.
1: लेकिन जो लॉजिक देता है आदमी वो ये कि उन्हें तो समझ ही नहीं आता.
0: क्यों? अब विल एनिमल नॉट कम टू नो दैट ही इज गोइंग टू बी किल्ड? तो उसे पता चलता है, उसको तो जब इतने दिन कैप्टिविटी में रखा जाता है तब भी उसको पता होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है. लेकिन वो कुछ पल जिस समय वो स्लॉटर किया जाएगा, उस समय उसके मन में क्या संकल्प जेनरेट होंगे,
1: व्हाट काइंड ऑफ मौत को देख के जो भय जेनरेट,
0: राइट, ऑटोमेटिक एंड वेरी हाई लेवल ऑफ फियर. और जैसे ही वो हाई लेवल ऑफ फियर थॉट्स क्रिएट हुए तो एड्रेनालिन पूरी बॉडी के अंदर सिक्रेट हो गया, क्योंकि जैसा थॉट वैसे हॉर्मोन्स सारी बॉडी में सिक्रेट होते हैं. वाइब्रेशन भी, द होल वाइब्रेशन इज ऑफ फियर, अग्रेशन, नेगेटिविटी. इतना ज्यादा भय मन में और उसके पूरे वाइब्रेशन शरीर में जेनरेट हो जाते, और ये उसकी अंतिम स्थिति है जिस समय उसको मारा जाता है. इसका मतलब कि जिस क्षण उसका वो स्लॉटर हुआ, इट हैज बीन किल्ड इन दिस स्टेट ऑफ माइंड, एंड उसका इफेक्ट उसके बॉडी पर पड़ा. तो जब हम वो फ्लैश को कंज्यूम करते हैं, वी आर नॉट जस्ट कंज्यूमिंग द फ्लैश, हम सिर्फ उस मांस के टुकड़े को नहीं कंज्यूम कर रहे, लेकिन उसके साथ जो हॉर्मोन्स उस क्षण सिक्रेट हुए थे जब उसे मारा जा रहा था, हम उन हॉर्मोन्स को भी कंज्यूम कर रहे हैं, और साथ साथ जो वाइब्रेशंस भय की, एंग्जाइटी की, अग्रेशन की जो जेनरेट हुई, वी आर कंज्यूमिंग दोज वाइब्रेशंस. तो ऑटोमेटिकली मैं कौन से वाइब्रेशंस कंज्यूम कर रहे हैं? फियर. तो ये बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने अंदर खुद से ही वॉलेंट्रिली, अब एक तरफ से हम कह रहे हैं हमें गुस्से को खत्म करना है, भय को खत्म करना है, चिंता से मुक्त होना है, तो एक तरफ से उससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरी तरफ से इस भोजन के थ्रू उसी को कंज्यूम करते हैं, तो कहां तक पहुंचेंगे?
1: बिल्कुल. लेकिन जैसे हम एडिक्शन की बात करते हैं, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की बात हुई, ड्रग्स की बात हुई, बहुत से लोगों से जब बात करते हैं तो नॉनवेज बिकम्स लाइक एन एडिक्शन. दे डोंट इवन अंडरस्टैंड, दे आर सो मच एडिक्टेड टू द टेस्ट दैट दे like all these thoughts, even if they come, you know, even if they realize it, even if they want it, they don't, the moment it is that it comes in front of them, they have to consume it.
0: But that's all about self control.
1: Yeah.
0: ek bar aapko samajh mein aa gaya, wo to hum abhi tak bahut sari baatein aise karte aa rahe the jo hamare liye harmful thi, bahut sari aisi baatein karte aa rahe the bina samjhe, aur kuch baatein samajh kar bhi hum galat kar rahe the, which were harmful to me. To अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है एंड आई वॉन्ट टू डैमेज माई सेल्फ, मुझे अपने ही शरीर को एक ग्रेवयार्ड बनाना है जहां मुझे डेड बॉडीज को अपने अंदर डालना है, दैट्स माई चॉइस. शिव बाबा हमें बताते हैं आपका शरीर एक मंदिर की तरह है और आत्मा उस मंदिर में एक देवता के समान है. तो जैसे देवता तो बहुत पवित्र है ही, लेकिन वो मंदिर भी कैसा होना चाहिए? The temple also has to be very clean and very beautiful, क्योंकि उसकी भी तो vibrations है ना. तो that's why we are very careful कि हम किस तरह की vibrations अंदर consume करें. अब अगर मेरे सामने वो चीज आ जाती है and if I have absolute no self control, that means my intellect is not working. My intellect is not working and I am consuming anger. ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम भय को अपने अंदर डाल रहे हैं, एजिटेशन, क्रोध, इस सब के हॉर्मोन्स को अपने अंदर डाल रहे हैं. फिर उसके बाद ये ना कहें कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, तो उसको कंज्यूम करना पड़ेगा.
1: इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि मैं जो खा रहा हूँ उससे मेरे थॉट क्रिएट होते हैं.
0: उसको एक्सपेरिमेंट करके देखें.
1: या
0: सी एवरीथिंग इज गोइंग टू कम डाउन टू एन एक्सपेरिमेंट. एक हफ्ता, 10 दिन या कहें एक मास को अपने आप को एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट पर लेकर जाइए. यू नो, मे बी इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल. एक्चुअली ऑल इट रिक्वायर्स इज वन थॉट.
1: नो, आई डोंट थिंक सो. एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट करके देखने में हर्ज नहीं कि
0: तो
1: क्या
0: एक
1: है?
0: संकल्प. अभी तक हमने देखा कि हर परिवर्तन के लिए वन थॉट समझ कर सिर्फ एक संकल्प लगता. जब तक नहीं समझ में आया, टेक योर टाइम. You know, discuss, study, research, आप सब कुछ कर सकते हैं. आप सेंटर पर आते हैं, बहनों से बात करें, अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. लेकिन एक बार समझ में आ गया तो फिर उसको एक्सपेरिमेंट करने की जो हिम्मत रखनी है, इट्स जस्ट वन थॉट.
1: एंड इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, ज्यादातर लोगों को अंदर बेसिकली पता भी है कि इट इज नॉट गुड, यू नो. क्योंकि एक और भी बात है कि जहां जब जो चीज विदेशों में हो रही होती है वो हमें एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है.
0: और कई बार लोग ये फील करते हैं कि यू नो स्पेशली पेरेंट्स अपने बच्चों को जरूर खिलाते हैं क्योंकि प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट है. तो इसमें भी मेडिकल साइंस अब जो वर्तमान समय हमें बताते हैं कि पहले कहते थे पर डे You need at least 150 grams of protein. 150 gram protein आपको रोज लेना. And then we were told as children कि you know eggs या non-veg ये आपको high protein diet है. लेकिन अब बताया जाता कि per day you need only 45 grams. 45 gram protein आपको चाहिए. बाकी जितना आप excess में खा रहे हैं वो extra uric acid बन जाता है और फायदे की बजाय
1: नुकसान
0: शरीर के लिए नुकसान.
1: सिस्टर शिवानी, ये तो उस खाने की बात हुई जिसको हम already थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में थे कि वेदर इट्स अ हेल्दी फूड और नॉट. एक ऐसे खाने के ऊपर बात मैं अब करना चाहती हूँ जो कि हर शास्त्र में जिसके लिए कहा जाता है कि उसे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन हर मुझे लगता है हर मेडिकल जो लोग हैं, मेडिकल लोग जो है, वो कहते हैं कि इट्स वेरी गुड. और वो है लहसुन और प्याज, यू नो, अनियन एंड गार्लिक. कई बार ये कहा गया है कि ये शुद्ध या सात्विक या प्योर नहीं है, लेकिन मेडिसिनल के लिए सुबह से ही शुरू हो जाना चाहिए वो लहसुन खाना, प्याज खाना बहुत जरूरी है.
0: भोजन को या कहे एनर्जी को 3 कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, सात्विक, विच इज़ वेरी प्योर हाई एनर्जी फूड, उसके बाद

0: आत्मा को प्योर भोजन ही खिलाया जाएगा। अब हम सब भी तो एक प्योरिफिकेशन की यात्रा पर चल रहे हैं ना, हम सब के लिए भी, जैसे शुरू में ही हमने देखा कि सेलिबेसी भी हमने देखा कि क्यों, वाई इज इट, बिकॉज वी आर ऑन द जर्नी ऑफ प्योरिफिकेशन। तो उसी तरह सात्विक अन्न, क्योंकि वी आर ऑल टॉकिंग कि हमें एक प्योर मन चाहिए, हमें एक ऐसा मन चाहिए जिसमें से ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, टेंशन ये सब निकल जाए, शांति, प्रेम, शक्ति ये आ जाए। तो अन्न कैसा चाहिए उसके लिए? वेरी हाई एनर्जी फूड। तो गार्लिक एंड अनियन, जैसे आपने कहा कि शरीर के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट कि शरीर के लिए उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो मेंटल इमोशनल लेवल पर बहुत हानिकारक है। ये ऐसा भोजन है जिससे एंगर, अग्रेशन, एजिटेशन बहुत ज़्यादा जेनरेट होता है, और इसीलिए अगर आप अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहते हैं तो ऐसे भोजन से परहेज रखनी चाहिए। कई स्टडीज भी इस पर हुई है। खैर, हम तो क्योंकि परमात्मा ने जो बताया और जो आज दिन तक भी हम समझते हैं उस आधार से ये परहेज रखते हैं, लेकिन आज साइंटिस्ट भी ये स्टडी कर रहे हैं और ये बताते हैं कि गार्लिक अनियन के अंदर सल्फोन हाइड्रोक्सिल आयन होता है, एंड ये वो ब्लड और ब्रेन बैरियर को ब्रेक करके पॉइजनस ब्रेन सेल्स क्रिएट करता है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है और ब्रेन वेव्स जो होती है उसको डिसिंक्रोनाइज कर देता है। तो कहा जाता कि पहले समय में 1950s की बात है कि पायलट्स को कहा जाता था कि जब आप फ्लाइट टेस्ट के लिए आते हैं तो आपको उससे कुछ समय पहले तक गार्लिक नहीं खाना है, क्योंकि उससे आपका रिस्पॉन्स टाइम 2 या 3 गुना बढ़ जाएगा। और बॉब डेक जो ईजी मशीन है वो मैन्युफैक्चर करते थे, तो उनका ये कहना है कि जिनके ऊपर वो स्टडी करते थे, यू नो ईजी जो ब्रेन वेव्स हम लेते हैं, तो वो स्टडी जिन लोगों पर की जाती थी, अगर वो लंच में गार्लिक खाकर फिर आते थे तो देखा जाता था कि लंच के पश्चात जो ईजी वेव उसकी निकलती, इट यूज टू बी डिफरेंट। और इसलिए वो स्टडी के दौरान उनको कहा जाता था कि आपको गार्लिक नहीं खाना है बिकॉज इट डिसिंक्रोनाइजेस द ब्रेन वेव्स।
1: अगेन समवेयर मे बी यू नो दिस मे बी ट्रू एक्चुअली, बिकॉज व्हेन रेकी इज डन, रेकी के दौरान भी ये कहा जाता है कि जो रेकी दे रहा है वो भी तो मेंटल पावर पे ही है, थॉट पावर पे, और जिसको रेकी दी जा रही है वो गार्लिक और अनियन से परहेज होना चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल। तो इसलिए अगेन इट्स नॉट कि आपको ये करना ही है, नथिंग इज कंपल्सरी, लेकिन जितना जितना आप वो प्योरिफिकेशन के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो ये चीजें आपको मदद करती हैं कि आप एक तरफ से हाई एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं तो उसमें आप लो एनर्जी फूड क्यों खाएंगे जो आपको पुल डाउन करे, तो क्यों ना ऐसा हाई एनर्जी भोजन खाया जाए जो आपकी एनर्जी लेवल को और भी बढ़ाता है। तो अनियन गार्लिक की इस कारण से परहेज की जाती, और इंडियन कल्चर में तो शायद ये बहुत इजीली एक्सेप्टेड होता है, लेकिन सिर्फ ये कि हमने उसको आज दिन तक कुछ दिनों के लिए स्पेसिफिक रखा, अब जब हमें समझ में आ जाती है तो हमारे लिए वो पवित्र दिन सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं साल में, लेकिन पूरा जीवन ही बन जाता। तो इसीलिए हम ये प्याज और लहसुन की परहेज रखते हैं।
1: एक्चुअली इफ वी अंडरस्टैंड, यू नो अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अंडरस्टैंडिंग और अनुभव, जैसा कि नॉन वेज के साथ भी है, एक अनुभव करके देखने की कोशिश है। और दूसरी बात अगेन अनियन एंड गार्लिक, और खासकर बात यह है कि क्यों हम एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि ज्ञान हमें आ रहा है सीधा परमात्मा से, तो हम एटलीस्ट उसको ट्राई तो कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं। एक और बात, जैसे आपने शुरू में ही कहा सिस्टर शिवानी, कि जो खाना बन रहा है, जब हम आज फास्ट जिंदगी है, फास्ट फूड है, फास्ट सब कुछ है, तो जो हम बाहर से खाना जब ले रहे हैं तो वो किस तरह की वाइब्रेशंस में खाना बन रहा है वो भी बहुत डिपेंड करती है, किस मूड में है। और वो हम चले नॉनवेज की बात नहीं करते, वेजिटेरियन फूड भी, हाउ मच दैट मैटर्स, यू नो वो थॉट जब हम खाना बना रहे हैं या जब खाना खा रहे हैं,
0: भोजन किस स्थिति में बनाया जाता है इसका बहुत ज्यादा, जहाँ जैसा अन्न वैसा मन जहाँ बात हो रही है, तो इस फैक्टर का बहुत ज्यादा उस पर असर पड़ता है। आज दिन तक आप देखो, जब हमें प्रसाद मिलता है तो हम उस प्रसाद को किस तरह से स्वीकार करते हैं, क्या है उस प्रसाद में, उस प्रसाद में और घर के बने हुए भोजन में क्या फर्क है। सपोज हमें मंदिर में गए, हमें हलवा मिला, घर में भी हलवा मिला, होटल में भी हलवा मिला, तीन रेसिपी इज द सेम, The dish is the same,

0: नहीं, लेकिन प्रसाद का जो हलवा होता है वो बहुत अच्छा होता है.
1: अच्छा क्या होता है उसमें, क्या अच्छा होता है? दैट आई विल हैव टू आस्क माई सेल्फ. वॉट इज इट अबाउट दैट? इट्स द थॉट, द फीलिंग एंड द इंटेंशन. क्योंकि वो जो बनाया गया है वो किस भाव से बनाया गया है? वो परमात्मा के लिए बनाया गया है. तो जिन्होंने वो भोजन बनाया होगा, वो प्रसाद बनाया होगा, उन्होंने कितनी श्रेष्ठ भावना से बनाया होगा कि हम भगवान के लिए ये बना रहे हैं. कितना मन में ध्यान रखा होगा कि उस टाइम कोई अपवित्र थॉट नहीं आना चाहिए, शुद्ध संकल्प ही आने चाहिए. तो वो उस शुद्ध संकल्प से बनाते हैं और उसी शुद्ध संकल्प से हम उसको स्वीकार करते हैं. दैट इज हाई एनर्जी फूड. घर में हलवा बना, एक माँ ने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बनाया, वो भी अच्छी भावना है कि बहुत प्यार से, कि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ. तो उस भावना से बनाया और बच्चों ने भी उस भावना से उसको स्वीकार किया कि हमारी माँ ने हमारे लिए बनाया. होटल में बन रहा है, किस भावना से बन रहा है? कि ये बिकेगा 40 रुपीज का. नाउ व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट? अर्निंग इनकम, लोएस्ट लेवल ऑफ थॉट. तो वो जब हम कंज्यूम करेंगे उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तीनों थॉट्स बिल्कुल ही डिफरेंट है. तो अभी तक हम उस फैक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते आए कि मन की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है. और इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि जब आप भोजन बना रहे हैं तो आपकी मन की स्थिति बहुत शांत और शुद्ध होनी चाहिए. अगर आपके मन में कोई टेंशन है, अगर किसी बात पर आप परेशान हैं, सिट डाउन फॉर 5 मिनट्स, रिलैक्स, अनवाइंड, सॉर्ट इट आउट, स्टेबलाइज, देन गो बैक टू द किचन. लेकिन गुस्से में, यू नो, ऐसे जब खाना बनाते हैं तो ये एनर्जी है ना सारी, ये एनर्जी सिर्फ यहाँ थोड़ी रहती है अंदर, इट्स आउट देयर. एंड दैट एनर्जी इज अफेक्टिंग एवरी पार्टिकल ऑफ द फूड. उस भोजन के कण कण पर उस शक्ति का प्रभाव पड़ रहा है, उस संकल्पों का प्रभाव पड़ रहा है. और अगर गुस्से में बनाया गया है, वो चिंता में बनाया गया है, कोई परेशानी सोच रहे हैं वो बनाया गया, तो सारा परिवार जब उस भोजन को स्वीकार करेगा तो ओनली नॉट द फूड, लेकिन वो सारी वो चिंताएं भी साथ में कंज्यूम करेंगे. तो भोजन को बनाते समय बहुत ध्यान रखें और भोजन को खाते समय बहुत ध्यान रखें कि डाइनिंग टेबल पर जब सब इकट्ठे भोजन करते हैं, क्योंकि आजकल कई लोग टीवी के साथ भोजन करते हैं, सो अगेन स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है. इट्स टू मच विद वायलेंस और यू नो द रॉन्ग काइंड ऑफ इमेजेस. तो वो भोजन भी वो राइट प्रभाव शरीर पर नहीं डाल पाएगा. या अगर डाइनिंग टेबल पर हम भोजन कर रहे हैं तो कई बार बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है,
0: डिस्कशन सारे डाइनिंग टेबल.
1: डायलॉग इज ओके, लेकिन एक नेगेटिव वायुमंडल कभी भी भोजन के समय नहीं क्रिएट होना चाहिए. और जहां तक हो सके भोजन एक बहुत पीसफुल और प्योर वातावरण में करेंगे तो वी विल बी मेकिंग द मोस्ट ऑफ व्हाट वी आर ईटिंग. अदरवाइज मोस्ट ऑफ इट इज एडिंग टू नेगेटिव एनर्जी. एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट साइंस ने अब करके दिखाया. जापान के एक डॉक्टर है, डॉक्टर मसारू इमोटो. इन्होंने वाटर के क्रिस्टल्स पर एक्सपेरिमेंट किया है, एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज करके, इन अ वेरी वेरी कोल्ड रूम एंड यूजिंग वेरी हाई फोटोग्राफी. उन्होंने वाटर, पानी के क्रिस्टल्स की फोटोग्राफ्स ली हैं और उन क्रिस्टल्स के ऊपर संकल्पों का असर देखा गया है. और ये पाया गया कि एक एक क्रिस्टल की शेप बिल्कुल परिवर्तन हो जाती है डिपेंडिंग ऑन किस तरह का संकल्प उस पानी को दिया गया है. मतलब द रिजल्ट दैट हैज कम आउट फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट इज एब्सोल्युटली एन आई ओपनर. इवन वी हैड नॉट रियलाइज दैट इट, यू नो, द इम्पैक्ट इज प्रोबेबली सो डीप कि एवरी क्रिस्टल इज गेटिंग अफेक्टेड बाय इट. एंड आप देखिए, हर चीज जो हम कर रहे हैं वो पानी से कितनी ज्यादा संबंधित है. हमारा शरीर ही 70% वाटर है. एवरी थॉट is affecting that. हम जो भोजन बना रहे हैं उसमें पानी है. इवन जो सब्जी है, जो फल है, पानी से बना हुआ है. तो एक एक क्रिस्टल जो उसमें बन रहा है वो हमारे संकल्पों से इफेक्ट होता है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक एक संकल्प हमारा पानी के एक एक क्रिस्टल पर कितना प्रभाव डाल रहा है.
0: डेफिनेटली इट्स डेफिनेटली एन आई ओपनर, यू नो, लाइक किस तरह से हमारे थॉट्स जो हैं वो जितना जो जो चीजें हमारे आसपास हैं उस पर इफेक्ट करती हैं.
1: एंड पौधों पर भी तो हम देखते हैं ना.
0: बिल्कुल.
1: पौधों को अगर आप प्यार से उनको यू नो बात करते हैं या सिर्फ थॉट्स भी देते हैं तो वो पौधे कैसे ग्रो होते हैं. भोजन का अगर कोई प्रयोग करके देखे यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स. जस्ट ट्राई एंड हैव ओनली हाई एनर्जी फूड एंड फूड विच इज कुक्ड इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड. तो उसका आपके मन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा.
0: और सही तरीके से खुद अपने आप को, हमने हर बार यही कहा है कि खुद डिसीजन मेकर बने.
1: ये किसी भाई का अनुभव है जो सेंटर पर आते थे. वो भाई एक दिन सेंटर पर आए और कहने लगे कि बहन जी बहुत दिन से ना मेरा मन बहुत परेशान है और मुझे कोई अजीब से संकल्प आ रहे हैं, मुझे स्वप्न आ रहे हैं अजीब से. और वो बहुत ही रिच फैमिली के थे और कहते मुझे स्वप्न आ रहे हैं कि मैं एक चौल जैसे एरिया में घूम रहा हूँ और मैं मुझे मकान नहीं मिल रहा रहने के लिए, यू नो. एंड ही सेज आई एम सो डिस्टर्ब्ड, मुझे लग रहा है कि कहीं ये मेरा भविष्य तो नहीं है, कहीं ऐसे तो नहीं होने वाला कि ऑल माई मनी इज गोइंग टू गो अवे एंड आई एम गोइंग टू हैव नथिंग, मुझे क्या हो रहा है. एंड द सिस्टर एट द सेंटर ऑल्सो डिडंट नो कि उनको ये सपने क्यों आ रहे हैं. एंड एक हफ्ते के बाद द लेडी हु यूज्ड टू कुक इन हिज हाउस शी केम एंड सेड कि मुझे 25,000 रुपए चाहिए, मैं बहुत समय से मकान ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मकान नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है. उसको वो 25,000 रुपए दे दिए और उसके बाद से वो स्वप्न आने बंद हो गए.
0: आई डोंट बिलीव.
1: या दिस इज हिज रियल लाइफ, यू नो, दिस इज हिज रियल एक्सपीरियंस. क्योंकि ऑब्वियसली वो बहन के लिए वो इतनी बड़ी टेंशन की बात थी कि उसके पास मकान नहीं था तो भोजन बनाते समय वो क्या सोचेगी.
0: कंटिन्यूस वही
1: जो आपके लाइफ में टेंशन चल रही है आप वही तो सोचेंगे. और उसका इतना ज्यादा प्रभाव उन पर पड़ा. तो ये तो एक बहुत डायरेक्ट इंसिडेंट हमें मिला. लेकिन इनडायरेक्टली बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं कि बहुत थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं. कई बार हम बहुत लो फील करते हैं, हमें रीजन भी नहीं पता होता कि व्हाई आर वी फीलिंग लाइक दैट.
0: दैट्स ट्रू एक्चुअली. आई कैन एक्चुअली फील इट, यू नो, क्योंकि आज का एक ट्रेंड है कि खाना जो है, क्योंकि वक्त है ही नहीं, खाना नहीं बनाते, बाहर का ही कोई बना रही है या कोई बहन बना रही है या कुक है. तो डेफिनेटली दैट बिकम्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट.
1: तो अगर कोई इस तरह से आपके घर में भी बना रहा है देन दे नीड टू बी ट्रेन्ड,
0: यू नो, कि क्या थॉट रख के काम करना चाहिए. बिकॉज यस, डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस जो हम लो फील करते हैं, कुछ विचार आ रहे हैं उसके पीछे ये रीजन हो सकता है.
1: बस इसी का कारण है कि हम थोड़ा सा ये परहेज रखते हैं. क्योंकि जहाँ आप एक तरफ से इतनी मेहनत कर रहे हैं कि गुस्से को खत्म करना है, पवित्रता को धारण करना है, तो फिर जब हम ऐसा भोजन स्वीकार कर लेते हैं जो गुस्से या चिंता की स्थिति में बनाया गया, तो ये सारी जो की हुई मेहनत है सारी वापस आ जाती है. सो देन वी विल जस्ट कीप ऑन प्लेइंग लाइक दैट, यू नो, मूव अप एंड देन कम डाउन एंड मूव अप एंड देन वी फील के हम इतना कुछ कर रहे हैं, हमारे अंदर चेंज क्यों नहीं आ रहा. तो ये छोटे छोटे प्रिवेंशन उसमें बहुत हेल्प कर जाती है.
0: सर शिवानी, ये जो निटी ग्रिटीज हमें बताई आपने जीवन की, जिनके बारे में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते लेकिन कितने इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद.
1: ओम शांति.
0: ओम शांति. इतने लंबे सफर पर हम चले हैं और ये छोटे छोटे रुकावटें जो हैं ये हमें उस मंजिल तक ना पहुंचा पाए, ऐसा नहीं होने देंगे हम. जब रियलाइजेशन हो जाए, जब पता चल जाए कि क्या वजह हो रही है, तो एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे खाने के साथ जिंदगी जीने के जो तरीके हैं उनके साथ. और जब भी हम खाना बनाने बैठें या खाने बैठें उन थॉट्स को पॉजिटिव रख के. कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हर बार की तरह खुला निमंत्रण है. आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9999 3445 9999 3446 9873 6665 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. बहुत सी बातें अभी भी बाकी हैं, बहुत से आपके सवाल हैं. अगली कड़ी में फिर आपसे होगी मुलाकात, क्योंकि आप ही के सवालों के साथ हम सिस्टर शिवानी से बातचीत करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में. अब दीजिए इजाजत. ओम शांति.

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ डांस, डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म, अर्थात ये जीवन को हमेशा उमंग और उत्साह के साथ जियो। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है जिसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर पल हर क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है, और वो बहुत सुंदर स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो देखो, हमें अपने भाग्य पर कितना नशा होना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, तो क्या हमें दुखी होना चाहिए क्या? नहीं, हर पल हर क्षण वी हैव टू डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाने वाला हूँ। सभी करेंगे डांस? इसको कहते हैं पीकॉक डांस। पीकॉक जब खुशी में होता है ना तो कितना वंडरफुल डांस करते हैं, वही डांस मैं आपको भी सिखाता हूँ। और वो कैसे करना है? वाह मेरा जीवन वाह। जब आप ये डांस करते हो तो एक तो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, और दूसरा मन में भी जो आपको विचार मिलते हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक और मोटिवेटिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक बोलता रहूंगा, वैसे आप करते रहना, ठीक है? करेंगे सभी? ओके, चलिए। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे मम्मी डैडी वाह, वाह मेरे ब्रदर सिस्टर्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह। स्टूडेंट्स बहुत खुशी से कह सकते हैं वाह एग्जाम्स वाह, वाह मेरी पढ़ाई वाह, वाह ये दिन वाह, वाह वाह वाह। तालियां बजाइए। तो हर दिन सुबह उठकर ये पीकॉक डांस जरूर जरूर करना।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मिलते हैं तब जब उसकी रहमत हो, उससे मिलने की तरकीब कहूं गर तुम सहमत हो। तुम फूल ही हो इसमें नहीं कोई शक मुझको, तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको, तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको, नहीं अब हक मुझको।

है वही, ये कैसे समझाऊं मैं। मेरी नजरों में अब है वही, ये कैसे समझाऊं मैं। बस गया इनमें अब बसने वाला, कोई और कैसे समाऊं मैं। बस गया इनमें अब बसने वाला, कोई और कैसे समाऊं मैं। कोई और कैसे समाऊं मैं।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए बात करते हैं आज के दिन विशेष की, और आप सभी को आज के दिन की शुक्रवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 9 अक्टूबर 2026 आज का तारीख है और शुक्रवार का दिन है, तो आप सभी को आज के दिन की और माँ दुर्गा की, माँ अम्बे की आप पर आशीर्वाद बनी रहे, ऐसी शुभ आशीष के साथ बात करते हैं 9 अक्टूबर की। और आज विशेष हमारे भाई साहब ब्रजमोहन जी का भी पुण्य स्मृति दिवस है और उन्हें याद किया जा रहा है शांति वन में, और उनके कुछ विशेषताओं के साथ साथ कुछ गीत और कुछ फिल्में उनके नाम बनाए गए हैं जो शांति वन के डायमंड हॉल में आज पूरा दिन कार्यक्रम रहेगा। आइए इसके साथ ही 9 अक्टूबर की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षक 1948 17 अगस्त 23 अश्विन शुक्रवार, विक्रम संवत 2083 अश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी शुक्रवार उत्तर फाल्गुनी आज है, और इस्लामी हिजरी 1448 27 रबीउल आखिर जुम्मा सुरपा आज है। इसके साथ ही आज विश्व दृष्टि दिवस है, विश्व डाक दिवस है, तो चलिए इन दोनों दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ और ढेर सारी खुशियां आपको आज के दिन की। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर जी हां नई किरण इस कार्यक्रम को, और आ गए हम भूल जाओ गम। तो चलिए, जैसे कि शुक्रवार का दिन है तो एक बहुत ही प्यारा सा जो है स्पेशल भजन सुनाते हैं। और अब नवरात्रि का भी धूम मचने वाला है, दीपावली एंड सब त्यौहार जो है लगातार आपका इंतज़ार कर रहा है, तो चलिए सबसे पहले माँ अम्बे को याद करते हैं, सुनते रहो मस्करात।

0: स्तुति। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आशा करूंगा कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आइए, मैं आप सभी को ले चलता हूँ। आज विश्व डाक टिकट दिवस है, तो विश्व डाक दिवस के बारे में बात करते हैं। हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। डाक सेवाओं की उपयोगिता और इसकी संभावनाओं को देखते हुए हर वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की ओर से मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य ग्राहकों के बीच डाक विभाग के उत्पाद के बारे में जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना और फिर उन्हें ये बताना और उनके लिए जो डाक सेवाएं हैं उसकी जानकारी देना। हेलो जी, नमस्कार।
1: जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम
0: शांति। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, स्वागत है आपका।
1: बहुत अच्छे है सर, आप कैसे हो?
0: भी बढ़िया है, आप लोगों की दुआएं आशीर्वाद है।
1: चलता रहता है एक दूसरे के जो दोस्त पहले जमाने में तो क्या इतना इंतजार था, लेकिन जितना इंतजार नहीं पोस्ट मास्टर को, क्योंकि पहले तो इतनी टपाले आती थी, इतना पोस्ट आता था कि लोग घर घर इंतजार करते थे कि भाई हमारा पत्र आएगा, हमारा कुछ अच्छा संदेश आएगा। लेकिन आज तो ऐसी सुविधा हो गई है कि एक सेकंड में हम एक दूसरे के हाल में खुशी रहते हैं, तो आज वैसा नहीं है क्योंकि अब इंतजार इतने खत्म हो गया है, क्योंकि लोग मोबाइल से जुड़े रहते हैं पूरे दिन तक, तो तुरंत एक दूसरे का मैसेज मिल जाता है। लेकिन फिर भी ये इंतजार बहुत अच्छा था, क्योंकि इतनी जितनी मजा भी आज इस मोबाइल में नहीं है, तो आज के दिन की सबको सोता है ऐसा है। तो एक गाना भी ऐसा है, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। तो सुनेंगे हम बाद में, लेकिन हमारा तो जो गाना है वो ताड़ी पाड़ो तो हमारा राम नहीं रे, लेकिन ताड़ी ना हो तो जरूर देना सर। कई दिनों से वो हमने गाना नहीं
0: अच्छा। है
1: तो बस सबको लगा दीजिए, ताड़ी पाड़ो तो हमारा शाम नहीं रे, लेकिन ताड़ी ना हो।
0: ठीक है,
1: ताड़ी जो हम पाड़ते हैं ना तो भी शरीर में अच्छी ऊर्जा आ जाती है, तो इससे भी फायदा है। लेकिन आज लोग ताड़ी पाड़ना ही भूल गए हैं। और आज के दिन की हमारे बुरी राज भी

0: जी जी
1: हैं,
0: जी
1: हमारे दयाराम जी है, सुभाष भाई है, तो हमारे तरफ से नमस्ते सर, शुभ शांति।
0: बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका याद करने के लिए, ढेर सारी खुशियां आपको। और कुछ टेक्निकल चीज़ें हमारे बीच में हैं, उसके कारण दिक्कतें हो रही हैं।

तो आइए, जैसे सुरेश जी ने याद भेजा है और उन्होंने कहा है कि भाई वो चाहते हैं कि ताली पाड़ना, वो गीत सुनाएंगे।

0: तो डाक दिवस के बारे में भी बातें हो रही थी और आज विश्व दृष्टि दिवस भी है। आप सभी को आज के दिन की ढेर शुभकामनाओं के साथ। चलिए मैं एक और डाकिया जब शब्द आता है तो एक श्याम बाबा का भी बहुत ही सुंदर कहानी से जुड़ा हुआ एक गीत है डाकियों के साथ, तो वो मैं आपको सुनाऊंगा। जैसे सुरेश जी ने याद किया डाकिया डाक लाया, उसी तर्ज पर ये गीत बना है, लेकिन श्याम भगत जी का बहुत ही सुंदर रियल स्टोरी पर गाना बना हुआ है। तो अभी आपके लिए सुनते रहो, मस्कराते रहो।
1: कि सेठ कभी कहीं नहीं जाता, सुबह से लेकर रात तक हर समय पैसे में ही लिपटा रहता है। जो अपने व्यापार में इतना लीन था कि उसे दिन दुनिया की कोई खबर नहीं थी, उसे सिर्फ पैसा पैसा और सिर्फ पैसे के बारे में चिंता थी। उसके घर वाले, उसके परिवार वाले सारे परेशान थे। कि सेठ कभी कहीं नहीं जाता, सुबह से लेकर रात तक हर समय पैसे में ही लिपटा रहता है। बहुत दिनों से उसके इष्ट मित्र उसे कहते थे कि तुम हमारे साथ कहीं चलो, अपने बच्चों को लेकर चलो, लेकिन सेठ कहता इसके लिए काफी समय पड़ा है, अभी मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। लेकिन एक दिन कुछ मित्रों ने बहुत जोर दिया कि दो दिन की छुट्टियां हैं, हम खाटू श्याम जी के दरबार में जा रहे हैं, पूरे परिवार को साथ लेकर हमारे साथ चलो। और सेठ उनको ये बात मना नहीं कर पाया और बिना मन के वो उन परिवार वालों और इष्ट मित्रों के साथ खाटू के लिए रवाना हो गया। रास्ते भर वो अपने व्यापार की बातें करता रहा, उसे खाटू जाने की जरा भी इच्छा नहीं थी। लेकिन जब खाटू पहुंचा और बाबा श्याम के मंदिर में पहुंचा और जब बाबा से नजरें मिली, उसके होश उड़ गए। सेठ के परिवार वाले सारे दर्शन करके बाहर आ गए। वो सिर्फ एक मिनट के लिए मंदिर में आया, लेकिन घंटों तक बाबा के दरबार में खड़ा रह गया। उसको होश नहीं रहा और वो बाबा की तरफ देखकर आंखें बंद करके आंसुओं की धार बहती रही और वो बाबा से मन ही मन बातें करता रहा। जब परिवार वालों ने उसे कहा कि अब चलना है, तो सेठ ने बाबा से कहा, प्रभु मुझे अब हर महीने 11 को अपने दरबार में बुलाओ। और ये कह करके वो बाबा के दरबार से वापस अपने घर को आ गया। 15 दिन बाद 11 आई। सेठ बहुत से लोगों को लेकर अपने साथ बाबा के दरबार में गया। ऐसे हर 11 को वो खाटू जाने लगे। लेकिन एक दिन जैसे ही वो सुबह 11 को घर से निकलने लगा, मुनीम ने कहा, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? सेठ ने कहा, अरे मुनीम तुझे पता नहीं आज 11 है, मुझे खाटू धाम जाना है। मुनीम ने कहा, सेठ जी आपको पता नहीं आज बाहर के कुछ व्यापारी आने वाले हैं, लाखों का सौदा होने वाला है और वो व्यापारी आज रात को वापस इंडिया के बाहर चले जाएंगे। आपके पास तो मौका है, आप 11 की जगह मावस को खाटू चले जाना। सेठ के मन में ये आया कि हाँ इसमें क्या फर्क पड़ता है, आज यहाँ व्यापार कर लेता हूँ, सौदा कर लेता हूँ, मैं खाटू मावस को चला जाऊंगा। और सेठ उस दिन खाटू नहीं जा पाया। 11 निकल गई, मावस आई, मावस को फिर कोई व्यापारी आ गया। उसके बाद फिर पूर्णिमा आई, फिर कोई व्यापारी आ गया और इसी तरह सेठ व्यापार में फिर उलझ गया। एक दिन रात को सेठ सोया तो उसके नींदों में उसे ऐसा आभास हुआ कि उसे कोई आवाज आ रही है और उसने बड़े ध्यान से सुना। उसे लगा खाटू वाले श्याम बाबा उसे कह रहे हैं, वाह रे सेठ, मैंने तो सोचा था कि मेरे दरबार में कोई बहुत बड़ा भूला भटका भगत आया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि कोई भगत नहीं एक सौदागर आया है और मुझसे सौदा करके चला गया। आज तू अपने घर में अपने व्यापार में खूब खुश है, तू वहीं पर खुश रहे। और ऐसा कहकर वो आवाज बंद हो गई। सेठ की आंखें खुली, उसके मन में ग्लानि हो गई। उसने सोचा कि मैं आज ही खाटू धाम जाऊंगा और वो जैसे ही खाटू के लिए निकला, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। सेठ की दोनों टांगे रह गई। अब सेठ अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया और उसके मन की मन में ही रह गई। सेठ बहुत तड़पता रहा। एक दिन सेठ अपने घर के दरवाजे पर बैठा, आंसू बहा रहा कि मेरा बुलावा क्यों नहीं आ रहा, मैंने इतनी बड़ी गलती करी, मुझे बाबा के दरबार से इतनी दूरी क्यों हो गई। इतने में उसके घर के सामने से एक डाकिया निकला। सेठ ने डाकिया को आवाज लगाई और कहा, ए डाकिया, तुम तो कलकत्ता दिल्ली बंबई भक्तों का संदेशा लेकर जाते हो, लोगों के चिट्ठियां पहुंचाते हो, आज मेरी एक चिट्ठी, मेरा एक संदेशा मेरे खाटू वाले श्याम बाबा के दरबार में क्या पहुंचा दोगे? डाकिया ने कहा, सेठ मैं तो आजकल खाली रहता हूँ, जब से इंटरनेट का जमाना आया है लोग ईमेल पर ही चैटिंग कर लेते हैं, बताओ तुम्हारा क्या संदेशा है और कहाँ पहुँचाना है। और ऐसे डाकिया ने सेठ से कहा और सेठ ने डाकिया से कहा।

डाकिया ने कहा सेठ, आपका संदेशा तो मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि आपका संदेशा पहुंचाना क्या है? जहां मुझे संदेशा पहुंचाना है वहां का ठिकाना क्या है? और डाकिया ने कहा,

सेठ ने कहा, डाकिया मैं तुझे जिस जगह का ठिकाना बता रहा हूँ वहाँ ऐसा दरबार है जहाँ जो एक बार जाता है वो वहीं का हो जाता है। उस दरबार की खासियत है जो वहाँ पर पहली बार जाता है उसके काम बन जाते हैं। सुन वहाँ का ठिकाना क्या है।

डाकिया सेठ जी के यहाँ से निकल जाता है और वो खाटू धाम के लिए प्रस्थान करता है। धीरे धीरे वो खाटू पहुँचता है और खाटू पहुंचकर बाबा के मंदिर का पता करता है और मंदिर के नीचे पहुंचकर वो पहले प्रणाम करता है और बाबा के मंदिर की 13 सीढ़ी चढ़ता है और वो बाबा के सामने पहुंचकर बाबा की तरफ नहीं देखता, पहले अपने झोले में से वो सेठ की चिट्ठी निकालता है और चिट्ठी निकाल के पढ़ने लगता है।

जो ही डाकिया ने सांवरे सेठ की तरफ देखा, उसके होश उड़ गए, उसकी आंखें बंद हो गई, आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उसको ऐसा महसूस हुआ सपने में जैसे कि कोई श्याम प्रभु सिंहासन से उतर कर आ गए, उसे अपने गले से लगा लिया और डाकिया से कहा, कैसे हो डाकिया? डाकिया प्रभु के चरणों में गिर गया, कहा, प्रभु आज मैं धन्य हो गया, इतने वर्षों तक आपके दरबार नहीं पहुंचा, आज सेठ जी के कारण मैं आपके दरबार में पहुंच गया, अब मुझ पर इतनी कृपा कर दो, मुझे अपनी शरण में रख लो। लेकिन बाबा ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुझे अपनी शरण में रखूंगा, लेकिन अभी तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना है। जिस सेठ ने तुझे ये संदेशा देकर भेजा है, अगर उसके पास मेरा जवाब नहीं गया तो वहाँ जीते जी मर जाएगा, तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे, वापसी संदेशा तू सेठ को जाकर दे दे। और बाबा ने कहा,

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और अभी हम सुनेंगे समाचार। समाचारों के बाद श्राद्ध पक्ष का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपको वंदना जी पेश करने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा श्राद्ध पक्ष का ये कार्यक्रम भी समाचारों के बाद। सुनते रहो मस्कराते रहो
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ, मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्यप्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
3: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं।
4: दूर दूराज गाँव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़के, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गाँव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गाँव की महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
3: कि ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूर दराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही है। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर सीमावर्ती गाँवों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गांवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़ खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशी हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रूपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
5: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं के MRP में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टन चावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मदुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। PVK के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
6: हूती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-247-1234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एससीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद ये कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रिको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
7: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आएं, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आएं देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनके मुफ्त की कमाई बंद हुई चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रुपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक याद, एक भुलावा, एक बोझ। जी हाँ, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमसे बिछड़ के ना जाने कहाँ चले गए हैं। ना हम उन तक चिट्ठी लिख सकते हैं और ना ही कोई अपना संदेश हम उन तक पहुंचा सकते हैं।

और एहसास कि वो आ गए हमारे घर भोजन ग्रहण करने। जी हाँ मित्रों, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ पक्ष, जो कि हमारे भारतवर्ष में एक परंपरा के रूप से न जाने कब से चला आ रहा है। तो ऐसा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कि सबसे पहले श्राद्ध व तर्पण परंपरा की शुरुआत महर्षि निमि ने की थी। पहला उपदेश महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार महर्षि अत्रि ने सबसे पहले अपने पुत्र के आकस्मिक निधन से दुखी होकर महर्षि निमि को श्राद्ध का उपदेश दिया था, और महर्षि अत्रि ने उपदेश प्राप्त करने के बाद महर्षि निमि ने सबसे पहले विधि विधान से अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया था। महर्षि निमि के बाद अन्य ऋषियों ने भी इस परंपरा को अपनाया और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए श्राद्ध करना शुरू कर दिया, जिससे यह सनातन परंपरा पृथ्वी पर प्रचलित हो गई। तो यह वह समय था जब अपने पितरों को सम्मान दिया जाना शुरू हो गया था, और साथ ही साथ एक निश्चित समय व अवधि इसके लिए निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन की प्रस्तुति और प्रोग्राम है श्राद्ध और पितृपक्ष। और जो अवधि निर्धारित की गई थी वह है सामान्यतः भाद्र पक्ष पूर्णिमा या आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर आश्विन अमावस्या यानी कि सर्व पितृ अमावस्या तक चलता है। क्योंकि दोस्तों, जब हमारे प्रियजन हमसे बिछड़ जाते हैं हमेशा के लिए, तो हमारा मन पता नहीं क्या क्या सोचता है कि वो कहाँ है, कैसे हैं, ठीक हैं या नहीं, वो सुख में हैं या दुख में हैं। और इन सवालों के जवाब तो हमें कभी किसी को मिलते ही नहीं है।

और साथ ही साथ हमारे पास उनकी सिर्फ यादें ही होती हैं और उनके सहारे ही अब हमें अपना जीवन बिताना होता है। तो दोस्तों, ये तो श्राद्ध की परंपरा की शुरुआत जब हुई हमारे भारतवर्ष में, पितरों को बुलाकर उनका सम्मान करना, उनके प्रति अपना सेवा भाव हम अर्पण करते हैं और उनके प्रति हम कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं और उनको हर वर्ष याद करना, क्योंकि हमारा आत्मिक कनेक्शन तो उनसे होता ही है। क्योंकि होता क्या है, शरीर तो भले ही चला गया मगर जब हम उनको इतने प्यार से परिवार सहित याद करते हैं तो वो याद उन पूर्वजों तक अवश्य पहुंचती है। और आप लोगों ने भी, जो हमारे मित्रगण हमें सुन रहे हैं, साथ ही साथ मैंने रेडियो पर भी सुना था कि आप लोगों ने अपने अनुभव भी सुनाए थे कि किस तरीके से श्राद्ध घर में करते हैं, आप घर में किस किस को बुलाते हैं। तो श्राद्ध की परंपरा तो हमारे हिंदुओं में जैसे एक बहुत सम्मानीय परंपरा के रूप में मनाई जाती है और पूरे भारतवर्ष में इसको मनाते हैं। साथ ही साथ एक बात और ये कि आजकल क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, इन बातों को नहीं मानते हैं। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब हमारे जीवन में या घर परिवार में कोई भी समस्या आती है तो ज्यादातर लोग पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी यही सवाल पूछते हैं कि क्या आप पितरों को भोजन करवाते हैं। और हमारी ओर से ना बोलने पर एक ही बात पंडित जी कहते हैं कि आपको पितृ दोष लगा है और उससे आपको मुक्त होना है, नहीं तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। तो जब हम पितृ दोष को दूर करने के लिए उनकी बताई विधि बताते हैं तो यह हमारा भाव आपसे कहने का यह है दोस्तों कि जीते जी हम बड़े लोगों का सम्मान अवश्य करें, वरना उनके जाने के बाद ऐसा करना तो एक दिखावा मात्र होता है। और इस बात को हम भी समझते हैं और हमसे बिछड़ कर जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी इस बात को समझते हैं। और श्राद्ध के दिनों में जैसे आजकल श्राद्ध चल रहे हैं तो जैसे भिन्न भिन्न जगह पर इसको मनाने की भिन्न भिन्न विधियां होती हैं और जिस तरीके से पंडित जी हमें गाइड करते हैं, हम अपने घर में उसी के हिसाब से श्राद्ध और तर्पण किया करते हैं। तो इन दिनों एक विशेष बात जरूर होती है कि आपने भी अपने घरों में सब देखा होगा और किया होगा कि सात्विक भोजन बनता है श्राद्ध के दिनों में, प्याज है, लहसुन है, नॉनवेज है, शराब है। तो इस प्रकार का जो कोई भी आहार है वो इन दिनों नहीं होता है, क्योंकि ये जो 16 डेज होते हैं हमारे पितरों की याद में रहकर उन तक अपने द्वारा किए गए पूजा पाठ व प्यार है, वो सम्मान है, जो हम सेवा के भाव उनको अर्पण करने होते हैं, वो समय होता है ये। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यह काल खुशी या उत्सव मनाने का नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति और आत्ममंथन का होता है। और जैसे पंडित जी बताते हैं कि आप ये वाली पुस्तक पढ़ो, इस तरीके का मंत्र पढ़ो और इस तरीके की आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाओ, जो इन दिनों जो भी पंडित जी कहते हैं हम अपने घर में जरूर करते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि इन दिनों कोई खरीदारी नहीं होती है और आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय को बाजार की मंदी का काल कहा जाता है। और क्योंकि गैर जरूरी सामान खरीदना शुभता की श्रेणी में नहीं आता है, इसको अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारा ध्यान अगर भौतिक वस्तुओं की खरीदारी पर रहेगा तो पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा व सेवा भाव में निश्चित रूप से कमी आती है। और यह समय तो सादगी का होता है, संयम का होता है और कपड़े, गहने, महंगे सामान और ये सब दिखाने की भावना पैदा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ खरीद ही नहीं सकते। इस समय जो भी हमारी जरूरत की चीजें होती हैं या रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो हम ले सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, क्योंकि ये समय उनको याद करने का होता है। और उनके जब हम याद करते हैं, क्योंकि जाने के बाद इंसान तो वापस नहीं आता है, तो सिर्फ यादें ही हमारे पास रह जाती हैं।

तो साथियों, पितृ पक्ष को 16 श्राद्ध, महालय पक्ष या कनागत भी कहते हैं। ये कई इसके नाम हैं और अलग अलग जगह पर, जैसे हमारे यहाँ इसको कनागत बोला जाता है, तो आपके यहाँ भी कुछ और नाम से इसको जरूर कहा जाता होगा। तो इन दिनों जो मुख्य परंपराएं हैं उनका महत्व क्या है? तो जो श्राद्ध होते हैं और जो पिंडदान होते हैं, तो इन दिनों अपने पूर्वजों की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों, यहाँ एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगी कि आजकल इतना हाईटेक जमाना हो गया है कि लोग जो हैं दूर रहते हैं और कुछ ऐसे ऑफिस खुल गए हैं, वो वहां पैसे लेकर आपसे, जो आपके रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, उनका क्रियाकर्म कर देते हैं। अब जरा आप सीरियसली बात सोचिए, जिन माँ बाप ने हमें पाला पोसा, बड़ा किया और हम उनके अंतिम क्रिया जो होती है उसमें भी शामिल नहीं होती है, श्राद्ध तर्पण करना तो बहुत दूर की बात है, तो हमारा समाज किस तरफ जा रहा है और क्या ये मतलब सही लगता है? मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगती ये सारी बातें। ऐसे अगर आप YouTube में भी देखेंगे या और चीजों में अगर आप देखेंगे, तो आपको ये चीज मिल जाएगी देखने के लिए कि वो लोग पैसे लेके क्रियाकर्म कर देते हैं। अगर ऐसा ही क्रियाकर्म कराना है तो क्या हमारी भारतीय परंपरा में ही सारी चीजें आती हैं? और जो हमसे बिछड़कर चले जाते हैं, वो आत्माएं हमारे बारे में क्या सोचती हैं? ये शायद बहुत बड़ा दुखद विषय है। वो तो चले गए, वापस नहीं आएंगे कभी भी, और हमने सिर्फ पैसे दिए और इतिश्री कर ली अपने काम की कि हाँ हाँ, इनको कभी भी कैसे भी आप इनका क्रियाकर्म कर दीजिए। और आजकल ये चीजें बहुत देखने में आ रही हैं और शायद इन आप भी YouTube वगैरह देखते होंगे तो इन बातों को आपने जरूर देखा होगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिल को बहुत दुखाती हैं। तो चलिए, हम बात कर रहे थे पूर्वजों का जो श्राद्ध होता है तो उसमें तर्पण होता है। तो तर्पण जो होता है, तांबे के लोटे में तिल है, कुश है और फूल लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों को जल अर्पित किया जाता है। और दूसरे, इसके बाद में एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि मान लीजिए इन दिनों जैसे कोई भी अगर भूखा है, कोई बुजुर्ग है, अगर हम उसको खाना खिला दें तो शायद ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है और उससे भी हमें दुआएं मिलती हैं, क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष ऐसा चल रहा है। हम इसमें जितना भी दान करेंगे, पुण्य करेंगे, खाना खिलाएंगे किसी को, वो हमारे पुण्य कार्यों के अंतर्गत आता है। और इसके साथ में आपने और भी देखा होगा, पंडित जी बताते हैं कि जीव जंतुओं को भी भोग लगाने का प्राविधान होता है। तो जो भोजन होता है उसमें कुछ हिस्सा गाय को, कुछ कुत्ते को खिलाया जाता है और कौए को खिलाया जाता है और चींटियों के लिए निकाला जाता है, क्योंकि इन्हें प्रतीक या माध्यम माना गया है उन तक पहुंचने का। और आपने भी देखा होगा कि जैसे आप लोग भोजन निकालते हैं श्राद्ध में, तो उस दिन घरों में कौवे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चाहे वैसे कौवे नहीं आएंगे, लेकिन हम निकाल के अगर रखते हैं तो ऑटोमेटिकली कौवे आते हैं और भोजन को खाते हैं ये। और ये इसके बाद में जब वो भोजन ग्रहण करते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि उनके भोजन ग्रहण करने के बाद जो है वो हमारा भोजन पितरों तक पहुंच गया है। तो यहाँ एक बात यह है कि सभी पंडित और शास्त्र कहते हैं कि हम अपने पितरों का श्राद्ध करना जरूरी समझते हैं।

जिससे वे परिवार को सुख समृद्धि और आशीर्वाद का वरदान देते हैं। पुराणों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार श्राद्ध व तर्पण नहीं करता है तो पितृगण असंतुष्ट हो सकते हैं और जिससे जीवन में कठिनाइयां, बाधाएं या पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। तो ये इसलिए भी ये हमारे हिंदुओं में प्रावधान बनाए गए हैं ताकि हम लोग इससे जुड़े रहें, अपने पूर्वजों को ना भूलें, उनका सम्मान करें। ये जो हमारी परंपराएं बनाई गई हैं बहुत सोच समझ के बनाई गई हैं। और साथ ही साथ एक बात और कि हमें अपने पितरों को कभी भी असंतुष्ट नहीं करना होता है। और दूसरी बात यह है कि किसी कारणवश यदि हम पूरे पक्ष में या परिजनों की जो हमारी वास्तविक मृत्यु तिथि होती है उस पर श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो जो सर्व परिजनों की पितृ अमावस्या होती है जिसे पितृ विसर्जनी कहते हैं, जो सबसे आखिर का दिन होता है, उस दिन सभी ज्ञात और अज्ञात पूर्वजों के नाम से तर्पण, दान और श्राद्ध करने का विधान होता है। जब कोई आपका अपना शरीर छोड़ के चले जाता है तब उसके सारे क्रियाकर्म करना जरूरी होता है क्योंकि ये क्रियाकर्म ही उस आत्मा को आत्मिक बल देते हैं और इससे उसे संतुष्टि मिलती है। प्रत्येक आत्मा को भोजन, पानी, मन की शांति की बहुत जरूरत होती है क्योंकि ये क्रियाकर्म ही आत्मा को आत्मिक बल देते हैं और इससे वे संतुष्ट होती है और उसको इसके परिजन यानी कि परिवार वाले ही कर सकते हैं।

तो आत्मा अपने परिजनों से आशा करती है। एक बात और दोस्तों, शायद आप लोगों ने देखी व सुनी होगी कि पहले पंडित जी के द्वारा मृत आत्मा को बुलाने की भी एक प्रथा थी। तो मृत आत्मा पंडित जी के तन में आती थी और उनसे पूछते थे कि आप कैसे हो, तो बताती थी और मतलब सुखी सुख में हैं, ठीक ठाक हैं, तो वो आत्मा जरूर बताती थी। और साथ ही वो ये भी बताती थी अगर घर की कोई चीज गुम हो जाती थी, और जो हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं शायद उनको भी इस बात उन्होंने जरूर सुनी होगी, तो वो पंडित जी को बताती थी, उसके माध्यम से पूछा जाता था और वो सही बताती थी कि वो चीज कहाँ रखी है। तो एक सीधा सा मीनिंग तो यह है कि उनसे हमारा कनेक्शन तो रहता ही है, और जाने के बाद उनका खालीपन तो कोई भी नहीं भर पाता है दोस्तों, ये तो हम सभी समझते हैं, और जो एक दिन आया है वो जाना जरूर होता है। तो दोस्तों एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि इस पितृपक्ष के दिनों में टेसु और झांझी गाने की परंपरा बहुत पुरानी है, और ये विशेषकर जब देखा होगा ब्रज है, बुंदेलखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इनके कुछ हिस्सों में यह प्राचीन परंपरा और लोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे की एक कहानी है वो मैं आपको बता दूं कि बर्वरीक का, जैसे नाम सुना होगा कि बर्वरीक का बलिदान कि महाभारत के युद्ध से पहले बर्वरीक ने श्री कृष्ण जी के मांगने पर अपना शीश उनको दान में दे दिया, और उन्होंने महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखने की इच्छा जताई थी। श्री कृष्ण ने उनका कटा हुआ सर एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित किया और उससे और उन्होंने वहां से पूरा युद्ध देखा। अब मान्यता है कि श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि उनका विवाह उनकी प्रेमिका झांझी से होगा, और टेसु और झांझी का जो स्वरूप होता है, तो मैं जैसे यूपी से उधर से बिलोंग करती हूँ पापा की तरफ से, तो उसमें हमने देखा है कि जो इन दिनों जो कनागत के दिन चलते हैं, जो बच्चे आते हैं जो टेसु और झांझी लेकर आते हैं शाम के समय, और जो टेसु का स्वरूप होता है उसमें तीन लकड़ियों और डंडे पर ना एक पुतला जैसा मुंह के रूप में रखा जाता है, उस पर दाढ़ी मूछे होती है, उसका मुकुट होता है, उसकी सजावट होती है, इसे टेसु को लड़के लेकर आते हैं और टेसु के नीचे दिया रख के चलाया जाता है। और जो झांझी होती है तो जो छेदों वाला जैसे छोटा कलश होता है ना, उसको उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, बहुत रंग बिरंगी बनाई जाती है झांझी, और नीचे रेत होता है झांझी के अंदर, उसमें जलता हुआ दीपक रखा जाता है, और जब उसमें से प्रकाश निकलता है बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो झांझी लड़कियां लेकर आती हैं, तो लड़के और लड़कियां वो छोटी छोटी उम्रों के होते हैं, साथ में ही चलते हैं अपना पूरा ग्रुप बना के, और घरों में ही गाने के लिए जाते हैं। तो जैसे टेसु के गाने बच्चे लड़के गाते हैं, मेरा टेसु यही अड़ा खाने को मांगे, दही बड़ा दही बड़े में मिर्चे बहुत, इस तरीके से गाने। फिर टेसु रे टेसु घंटार बजाइयो, नौ नगरी दस गांव बसइयो, इस टाइप के वो टेसु के गाने होते हैं। और जो झांझी के गीत होते हैं तो हल्दी गांठ गठीली शीला बहुत हटीली, वो तो मांगे है सोने का छल्ला छल्ला धरा है पिटारे, बहुवन बैठी है अटारे, मतलब उसी भाषा में इस तरीके के गाने गाए जाते हैं, और ये बहुत प्यारे प्यारे से गाने बच्चे गाते हैं। और जिस घर में भी बच्चे झांझी और टेसु लेकर जाते हैं शाम के समय में, तो उन सभी घरों में बच्चों को बहुत प्यार और सम्मान दिया जाता है, साथ साथ हम लोग उनको पैसे जरूर देते हैं। और जब झांझी और टेसु का विवाह हो जाता है तो वही सारे बच्चे उन सब घरों में जाकर प्रसाद देते हैं। तो है ना कितनी प्यारी सी ये परंपरा। कहीं कहीं इसको दशहरा के बाद शुरू करते हैं और कहीं कहीं श्राद्ध पक्ष में होती है, और इनके गाने बहुत ही सुंदर होते हैं। पहले लड़का गाएगा यानी टेसु वाले गाएगा, फिर झांझी वाली गाती हैं, तो इस तरीके से बहुत सुंदर वातावरण होता है। तो साथियों चलो हम वापस आते हैं अपने विषय पर, जो कि हालांकि ये श्राद्ध पक्ष के साथ ही चलते हैं, जो मैंने आपको झांझी और टेसु का बताया है। तो साथियों चलो हम वापस आते हैं अपने विषय पर, वो हम बात एक बात और जरूर करना चाहेंगे कि पूर्वजों के गुजरने के बाद उनका सम्मान बनाए रखिए, लेकिन उनको जीते जी सम्मानित जीवन देना यह श्राद्ध करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और सबसे जरूरी है कि उनको जीते जी अगर हम खुश नहीं रख पाते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, लड़ते हैं, उनसे कड़वाहट रखते हैं, तो क्या हम उम्मीद करते हैं कि श्राद्ध के दिनों में उनको खाना खिलाकर हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके उनको खुश रख सकते हैं? प्रैक्टिकली बिल्कुल भी नहीं।

उनके जाने के बाद अब वो चले गए और बाद में अगर हम अपनी गलती को महसूस करते हैं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जीते जी अगर हमने अपनी गलती महसूस नहीं करी और किसी के सामने कोई हमारा बड़ा है, अपनी गलती महसूस करना या मान लेना हमें छोटा नहीं दिखाता है, उनके प्रति सम्मान हमारा बढ़ता है। सम्मान तो हमें करना ही चाहिए, साथ ही साथ हमें आगे के लिए भी सीख मिलती है क्योंकि हम बड़ों का असम्मान ना करें। तो इस तरीके से हम अपने बुजुर्गों को खुश रखेंगे और उनकी आंखों में आंसू ना आए हमारे रहते, ठीक है थोड़ा बर्दाश्त करने चलता है, कोई बात नहीं। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको और बताऊंगी, वो ये कि जो हमारा ये जो समय चल रहा है, हमारा पितृपक्ष का समय चल रहा है, हमारे लिए एक तरह से एक सबक होता है। अब आप सोचेंगे सबक किस लिए होता है? सबक इसलिए होता है कि अगर हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं तो हमें अपना आचरण सुधारने की जरूरत है, अपने आचार व्यवहार को उनके प्रति सुधारने की जरूरत होती है। ऐसा ना हो कि बाद में हमारे आंसू बहाएं, अपनी गलती करें और फिर तो कुछ होने वाला ही नहीं है, फिर तो जिसके प्रति हमारी गलती हो जाती है वो तो चला ही गया, कुछ भी नहीं हो सकता है फिर उसका, कोई ऐसे पछतावे का कोई फायदा नहीं। अगर आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि गलती है तो सामने से माफी मांग लीजिए, अब जो चला गया वो तो वापस नहीं आता है। और ये श्राद्ध पक्ष हमारे लिए एक सबक होता है। और दूसरी बात ये कि जीते जी अगर हम उनको खुश रखें, सम्मानित करें, तो उनके आशीर्वाद और दुआएं तो जीते जी ही प्राप्त करनी ही होती है हमें। उनके सुख की ठंडी छाओ का अनुभव तो हमें यही करना होता है, ना कि उनके जाने के बाद। और अगर हम ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि उनको श्राद्ध पर बुलाकर उनके सुख व सम्मान को हम बहुत बढ़ा देंगे, वह उनका आशीर्वाद उनका सम्मान हमारे घरों में बहुत सुख और समृद्धि के भंडार खोल देगा। आप करके तो देखिएगा, पहला सुख तो हमें ही मिलेगा, उनकी दुआओं के द्वारा हमारा दामन भर जाएगा और तब हम बनेंगे सच्ची श्राद्ध मनाने के अधिकारी।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घणी सा। विचार पर करेंगे विचार और नुस्खों का देंगे जरूर साथ। खुशनुमा जीवन की करेंगे बात तो नई नई व्यंजन भी बनाएंगे साथ। और प्रश्न पूछने वाली हूँ आज, प्रश्न का जवाब दे सकते हो। हमारे नंबर है 94-1415-1415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो। तो आइए सुनते हैं एक गीत, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपके जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, लोभ सदा हानि पहुंचाता है, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना एक कला है। लोभ सदा हानि पहुंचाता है, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। कैसे, तो आज के विचार का विस्तार एक छोटे से दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी कि बहुत समय की बात है, एक बहुत धनवान राजा था, उसका नाम था मिडास। धनवान होने पर भी वह संतुष्ट बिल्कुल नहीं था, उससे पैसे और सोने का बहुत ही अधिक लालच था। एक दिन उसके सपने में एक परी आई, वह जाग उठा, उसने देखा कि वह परी उसके सामने खड़ी है। अपने बिस्तर से उठकर के राजा परी के चरणों में गिर गया। उसने परी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप कितनी सुंदर हो, मैंने सुना है कि परियां मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण करती हैं। परी मुस्कुराते हुए बोली, हे राजन, कहिए आपकी क्या इच्छा है, हम आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। राजा को कुछ समय तक तो समझ में ही नहीं आया कि वह क्या मांगे। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा कि हे परी, आप मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे कि मैं जिस चीज को भी छूं वह सोना बन जाए। परी ने राजा की इच्छा पूर्ण कर दी। धीरे से राजा एक पत्थर के पास गया। राजा ने अपना हाथ जब पत्थर को लगाया तो पत्थर सोना बन गया। राजा तो जैसे खुशी से नाचने लगा। राजा ने एक फूल को देखा, उसे छुआ तो वह भी सोना बन गया। राजा अपने बगीचे में जाकर के सब फूल पौधों को छूने लगा। वह जिसे भी छूता वह सोने में परिवर्तित हो जाता। राजा तो जैसे खुशी से पागल हुआ जा रहा था। कुछ देर बाद जब उसे भूख लगी तब उसने फल और पानी मंगवाया, और जब खाने के लिए हाथ लगाया तो फल सोने में बदल गए। पानी के जग को छूते ही वह भी सोना हो गया। राजा अब न कुछ खा सकता था न ही पी सकता था। अपनी मूर्खता पर राजा को बहुत ही दुख हुआ। राजा को दुखी देख करके राजा की बेटी उसके पास आई, तो राजा ने बड़े प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा तो वह भी सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा और भी ज्यादा दुखी हो गया। पश्चाताप के आंसुओं में राजा जब डूबा हुआ था तब वही परी उसके सामने पुनः प्रत्यक्ष हो गई। उसने कहा, हे राजन, मैंने तो सोचा है कि आप बहुत खुश होंगे, लेकिन आप तो बहुत दुखी दिख रहे हैं। क्या आपको मिली हुई शक्ति से आप खुश नहीं हैं? क्या आपको और कुछ चाहिए? तब राजा ने परी के पांव पकड़े और माफी मांगते हुए कहा, कृपया आप ये शक्ति वापस ले लीजिए और मुझे मेरी बेटी तथा मेरा सामान्य जीवन वापस दे दीजिए। मेरे पास बहुत धन है और आज से मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा, अपना धन गरीबों में बांटूंगा। ये सुनकर के परी ने अपनी दी हुई शक्ति वापस ले ली। राजा बहुत खुश हो गया और सदा के लिए उसने सोने के प्रति अपने लालच को छोड़ दिया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कि लोभ सदा हानि पहुंचाता है, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

0: चौहान, हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। छाती का दर्द हो, पसली का चलना हो, अगर ये सारी समस्याएं हैं तो बहुत ही अच्छा आपको नुस्खे देने वाली हूँ कि अजवाइन एक चम्मच आप 250 ग्राम पानी में उबालिए, ठीक है। एक चौथाई भाग रह जाए, फिर आप इस काढ़े को छान करके रात को सोते समय गरम गरम पी करके ओढ़ करके सो जाइए। दिन में दो बार इस तरह आपको पीना है। इससे 5-7 दिन में ही छाती का दर्द खत्म हो जाएगा, और काढ़ा 2 चम्मच की मात्रा से दिन में 2 बार निरंतर कुछ दिन लेने से पसली का चलना भी ठीक हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर नुस्खा है, फिर से दोहरा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि अजवाइन एक चम्मच 250 ग्राम पानी लीजिए और उसमें डाल करके उबालिए, फिर एक चौथाई रह जाए तो इस काढ़े को छान करके रात को सोते समय गरम गरम पी करके ओढ़ करके सो जाइए। दिन में इस तरह आपको 2 बार पीना है, ठीक है। इससे 5-7 दिन में छाती का दर्द ठीक हो जाएगा, और ये काढ़ा 2 चम्मच की मात्रा से दिन में 2 बार निरंतर कुछ दिन तक लेने से पसली का चलना भी ठीक हो जाएगा। अगर आप 6 महीने से लेकर के 12 महीने के आयु वाले छोटे बच्चे को ठंडे मौसम व ठंडी हवा के कारण सर्दी लग जाए, छाती में कब बोले, छाती में दर्द हो या पसली चले, तो आधा कप पानी में 10-12 दाने अजवाइन के डाल करके उबालिए। बड़ों के लिए आपने सुना है, अभी बच्चों के लिए दे रही हूँ, 6 महीने से 12 महीने वाले जो साल भर के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए, ठीक है। 10-12 दाने अजवाइन के डालिए और उबालिए। आधा रहने पर इसे कपड़े से छान लीजिए, और ये अजवाइन पर काढ़ा, थोड़ा सा ये जो अजवाइन का काढ़ा बनाया है, थोड़ा सा गरम गरम पर सहता सहता, ऐसे नहीं कि एकदम गरम, बच्चा बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए सहता सहता एकदम नवसेका हो जाए ना कि बच्चे को अब पिलाने की स्थिति में है ये काढ़ा, तब पिलाइएगा। गरम गरम एकदम जलता हुआ नहीं देना है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर आप कहेंगे उषा दीदी ने कहा है कि गर्मा गर्म देना, अरे भाई अब बड़े तो हम पी सकते हैं थोड़ा सा गर्म, चाय दूध कैसे पीते हैं, गरम गरम पीते हैं ना, इस तरह काढ़ा भी पी सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं पी सकते हैं, इसलिए बच्चों को बच्चे के हिसाब से नवसेका देना है, दिन में 2 बार, ठीक है, और रात में सोने से पहले देना है और सुबह देना है। दिन में 1-2 बार दे सकते हैं, इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर होगा। तो इस तरह बच्चों को भी सर्दी जुकाम या पसली, छाती में दर्द जो भी है, उसमें आप इस अजवाइन के काढ़े को दे सकते हो। साथ ही अजवाइन का काढ़ा यकृत, तिल्ली, हिचकी, वमन, मिचली, फिर खट्टी डकारे आना, पेट की गुड़गुड़ाहट, इन सभी समस्याओं में भी ये फायदा करता है। तो कहते हैं ना कि एक वस्तु और फायदे अनेक, तो ज़रूर आप आजमा सकते हैं। अगर दमा है, दमा की शिकायत है, तो सुहागा का फुल्ला और मूल हड्डी को अलग अलग खरल, या फिर इसको कूट पीस करके कपड़ छन कर दीजिए, और मैदे की तरह बारीक इसका चूर्ण बना लेना है। फिर इन दोनों औषधियों को बरोबर वजन मिला करके किसी बोतल में कांच की शीशी में सुरक्षित रख लीजिए। बस सांस खांसी जुकाम के ये सफल दवा है। अब इसको आप कैसे लेंगे, तो आप क्या करेंगे, साधारण मात्रा 0.5 ग्राम से 1 ग्राम तक दवा दिन में 2-3 बार शहद के साथ चाटिए, या गर्म जल के साथ लेना है, ठीक है। बच्चों के लिए आप 0.5 ग्राम माने रत्ती भर की मात्रा आप आयु के अनुसार दे दीजिए। परहेज में दही, केला, चावल, ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, बड़े हैं तो मात्रा को बढ़ा दीजिए, बच्चे हैं तो रत्ती भर ही दीजिएगा। फिर से दोहरा रही हूँ कि सुहागा का फुल्ला और मूल हटी, इनको अलग अलग खरल या फिर खरल में बांटिए, या हमानदस्ते में कूट पीस करके कपड़ छन करके मैदे की तरह बारीक चूर्ण बना लेना है, ठीक है। फिर इन दोनों औषधियों को बरोबर वजन मिला करके किसी कांच की शीशी में सुरक्षित रख दीजिए। बस सांस खांसी जुकाम इन सब के लिए ये सफल दवा है। लेना कैसे है जो आपको बता रही हूँ कि साधारण मात्रा आधा ग्राम से एक ग्राम तक दवा दिन में 2-3 बार शहद के साथ चाटिए या गर्म जल के साथ लीजिएगा। और बच्चों के लिए एक रत्ती, ठीक है, मात्रा आयु के अनुसार इसी तरह देना है। परहेज में दही, केला, चावल, ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। तो ये सारे ही नुस्खे फायदेमंद है और आप चाहो तो आजमा सकते हो। अब आइए ले लेते हैं एक अल्प विराम, पुनः लौट करके आ रही हूँ, फिर आपको मैं प्रश्न भी पूछूंगी, खुशनुमा जीवन की बातें भी आपके साथ करेंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: ऐसी तिथि आने वाली है, चंदा में सब

0: देंगे। ये आज का प्रश्न है, जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है 94 14 15 14 15। बहुत ही सरल प्रश्न है और अगर आप जवाब देंगे तो साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि यह कब आने वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर आज का प्रश्न है कि ऐसी तिथि आने वाली है, चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे भी खाएंगे, गरबा रास भी करेंगे। तो ऐसी कौन सी तिथि आने वाली है और कब ये तिथि है? हेलो,
1: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: जी जय श्री हरि, जय माता दी। नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
1: और सबसे पहले तो हमारे कंचन पर यात्रा में गए, तो बस बाबा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी यात्रा सफल हो, मंगलमय रहे।
0: जी,
1: और आपका सवाल तो बहुत ही सुंदर है, आंसर दे दो।
0: हाँ जी, बिल्कुल दे दीजिए। अगर आप ऑफेयर देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, ऑफेयर देंगे तो अच्छा रहेगा, हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी थोड़ा सोचने का अवसर मिलेगा।
1: ठीक है, तो कोई बात नहीं।
0: आज के विषय में बोल रही हूँ, तो गरीब पर मत हंसना साहब, कहीं ऊपर वाले ने सुन लिया तो कटोरा बदलने में देर नहीं लगेगी। तो गरीबों पर अक्सर हम कमेंट करते हैं, अक्सर उन पर हंसते हैं, हीन भावना से उनको देखते हैं, उनका मतलब समय प्रति समय वो कहते हैं ना कि लोग बाग अपमान भी करते हैं, क्या कहेंगे आप?
1: देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी मतलब तेज मतलब ऊपर से कोई अमीर बन के नहीं आता है।
0: जी,
1: ऊपर से तो सब खाली हाथ ही आते हैं।
0: जी,
1: तो मतलब जो वो गरीब है ना, उनको उनका सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि देखिए हर एक इस धरती माता के ऊपर तो सब उनके पुत्र समान है।
0: जी,
1: वो देखिए मतलब जो पैसे वाला होता है उसको भी अन्न उगा के खिलाती है।
0: जी,
1: और जो गरीब होता है ना उसको भी अन्न मिलता है। प्रभु ने कितनी अच्छी बात बताई है कि देखिए मतलब जो सोते हैं तो कोई भूखा नहीं सोता है।
0: जी,
1: उसको बोले कोई सूखी रोटी खाता है, कोई माल पानी खाता है।
0: जी,
1: मगर उठते हैं तो सब भूखे उठते हैं, पैसे वाला हो या गरीब हो।
0: हाँ जी, बिल्कुल। तो कहते हैं कि भूखे उठते सभी हैं, लेकिन ईश्वर सभी को मतलब भूखा सुलाता नहीं है, उठाता जरूर है लेकिन सुलाता नहीं है,
1: कुछ ना कुछ खिला के सुलाता है।
0: जी जी,
1: तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए आज के मंदिरों पे भी अपन देखते हैं तो कितने गरीब लोग बैठते हैं कटोरा लेके।
0: जी,
1: तो आपने सही बात की कि किसी की गरीब पे हंसना अच्छी बात नहीं है। जो भी आपके हाथ में लगे तो दे दो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है।
0: जी बिल्कुल,
1: मगर उसके ऊपर हंसोगे ना तो वो कल उठ के वही कटोरा अपने हाथ में आ सकता है, क्योंकि पलक झपकते ही करोड़पति रोडपति बन सकता है।
0: जी जी, हो रहा है, देख रहे हैं समाज में। बहुत बहुत आभार।
1: बस तो यही कहना चाहता हूँ कि मतलब ये कुछ भी नहीं है, बस मतलब उसके कुछ पिछले कर्मों का होगा तो उसको मिल रहा है, बाकी अपन को मतलब उसके प्रति अच्छी भावना रखनी है।
0: जी,
1: ताकि अपना अपना जीवन सुधर सकेगा।
0: बहुत सुंदर, बहुत
1: और अपन सच
0: जी
1: अपने अंदर से जो भी अच्छे विचार निकले वो उसको भी मतलब हिम्मतवान बनाए और उसको भी अच्छी राह दिखा सके।
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने स्पष्ट किया है कि भाई देखिए, कुछ नहीं कह सकते, आज बीज है तो कल तीज है, कब किसकी परिस्थितियां बदल जाए। हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो?
2: बहुत अच्छे दीदी, और आप आ गए तो और अच्छे हो गए।
0: अच्छा,
2: एकदम कार्यक्रम तो हम सुनते थे लेकिन जो नृत्य कार्यक्रम सुनते थे, लेकिन आज आपसे रूबरू बात हो रही है तो बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी,
2: और बहुत अच्छी बात हो रही है, विषय भी अच्छा है, प्रश्न भी अच्छा है, प्रश्न तो मैं बाद में दूंगा।
0: जी,

0: लेकिन विषय बहुत अच्छा दिया है, जितने गरीब और अमीर
1: जी
0: बहुत फर्क है, माने तो
1: जी,
0: वरना कुछ नहीं है
1: जी।
0: जो कहते हैं कि हम भी कभी कभी ऐसे पहले थे, लेकिन आज हम थोड़ा सा जो कैसे वाले बन गए, तो आज हम गरीब को बोल नहीं सकते
1: जी।
0: क्योंकि कहते हैं कि हर किसी को ऐसा दिन आता है और उसको मजा करना, उस पर कुछ बोल देना तो सही बात नहीं है। आज देखते हैं हम कई परिवार ऐसे हैं तो खाने का भी नहीं मिल रहा है, ऐसे परिवार है
1: जी।
0: लेकिन इसको हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन उसकी मजाक तो जरूर नहीं करना चाहिए कभी।
1: बिल्कुल,
0: मदद नहीं करो तो चलेगा, लेकिन मजाक नहीं करना कभी
1: जी।
0: आज कई गरीब परिस्थिति वाला ऐसे लोग होते हैं, तो इसके ऊपर लोग फंसते हैं, उसको ताना बाना मारते हैं, उसके कहते हैं कि भी आप कुछ करो, जैसा की मांग रहे हो सारी लड़की कर रहे हो, तो ऐसा तो बोलना सही नहीं। आपके पास हो तो जो, वरना इसको आपके पास थोड़ा सा ले जाएगा। ऐसे ना करके हम कुछ ना कुछ मदद करेंगे तो ही सही है, क्योंकि सब तो अमीर नहीं होता
1: जी।
0: तो सबका हाल ऐसा आता है, सबका दिन ऐसा आता है कभी कभी, तो ऐसा पर हम हंसने से नहीं कि हम कुछ मदद करें, इसको कोई मदद करे, इसके साथ कोई मजाक करे तो अच्छा नहीं है
1: जी।
0: तो बस ऐसे मजाक नहीं करना, क्योंकि कभी कभी ईश्वर भी सुनता है और ईश्वर भी कहता है कि चलो भाई वो तो आज ऐसा है, आप पैसे वाले, कभी कभी आपका भी दिन ऐसा आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, आपके पर लोग भी हंसेंगे। तो ऐसे न करके हम जो हमारे पास हो उसकी मदद करें।
1: बिल्कुल, वो कभी कभी नहीं रोज सुनते हैं, लेकिन कहते हैं ना खुदा की लाठी की आवाज नहीं होती है,
0: नहीं होती। और कई लोग, कई किस्से दीदी देखे हैं हमने कि बाहर पैसे वाले थे, आज वो भी ऐसे हालत में हो गए, बहुत गुस्सा करते थे गरीबों पर
1: जी,
0: अत्याचार करे
1: जी,
0: और गरीबों को टाना उटाना मारे
1: जी।
0: तो वो सही नहीं है, वो इसके हिसाब से गरीब है, लेकिन वो ऐसा तो नहीं है कि किसी का घर में जाके ले जाए, ऐसा तो है नहीं। इसको चोरी करे, गरीब चोरी नहीं करता है कभी, ये हमने देखा है
1: जी।
0: तो बस कुछ न कुछ हम तो ऐसा चाहते, कुछ मदद कीजिए और मजाक नहीं करना बस
1: जी। जी, बहुत सुंदर,
0: ठीक है दीदी
1: जी,
0: नमस्कार,
1: आभार आपका। तो देखिए सुरेश भाई बाहर है, फिर भी देखे जिनको रुचि है रेडियो के प्रति, वो कहीं पर भी जाते हैं तो भी रेडियो से जुड़े रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप सुनते ही नहीं है, अमल भी करते हैं, और रेडियो को कितना आप दिल में बसाए रखते हैं इस बात से पता चलता है। तो बात चल रही थी कि भाई गरीबी का, जैसे कि सुरेश भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं गरीब की, तो उसकी मजाक भी मत करिए। बहुत अच्छी बात है। कितनी बार हमारे घर के बाहर जैसे कोई मांगने आते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई, देवी पूजक दानेरा।
1: हाँ जी नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
2: बस अच्छे हैं, और पहले जो रेडियो हमारे यहाँ पता नहीं क्यों फ्रिक्वेंसी बिल्कुल नहीं पकड़ रहा था, अब तो बात भी हो रही है सुरेश भाई ने, अभी अच्छी अच्छी बातें बनाई सुन रहे हैं हम
1: जी जी जी।
2: और अभी रेडियो ऑन किया है जब सुरेश भाई का कॉल था, तो किस बारे में चर्चा हो रही है,
1: बात हो रही है कि गरीब पर, देखिए कि मैं एक शेर बोलती हूँ, गरीब पर मत हंसना साहब, कहीं ऊपर वाले ने सुन लिया ना तो कठोरा बदलने में देर नहीं लगेगी। मतलब जो गरीब के हम हंसी मजाक उड़ाते हैं, उनको तुच्छ नजरों से देखते हैं, हीन भावना से देखते हैं, ये जी तो क्या कहेंगे।
2: सुरेश भाई ने जैसे बात बताई उस पर और मैं ऐड करना चाहूंगा कि कई भी ऐसे गरीब थे जो आज अपनी मेहनत से, मैंने देखा है जो अपनी मेहनत से वो कुछ अपने कदम पर चल रहे हैं, और वो कभी कभी पुराने याद करते हैं, पुरानी बात, जब वो गरीब थे, इधर ठोकरे खाई, ऐसे ठोकरे खाई, तो एक संदेश देते हैं कुछ लोगों को कि आप जो गरीब होते हैं खास करके उन लोगों को
1: जी।
2: पहले हमारी ऐसी परिस्थिति और हमने ऐसा किया, जब हम अपने कदम पर खड़े हुए, आप भी ऐसा कीजिए, अगर हम अपने कदम पर चले और मेहनत और अपनी नीति धर्म सब कुछ अच्छे रखे, तो गरीबी दूर हट सकती है, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। और हम जो वैसे ही परिस्थिति में रहे और जैसे कि अभी बताया कि चोरी चकारी ऐसे कुछ करते हैं, तो ऐसे ही करते रहेंगे तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही और कुछ ना कुछ बातें करते ही रहेंगे।
1: जी जी,
2: तो मेरी राय ये है दीदी।
1: जी बहुत बहुत आभार
2: जी। दीदी अब तो रेडियो चालू हो गया तो हम हर रोज जुड़ेंगे।
1: जरूर जरूर, प्रश्न का जवाब देंगे आप?
2: प्रश्न सुना नहीं दीदी, क्या है?
1: अच्छा, प्रश्न है कि ऐसी तिथि आने वाली है, चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे सब खाएंगे और गरबा रास भी करेंगे, ऐसी कौन सी तिथि आ रही है और कब है वो तिथि?
2: वो अभी कुछ ही दिन है, शायद आज 12-13 से 2-3 ही बाकी है अभी आने वाली पूनम की बात करके शायद।
1: अच्छा ठीक है, आप आशना सुनिए, हम जरूर जवाब देंगे आपका। ठीक है,
2: थैंक यू दीदी, नमस्कार।
1: जी वेलकम, नमस्कार। तो आइए यहीं पर एक छोटा सा गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: माता रानी कहती है, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो, भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इनको देना, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा। मेरे दर पर मांगने वाले, तुझे बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। तुझे बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि गरीब लोगों पर अक्सर हम छिटाकसी करते, हीन भावना से देखते, उनकी मजाक उड़ाते हैं, और उनको वो कहते हैं ना कि अगर चार जनों के बीच कोई गरीब रिश्तेदार, कहते हैं ना चार जने रईस बैठे हुए होते और कोई गरीब रिश्तेदार आकर के बैठ जाता है, तो उसको ऐसे नकारने की कोशिश करता है कि अरे नहीं नहीं, इनसे तो हमारा कोई लेना देना ना, ये तो बहुत दूर से है। भले सगे भाई भी होगा तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं ये तो दूर से भाई है, हमारा कोई ऐसा खास रिलेशन नहीं है। मतलब गरीब लोग इतने आपको ऐसे लगते हैं कि उसमें भी बहुत लोगों को अपने इंसल्ट महसूस होती है कि मेरा रिश्तेदार इतना गरीब है तो मैं कैसे दूसरे लोगों के सामने इसके साथ रहूं। अंदर भले वो काम लेंगे, अंदर ही अंदर उनसे कहेंगे आपसे, और देखिए आप देखिए, गरीब लोग जल्दी से आपकी मदद करेंगे, पैसे वाले मदद नहीं करेंगे। फिर भी पैसे वालों के पीछे सभी दीवाने होते हैं, उनके गुणगान करेंगे बिना कारण, उनकी तारीफ करेंगे। और गरीब भले आपकी मदद करता होगा लेकिन चार जनों के बीच में खुल करके उसके आप तारीफ भी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ। हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति।
1: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति। कुपाराम जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी कुपाराम।
1: हाँ जी कुपाराम जी, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में। कैसे हो आप?
2: प्रश्न तो आपका है वो शरद पुनमारी है
1: जी। चलिए हम जवाब जरूर देंगे, सही है या गलत आपको इंतजार करना पड़ेगा जी।
2: गरीब, पहली बात तो थोड़ा ये उल्लेख करना, वास्तव में गरीब किसको मानेंगे? और मेरे यहाँ कई भी मांगने वाले जो आते हैं ना
1: जी,
2: उनके मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको हाँ सरकार राशन दे रही है
1: जी,
2: वो राशन तो यहाँ किराने की दुकान में आके गेहूँ बेचते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा,
2: मांग के खाते हैं
1: जी।
2: मेरे पास कभी आते हैं, मैं पूछता हूँ मेरे को बीड़ी पीते हो जगह? हाँ
1: जी।
2: तो मैंने कहा आज तो कुछ देता एक दो रुपया, लेकिन आज नहीं दूंगा जी। क्यों? बीड़ी छोड़ के आना मैंने
1: जी।
2: अब उसको बीड़ी की क्या जरूरत है
1: जी, अब गरीब है तो बीड़ी सिगरेट पीने की क्या जरूरत है। सही कहा,
2: दो रुपए जिनकी पीता है ना
1: जी,
2: 20 साल के अंदर 54,000 रुपए होते हैं उसके
1: जी। क्या बात,
2: जब वो भीख मांगने वाला बीड़ी पीता है
1: जी।
2: अच्छा, उसको बोलेंगे कि थोड़ा धंधा करो, मजदूरी चलो, तो वो कभी मजदूरी नहीं करेगा वो
1: जी,
2: क्योंकि उसको एक तो आदत पड़ गई है मांगने की
1: जी।
2: मानता हूँ गरीबी है, ऐसी बात नहीं, मजबूरी में भीख मांगता है तो वो बरोबर है
1: जी,
2: लेकिन जब उसे समझ आ जाएगी फिर तो उसको भीख मांगना बंद करना चाहिए, फिर धंधा मजदूरी करना पड़ता है
1: जी।
2: हाँ
1: जी,
2: मेरा ये विचार था।
1: हाँ जी, हाँ।
2: अच्छा दूसरी बात ये रही, अब वो एक सुबह उठ के आता है तो वो स्नान करके क्यों नहीं आता, जब पानी का तो पैसा लगता नहीं है
1: जी। बिल्कुल सही कहा आपने।
2: मेरे हिसाब से उनको गरीब को थोड़ा, ये गरीब जिसको मानते हैं उनको थोड़ा विचार देना है कि वो भीख ना मांगे, वो सफाई से रहे
1: जी,
2: तो अपना विचार बदल जाएंगे
1: जी। जी क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। बहुत बहुत आभार कुपाराम जी, आपके आपके इन विचारों ने मुझे भी कुछ बातें याद दिला दी है। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर बात कही है कि देखिए गरीबी मतलब गरीब किसे कहते हैं, कोई दिल से होते हैं तो कोई वो नेचुरल गरीब होते हैं, वो बात अलग है, वो खुददारी से जीवन जीते, वो हाथ नहीं फैलाते किसी के सामने, खुददारी से वो अपने रोजगार करते रहते, छोटा मोटा जो भी उनको मिला है मजदूरी करके पेट भरते, लेकिन हाथ नहीं फैलाते। और जो इस तरह के बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो हाथ फैलाने की

0: आदत हो जाती है, वो उनके कितने भी सरकार मदद करे लेकिन वो मदद उनको मतलब लेना ही नहीं आती है, ले लेते। जैसे कि कुपाराम जी ने बताया कि राशन से जो उनको अनाज मिलता है बेच देते हैं, थोड़े से 2-4 रुपए दुकान वाले ज्यादा दे देते तो उस लोभ में बेच देते हैं, और भले बेच करके वो सिगरेट बीड़ी पियेंगे, शराब के भी आदि होते हैं, बहुत सारे गरीबों को देखा है शराब के भी आदि होते हैं, लेकिन उनको वही जीवन अच्छा लगता है। रेडियो मधुबन की टीम कभी आपने सुना भी होगा, पहले भी हम बोल चुके हैं इस बात को कि हमारे आबू के अंचल में ही कुछ कचरे बीनने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को हमने पढ़ाया, उनको जैसे कि कुपाराम जी ने कहा ना कि वो गंदे रहते हैं, नाना तो कम से कम हैंडपंप लगे होते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है, तो हमने देखा है कि उन गरीब बच्चों के घर के बाहर ही हैंडपंप लगा हुआ है, लेकिन वो स्नान ध्यान नहीं करते, इतने गंदे रहते हैं, और कपड़े तो देख लो कि क्या डिजाइन है क्या कलर है समझ में ही नहीं आता, तो उन बच्चों को नहलाना धुलाना सब सिखाया, कपड़े धुलाना भी सिखाया। उन बच्चों का कहना था कि उनकी माता क्या करती है, कपड़ों को जला देती है, 8-10 दिन पहने रहते फिर उन कपड़ों को जला देती, फिर मांगने चले जाते हैं और लोग देते भी है, क्योंकि अब बच्चों के जो कपड़े छोटे हो जाते हैं, बच्चे की हाइट बन जाती है, तो वो फिर इस तरह गरीब बच्चों को दे देते हैं, तो उनको नए नए कपड़े मिल जाते हैं पहनने के लिए, और कीमत तो उनको पता नहीं, क्योंकि खरीदते हैं पैसे दे करके खरीदते हैं, तो उस चीज़ की कीमत नजर आती है, और भीख में मिल गई ना, दान में मिल गई, उस चीज़ की क्या वैल्यू। तो उन बच्चों को उस वैल्यू का एहसास कराया कि आपकी माताएं जला देती है जाने दो, लेकिन आपको खुद को नहा धो करके स्वच्छ होकर के पढ़ने के लिए आना है, कपड़े धुलाई करके आना है, तो बच्चे अच्छी तरह आने लगे। लेकिन माता पिता की आदत है ना, कुछ पिता लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग जो कचरे बीनते हैं उसमें से 50-60 रुपए वो कमा लेते हैं पूरे दिन के, और पिता लोग शराब पी करके पड़े रहते हैं, ऐसा भी हमने इन आंखों से देखा है, और उनको काफ़ी समझाने की भी कोशिश की कि आपके बच्चों का भविष्य इस तरह आप क्यों खराब करते हो। उनका स्कूल में एडमिशन भी कराया गार्जियन के तौर पर, लेकिन नहीं समझते हैं ना, वो बदलना ही नहीं चाहते अपनी परिस्थितियों को, उनको ऐसे कि बस 50-60 रुपए वो, फिर 50-60 रुपए उनकी बीवी कमा के लाती है, कचरा बीन करके 100-150 रुपए आ गए, हो गया पूरे दिन का आराम से गुजारा चल जाएगा, इससे आगे वो बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप। इसलिए ये भी सही है कि जानबूझकर के लोग अपनी आदतों से मजबूर होकर के भी लोग कुछ काम धंधा नहीं करना चाहते, लेकिन चलिए ये तो बात हो रही थी भाई गरीबों की कि वो अपनी आदत से मजबूर है, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे गरीब जो अपने स्वाभिमान में रहते हैं, आप उनकी मदद लाचार स्थिति को देख करके अगर मदद करेंगे तो वो मदद भी नहीं लेंगे, खुददारी से जीवन जियेंगे, नहीं नहीं साहब हमारे पास कोई कमी नहीं है, वो नहीं लेते हैं, तब ऐसा लगता है कि कोई कोई तो उसको गलत समझ लेते हैं कि अरे देखो गरीब है फिर भी इतरा रहा है, लेकिन इतरा नहीं, वो स्वाभिमानी है। और कहीं कहीं पर मजबूरी भी होती है, माताएं बहनों को देखिए आप, कहीं कहीं पर पति गुजर जाता है या फिर शराबी कबाबी होता है, बच्चे हो जाते हैं तो माताएं मजबूर हो जाती हैं, वो खुद के लिए फिर भीख नहीं मांगेगी लेकिन अपने बच्चों के लिए वो भीख मांगेगी, क्योंकि उनको काम अगर नहीं मिलता है तो। बहुत सारी माताओं को तो जैसे कि कुपाराम जी ने कहा कि भाई काम के लिए कहते हैं कि आइए और काम करिए, लेकिन बहुत सारे गरीब को कोई काम, ऐसे भी लोग हैं जो देना नहीं चाहते कि अरे भाई बहुत गरीब है, कहीं घर से कुछ उठा के ले गया तो, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको परखना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, गरीबों के लिए ये ज़रूर करना चाहूँगी कि भाई वो स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहेंगे, कपड़ों की शर्म नहीं है कि उन्होंने फटा पहन रखा है या पुराना पहन रखा है, फटे है तो आप सिलाई कर लीजिए लेकिन स्वच्छ कपड़े पहनिए, धुलाई करके पहनिए, अगर आप स्वच्छ रहेंगे स्वच्छ कपड़े पहनेंगे तो लोग आपको 2 नहीं 4 काम देंगे। घर पर देखिए आजकल माताएं बहनें भी क्या है, सर्विस ज़्यादा करती है या फिर घर पर भी रह करके बिजनेस करती है, तो उनको सारा काम करने का समय नहीं मिल पाता है, तो झाड़ू पोछे बर्तन में भी माइयों को रखते हैं, तो ऐसा काम तो कर सकते हैं ना। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं है हमारी, हम गरीब है तो कोई सा भी काम शर्म नहीं, काम करने की कभी ऐब या शर्म नहीं रखनी चाहिए, चोरी झूठ छल कपट इनकी शर्म होनी चाहिए, इसलिए काम का शर्म नहीं करनी है। जैसे कि एक बार शुक्रवार को जब हम स्पेशल कोई माता बहन से आपको मिलवाते हैं, तो एक बहन से भी मिलवाया, नेपाल की बहन थी, किस तरह वो झाड़ू पोछा करके 6-7 हज़ार महीने के कमा लेती हैं, और देखिए अच्छे घर होते हैं वहाँ से फिर बच्चों के कपड़े है फिर खाने पीने का है वो भी देते हैं, वो देखिए ऐसे नहीं कि उनका दया देख करके, कि उन पर दया करके दे रहे। नहीं, स्वाभाविक है, चार जनों का खाना बनाते हैं तो पांचवे का बन ही जाता है, एक जनों का ज्यादा बनता ही है, और लास्ट में भोजन करने के बाद बचता है तो वो हम अपनी माइयों को ही देते हैं कि भाई ये बच्चा है जो ले जाओ, तो वो तो ताजा खाना ही है ना, बच्चा इसलिए दे रहे हैं और उनको पता है कि बच्चा है इसलिए दे रहे हैं, स्पेशल नहीं बनाया हमारे लिए या फिर हम उनके लिए स्पेशल नहीं बना रहे हैं, तो वो बात अलग है। तो गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन स्वाभिमान से जीना ये अच्छी बात है। कि गरीबी तो परिस्थितियां सभी के अंदर आती है, और बात रही हंसने की कि गरीब को देख करके हंसी मजाक नहीं करना है। वो कहते ना कि कभी भी ये पहिया घूम करके, ये चक्र घूम करके हमारे तक भी आ सकता है। हेलो
1: हेलो, नमस्कार दीदी, मैं फिर से सुरेश भाई दानेरा से। मुझे एक सच्ची घटना याद आई है
0: जी,
1: कि एक गरीब जो तो वो मांग रहा था, तो जो ज्यादा भीड़ में फुटपाथ पर, तो उनका जो मांगने का जो वटका होता है ना, वो लोगों को पैरों से इधर उधर हो रहा था, पैसे भी गिर रहे थे। तो एक इंसान ने देखा और वो बोला कि तुम इधर ऐसे ही हर रोज रहते हो, कुछ पैसा इकट्ठा करके क्यों कुछ काम नहीं करते, कि मेरे पास इतने पैसे है नहीं। तो उन्होंने पैसा 500 रुपया दिया और कुछ कुछ काम कर लो ऐसा बोलकर वो तो चला गया
0: जी।
1: और लगभग 4-5 साल बाद जब वो 500 रुपया देने वाला जा रहा था, तो एक इंसान ने पकड़ा और पैरों में गिर गया और के अपने साथ ही चलो, अरे भाई मैं आपको पहचानता नहीं, आप है कौन। तो बहुत छोटा मोटा घर था, उनके घर में ले गया और अच्छी सी खातिरदारी की, लेकिन आप बताओ तो सही है कौन
0: जी।
1: तो के आपको याद हो 4-5 पहले जो आपने 500 रुपया दिया और मैं भीख मांग रहा था ना, वो फुटपाथ पर, वो मैं ही हूँ। आपने सिर्फ उन दिन 500 रुपया ही नहीं दिया, लेकिन मुझे जीने की तरकीब सिखाई है। तो ये सब कुछ आपका ही है और आप बहुत धन्यवाद दिया, सब कुछ किया। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि गरीब को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बड़े जी। तो ऐसा भी होता है कि देखिए, गरीब के अगर हम समय रहते उनकी मदद करते हैं तो वो भी ऊपर आ सकते हैं, उड़ सकते हैं ऊपर, क्योंकि उनके अंदर कला है कुछ करने की। जैसा कि आपने बताया कि 500 रुपए से उनको इतनी मदद मिली कि कुछ ही सालों में वो थोड़े से योग्य बन गए, छोटा मोटा घर भी खरीद लिया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। पैसों का सदुपयोग करना आना चाहिए। पैसे तो सभी के हाथ में मिल जाते हैं, लेकिन कितनी बार क्या है उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। तो बात चल रही थी कि गरीब है, ठीक है वो गरीब है, लेकिन हमें उसकी हंसी मजाक उड़ाने की कहां आवश्यकता है। कभी कभी इंसान बेमतलब ही गरीबों की हंसी उड़ाते हैं, उनके ऊपर कमेंट कसते हैं, न जाने कितने व्यंग मार देते हैं। मांगने वाले के भी आप देखना, कोई मांगने हमारे दहलीज पर आता है तो बहुत सारे लोग तो उसका पूरा ही अपमान कर देते, अरे भाई अच्छे खासे हो, कुछ काम धंधा करो ना, ऐसे मतलब व्यंग में। नहीं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो आया है हमारे द्वार पर तो उसकी कुछ मजबूरी होगी। अगर आप मदद कर सको तो ठीक है, नहीं तो मत करिए, क्योंकि आजकल किसी का कुछ नहीं कह सकते कि कोई मदद मांगने आता है और अपना ही चेन वगैरह खींच के ले जाता है, ऐसा भी हो रहा है अभी वर्तमान में, तो मत करिए। लेकिन हंसना नहीं है, उसके ऊपर छीटा कसी नहीं कसनी है कि अरे तुम क्या करते हो, तुम तो काम धंधा कर सकते हो। प्यार से कहो कि भाई काम धंधा करके अपना गुजारा करो, मांगना अच्छा नहीं है, ये बात तो अलग है, एक सलाह देना हुए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि ऐसे ताने मारते, ऐसे डांटते कि जैसे उसने कोई गुनाह किया हो। हमने दिया भी कुछ नहीं और बहुत कुछ सुना दिया, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा करने से भी सामने वाला, अगर वो मजबूरी से आया, हमें नहीं पता कि वो किस आशय से, किस मतलब भाव से आया है, लेकिन हमने उसका अपमान किया और उसका दिल दुख गया, उसको ताने मारे, उसके ऊपर व्यंग कसे और उसका दिल दुख गया, तो भी पाप के भागीदार तो हम हो जाएंगे ना। इसलिए कोई मांगने आ रहे हैं, देना न देना अपने हाथ में है, लेकिन अपमान नहीं करना है गरीब का, क्योंकि कब समय पलटी खाए, कब परिस्थितियां हमारे पास आ जाए, तो उस समय हम क्या करेंगे। हो रहा है समाज में, देखिए करोड़पति के रोडपति बन रहे और रोडपति के करोड़पति बन रहे, जैसे योग्य बच्चे निकलते हैं पढ़ लिख करके होशियार बन जाते हैं, अच्छी ऊंची पोस्ट पर विराजमान हो जाते हैं, तो उनकी परिस्थिति अच्छी संभल जाती है, तो वो अच्छा जीवन जीने लगते हैं। बहुत सारे लोग जो अहंकार में रहते हैं, हमारे जैसा कोई है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता, वो देखो आप भीख मांगते नजर आते हैं। वो कहते हैं ना कुछ कुछ रॉयल भिखारी भी होते हैं कि लोगों से पैसे मांगने की आदत होती है और देना नहीं होता है, तो दरअसल गरीब तो उनको ही कहेंगे जो पैसे तो ले लेते हैं लोगों से कि धंधे में डालना, उसमें डालना, इसमें डालना, और फिर उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। जो मांगने आते हैं ना उनको मुंह भी नहीं दिखाएंगे और घर परिवार में समझा देंगे कि बता देना भाई, वो आवे तो बोल देना कि घर पर नहीं हूँ, और वो ही जवाब मिलता है। बेचारे लोग कितना धक्का खाएंगे, 10-15-20 धीरे धीरे फोन कॉल्स भी बंद, उठाना बंद, नंबर बदल देंगे। गरीब वो है जो इस तरह लोगों का मांग मांग करके खाते, मेहनत करने वाले कभी गरीब नहीं होते। इसलिए स्वाभिमान का जीवन जीना है और स्वाभिमान में रहना है, यही दरअसल दिल के अमीर कहलाते हैं। और आज के प्रश्न है कि ऐसी तिथि आने वाली है चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे भी खाएंगे और गरबा रास भी करेंगे, तो ऐसी कौन सी तिथि आती आने वाली है अभी जो ये सब हम करने वाले हैं? जवाब जरूर दीजिएगा। रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए सुनेंगे फिर से एक गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: मैं हूं जयप्रदा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। परंतु आज के प्रश्न का जवाब बहुत सरल है। पहले मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, जो भी आशियाना कार्यक्रम सुन रहे हैं आप प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है और ये तिथि बहुत ही जल्दी आने वाली है। ऐसे

0: तो भाई ऐसी कौन सी तिथि आने वाली है? नवरात्रि तो देखिए बहुत सभी ने गरबा रास किया, डांडिया किया, मजा आ गया सभी को, है ना। तो गरबा रास अपने अपने सोसाइटी में हुए हैं और किए भी होंगे, लेकिन फिर से गरबा रास करेंगे परंतु कौन सी तिथि को? जवाब दीजिएगा। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अब आशियाना की किचन में आज बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट वानगी, गुजराती में वानगी कहते हैं और वैसे हम कह सकते हैं कोई भी एक अच्छे से डिश, तो बनाएंगे राजस्थानी कचौरी चाट। राजस्थानी कचौरी चाट का नाम सुनते ही तो पानी आ ही गया होगा, और वो भी जोधपुरी कचौरी चाट, उसका तो कहना ही क्या है। जगह जगह पर भले मिष्ठान वालों की दुकानें होती हैं, वहाँ पर बहुत सारे दुकानों पर लिखा होता है कि जोधपुरी कचौरी, लेकिन चलिए जोधपुरी कचौरी आज हम सभी को बनाना सिखाएंगे ताकि आप सभी बना करके आनंद ले सको। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी नमस्कार लीला जी, ओम शांति, कैसे हो आप?
1: एकदम बढ़िया है मैडम जी, आपकी अपनी फर्स्ट क्लास आवाज आज बराबर आई है, ठीक है ना, आवाज बराबर नहीं सुनाई दे रहा था।
0: अच्छा,
1: हाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, बराबर गुर गुर गुर गुर करके तो मजा नहीं आ रहा था सुनने में।
0: चलिए आज तो आवाज एकदम क्लीन आ रही है।
1: बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी हर पूनम में गरबे के लिए तैयारी कर रही हूँ रात की।
0: अच्छा, तो आ जाइए फिर, करेंगे हम सभी रेडियो मधुबन में धमाल।
1: बिल्कुल बिल्कुल, पूनम आ रही है फर्स्ट क्लास।
0: जी जी जी, चलिए हम देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं है। आ रही है तो कब आ रही है?
1: जल्दी जल्दी खीर पोहे की खीर बनाएंगे और फिर चांदनी रात में रख देंगे और फिर चंदा मामा से अमृत गिरेगा अंदर।
0: जी जी, क्या बात है। बहुत अच्छा,
1: तरत बुनमनी रात जो चांदनी उग्यो सखी मारा चौक मा।
0: क्या बात है। तो लीला जी, हम जरूर आएंगे इस बार, भाई ज्यादा बनाना, ठीक है?
1: बहुत देरों बनाएंगे अपन, कमी नहीं पड़ेगी।
0: ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और उस दिन हमारे श्रोता बंधु को आप ही सिखा देना, ठीक है, दूध पोहे।
1: ठीक है मैडम जी।
0: ओके जी, बहुत बहुत आभार आपका जी। तो आज आपको कचौरी

राजस्थानी कचौरी चाट बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है? तो पहले मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ, पेन और डायरी आप तैयार होगी आपके हाथ में, सामग्री लिख लीजिए, क्योंकि देखिए ये चीजें ऐसी है कि लिख लेना अच्छा है। आप रोज कुछ न कुछ सिखाते हैं तो फिर भूल ही जाते हैं, तो लिख लीजिए कि सामग्री है मैदा 250 ग्राम, फिर आप धुली हुई मूंग की दाल ले लीजिए 100 ग्राम, और हरी मिर्च ले लीजिए 3-4, अदरक भी एक छोटा सा टुकड़ा आप ले सकते हैं, 1 चम्मच जीरा ले लीजिए, हींग चुटकी भर लेना है, पीसी हुई लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच लेना है, मोटा कुटा हुआ गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच ले लीजिए, और मोयन और तलने के लिए तेल आवश्यकता के अनुसार लेना है। भरने की सामग्री दोहरा रही हूँ, 4-5 उबले हुए आलू लेना है, और हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया ये आप आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, चाट मसाला भी लेना है, हरी चटनी और इमली की सौंठ ये भी आपको तैयार रखना है, बीकानेरी भुजिया और फेटा हुआ दही, और ये सब आपको तैयार रखना है, ठीक है? तो फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री, ध्यान दीजिएगा कि राजस्थानी कचौरी चाट, वैसे तो देखिए राजस्थान के लोग चटपटा खाने के बहुत ही प्रसिद्ध है, जोधपुर की स्पेशल कचौरी की चाट खाने के बाद तो दिनों तक, बहुत दिनों तक उसका स्वाद याद आता रहता है। अक्सर आपने देखा ही होगा, क्योंकि कोई ऐसे नहीं होंगे हमारे श्रोता बंधु जिन्होंने जोधपुरी कचौरी चाट नहीं खाई होगी, और उसका आज मैंने याद दिला दिया होगा तो उसका टेस्ट भी याद आ गया होगा कि कैसा उसका स्वाद रहता है। लेकिन अब ये रोज़ तो बाहर से ला के नहीं खा सकते हैं, इसलिए घर पर बना करके आप ज़रूर खा सकते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छी रहती है। तो मैदा 250 ग्राम लीजिएगा, दाल लेना है 100 ग्राम मूंग की दाल, ठीक है? हरी मिर्च, अदरक सब अपने आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, जैसे 3-4 हरी मिर्च है, 1 अदरक का टुकड़ा है, जीरा 1 चम्मच है, चुटकी भर हींग है, पीसी हुई लाल मिर्च और नमक दोनों ही अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, और अमचूर पाउडर 1/2 छोटा चम्मच लेना है, और मोटा कुटा हुआ गरम मसाला भी 1/2 छोटा चम्मच ले लीजिए, और मोवन के लिए और तलने के लिए आवश्यकता के अनुसार तेल लेना है। फिर भरन की सामग्री है भरने की, कि उबले हुए आलू 4-5 ले लीजिए, और हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया ये सब आपको आवश्यकता के अनुसार लेना है, इसके साथ चाट मसाला भी आपको लेना है थोड़ा सा। अब इसमें आप तैयार रखेंगे हरी चटनी, इमली की सौंठ, बीकानेरी भुजिया और दही आपको लेना है, ठीक है? तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए, तब तक के लिए गीत सुनेंगे, उसके बाद राजस्थानी कचौरी चाट कैसे बनाई जाती है वो जरूर सिखाएंगे। परंतु आज का प्रश्न है, हमारे जो भी श्रोता बंधु सुन रहे हैं दे सकते हैं आज के प्रश्न का जवाब। प्रश्न है, ऐसी तिथि आने वाली है चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे भी खाएंगे तो गरबा रास भी करेंगे। जवाब जरूर दीजिएगा, हमारे नंबर है रेडियो मधुबन के 94-14-15-14-15, और सुनते हैं गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो ना।
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोक

0: रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
1: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे हैं राजस्थानी कचौरी चाट। सामग्री आप सभी को लिखवा चुकी हूँ, आप लिख चुके होंगे। अब बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि आप क्या करेंगे। मैदे को छानिए, छान करके एक बड़ा चम्मच तेल इसमें डालिए और थोड़ा सा नमक मिला करके नरम नरम इसको गूंदना है और गूंद करके गीले कपड़े से ढक करके रख देना है, ठीक है। फिर एक कढ़ाई रखिए गैस पर, कढ़ाई में तेल डालिए और हींग जीरे का तड़का लगाइए। फिर दाल जो हमारी भीगी हुई है, दाल को क्या है भिगो के रखना है एक घंटे पहले ही, ठीक है। तो इसका छोक लगा दीजिए, पानी निकाल देना है और छोक देना है दाल को। फिर नमक लाल मिर्च डाल करके कम पानी में गलने तक पकाइए, हल्के हल्के से छींटे देते जाने हैं, पानी तो निकाल ही देना है, बीच बीच में जरूरत पड़े तो हाथ में लेकर के थोड़ा सा छींटा दीजिए, ठीक है, ताकि दाल हमारी थोड़ी सी गल जाए। गलने के बाद यदि वो पानी तो रखना ही नहीं है, फिर भी है तो आप उसको सुखा दीजिए और अच्छी तरह इसको मैश करिए। गरम मसाला और अमचूर मिलाइए, थोड़ा हरा मसाला भी मिला दीजिए। मैदे की छोटी लोइयां बना करके बीच में मूंग का मिश्रण थोड़ा सा फैलाना है लोइयां बना करके, ठीक है। फिर मूंग के दाल की ये पिट्ठी रखिए और इस मिश्रण को भर करके चारों ओर से मोड़ करके गोलाई में बंद करिए। हथेली से हल्का सा दबा करके कचौरी की तरह बनाइए, ठीक है। फिर गरम तेल में इसको डाल दीजिए, मंदी आंच पर करारी होने तक तलना है, तो कचौरी फूलना अवश्य। देखे कचौरी आप डाल रहे हैं, तल रहे हैं, तो कचौरी फूलनी जरूर चाहिए, ठीक है। अगर नहीं फूली, बैठ जाएगी, तो फिर वो कचौरी की तरह दिखाई नहीं देगी, इसलिए इस बात पर आपको पूरा ध्यान देना है। एक आध बिगड़ जाए तो दूसरी पर अच्छी मेहनत करनी है। अच्छी तरह इसका लुआ बनाना है, लुआ बना करके इसको हथेली से ही चौड़ा चौड़ा बना करना है। फिर मसाला जो पिट्ठी बनाई है दाल की, बीच में रख करके गोल गोल फिर से लुआ बना करके हल्के हाथ से दबा देना है कचौरी की तरह। फिर तेल गरम हो जाए उसको मध्यम करके मध्यम आंच पर कचौरियां तलिए, दोनों तरफ से सुनहरी सुनहरी हो जाए, फिर आप निकाल दीजिए और दूसरी कचौरी तल दीजिए। कचौरी फूलनी जरूर चाहिए। कचौरी को ऊपर से थोड़ा फ्राई करके उसमें कटे हुए आलू, हरा मसाला, जैसे कि हमने सामान लिया ना भाई, उबले हुए आलू 3-4 लिए, उसके आप थोड़े से कटके कर लीजिए, काट लीजिए, ठीक है। और उसमें ये हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, कटा हुआ चाट मसाला, ये सभी आपको बताया था तो लीजिए। फिर आलू डाल करके हरा मसाला और चाट मसाला अपने स्वाद के अनुसार डालिए और हरी मिर्च, बीकानेरी भुजिया ये भी डाल दीजिए। इमली की सौंठ भी इसमें डालनी है, इमली की सौंठ बोले तो चटनी, ठीक है। और दही और नमक सब छिड़क करके पिरसिए। तो ये बन गई कचौरी, राजस्थानी कचौरी चाट। इसके खाने का जायका ही अलग है, बनाने का भी तरीका और खाने का भी स्वाद पूरा ही आपको अलग ही लगेगा और बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी। बच्चे, बुजुर्ग, किशोर सभी इसको पसंद करते हैं और सभी खा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कचौरी चाट तैयार है। अब देर किस बात की, लीजिए एक प्लेट, प्लेट में ये सब रखिए और अच्छी तरह इसमें सब कुछ मसाला डालिए और एक थाली में रख दीजिए, स्वच्छ थाली में। और भी आपने कुछ बनाया है वो भी रखिए, तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए और ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद ले सकते हो कचौरी चाट का। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था कि भाई आप सभी ने सुना ही होगा कि ऐसी तिथि आने वाली है चंदा में सभी झूमने वाले हैं, दूध पोहे भी खाएंगे तो गरबा रास भी करेंगे। तो आज के प्रश्न का जवाब सभी ने सही दिया है। नाम मैं पहले सुना रही हूँ, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, सुरेश भाई जोटाना से, सुरेश भाई दानेराव से, कुपाराम जी कोजरा से और लीला जी माउंट आबू से, सभी ने सही जवाब दिया है। शरद पूर्णिमा जय। तो सही जवाब, आप सभी के लिए तालियां। और अब खाली दो लाइन में गीत की सुनाऊंगी क्योंकि समय भी होने को आ चुका है, इसलिए सिर्फ दो लाइन गीत की सुनाऊंगी। आप लेंगे गीत का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। भक्तों को दर्शन दे घई रे एक छोटी सी।

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। किसे कहते हैं दोस्तों, हर किसी के जीवन अलग होती है। हर किसी के अंदर एक ख्वाब होता है, मुझे अपने जीवन को ऐसे जीना है। बचपन में हम माँ बाप के कहे हुए मार्ग पर चलते हैं और जैसे ही हम होश संभालते हैं और दुनिया को देखने लगते हैं, हम आसपास के लोगों को देखने लगते हैं, हमारे जीवन में भी कुछ आशाएं उत्पन्न होती हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है और मैं अपने जीवन को इस तरीके से जीना चाहता हूँ। तो वो सपने और वो सोच बुनना शुरू हो जाता है। फिर फाइनली जब हम युवा अवस्था में आते हैं तो थोड़ी बहुत दिशा मिल जाती है और हम अपनी डेस्टिनी की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं जीवन जीना मतलब बाल्यकाल में स्कूल जाओ, युवावस्था में पढ़ाई पूरा करो, फिर नौकरी करो, फिर शादी करो, फिर सेट हो गया, फिर मिडिल एज में आकर के जिम्मेवारियां संभालो, फिर वृद्धापी में आ गया तो फिर बाल बच्चों के साथ खुश होके जीवन पूरा हो गया। क्या यही जीवन है या हर कोई ऐसे जीना चाहते हैं या कुछ हटके भी जी सकते हैं? आइए आज हम इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है इसमें जानेंगे। हमारे साथ है एक योगी जीवन जीने वाले, ब्रह्म कुमारीज के मुख्यालय में समर्पित रूप से अपनी जीवन को जीने वाले आदरणीय श्याम भाई जी। आप वर्तमान समय में हेडक्वार्टर्स में रहते हुए अनेक कार्यों को आप मार्गदर्शन करते हैं, तो वो क्या करते हैं और ये जीवन उन्होंने क्यों और कैसे चुना है, उनकी ही जीवन के अनुभवों से आज हम जानेंगे। श्याम भाई जी, आपको आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, रेडियो मधुबन वालों का हमको बुलाया उसके लिए।
1: शुक्रिया भाई जी। पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने समय निकाला हमारे श्रोताओं के साथ अब अपनी जीवन की बहुमूल्य पलों के बारे में साझा करने के लिए। हम सबसे पहले उन पलों के बारे में हम जानना चाहेंगे, आपका जो बचपन रहा है, आपका जन्म कहाँ हुआ है, किस परिवार में हुआ और आपकी लौकिक परिवार का क्या माहौल रहा है, आप कितने भाई बहन हैं, आपका अपना लौकिक जीवन का परिचय थोड़ा संक्षिप्त में बताएं।
2: ओम शांति। मेरा पूरा नाम श्याम बाबू गुप्ता है और मैं भोपाल जोन पोरसा मध्य प्रदेश एमपी से निकला हुआ हूँ। एज मेरी 51 है अभी। और हमारे फादर जो थे 2012 में उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो हमारा पहले बिजनेस था, आड़त का काम था, जो सरसों गेहूं वगैरह जो खरीदने का होता है तो वो काम था हमारा। तो उस समय हम बिजनेस में भी रहते थे प्लस सेंटर की सेवाओं में भी अपना समय देते थे। तो हालांकि उस समय पिताजी थोड़े हमारे एंटी थे इस चीज से, ज्ञान में हम नहीं आए, वो सोचते थे कि हम शादी कर लें। तो उन्होंने काफी हमारे आजू बाजू और भी संपर्क वालों से कोशिश किया कि मैं कैसे भी करके शादी ये कर ले। और कभी कभी लोग बार बोलते थे कि आप दोनों शादी कर लो, भले ही ज्ञान में चलना शादी के बाद। तो और दूसरे लोगों का जो उदाहरण देते थे, उन्होंने भी शादी किया, रामचंद्र जी भी शादी किया, ऐसे करके देते थे। तो उनको हम उसी हिसाब से गाइड करते थे। फिर हमारा ज्ञान में आने का सिद्धांत यही रहा, क्योंकि हमें अपना जीवन जिस प्रकार से देश के लिए सेवा के लिए करना है, तो उस प्रकार से हमने अपने जीवन को एक संघर्ष माना, जीवन को सोचा चलाने के लिए। तो हमारी माताजी और हमारी लौकिक सिस्टर वो पहले से ही ज्ञान में थे,
1: मतलब ये ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो राजयोग की पढ़ाई है वो पढ़ते थे।
2: ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो पढ़ाई पढ़ते थे पहले से ही, तो उनके माध्यम से भी हम संस्था से जुड़े और फिर इस संस्था में धीरे धीरे हम अपना आना जाना होता रहा और काफी चीजों का अनुभव मिला मुझे, जो ज्ञान का अनुभव नहीं था कि जीवन में जीने की कला क्या है। तो वो चीज हमें वहाँ सीखने को मिली, क्योंकि जीते तो सभी हैं लेकिन जीना कैसे है वो बाबा ने हमें सिखाया कि कैसे जीना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाना है। कि दुनिया में लोग आते तो हैं

0: और अपना जीवन सारे समय ऐसे ही निकाल देते हैं, जवानी से लेके बुढ़ापे में अपने गृहस्थ में ही जीवन निकाल दिया। लेकिन हमारा एक मतलब यही था कि अपने जीवन को हम अपना श्रेष्ठ बनाएं, यही हमारी एक भावना है।
1: तो श्याम भाई जी, आपको जीवन श्रेष्ठ बनाने की इच्छा थी, देश की सेवा करने की इच्छा थी, तो बचपन में भी आपको ऐसा ही फील होता था। कहाँ तक पढ़ाई किया था आपने?
0: हमने 12th किया था पढ़ाई
1: जी। तो घर की माहौल ऐसी थी या फिर आपको कहीं से ऐसी?
0: घर का माहौल नहीं, हमारा क्या है, बचपन से ही एक बिजनेस का संस्कार पड़ गया था। तो हमारे लौकिक भाई थे, वो M.Com किया था उन्होंने, लेकिन हमारा क्या एक बनिया क्वालिटी में आते हैं ना, उनको नौकरी बहुत कम मिल पाती थी उस समय। तो इसलिए हमने कि नौकरी करके क्या करना है, करेंगे तो बिजनेस ही करना है। तो इसलिए हमारे काफी साथी भाई बहन थे जो, तो वो सब माना थोड़ा ही पढ़ के अपने बिजनेस में लग गए थे
1: जी। आपकी सिस्टर कहाँ तक पढ़ाई की थी?
0: सिस्टर ने तो कुछ M.Com ऐसा कुछ MBA कुछ किया हुआ है, MBA किया हुआ है।
1: तो आप दो भाई एक बहन हैं?
0: हम दो भाई और छह बहनें हैं।
1: छह बहनें,
0: जिसमें एक की शादी नहीं हुई है, जो समर्पित टीचर बहन है, और बाकी जो सिस्टर हैं वो सब ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान
1: से जुड़े हुए, अपना शादीशुदा जीवन जी
0: जी शादीशुदा जीवन जी करके वो ज्ञान में
1: चल रहे हैं
0: जी।
1: तो जैसे आपने कहा कि आपको ये ख्याल चलता था कि देश की सेवा करना है, ये आम जीवन मुझे नहीं जीना है, तो आपके जीवन में कोई आदर्श रहे जिनसे आप ऐसी प्रेरणा लेते थे, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपको प्रेरित करते थे?
0: मुझे उस समय क्या है, बचपन था तो किसी से हमारा ऐसा संपर्क नहीं हो पाया कि भाई उनके साथ में रह करके और हम इस प्रकार से देश की सेवा कर सकें। तो वो संपर्क हमें ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद ही वो प्रेरणा मिली, वो हमें रास्ता मिला, तो उस प्रकार से हम उस रास्ते पे आकर के और अपने आप को श्रेष्ठ बना रहे हैं।
1: नहीं, बचपन में आपको क्यों लगा मुझे देश की सेवा करनी है?
0: क्योंकि केवल दुनिया में जीना है तो केवल अपने स्वयं के लिए जीना होता है, स्वयं के परिवार के लिए जीना होता है, लेकिन हमारा संकल्प हम देश के लिए जिए।
1: तो बचपन में आपको ऐसा फील होता था
0: जी?
1: तो मतलब आपने कोई मूवी देखी थी या किसी फौजी को देखे थे?
0: मूवी वगैरह तो देखता था, लेकिन मुझे इतना याद नहीं रहता है उस चीज का, क्योंकि
1: नेचुरली आपको फील होता था
0: जी जी
1: ऐसा देश की सेवा करना चाहिए
0: जी जी
1: इस तरीके से। बहुत अच्छा। तो जब आपकी बचपन से ही ये देश की सेवा करने का इच्छा थी और आपको एक दिशा मिल गई वो सेवा की भावना को ब्रह्म कुमारी इसके आने के बाद, तो फिर ज्ञान जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो ज्ञान मिलता है वो सत्य ज्ञान है, इसके ऊपर निश्चय कैसे हुआ आपका?
0: उसके ऊपर निश्चय ये है कि भगवान हमें जो रोज मुरली सुनाता है, तो मुरली हम सुनते हैं और जो हमारे संकल्प आते थे तो वो संकल्प हमारे ऑलरेडी बाबा पूरा कर देता था। जैसे मान लो, संकल्प तो अलग चीज है, लेकिन मैं 2003 की बात है समथिंग, तो उस समय ग्राम विकास अभियान की रैली निकल रही थी जो सारे विश्व में भ्रमण होता था, और माउंट आबू में उसका समापन समारोह था। तो उस समय
1: में पूरी भारत में वो रैली घूम के फिर माउंट आबू में समापन होता।
0: तो उस समय में वो गाड़ी को लेकर के माउंट आबू आने वाला था, तो गाड़ी की हम तैयारी कर रहे थे उस समय। तो वहां पर एक ऐसी घटना घटी हमारे साथ। तो उस समय क्या है, हम एक लोहे का पाइप जो बाबा की गाड़ी में झंडा लगाने के लिए लेके आ रहे थे, तो एक घर के आगे एक लाइन थी 33,000 KV की, तो उस लाइन से मेरा वो ध्यान नहीं था उस समय, क्योंकि यंग एज होती है, इतना वो नहीं होता है। तो पाइप क्या है, वो 3 फीट दूर से खींच लेता है, तो ऐसे ही मुझे वो 3 फीट दूर से वो पाइप खींचा, लेकिन मैं तो एकदम अचानक
1: मतलब बिजली खींच गई थी
0: जी जी। तो लाइट क्या है, वो पाइप तो मुझे नहीं मालूम, मेरे के आगे तो एकदम अंधेरा हो गया बिल्कुल, केवल छाया चित्र रह गया आत्मा का। फिर मैं अंदर ही अंदर महसूस कर रहा हूँ कि मुझे करंट लग गया और मेरा इस दुनिया से खेल अभी पूरा हो गया। तो फिर धीरे धीरे मैं वहाँ गिर गया, और मुझे नहीं मालूम उस चीज का गिरने के बाद फिर क्या हुआ, लेकिन वो गिरे भी थे, वो भी आत्मा महसूस कर रही थी। लेकिन उस समय मुझे बाबा की बात याद आई, बाबा ने बोला कि अंत समय में केवल मुझे ही याद करना है, कोई देहधारी को याद नहीं करना है। तो उसी समय में ये गिरने से पहले मैंने अपनी बुद्धि को और बाबा की याद से जोड़ लिया,
1: परमात्मा
0: की याद से जोड़ा, फिर मैं धीरे धीरे वहाँ गिर गया। उसके बाद बताते हैं कि मेरे कपड़ों में भी आग लग गई थी, तो वहाँ कुछ भाई बहन थे, तो उन्होंने अपने दस्ताने पहने हुए थे, तो उन्होंने आग को बुझाया, फिर हॉस्पिटल लेके गए। तो कहने का भाव ये है कि उसमें मुझे 6 महीना कंप्लीट ठीक होने में लगा, तो 3 महीना तो ज्यादातर हम बेड पे ही रहे, और उसके बाद धीरे धीरे एक चलना सीखा, माना लाठी के सहारे, फिर धीरे धीरे अपने आप को माना ठीक हो पाए हम। तो उससे हमें विश्वास हुआ है, बाहर वाले भी दुनिया में भी लोग जब हमको देखने आ रहे थे हॉस्पिटल में, तो उस समय वो लोग यही बोल रहे थे कि इनका बचना नामुमकिन है, लेकिन परमात्मा की ऐसी दया होती है, परमात्मा की जो सेवा करते हैं तो उसमें परमात्मा भी हमें पूरा सहयोग देता है, और परमात्मा ने उस समय हमें उस जिंदगी को नया जीवन दिया। तो नया जीवन दिया तो हमें भी एक संकल्प आया कि हमें अभी पूर्ण रूप से देश की सेवा करनी है। फिर हम अपनी अच्छी तरह से ठीक हो गए और फिर हम बाबा की सेवा में पूर्ण रूप से अपना जीवन दे दिए।
1: जी, मतलब उस हादसे ने परमात्मा की महावाक्यों की सच्चाई आपको अनुभव कराई,
0: जी,
1: जिसे आपको विश्वास हुआ कि ये सत्य ज्ञान है और यही परमात्मा है,
0: जी,
1: और जीवन को उद्धार करते हैं।
0: जी,
1: तो ये फिर आप रिकवर हुए और सब ठीक हो गया, लेकिन समर्पित होने का ख्याल कहाँ से आया आपको?
0: समर्पित
1: होने घर में पिताजी का विरोध तो था ही ना।
0: समर्पित होने का मुझे नहीं मालूम, मैंने अपने जीवन में बाबा के आगे माना एक यही संकल्प था मेरा, तो कि जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना करो। कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन फल की इच्छा करना वो उसके बस में नहीं है। तो वो मेरा एक संकल्प रहता कि सेवा करते जाओ, कर्म करते जाओ, बाकी फल देने वाला भगवान है, वो मेरा काम नहीं है। तो मैं मधुबन में भी जब आया था 2006 में, तो मैं बहुत सीधा सिंपल था, तो कुछ लोग बोलते थे कपड़े भी थोड़े वैसे पहने होते, हमारे एक वो होता है रीति रिवाज है जो भी है, तो लोगों को थोड़ा वैसा लगता था। तो लेकिन हमारा एक संकल्प था सेवा करते जाओ, तो हम अपनी सेवा करते गए, और 2006 में हम जब आए तो उसके बाद हमें डायरेक्ट जुलाई में आए थे, पहले सेवा करके गए ऐसे 6 महीने करके, फिर उसके बाद हम 2007 में भी सेवा करने आए, फिर 2008 में हमें स्पेशल निर्मल दादी, शांता मणि दादी जो है हमारी, उनकी सेवा के लिए स्पेशल हमको जून में 24 जून मम्मा डे के समय हम आए थे, और
1: शांतामणि दादी के पास,
0: जी, शांतामणि दादी के पास, निर्मल शांतामणि दादी, तो उनकी गाड़ी की रथवान के सेवा किया मैंने उनके पास, और हमारा अगस्त में ट्रायल फार्म भी भर गया। तो मुझे नहीं मालूम कि कैसे अचानक सब कुछ हो गया, तो मैं तो वैसे जो भी कुछ होता था, जैसे 2006 में मैं आया था सेवा में, तो मैंने बाबा को यही बोला, बाबा मुझे अब कहीं नहीं जाना है, बस मुझे आपकी यहीं सेवा करनी है। तो बस बाबा को ही मैंने योग में जब करते मेडिटेशन करते थे, तो उस समय बाबा को मैं बता दिया, तो बाबा ने ऐसे फटाफट ये काम करा दिया मेरा।
1: तो आपको घर से छुट्टी मिल गई थी?
0: घर से हमारी माता जी तो हमारे पूरे सहयोगी थे, लेकिन पिताजी थोड़ा सा एंटी थे, तो पिताजी ने हमारे को यही बोला कि अगर आप दुकान पर नहीं रहेंगे तो फिर हम आपको हिस्सा नहीं देंगे।
1: अच्छा, प्रॉपर्टी में हिस्सा,
0: प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमको नहीं देना, आप हमें नहीं चाहिए, तो हमने ऐसे कह करके उनको बता दिया, क्योंकि उस समय दुकान को छोड़ना, क्योंकि दुकान पे ज्यादातर हम ही पूरा संभालते थे, बाकी पिताजी थे और हमारे भाई थे, वो तो बाहर का कारोबार देखना वो रहता था उनका, तो इसलिए फिर मेरा संकल्प यही था कि मैं अपने लिए कमाऊं कि किसके लिए कमाऊं, भाई मैं तो अकेला हूं, मान लो माँ बाप है, जिम्मेवारी थी वो तो हमारी चलो पूरी हो गई थी, वो माँ बाप की सेवा के लिए भी चलो हमारे भाई हैं या कभी कभी जाना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेवारी समझ करके हमारी जो भी जिम्मेदारी थी वो हमने अपनी पूरी कर दिया, उसके बाद हम बाबा के घर में समर्पित
1: हो गए। तो फिर आप जब मधुबन आए समर्पित होने, उस समय क्या उम्र थी आपकी?
0: उस समय हमारी उम्र हो गई लगभग 30 साल।
1: 30 साल की उम्र में जब आप 30 साल की उम्र में आए परमात्मा के घर में समर्पित होके सेवा करने के लिए, उस समय जो आप अपने आप को देखते हैं और अभी आप अपने आप को देखते हैं, क्या अंतर महसूस करते हैं आप?
0: उस समय काफी अनुभव हमको बढ़ता है, क्योंकि शुरू शुरू में जब आते हैं तो उस समय इतना हमको अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वो सब चीजें देखते हैं, धीरे धीरे जब यहाँ रहते हैं तो उस चीज का अनुभव बढ़ते, बड़ों से हमें पालना मिली, तो जैसे हमारे आदरणीय निरूर भाई साहब जो थे ब्रह्मा कुमारी के सेक्रेटरी जनरल, तो उनकी हम सेवा में रहे थे, रद्वान के रूप में भी सेवा किया था।

0: खराब हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने हमें जैसे कहा कि आपस में प्यार से रह करके और एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाओ।
1: तो कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि अगर मैं बाबा के घर में या मधुबन में नहीं आता, समर्पित नहीं होता, तो मेरा जीवन का ये भाग्य नहीं बनता या मेरे जीवन में ये जो परिवर्तन है वो कभी नहीं हो पाता?
0: ये चीज तो हमने कभी सोचा नहीं था कि मेरा भाग्य नहीं है। ब्रह्म कुमारी संस्था से जब मैं जुड़ा तो सब सौंप दिया प्यारे प्रभु को। तो मैं तो यही सोचता हूँ बाबा के ऊपर है, बाबा को जो करना है वो जाने। मैं काफी बार कभी कभी अनुभव करता हूँ कि हम मनुष्य सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन करण करावन हार जो शिव बाबा है उसे क्या मंजूर है वो तो वो ही जानता है। तो हमने तो अपने जीवन बाबा के हवाले कर दिया लेकिन बाबा को क्या करना है वो बाबा जाने। बाकी हमने ये कभी संकल्प ही नहीं किया कि बाबा के नहीं बनते तो हमारा जीवन क्या होता, वो हमने कभी संकल्प नहीं किया।
1: हाँ, शुरू से आपको ये था मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, बस हो गया। बहुत सुंदर भाई जी, ये भी कितनी अच्छी सोच है कि सिर्फ मैं और परमात्मा हमारा यही रिश्ता है। बहुत सुंदर भाई जी। तो अभी जब आपके परिवार वाले आपसे मिलते हैं, 20 साल से आप एक योगी जीवन जी रहे हैं और इस संस्था की जो मुख्य दादियां और भाई साहब थे उनके अंग संग रह करके आपने अपने आध्यात्मिक उन्नति की है, तो जब आपकी लौकिक परिवार अभी मिलते हैं तो फिर वो क्या महसूस करते हैं?
0: उन्हें यही एक अच्छा लगता है कि भाई देखो मधुबन में रह रहे हैं तो इन्होंने अपना जीवन बहुत अच्छा सफल कर लिया। वहाँ की दुनिया में तो हालत खराब होती है, देखती हैं तो उन्हें एक ये चीज लगता है। दूसरा हमारे फादर जो थे तो वो बाद में वो ज्ञान में आए तो फिर धीरे धीरे वो पॉजिटिव होते गए। फिर मधुबन में भी आए तो मधुबन में भी उनको हमने सब घुमाया तो माना एक जो उनके अंदर नेगेटिवता थी वो पूरा पॉजिटिव में परिवर्तन हो गया कि उनको भी लगा कि हाँ अभी अच्छी जगह रह रहे हैं। तो वो भी अभी जो नेगेटिव अंदर भरा हुआ था वो सब निकल गया उनका, माना वो भी ज्ञान में काफी साल चले, 4-5 साल शायद मैं समझता हूँ ज्यादा भी हो गया।
1: शरीर छोड़ने से पहले?
0: हाँ, शरीर छोड़ने से पहले लगभग 5-6 साल वो बाबा के यज्ञ में मुरली वगैरह रोज सुनना, गीत भी गाना बाबा के, वो उनकी लगन लग गई थी। हर गुरुवार को वो कुछ न कुछ फल वगैरह बाबा के लिए लेके जाते थे।
1: बहुत सुंदर। बचपन में पढ़ाई करते हुए आपने दुनिया की महान आत्माओं को भी देखे होंगे, सुने होंगे, और आप जब संस्था में आए यहाँ पे महान योगियों को देखा, आप क्या अंतर महसूस करते हैं?
0: हमें तो यही लगता कि हमने जानकी दादी को भी साथ में देखा है, गुलजार दादी के पास जब भाई साहब के साथ में हम जाते थे ना तो गुलजार दादी को भी हम एक बार ज्ञान सरोवर से नक्की लेके वगैरह गाड़ी से घुमाने लेके गए थे। तो उनका जीवन हमने जो देखा एकदम वैराग्य वृत्ति होता है, उनकी दृष्टि वृत्ति कृति एकदम शुद्ध प्योर, क्योंकि उनके साथ जो भी मिलने सामने जाएगा तो पूरा एकदम संपूर्ण जैसे कहें तृप्त आत्मा हो जाती है, ऐसे उनका जीवन एक अनुभव होता है उनको। तो उनकी तपस्या, जिन्होंने इतनी तपस्या की थी पहले से हमारी दादियों ने, हमारे वरिष्ठ भाइयों ने, तो उनकी तपस्या ही उनकी सेवा थी। क्योंकि बाबा भी हमेशा बोलता है ना कि आपके चेहरे से ही सेवा हो, सेवा हो। तो ऐसे ही हमारी दादियां जो थी, हमारे बड़े भाई थे, भाई साहब थे, तो उनके चेहरे से ही बाबा की सेवाएं अनेक होती गई और हमें उससे ही सीख मिलती है कि हमें अपना जीवन भी इस प्रकार से योग तपस्या के माध्यम से ही अपने आप को परिपक्व बनाए जिससे सामने वाले को भी वो चीज अनुभव हो।
1: तो श्याम भाई जी, आपको जीवन में कब और कैसा महसूस हुआ कि यही जीवन है, इसे ही जीना कहते हैं या जीना इसी का नाम है? कोई ऐसा मोमेंट या कोई पल रहा जो आपको महसूस हुआ कि हाँ यही जीना इसी का नाम है, इसे कहते हैं?
0: मैं जब ब्रह्म कुमारी से नहीं जुड़ा था तो उस समय तो हम मंदिर वगैरह में भी जाते थे कभी कभी, कोई कोई धर्म के कर्म भागवत हो रहे हैं या जो भी होता है तो उससे भी भावना वो रहती थी मंदिरों में जा करके। तो फिर जब ब्रह्म कुमारी से जुड़े तो हमने अपने आप को ओनली कोई संकल्प नहीं रखते थे, बस बाबा की सेवा, आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते थे। जो बाबा की सेवा मिलती थी, हमारी ज्यादातर पहले शुरू शुरू में रथवान गाड़ी चलाने की सेवा रहती थी, तो गाड़ी से जो भी गेस्ट आते थे उनको अहमदाबाद लाना, उदयपुर से लाना, छोड़ना, ऐसे करके स्टेशन कभी छोड़ना, तो जो लोग हम सेवा करते थे तो वो लोग के अंदर से यही भावना निकलती थी कि ये लोग कितने निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, कभी भी किसी से कुछ लेना देना ऐसा नहीं रहता है इनका, तो वो लोग भी काफी संतुष्ट होकर के जाते थे। तो हमारी यही भावना रहता है कि हम कभी किसी की सोचा ही नहीं कि हमारा क्या होना है क्या नहीं होना है, वो हमने नहीं कभी सोचा।
1: बहुत सुंदर भाई जी, वर्तमान समय में आप क्या सेवा करते हैं मुख्यालय में?
0: वर्तमान समय हमारे आदरणीय ब्रह्म कुमारी के सेक्रेटरी जनरल निर्वर भाई साहब जो थे, जब उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद तो हमारे डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी जो ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और हमारी आदरणीय शशि दीदी जो पांडवन को संभालते हैं, तो उनके द्वारा हमें जो भी गाड़ी अरेंजमेंट करने की सेवाएं रहती हैं तो उनको हम फिर गाड़ी अरेंज कराते हैं। और फिर उसके बाद कभी हमको भी जाना होता है, किसी कोई भी गेस्ट आ रहे हैं तो उनको लाना ले जाना, प्लस हमारा महादानी कॉटेज जो है जो उनके मार्गदर्शन में ही उनके निमित्त है, तो उसको संभालने के लिए हम निमित्त बनाया हुआ है बाबा ने।
1: बहुत सुंदर, मतलब जो भी गेस्ट होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन का आप कारोबार देखते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: बहुत सुंदर भाई जी, तो अंत में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं, एक योगी का जीवन या एक योगी एक आदर्श जिसे हम कहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर कोई सोचते हैं कि मैं भी इस तरीके से जीवन जीऊं तो उनको क्या करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरा तो यही एक मानना है, क्योंकि हम इस सृष्टि पर जन्म लिया है तो इस जीवन को जितना भी हो सकता है दूसरों को सुख देने का काम करें। तो जितना आप दूसरों को सुख देंगे उतना आपकी पुण्य की पूंजी कहें, दुआएं कहें, वो आपकी जमा हो जाएंगी और वो ही दुआएं आपको जन्म जन्म वो आपके काम आती हैं। तो हमारा तो यही एक संकल्प है कि जो भी भाई बहन इस चीज को सुन रहे हैं तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है और ब्रह्मा कुमारी का जो हमने चुना है तो उसे भी अपने जीवन में, अगर कुछ हमारा मेडिटेशन होता है राजयोग के द्वारा तो उसको भी अगर आप करेंगे साथ साथ तो आपका जीवन भी श्रेष्ठ बन जाएगा और आपकी जो गृहस्थ जीवन भी कहें, जो गृहस्थ जीवन वाले भी हैं, और उनका भी जीवन श्रेष्ठ बन सकता है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, आज आप अपनी अमूल्य समय लेकर के हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियोस में आए। जीना इसी का नाम है, इस कार्यक्रम के जरिए आपके योगी जीवन की उन जीवन के अनुभवों को हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।
0: थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों यहीं पे हम विराम लेते हैं आप सभी से। अभी तक आप सुन रहे थे श्याम भाई जी को, जो ब्रह्म कुमारी के मुख्यालय में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए योगी के साथ और उनके जीवन के अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे बेहतरीन मूल्य कह सकते हैं, एक ऐसे इम्पोर्टेंट मूल्य के बारे में जानेंगे जो सभी के जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं रेजिलियंस, और हिंदी में अगर हम कहें तो लचीलापन, यानी कि कोई भी परिस्थिति हो उससे कैसे हम बाहर निकल करके आ सकते हैं, पास्ट की चीज़ें हैं उसे कैसे भूल करके आगे बढ़ सकते हैं। हर परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए लचीलापन अपने अंदर होना बहुत आवश्यक है, लेकिन इसे कैसे अपनाएं, क्या क्या परिस्थिति है जहां पर लचीलापन के साथ साथ कुछ और मूल्य भी कनेक्टेड है और मूल्य भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे मध्य बहुत ही अनुभवी स्वरिति जी हैं और आप द हार्ट स्पेस वेलनेस सेंटर से पधारे हैं आज रेडियो मधुबन पर। आप साइकोथेरेपिस्ट हैं, इसके साथ साथ आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं। स्वरूति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।
0: धन्यवाद आने के लिए। और आपसे तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस प्रैक्टिस में आप कैसे आए।
1: मेरा शुरू से मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट था। आई थिंक 15 साल की एज से मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते थे माइंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, और उसी को अनुभव करने के लिए, उसी की गहराई में जाने के लिए मैंने साइकोलॉजी की फील्ड को चुना। और वैसे तो मैं साइंस स्टूडेंट थी 12th तक, लेकिन उसके बाद फिर मैंने साइकोलॉजी में अपनी बाकी की पढ़ाई की, और लगभग 8 से 10 साल की ट्रेनिंग करते करते साथ में फिर मैंने प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया।
0: जी, तो आपको निश्चित तौर पे बहुत सारे अनुभव हैं और आपकी बचपन से जो इच्छा थी और आप चाहते थे कि इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, तो आपने बहुत सारे युवाओं को और लोगों को हेल्प भी किया है।
1: जी।
0: तो आज जिस वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे वो है रेजिलियंस। इसको आप थोड़ा समझाइए अपने भाषा में, आप क्या सोचते हैं, आपकी डेफिनेशन क्या है?
1: जी, सो रेजिलियंस ये जो वर्ड है आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, लोग इसके बारे में बहुत बात भी करते हैं। मेरी जो ये समझ है रेजिलियंस के बारे में, मुझे लगता है कि जीवन में परिस्थितियां तो आती हैं, हमें कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसी सिचुएशंस हम फेस करते हैं जहां पे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं और हमें एक तरीके से चैलेंज किया जाता है परिस्थितियों द्वारा। ऐसी सिचुएशन में अपनी सेल्फ वर्थ है ना, और अपने से जो सेल्फ लव हम जिसे कहते हैं उसको बनाए रखना, खुद से एक रिश्ता बनाए रखना, उसी को हम रेजिलियंस मैं समझती हूँ। इट इज़ दी एबिलिटी टू रिमेन कनेक्टेड टू योर सेल्फ, इट इज़ दी एबिलिटी टू रिमेन कनेक्टेड टू योर वैल्यूज नो मैटर वॉट इज गोइंग ऑन। कई बार हम जब परेशान होते हैं तो बाहर की परिस्थितियों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेजिलियंस का सही अर्थ ये है कि हम खुद से जुड़ के, खुद से कनेक्ट होकर कैसे परिस्थितियों के चेंज होने का वेट ना करें, परंतु खुद को ऐसे हम चेंज करें कि हम अडैप्ट कर पाए, हम अपने आप को मोल्ड कर पाए।
0: ओके जी, मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगातार 3 बार फेलियर का सामना करना पड़ता है तो, और फिर लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा
1: जी,
0: तो इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले
1: मैं समझ सकती हूँ, अगर कोई बार बार, जैसे आपने कहा, अगर कोई 2 से 3 बार मान लीजिए सेम चीज़ में फेल होता है तो कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है, एक अंदर से होपलेसनेस की फीलिंग होने लगती है कि ऐसा लगता है कि जिसे हम नाउम्मीदी कहते हैं ना, ऐसे में सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फेलियर तब तक माना नहीं जाता है जब तक हम ट्राई करना बंद नहीं कर देते हैं
0: जी।
1: हम सिचुएशंस जब हमारे हिसाब से नहीं जाती है या सिचुएशंस जब हमें ऑपोजिशन मिलता है सिचुएशन से, कहीं ना कहीं हम उसे फेलियर मान लेते हैं और उसे एक तरीके से है ना डेड एंड समझ लेते हैं
0: जी।
1: परंतु उस समय हताशा और निराशा को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय हमें अपना ध्यान अपनी स्ट्रेंथ्स पर और जो अभी तक हमने जर्नी कवर की है उस पर लेकर आना चाहिए। क्योंकि हर बार मान लीजिए मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं कोई एग्जाम क्लियर करूं, है ना, हमारे बहुत सारे यंग लिसनर्स होंगे जो जिनकी उम्मीद होगी कि मैं एक एग्जाम क्लियर करूं या फिर मैं एक इंटरव्यू क्लियर करूं। भले ही आपका वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया या इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन हर बार जब आप अटेम्प्ट करते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो
0: जी।
1: आपको पिछली बार से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन होता है। और किसी भी सिचुएशन में सक्सेसफुल होने के लिए कई बार लाइफ हमें टेस्ट करती है, हमारा है ना, हमें एक चैलेंज देती है कि हम कब तक ट्राई करने की, कब तक कोशिश करते रहने की हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ है
0: जी।
1: तो ऐसी सिचुएशंस में अपना ध्यान उस सो कॉल्ड फेलियर या डेड एंड से हटाकर सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ और जो मैंने अभी तक सीखा है, जो मेरी लर्निंग हुई है, उस पर लेकर आना चाहिए, ताकि अभी तक जो मैंने लर्निंग्स ली हैं उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे लिए हेल्पफुल थी और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मेरी सक्सेस में कहीं ना कहीं एक रोड ब्लॉक क्रिएट किया, उसको सही ढंग से इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। जिसे हम कहते हैं परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न कि व्हाट इज़ हेल्पिंग मी वर्सेस व्हाट इज़ नॉट हेल्पिंग मी। अगर हम उसे बारीकी से, क्लैरिटी से उसकी जांच करें तो हम ये समझ पाएंगे कि अगर मैं अपने निर्धारित रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकी या पहुंच सका तो उसके पीछे रीजंस क्या थे। उसे ऑब्जेक्टिविटी और क्लैरिटी के साथ देखना बहुत ज़रूरी होता है
0: जी। तो उसके लिए कुछ सूत्र है, कुछ टिप्स है, कैसे देखें, कैसे जाने और जानने के बाद फिर कैसे शुरुआत करें
1: जी। तो इसमें जिसे हम कहते हैं ना वर्ड रिवर्स इंजीनियरिंग, है ना, अगर मुझे किसी गोल तक पहुंचना है, मान लीजिए मुझे नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है या फिर आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करना है, आई नीड टू नो कि वहां तक पहुंचने के लिए मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ मी टू अराइव एट दैट डेस्टिनेशन
0: जी।
1: और एक बहुत ही अच्छा तरीका है इसको सोचने का, दैट इज व्हाट डू आई नीड टू बिकम इन ऑर्डर टू रीच दैट गोल। अगर मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है तो मेरे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज और वैल्यूज का होना जरूरी है, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ना, क्योंकि जो डिसिप्लिन आपको आईएएस बनने में हेल्प करेगा वो वही डिसिप्लिन आईएएस बनने के बाद आपको उस करियर को सस्टेन करने में हेल्प करेगा
0: जी,
1: राइट। और दूसरा जो एक तरीका होता है इवैल्यूएशन का, वो है मैं अपनी 6 मंथ्स की या 1 ईयर की जर्नी को देखूं कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी, ऐसे मैंने कौन सी चीज़ें फॉलो करी, ऐसे कौन से मेथड्स फॉलो करे जिनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ
0: जी।
1: सो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना, जिसे हम कहते हैं व्हाट वेंट वेल, है ना, व्हाट वर द मिनी सक्सेसेस दैट यू एक्सपीरियंस्ड, है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या था, मैंने ऐसा क्या किया जो मैं वहां तक भी पहुंची, है ना, पहले माइलस्टोन तक भी पहुंची। और उसके बाद फिर ये देखना कि व्हाट आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, ऐसे मेरे अंदर कौन से मेरे पंस है या कौन से ऐसे मेरे काम करने का तरीका है जो हेल्पफुल नहीं है। हो सकता है मेरे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत हो, काम को टालने की आदत हो, हो सकता है कि मैं चीज़ों को उतने थरली समझने की कोशिश नहीं करती हूँ
0: जी।
1: उन बारीकियों को आइडेंटिफाई करके फिर उसको कैसे हमें ओवरकम करना है उसका एक प्लान बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से बात करना, किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करना, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं रादर देन बैटलिंग विथ एन अननोन टेरिटरी एन अननोन पाथ। जितनी हम क्लैरिटी लेकर आएंगे अपने प्रोसेस में उतना हमें मदद मिलेगी। और साथ साथ अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, अपना प्रोत्साहन करने के लिए भी मेरे पास स्ट्रैटेजीज होनी बहुत ज़रूरी है कि मैं अपनी छोटी छोटी सक्सेसेस को कैसे सेलिब्रेट करूंगी
0: जी,
1: मैं खुद को कैसे एनकरेज करूंगी। ये अगर हमारे पास प्लान होता है तो हमारे लिए फेलियर्स को ओवरकम करना काफी आसान हो जाता है।
0: अपने आप से बातें करना और अपने आप को मोटिवेट करना आना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जब हमें किसी भी तरीके से निराशा का सामना करना पड़ता है, सबसे पहले तो जो हम एक गलती करते हैं वो है हम अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को कम समझना, अपने आप को कई बार कोसना भी शुरू कर देते हैं। और जो हमारे है ना कहीं जो हमारे बिलीव्स होते हैं अपने बारे में जो हेल्पफुल नहीं है, वो बिलीव्स हमारे ट्रिगर हो जाते हैं। तो ऐसे समय पर अपने आप से बात करना, अपने आप को समझाना और अपने से कंपैशन के साथ बात करना बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे मान लीजिए इस बार नहीं हो पाया, दैट डज नॉट मीन दैट आई एम अ फेलियर, दिस जस्ट इज़ अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू कम बैक इवन स्ट्रॉन्गर एंड आई एम गोइंग टू ट्राई हार्डर ना। लेकिन खुद के साथ मेरा जो रिश्ता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ के प्रयास में अगर मेरा खुद से रिश्ता खराब हो रहा है, एंड दैट्स अ वेरी बिग कॉस्ट दैट आई एम पेइंग एंड इट्स नॉट वर्थ इट। ऐसे में सक्सेस मिल भी जाएगी तो उसके साथ जो खुशी होनी चाहिए
0: वो नहीं होनी। ओके, तो खुद के साथ रिश्ते को मजबूत कैसे बनाए? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना कि अगर मैं ज़्यादा खुश हूँ या फिर ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट कर रही हूँ तो शायद मैं अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच पाऊँगी, या लोग बोलेंगे अभी कुछ मिला ही नहीं आपसे, क्यों इतना खुश है, तो ये भी हमें लगता है, तो कैसे करें?
1: तो खुशी हमारा फ्यूल है सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए। खुशी हमें वो शक्ति देती है जो हमें एक तरीके से आगे बढ़ने के लिए, खास करके उन परिस्थितियों में जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ा चैलेंज आया है, तो आपके जो अंदर की खुशी है दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू इन मूविंग फॉरवर्ड। आपने बिल्कुल सही कहा, कई बार लोग है ना ये कहते हैं कि जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लेते तब तक आपको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, राइट?
0: फॉर एन एग्जांपल, जैसे मेरे 10th में जस्ट फर्स्ट क्लास आया था तो मेरे पापा मिठाई बांट रहे थे, तो लोगों ने उनको बोला ये कोई मार्क है जो आप इसके लिए मिठाई बांट रहे हो, इतना खुश क्यों हो? तो इस प्रकार से भी सामने आते हैं चीजें।
1: जी, आपने बहुत सुंदर एग्जांपल दिया और मैं आपके फादर की है ना सराहना करने चाहूंगी, क्योंकि अगर उन्होंने उस जो आपने एफर्ट लगाया था, क्योंकि फर्स्ट क्लास लाने के लिए भी तो एफर्ट चाहिए होता है, अगर उस एफर्ट को उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया होता, उसको सराहा नहीं होता, उसको देखा नहीं होता, तो आपकी डिस्टिंक्शन लाने की हिम्मत कहीं ना कहीं जुड़ी नहीं पाती। और ये गलती हम अक्सर अपने साथ कर देते हैं कि हम एक पैरामीटर सेट करके रखते हैं कि मैं तभी खुश हो सकती हूँ इफ़ आई अचीव दिस, तब तक मुझे खुश होने का हक नहीं है। पर इनफैक्ट ये देखा गया है टाइम एंड अगेन कि जो लोग खुद के साथ कंपैशनेट होते हैं, अपने ऊपर करुणा करते हैं, अपने से प्यार से बात करते हैं, और यहाँ पे हम कोई एरोगेंस की बात नहीं कर रहे हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग चाहे मैंने कुछ अचीव किया हो या ना किया हो, आई डिजर्व कंपैशन
0: जी,
1: आई डिजर्व दैट काइंडनेस फ्रॉम माई सेल्फ। और हम अपने आप को कोई झूठा दिलासा नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब खुद से रिस्पेक्ट से बात करना, खुद से प्यार से बात करना, ये रिसर्च ने दिखाया है कि किसी भी व्यक्ति का अपने से ऐसे बात करने से उनका जो अचीवमेंट है, उनकी जो सक्सेस है, उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
0: ओके।
1: इसका मतलब अगर वो कोई चीज़ 10 साल में अचीव करने वाले थे, दे आर एबल टू डू दैट विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड दे आर एबल टू डू दैट विदाउट स्ट्रेस, है ना
0: जी।
1: सो खुद से रिश्ता मजबूत करने के लिए हम खुद से कैसे बात करते हैं, हम खास करके फेलियर्स में या फिर जब चीज़ें अपोजिट चल रही होती हैं तब हम खुद को कैसे ट्रीट करते हैं, दैट डिसाइड्स कि आपका अपने साथ रिश्ता कैसा बन रहा है
0: जी।
1: और उस रिश्ते को हम और भी कई तरीके से मजबूत बना सकते हैं
0: जी। बिल्कुल। और सक्सेस होने के मंत्र या फिर सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है, अचीवमेंट्स की डेफिनेशन भी अलग अलग हो सकती है, तो हम उसे जज ना करें फिर।
1: बिल्कुल।
0: ओके जी। एक सिचुएशन है जैसे ऑफिस में आपकी मेहनत को बार बार कोई दूसरा व्यक्ति अपने नाम से प्रस्तुत कर देता है, क्रेडिट ले लेता है, तो उस परिस्थिति में आपको शांत रहकर आगे बढ़ना भी है लेकिन अंदर ही अंदर आप परेशान भी है, तो कैसे हैंडल करें उस सिचुएशन को?
1: कई बार ऐसा होता है कि खास करके कॉर्पोरेट्स में ऐसा देखा गया है कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, है ना। और जब हम देखते हैं कि कोई हमारी चीज़ों का क्रेडिट ले रहा है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो जाता है, हमें कहीं ना कहीं ये भी लगने लगता है कि क्या कभी ऐसा होगा कि मुझे भी रिकग्नाइज किया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगेन कमिंग बैक टू जो हम बात कर रहे थे, ऐसे सिचुएशन में कई सारी फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। एक तो होता है कि मेरा जो खुद के साथ रिश्ता है वो कैसा है, उसके अलावा मैं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्पेस है उसको मैं कैसे समझ रही हूँ, क्या मेरे पास उन सिचुएशन से डील करने के लिए वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है जो मैं उस सिचुएशन को फेस कर पाऊँ। पहली बात आती है सेल्फ बिलीव की, है ना। ये एक वर्ड है कि मेरा खुद के ऊपर ट्रस्ट कि ठीक है मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और ऑफिस के डायनामिक्स को और पॉलिटिक्स को समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन अब मैं ये समझ गई हूँ कि चीज़ें यहाँ पर ऐसे काम करती हैं
0: जी,
1: राइट। ऐसे में मेरा खुद के ऊपर भरोसा रखना, अपनी क्रिएटिविटी पे, अपनी स्किल पे, अपनी कैपेसिटी पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने सामने वाले के बिहेवियर को या फिर ऑफिस में जो पॉलिटिक्स चल रहा है उसको देखते हुए अगर मैंने अपना एफर्ट लगाना बंद कर दिया तो मैं कहीं भी नहीं पहुंच पाऊंगी
0: जी,
1: राइट। एंड द सिचुएशन हैज़ मैनेज्ड टू ओवर पावर मी, मेरा जो इंटरनल पावर है वो बहुत डिप्लीट हो चुका है और सिचुएशन और रिलेशनल डायनामिक्स मेरे ऊपर हावी हो चुके हैं। तो ऐसे में खुद का अपने ऊपर विश्वास फिर से जगाने की बहुत ज़रूरत है। और ऐसे सिचुएशन में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की है, वो है कि जब हम लोगों के बिहेवियर को देखते हैं कई बार हम उसे पर्सनली ले लेते हैं
0: जी,
1: हम ये सोच लेते हैं कि ये मेरे साथ इसलिए ऐसे बिहेव कर रहे हैं क्योंकि मैं क्रेडिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं वैल्यूएबल नहीं हूँ, बॉस ने मेरी जगह उसकी बात पे ध्यान दिया, मे बी बिकॉज आई एम नॉट टैलेंटेड इनफ। तो ऐसे टाइम पे सेल्फ डाउट क्रीप इन होना बहुत कॉमन है
0: जी,
1: राइट। तो अपने आप को उससे प्रोटेक्टेड रखने के लिए ये जांच करना और ये समझना बहुत जरूरी है दैट व्हाट आर माय बिलीव्स अबाउट माय सेल्फ, मेरा खुद का खुद के ऊपर कितना भरोसा है, दैट इज नंबर वन। उसके अलावा अगर मैंने ये समझ लिया है कि सामने वाले का जो संस्कार है, उसका जो बिहेवियरल पैटर्न है, वो यही है
0: जी।
1: तो उस मोमेंट में अगेन परखने की शक्ति को यूज करके मुझे सही डिसीजन लेना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम से जब मैं कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रही हूँ या फिर किसी चीज में पिच इन कर रही हूँ, राइट, मैं किस तरह से अपनी चीजों को कम्युनिकेट करूं ताकि जो मैंने आइडिया दिया है मुझे उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट, या फिर क्रेडिट भी नहीं कहेंगे बट अक्नॉलेजमेंट मिल सके
0: जी,
1: है ना,
0: कोई उसका मिसयूज ना करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई बार हम आइडियाज का क्रेडिट या एक्नॉलेजमेंट इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि हम चाहते हैं हमारा नाम हो, बट समवेयर वी वुड लाइक टू टेक द ओनरशिप ऑफ द आइडिया दैट वी हैव गिवन, कि ये मैंने आइडिया प्रेजेंट किया है और मैं जेन्युइनली इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती हूँ, राइट, दैट इज समथिंग दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ जॉय या इज माई जेन्युइन इंटरेस्ट। सो सेकेंड थिंग आती है कि मैं अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कैसे कर रही हूँ, एम आई कम्युनिकेटिंग इट टू द राइट पीपल, राइट, दैट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक बार मैंने परख लिया कि सामने वाले का ये स्वभाव है तो मुझे फिर अपने डिसीजन मेकिंग को ऑल्टर करना पड़ेगा
0: जी।
1: और तीसरी जो बात आती है वो है ये समझना कि ग्रोथ के प्रोसेस में हमेशा चीजें मुझे डायरेक्टली जैसा मैं चाहती हूँ हो सकता है वैसी ना मिले
0: जी।
1: कई बार सिचुएशंस हमारे सामने ऐसे प्रेजेंट होती हैं जिसमें हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो चैलेंज होती हैं, वो क्वेश्चन में आती हैं। सो क्या मेरे लिए उस वक्त ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आइडिया मेरा आइडिया होके प्रेजेंट हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन को या कलेक्टिव को उससे बेनिफिट हो
0: जी,
1: इन दैट मोमेंट व्हाट इज माय प्रायोरिटी। तो ये दो या तीन चीजें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स और ऑफिस डायनामिक्स को नेविगेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। कई बार हमारे पास बहुत यंग लोग आते हैं जिन्होंने इन्हीं रीजंस की वजह से हर दो या तीन महीने में जॉब्स चेंज की हैं और डिस्पाइट बीइंग रियली टैलेंटेड एंड डिस्पाइट बीइंग वेरी इंटेलिजेंट एंड शार्प, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को उस समय रेगुलेट या मैनेज नहीं कर पाए, तो जब उनका सीवी हम देखते हैं या वो अपने सीवी को कहीं लेके जाते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि अरे ये तो सिर्फ दो या तीन महीने एक जॉब में रह पाया। इट्स नॉट बिकॉज दे आर नॉट इंटेलिजेंट, उनका आई क्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन EQ यानी कि इमोशनल कोशेंट, कठिन परिस्थितियों में अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रख पाना
0: जी।
1: ये क्योंकि क्षमता कम है तो उसकी वजह से कई बार उनकी सक्सेस में, उनकी ग्रोथ में ये एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। सो अगर हम अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखना सीखें, खास करके गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को, तो उससे कहीं ना कहीं हम अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ बिल्ड कर पाते हैं
0: जी। जी, तो इसका मतलब कि आपको अपने इंटेंशन देखना होगा जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने से पहले कि क्या इंटेंशंस हैं
1: जी,
0: जी। ऐसा कोई सिचुएशंस जैसे आपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किया, कुछ ऐसे सिचुएशंस आप शेयर करना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल हो और जिसको आपने बेहतर तरीके से हैंडल किया होगा और सामने वाले को भी उसका फायदा हुआ हो
1: जी। सो कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं, मुझे याद आता है हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे और नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट था, बहुत सारे हमने स्पीकर्स को, गेस्ट्स को बाहर से बुलाया हुआ था
0: जी।
1: और हमारा एक प्रोग्राम रन होता था, तो उस समय कई सारे ऐसे मैं कहूँगी कॉलीग्स या स्टाफ मेंबर्स थे जिनको बहुत इंटरेस्ट नहीं था कि हमारा डिपार्टमेंट ये प्रोजेक्ट कर रहा है, और वो एक फीलिंग होती है ना कई बार कि ये आपका काम है, दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद अस। तो जो सपोर्ट और जो एक कमराडरी हमें उनसे जिसकी उम्मीद थी, वो कहीं ना कहीं हमें उनसे उसका ऑपोजिट बिहेवियर हमने एक्सपीरियंस किया। पर उस समय में मैंने अपने अंदर जो एक चीज नोटिस की और मैं इसका पूरा श्रेय ना जो मेडिटेशन का अभ्यास मैं करती हूँ उसको देना चाहूंगी कि उस पूरे मुझे लगता है 2 या 3 महीने का ड्यूरेशन होगा जब मेरा जो फोकस था वो प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने पर कंप्लीटली उसी पर मेरा ध्यान था और इन दैट मोमेंट नथिंग एल्स मैटर्ड.
0: जी
1: प्रोग्राम अच्छे से होना चाहिए. हम लोगों को बुला रहे हैं बाहर से ताकि जो हमारे सिटी के लोग हैं उनको बेनिफिट मिल पाए. दैट वाज आवर मेन इंटेंशन. तो हमारा जो फोकस था वो इतना शार्प था प्रोग्राम के ऊपर और प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में कि ये जो साइड सीन्स होते हैं ना जो आसपास चीजें चल रही होती हैं लोगों का बिहेवियर या फिर वो सपोर्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं उन बातों पर हमने अपना ध्यान नहीं लगाया अपना टाइम उस पर वेस्ट नहीं किया.
0: जी.
1: क्योंकि जब आपका पूरा फोकस अपनी लाइफ में अपने करियर में अपने पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ने का होता है तो ये सारे जो साइड में चीज़ें हो रही होती हैं इस पर ना केवल इट्स इम्पॉर्टेंट टू नॉट गिव टाइम टू इट लेकिन मन में भी उनके लिए विचार चला के संकल्प चला के और कहीं ना कहीं यू नो क्वेश्चन करके कि ऐसा क्यों कर रहे हैं क्या इनका इंटेंशन होगा इन सारी चीज़ों पर जब हम अपना टाइम और अटेंशन नहीं लगाते हैं तो हम अपने एनर्जी को और टाइम को और फोकस को कंजर्व कर पाते हैं और उसको रीडायरेक्ट कर पाते हैं एक ऐसी डायरेक्शन में जहाँ पे एक्चुअली हमारा प्रोग्रेस है. सो दैट डिस्टिंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी लाइफ में फिलहाल क्या जरूरी है.
0: जी ओके. अभी बात करते हैं कुछ रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में क्योंकि आजकल तो ब्रेकअप्स तो आम बात हो गई है लेकिन कई बार ऐसे होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी एकदम हर्ट होती है और प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसा है कि आजकल फिजिकल बहुत जल्दी हो जाता है और खासकर लड़कियां बहुत इमोशनल डिपेंडेंट भी हो जाती है कई बार. फिर जब ब्रेकअप होता है और उन्हें लगता है कि क्या मैं एक सिर्फ टॉय थी जो उन्होंने मुझे यूज़ किया और छोड़ दिया तो उसके कारण हम फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं बहुत सारे ट्रॉमा से हम गुजरते हैं. तो उस सिचुएशन में रेजिलेंस को यूज करते हुए बाहर कैसे निकले या कौन से ऐसे और वैल्यूज हैं जो हम ऐड कर सकते हैं.
1: जी आई थिंक आपने जो सिचुएशन बताई है दैट इज वेरी वेरी कॉमन और कई बार हम अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के साथ बात करते हैं हु टेंड टू फेस सिमिलर सिचुएशंस. मैंने ये नोटिस किया है कि सबसे पहले तो जो चीज़ें मैंने कॉमन देखी हैं उन लोगों में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है इज दैट द वेरी रीज़न दैट दे गॉट अट्रैक्टेड टू या पुल्ड टूवर्ड्स समवन हु वॉज इमोशनली अनअवेलेबल या फिर इमोशनली वो इतने इन्वेस्टेड नहीं थे
0: जी
1: इज बिकॉज समवेयर देयर वाज अ डीप सेंस ऑफ लोनलीनेस एंड सैडनेस विद इन. जब हमारा जो अंदर एक कहीं ना कहीं अकेलापन होता है क्योंकि आज जो हम जिस एज में रहते हैं जिस मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि हमें एक दूसरे से कनेक्ट करने का एक दूसरे के साथ हैप्पीनेस शेयर करने का जॉय शेयर करने का सैडनेस शेयर करने का वक्त नहीं मिलता है और ऐसे में हम अपने आप को इतना अकेला महसूस करते हैं कि कहीं से भी थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट हमें लगता है या इंटरेस्ट लगता है कि आ रहा है तो हम तुरंत उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. कई बार जब हम थेरेपी में काउंसलिंग में इस पर चिंतन करते हैं डिस्कशंस करते हैं तो अक्सर ये पाया जाता है कि द पर्सन दैट दे वर अट्रैक्टेड टू और दे वांटेड टू टॉक टू और कनेक्ट विथ वाज नॉट समवन दैट दे एक्चुअली फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग हो सकता है उस व्यक्ति में एक या दो ऐसी चीज़ें थीं जिन्होंने बहुत ज़्यादा आकर्षित किया होगा। मान लीजिए उन्होंने थोड़ा अटेंशन दिया या थोड़ा सा वैलिडेशन दिया, और उसके ऊपर हम कई बार क्या होता है कि वो हमने देखा है कि वो अट्रैक्शन बिल्ड हो जाता है। तो ऐसे में ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका सॉल्यूशन अब ये नहीं है कि आई हैव टू नाउ मूव टूवर्ड्स अ बेटर रिलेशनशिप विद सम अदर पर्सन। सबसे पहले तो जब ऐसा कुछ हुआ है तो अपने हर्ट को, अपने ग्रीव को और जो अंदर लॉस की फीलिंग है उसको एक्नॉलेज करना और उसको ठीक तरीके से हील कैसे करना है उस पे हमें अपना फोकस लेके जाना है। क्योंकि अक्सर जब ऐसा होता है तो खास करके विमेन, दे फाइंड देमसेल्व्स कम्प्लीटली इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि ये क्या हो गया
0: जी?
1: और इतना बड़ा सिचुएशन या इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे हो गया मेरे साथ। सो उस शॉक से, उस ग्रीफ से उभरने में थोड़ा वक्त लगता है। और ऐसे में अगेन व्हाट्स वेरी हेल्पफुल इज टू रिकग्नाइज दैट कहीं ना कहीं मेरा जो पुल था या अट्रैक्शन था उस व्यक्ति के तरफ वो इसलिए था क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अकेला और लोनली महसूस कर रही थी। और वैसे तो थेरेपी में काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं और हम सिस्टमैटिकली इस पे काम करते हैं, लेकिन अगर ब्रीफ में मैं बताऊं तो अपने इमोशंस को हमें कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। चाहे फिर वो खुद से बात करना हो, जर्नलिंग करना हो, या फिर हम थेरेपी या काउंसलिंग में जाके भी ये सीख सकते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। क्योंकि हम अपने इमोशंस को जितना बॉटल अप करते हैं, जितना निग्लेक्ट करते हैं, हमारे इमोशंस, इमोशन इज नथिंग बट एनर्जी इन मोशन, राइट? सो आपके उसको दबाने से या फिर उसको निग्लेक्ट करने से वो इमोशन चला नहीं जाएगा, बल्कि वो अंदर बिल्डअप होता जाता है और एक बहुत ही डिफिकल्ट फॉर्म ले लेता है एज टाइम पासेस। सो मैंने जो डेफिनेशन ऑफ ट्रॉमा भी सीखा है अपने टीचर से, वो ये सीखा है दैट ट्रॉमा इज एनीथिंग दैट डिसकनेक्ट्स यू फ्रॉम योर ओन एसेंस। हमारे अंदर जो परमात्मा ने इतनी सारी क्वालिटीज दी हैं, है ना, हमारे अंदर जो इतनी सारी विशेषताएं हैं, जब ऐसा कुछ होता है तो हम उन विशेषताओं को देख नहीं पाते हैं। सामने वाले ने मुझे जिस नजरिए से देखा, मान लीजिए सामने वाले ने, जिसे आपने कहा ना एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिफाई किया या एक टॉय की तरह देखा, हम अपने आप को भी कहीं ना कहीं उसी लेवल पर लाकर अपनी वैल्यू को उतना ही समझ लेते हैं जितना उस व्यक्ति ने समझा। और ऐसे टाइम पर अपनी वैल्यू को फिर से ढूंढने के लिए ग्रीफ को प्रोसेस करने के साथ साथ मुझे अपने आप को वक्त देना पड़ेगा, रोज अपने लिए वक्त निकालना पड़ेगा जिसमें मैं अपनी क्वालिटीज को, अपनी वैल्यूज को और मुझे क्या वैल्यूबल बनाता है उन चीजों को हम आइडेंटिफाई करें।
0: ओके, लेकिन बार बार फिर वो सिचुएशंस, वो जो हर्ट है वो याद आती है
1: जी,
0: तो उसे मतलब कितना टाइम चाहिए
1: जी,
0: मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये बार बार संकल्प में आते हैं
1: जी,
0: तो कितना धैर्यता रखना है। सबसे पहला सूत्र तो क्या है, मतलब 24 घंटे के अंदर अगर ऐसा हुआ, 24 घंटे के अंदर पहला स्टेप क्या उठाना चाहिए
1: जी? सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि इंसान को शॉक लग जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति जो है वो कई बार नंबर ब्लॉक कर देते हैं, कई बार वो बिल्कुल कांटेक्ट खत्म कर देते हैं। तो ऐसे में कई लोगों को एंजाइटी होने लगती है और वो जो स्टेट ऑफ शॉक है उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज टू स्टेबलाइज योरसेल्फ, और उस स्टेबलाइजेशन के लिए अगर पॉसिबल है कोई अगर ट्रस्टेड व्यक्ति है
0: जी
1: आपकी लाइफ में, चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर कजिन हो या सिबलिंग हो, फ्रेंड हो, जिसके ऊपर आपको यू नो बहुत ज्यादा ट्रस्ट है इफ पॉसिबल उनके साथ शेयर करना कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है, क्योंकि देन यू आर नॉट अलोन विद दैट ग्रीफ। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ऐसे समय में सेल्फ हार्म रिलेटेड थॉट्स आने लगते हैं, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, और इसलिए उस समय पे अपने आप को पहले ही हम लोनलीनेस से गुजर रहे हैं और अपने आप को अकेला कर देना इज नॉट एडवाइजेबल। ऐसे समय पे किसी ट्रस्टेड व्यक्ति को रीच आउट करना जरूरी है, और अगर कोई ट्रस्टेड व्यक्ति नहीं समझ में आ रहा है, देर आर हेल्पलाइन नंबर्स दैट स्पेसिफिकली वर्क विथ क्राइसिस, और हम दर्शकों से हेल्पलाइन नंबर्स शेयर भी कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल टेलीमानस इज अ हेल्पलाइन जो निमहांस के द्वारा बनाई गई है, विच इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव वे ऑफ टॉकिंग टू समवन, क्योंकि फोन के उस तरफ एक थेरेपिस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट है जो आपकी बात को नॉन जजमेंटली समझेंगे और सुनेंगे
0: जी।
1: और आपको एक रास्ता बताएंगे कि आप चाहे आप शॉक से गुजर रहे हैं, चाहे आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, तो उससे कैसे कोप करना है वो आपको समझाएंगे। अल्टरनेटिवली एक ट्रस्टेड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को रीच आउट करना भी इज अ वेरी गुड वे टू गो अबाउट दिस। उस समय पर ये करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस समय पर करेज, यू नो, समवेयर टैपिंग इनटू योर ओन करेज एंड अलाउइंग योर सेल्फ टू फील व्हाट यू आर फीलिंग इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि ग्रीफ जो होता है, खास करके इस तरह का लॉस जहां पर व्यक्ति जिंदा है लेकिन उन्होंने आपके साथ एकदम कट ऑफ कर दिया है, या फिर आपको रियलाइज हुआ कि उन्होंने चीट किया है, ऐसे समय पर इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू गिव योर सेल्फ स्पेस टू गो थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। हो सकता है कुछ समय शॉक रहे, उसके बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, डिसबिलीफ भी होता है कि
0: इन सब सिचुएशंस को और थॉट्स को, इमोशंस को हमें एक्सेप्ट करना है।
1: एक्सेप्ट इज अ वेरी लेटर स्टेज, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, खास करके फॉर अ फीमेल, फॉर अ गर्ल, कहीं ना कहीं, है ना, जैसे हम कहते हैं कि पैर के नीचे से जमीन सरक जाती है, ऐसा उनको इतने लेवल का भी शॉक लग सकता है। तो उस समय पर एक्सेप्टेंस की बजाय वी यूज द टर्म मेकिंग स्पेस,
0: ओके,
1: राइट। मेकिंग स्पेस का क्या मतलब होता है, मैं ये एक्नॉलेज कर रही हूँ कि हाँ इस वक्त मुझे रोना आ रहा है,
0: तो रो लेना चाहिए,
1: तो रो लेना है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं उसे उल्टा सीधा बोलूं, भले मैं उससे बात नहीं कर पा रही हूँ, बट आई कैन एक्सप्रेस दैट एंगर आइदर इन राइटिंग। सो कई बार हम रेकमेंड करते हैं कि आप यू नो यू कैन शाउट इनटू अ पिलो, स्क्रीम इनटू अ पिलो, और यू कैन डू सम फिजिकल मूवमेंट जिससे आपका जो एंगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कहीं ना कहीं उसको स्पेस मिल सके। अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टेक्निक उस टाइम पे जो हम यूज करते हैं, जो जिसको हम कहते हैं ग्राउंडिंग एंड स्टेबलाइजेशन। ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि बार बार मेरे थॉट्स जाएंगे सिचुएशन की तरफ, पर मुझे उसको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आना पड़ेगा जी, कि ठीक है ये हुआ है, इट्स ओके, आई विल नीड माय टाइम टू कोप विद दिस, बट मुझे अपना ध्यान प्रेजेंट में लेकर आना है। सो फॉर दैट आई कैन, इफ आई वांट टू यू नो जस्ट कनेक्ट बैक विद माय ब्रेथ, या फिर हम एक टेक्निक सिखाते हैं 5-4-3-2-1। 5-4-3-2-1 इज 5 थिंग्स आई कैन सी, 4 things I can hear, 3 things I can touch, 2 things I can smell, and 1 thing I can taste. इसको कई बार grounding practices करना है ना, जैसे एक और breathing practice है 4-7-8, जिसमें हम 4 seconds तक सांस लेते हैं, 7 second तक hold करते हैं और 8 second तक छोड़ते हैं। तो बार बार अपना ध्यान present में लेके आना है, क्यों? क्योंकि present moment में I am, let's say, in my room, या I am in my space. Physically, मुझे सबसे पहले अपने आप को डेंजर से दूर लेकर जाना है, right? So, prioritizing physical safety and then moving towards grounding and इमोशनल सेफ्टी
0: जी,
1: और उस मोमेंट में चाहे जितना आपका मन कर रहा हो अपने आप को आइसोलेट या डिस्कनेक्ट करने का, ट्राई टू नॉट डू दैट, राइट? सो मेकिंग स्पेस फॉर योर इमोशंस इज अलाउविंग योर इमोशंस. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, राइट? सो ऐसे में आप उसको स्पेस तो दे रहे हो लेकिन उसको कंटेन कैसे करना है वो आपको नहीं पता. इसलिए वर्किंग विद अ प्रोफेशनल रियली हेल्प्स, राइट? और अपने थॉट्स को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है.
0: ओके जी, तो निमांस का नंबर आप शेयर कर सकते हैं?
1: जी, सो टेलीमानस का टोल फ्री नंबर है, राइट? इट इज 1-800-891-4416. या फिर ऑल्टरनेटिवली आप 1-4416 पर भी कॉल कर सकते हैं. दिस इज अ 24/7 हेल्पलाइन एंड ये बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. और क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है थ्रू निमहांस, तो जो उनके वॉलंटियर्स हैं दे आर रियली ट्रस्टेड वॉलंटियर्स. सो यू कैन रीच आउट टू देम एट एनी टाइम ऑफ द डे एंड समवन विल पिक अप योर कॉल.
0: जी बिल्कुल. तो दोस्तों अगर कोई भी परेशानी है, कुछ भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं तो आप इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इसका टोल फ्री नंबर. तो कुछ ऐसे सुइसाइडल वाला सिचुएशंस आप शेयर करना चाहेंगे?
1: सो कई बार ऐसी सिचुएशंस जब खास करके हम स्टूडेंट्स के साथ काम करते थे तो ऐसी सिचुएशंस बहुत हम फेस करते थे. ऑलमोस्ट वंस अ वीक तो कोई ना कोई ऐसा केस आता था. और मेरा जो इनिशियल स्टांस होता था इस पे वो होता था कि मैं उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती थी कि अच्छा अब क्या किया जाए, हाउ टू यू नो फाइंड द सोल्यूशन. लेकिन जो सुसाइडल आइडिएशन होता है उसके लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी देर आर सम ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ऐसी सेल्फ हार्म या फिर सुसाइडल आइडिएशन को यू नो प्रोपेल करते हैं या क्रिएट करने में जिम्मेदार होते हैं. व्हाट वी कॉल एज द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टुवर्ड्स सुसाइडलिटी. और इसमें तीन चीज़ें मुख्य देखी गई हैं. एक है वर्थलेसनेस, दूसरा है होपलेसनेस और तीसरा है हेल्पलेसनेस, है ना? यानी कि अपने आप को वर्दी नहीं समझना कि मेरी कोई वैल्यू है, मेरी कोई वर्थ है. जब हम अपनी वर्थ को कम आंकते हैं या अपने आप को वर्थलेस महसूस करते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज. उसके अलावा निराशा, यानी कि होपलेस हम जब महसूस करते हैं कि इस सिचुएशन में कोई होप ही नहीं है
0: जी,
1: राइट? दैट अगेन इज़ अ वेरी बिग फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस. और इस वजह से बहुत ज़रूरी होता है कि हम उम्मीद को ज़िंदा रखें
0: जी.
1: कि मेरे सामने जो परिस्थिति आई है, चाहे इस वक्त मुझे कितनी भी वो पहाड़ की तरह लग रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर एक आशा की किरण जगाए रखना कि मैं ना केवल इसको फेस कर पाऊंगी लेकिन एक ऐसा दिन आएगा जब मैं बेहतर महसूस करूंगी. वो होप जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है. और तीसरा जो पिलर है या तीसरा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है उसका, वो है हेल्पलेसनेस, यानी कि अपने आप को असहाय महसूस करना कि देर इज नो वे दैट आई कैन बी हेल्प्ड. लेकिन हम कितनी भी कठिन सिचुएशन हो, जब हम हेल्पलेस फील करने लगते हैं और लंबे समय तक हेल्पलेसनेस में रहते हैं, तो हमारे अंदर जो जीवन की जो जीवन जीने की जो एक उम्मीद है, जो एक वाइटालिटी है जिसको हम कहते हैं ना लाइफ फोर्स, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश होता जाता है, ख़त्म होता जाता है. इसलिए एक चीज़ हमेशा

0: सो इन तीन चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं जो सुसाइडल आइडिएशन है या सेल्फ हार्म रिलेटेड आइडिएशन है उससे हम बेटर कोप कर पाते हैं. लेकिन सुसाइडल आइडिएशन को कभी भी हमें हल्के में नहीं लेना है. वी हैव टू गिव इट अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस बिकॉज नॉट जस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेफ्टी बट बिकॉज सुसाइडल आइडिएशन इज एन इंडिकेशन कि व्यक्ति बहुत समय से जूझ रहा है और उसे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं. सो इट्स लाइक द लास्ट रिजॉर्ट. मुझे याद आता है एक क्लाइंट थी जो बहुत समय से एंड शी इज अ ब्रिलियंट पर्सन यंग है वो बहुत ही ब्रिलियंट है अपने फील्ड में बट बहुत टाइम से करीब एक डेढ़ साल था कि उनको बार बार ये आइडियाज आते रहते थे. और जब कोई बड़ी सिचुएशन आती थी मान लीजिए जैसे ब्रेकअप हो गया या फिर जॉब में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो ये उनकी जो टेंडेंसी है बहुत बढ़ जाती थी
1: जी.
0: और हमने सब कुछ ट्राई किया हुआ था. उन्होंने अलग अलग तरह से मेडिसिन भी ट्राई की हुई थी. एक दिन ऐसे ही मैं उनसे बात कर रही थी उनके थेरेपी सेशन में तो अंदर से मुझे ऐसे लगा कि मैं इनसे क्या कहूँ कि इनको जीवन के प्रति और अपने प्रति एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद या एक प्यार इनके मन में जाग जाए. और ऐसे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे मुंह से निकल गया. मैंने उनको देख के कहा और बहुत सीरियसली उनको देख के कहा कि यू नो यू ऑल्सो डिजर्व टू बी हैप्पी. आई डोंट नो इफ यू एवर थॉट अबाउट दिस बट You have the right to be happy and you owe it to yourself. आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने लाइफ में खुश रहने के और अपने आप को खुश महसूस कराने के लिए एफर्ट डालो. और पता नहीं क्या हुआ उन्होंने उस बात को या शायद उस इंटेंशन को बहुत उनके वो दिल तक पहुंच गया एंड शी बिगैन टू क्राई. बहुत जोर जोर से रोने लगी. उन्होंने मुझसे बात कही कि बचपन से लेके आज तक मुझसे बस यही कहा गया था कि तुम्हें मार्क्स लाने हैं तुम्हें जॉब करना है तुम्हें सक्सेसफुल बनना है लेकिन मुझसे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हें खुश रहने का और खुशी महसूस करने का भी हक है. यू हैव टू ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स हैप्पीनेस. और उस दिन के बाद से टचवुड आज कई महीने हो गए उस बात को उनको कभी ऐसा थॉट फिर से नहीं आया. इनफैक्ट अब वो मुझे हमेशा कहती हैं कि अब मुझे जीना है
1: जी.
0: और उन सालों के लिए भी आई हैव टू कवर अप फॉर द इयर्स दैट आई हैव नॉट लिव्ड. सो आई वांट टू लिव मोर इन द इयर्स दैट आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी. सो ये जो बात है ना कि आई डिजर्व टू बी हैप्पी मेरा भी हक बनता है कि मैं खुश रहूं. अपने आप को ये याद दिलाना बहुत जरूरी होता है. लाइफ में हम इतना कुछ अचीव करना चाहते हैं कितना कुछ बनना चाहते हैं लेकिन हैप्पी भी बन सकते हैं ये हम कभी नहीं सोचते हैं.
1: राइट जी. तो ये मेरा हक बनता है कि मैं खुश रहूं अपने आप को खुश रखूं. तो अगर इस नोट को भी हम समझ ले इसको ही सूत्र बना ले तो कोई भी सिचुएशंस हो उसे डील करने की ताकत आ जाती है और सॉल्यूशंस भी हमें मिलने लगते हैं. अभी तो थोड़ा वक्त हो रहा है कि इस प्रोग्राम को हम यहीं पर समाप्त करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसा है कि कई बार सोशल मीडिया पर या फिर बड़े प्लेटफॉर्म पर हमें एम्बैरेसमेंट की फीलिंग्स आती है. फॉर एन एग्जांपल अभी स्पोर्ट्स चल रहा है तो कुछ प्लेयर्स हैं जो जीत रहे हैं कुछ हैं जो बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं तो इसका सामना कैसे करेंगे क्योंकि पूरा पब्लिक देख रहा है उसको है ना 100 करोड़ से ज़्यादा जनता देख रही है उनको. तो ऐसे सिचुएशंस में कैसे डील करें
0: जी. जो एक स्पोर्ट्स पर्सन का माइंडसेट होना चाहिए या आइडियली जिसको हम कहते हैं स्पोर्ट्समैन का जो माइंडसेट होता है दैट इज फोकस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस एंड हाउ मच आई कैन हाउ कैन आई गिव माय बेस्ट है ना. आपने बिल्कुल सही कहा. अब आज सोशल मीडिया का ज़माना है थिंग्स आर गोइंग वायरल रील्स आ जाती हैं तुरंत मीम्स बन जाते हैं और एक इंसान को एक प्लेयर के दर्जे से निकाल कर एक मीम का दर्जा सिर्फ मिल जाता है ना.

0: बिकम्स अ जोक. प्लेयर्स के साथ या जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके साथ जब हम काम करते हैं तो हमने ये चीज़ या जब उनसे बातें करते हैं तो ये समझा है कि इट रियली ऑल बॉयल्स डाउन टू देयर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ. मेरी वैल्यू एक गेम के ऊपर या नीचे जाने से मेरी वैल्यू कम नीचे नहीं होती है. देर आर गोइंग टू बी सम डेज दैट विल बी गुड डेज एंड सम डेज दैट विल बी नॉट वेरी गुड डेज. लेकिन जो बदल नहीं रहा है वो है मेरी वैल्यू, मेरी वर्थ. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. उसके अलावा अभी तक जो रिसर्च हुई है उसमें ये पाया गया है कि शेम या एम्बैरेसमेंट कहो, उसका जो एंटीडोट है वो सेल्फ लव भी नहीं है और सेल्फ केयर भी नहीं है, बल्कि वो है सेल्फ कंपैशन. और सेल्फ कंपैशन में तीन एलिमेंट्स होते हैं. उसमें से जो एक एलिमेंट जो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है वो है कॉमन ह्यूमैनिटी, यानी कि अपने आप को ये याद दिलाना दैट आई एम अ फ्लॉड ह्यूमन बीइंग. हर एक व्यक्ति कभी ना कभी, चाहे कितना भी प्रयास कर ले, चाहे कितनी भी अच्छी प्लानिंग करे या थरली अपना काम करे, देर आर मैनी फैक्टर्स जो उस चीज़ को अफेक्ट करते हैं. एंड कॉमन ह्यूमैनिटी सेज दैट वी ऑल हैव कॉमन एक्सपीरियंसेस लाइक फेलियर, लाइक डिसअपॉइंटमेंट्स. तो जो इमोशन मैं महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट इमोशन हो, आई एम नॉट अलोन इन दैट एक्सपीरियंस.
1: जी.
0: और एम्बैरेसमेंट या फिर एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इस दुनिया के हर एक व्यक्ति ने एक्सपीरियंस किया एट सम पॉइंट इन सम फॉर्मेट. सो दैट इमीडिएटली टेक्स ऑफ द बर्डन ऑफ आइसोलेशन, है ना, कि सिर्फ मैंने अकेले ने ये एक्सपीरियंस किया है. हाँ, अगर मैं एक स्टेडियम में हूँ और हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, मे बी द नंबर ऑफ आईज ऑन मी आर मोर.
1: जी.
0: लेकिन जो कोर इमोशन है शेम का या एम्बैरेसमेंट का, वो तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है. सो अपने आप को ये याद दिलाना दैट यू नो दिस इज व्हाट इट इज टू बी अ ह्यूमन. देर आर गोइंग टू बी डेज व्हेन आई विल एंड अप यू नो नॉट सक्सीडिंग. और एम्बैरेसमेंट का एक और जो से अगर उभरने के लिए एक और जो फैक्टर काम में आता है वो है नॉट टू टेक योर सेल्फ सो सीरियसली. राइट. खुद पर हंस पाना और है ना, लाइफ अगर जोक कर रही है तो उस जोक के ऊपर हंस पाना, ये भी रेजिलियंस की एक के अंदर एक कला होती है.
1: जी.
0: जो हमें चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली और जब हम उसको बहुत जोर से पकड़ के रखते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट करने में कंट्रीब्यूट करती है. लेकिन उस मोमेंट को लेट गो कर पाना, ठीक है मुझे एम्बैरेस्ड फील हुआ बट दिस इमोशन इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर.
1: जी.
0: राइट. तो दिस टू शैल पास. उस एटीट्यूड के साथ अगर उस मोमेंट में हम यू नो इफ यू आर एबल टू लाफ इट ऑफ देन इट रियली हेल्प्स. एंड अगेन being kind to yourself, right? Jee. That's incredibly valuable.
1: Okay. जी, thank you so much हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए. तो जाते जाते सिर्फ एक मंत्र क्या बताना चाहेंगे, जिंदगी की कोई भी सिचुएशन हो कैसे उभर के आ सकते हैं?
0: As long as I am connected to my own essence and as long as I am making effort to remain connected to my own self and to my qualities, no situation can create a lasting impact on me. अगर मैं अपने essence से, अपनी qualities से, अपनी values से जुड़ी हुई हूँ, situations आएंगी और थोड़े time के बाद चली जाएंगी. लेकिन अगर मैं अपने essence से disconnect हो रही हूँ तो फिर सिचुएशंस मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है या करेंगी. राइट. सो अपने एसेंस से जुड़े रहना इज द मोस्ट वैल्यूएबल लेसन दैट आई अबाइड बाय.
1: ओके जी बिल्कुल. तो दोस्तों अपने जो वैल्यूज है, अपने एसेंस है, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है, उसे नोट डाउन करना भी जरूरी है. कभी भी जरूरत पड़े तो जैसे आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या फिर अपने मन में उसे सोच सकते हैं. तो स्वरूति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए.
0: बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत मदद मिलेगी इससे.
1: जी तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आपको बहुत सारे टिप्स जरूर मिले होंगे तो हमें कॉल करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर 9414-15-15-15 इस नंबर पर. सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM. मैं हूँ आरजे शुभा. यहीं पर रुकते हैं. नमस्ते.

0: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राजेंद्र कुमार वर्मा जी हमारे साथ है श्रीनगर से। आप जो श्रीगंगानगर से आप हमारे साथ जुड़े हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और विशेष कलाम एजुकेशन आश्रम चला रहे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। और इसके साथ में डीडी पारिक जी जर्नलिस्ट है श्री गंगानगर के आप, और माउंट आबू भी एक बार आपसे मुलाकात हुई है तो फिर से दोबारा मुलाकात हो रही है, अच्छा लग रहा हमें। और एक हमारे आर्टिस्ट है खास ऋतुराज शर्मा जो आसाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी आज के इस जी जी। तो आज हम लोग जो है अपना अपना एक अनुभव की लेन देन करेंगे और साथ ही साथ जिस विषय को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं उसमें किस तरह की नवीनता हम लोग कर सकते हैं, क्रिएटिविटी किस तरह से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में जहां पर रोज नई नई चीजें हमारे बीच में आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने प्रोफेशन को भी नए तरीके से समझना या उसमें कुछ वैल्यू एडिक्शन करने की जरूरत पड़ती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम स्टेबल रहते हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो शायद हम लोग अपडेट करने की जरूरत पड़ जाती है। जिस तरह से मोबाइल आप यूज करते हैं तो नए फीचर्स के लिए आपको मोबाइल को अपडेट करना पड़ता है, अगर नहीं करते हैं तो नए फीचर्स आप नहीं यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में आज हमारा प्रोफेशन है या जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं नए फीचर्स की जरूरत पड़ती है, नए वैल्यू एडिक्शन की जरूरत पड़ती है। तो आइए सबसे पहले आप आज के इस प्रोग्राम में जिस तरह से हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो मैं ऋतुराज जी को कहूंगा कि एक गीत के साथ शुरू करते हैं, हमारे दोनों मेहमानों का स्वागत करें, राजेंद्र वर्मा जी एंड डीडी पारिक सर के स्वागत में गीत सुनाएं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऋतुराज जी बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
1: ठीक है सर। ठीक है
0: जी जी।
1: ओके सर, मैं एक गाना सुनाने वाला हूँ आपको। वो किशोर कुमार जी का ही। ओके सर, मैं सुनाता हूँ।
0: जी जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर बातें मुलाकातें, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अच्छी बातें हो कि कमेंट सेक्शन में आप जुड़ के हमारे साथ सवाल भी पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो आपके मन को जरूर स्वागत है, आप कमेंट सेक्शन में अपने नाम

जब घुंघरों सी बजती है बूंदे अरमां हमारे पल के ना मूंदे, जब घुंघरों सी बजती है बूंदे

0: Thank you so much.
1: थैंक यू, थैंक यू सो मच ऋतुराज जी. बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया, बहुत ही अच्छा लगा. एंड ये चंद तालियां आपके लिए, शुक्रिया. चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और मैं आप सभी को जोड़ना चाहूंगा, खास सभी मजे से. राजेंद्र वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में, बातें मुलाकातें कार्यक्रम में. और आशा करूंगा कि आप लगा होगा और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ और बातें भी शेयर कीजिए. जी
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए. और मैं श्री गंगानगर से हूँ, कलम एजुकेशन आश्रम श्री गंगानगर एक कोचिंग संस्थान है और जो राजस्थान के जितने भी आरपीएससी और एडमिशन बोर्ड की सेवाएं जो परीक्षाएं होती है, कंपटीशन एग्जाम होते हैं, हम उसमें आरएस एसआई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नीट पटवारी इन सब की तैयारी करवाते हैं. मैं एक शोधार्थी के रूप में भी जनरल व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से जुड़ा हुआ हूँ और रिसर्च पेपर मेरे जो नवीनतम इतिहास में शोध पत्र जो है वो राज्य स्तर, नेशनल स्तर और इंटरनेशनल स्तर पर छपते रहते हैं. और ज्यादातर मैं आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट वगैरह है उनसे जुड़ा रहता हूँ. सरस्वती नदी घाटी सभ्यता पर जितने सभ्यता स्थल है उनमें काम करने का शौकीन हूँ और इतिहास विषय के रूप में अपने एक विद्यार्थी के रूप में भी मैं सेवाएं देता रहता हूँ.
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप रिसर्च में भी काफी रुचि रखते हैं तो उसके लिए भी काम करते हैं और कोचिंग सेंटर चला रही हैं और साथ ही साथ काफी अच्छी बातें जो सामाजिक मुद्दे से जुड़ा हुआ है या वाटर से जुड़ा हुआ है, पानी से जुड़ा हुआ है, उस पर भी आप काम करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. आइए मैं डीडी पारिक सर से जोड़ना चाहूंगा आप सभी को. पारिक जी बहुत बहुत स्वागत है और कैसे हैं आप, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें.
3: ओम शांति सर.
1: जी ओम शांति. और
3: हाँ जी सर. जी सर मैं बताना चाहूंगा, मैं पत्रकारिता व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ और फिलहाल जो दैनिक भास्कर समाचार पत्र है उसमें पिछले 12 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ. सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा पत्रकारिता के अंदर हम विभिन्न समस्याएं भी उठाते हैं और उनके निराकरण का भी प्रयास करते हैं और जनता और सरकार के बीच में हम एक सेतु का काम कर रहे हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आप अपना कार्य करते हैं. तो निश्चित तौर पे जैसे कि अब राजस्थान में कुछ समय से तूफान जो चल रही है, क्या श्री गंगानगर में भी उसी तरह का मौसम है या मौसम में कुछ चेंज है?
3: हाँ सर, मौसम जो है वो पिछले करीबन एक पखवाड़े से जो मौसम है वो ऐसा ही बना हुआ है. जो तापमान श्रीगंगानगर जिले का जो कभी 50 डिग्री पहुंच जाता था, अब तापमान में बड़ी कमी आई है और जो गर्मी का एहसास है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है. ऐसे लग रहा है कि सर जैसे माउंट आबू क्षेत्र में बैठे हम.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो पत्रकारिता में आपको काफी लंबा समय हुआ, तो पिछले 2-3 सालों में और इस साल का जो मौसम है उसमें क्या एक बहुत बड़ा चेंज जो देख रहे हैं वो क्या है?
3: हाँ सर, एक जो चेंजिंग जो सबसे बड़ी दिखाई दी है प्रकृति के अंदर, एक चेंजिंग जो अब की बार दिखाई दी है उसके अंदर पहला अवसर है कि जो मई महीने के अंदर जो बारिश है वो इस बार अत्यधिक हो रही है. नहीं तो ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं. हम अगर पीछे का इतिहास देखते हैं, पिछले महीने के अंदर अक्सर गर्मी रहती थी और अभी पिछले दिनों ही जो 25 तारीख से एक नौतपा

0: जो 9 दिन सूर्य भगवान जो है वो बहुत ज्यादा तपते हैं, अब की बार वो
1: जी
0: तपते हुए दिखाई नहीं दिए, और हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे अब की बार जो है गर्मी वो तो आई नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। पिछले कुछ रिकॉर्ड्स को अगर हम लोग देखें तो निश्चित तौर पे राजस्थान में एक बड़ा जो है बदलाव हम देख रहे हैं, और ये बदलाव कहीं ना कहीं हम सभी को चिंतित भी कर रहा है तो सुकून भी दे रहा है, क्योंकि वर्तमान में हमें गर्मी से बचा तो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम के बदलाव को लेकर अगर हम लोग थोड़ा सा ढीले हो जाएंगे तो शायद आने वाले समय में काफी मुश्किल में हो सकते हैं। तो क्योंकि अभी आने वाला समय, अभी आज जून 1 हो गया है, तो आज जैसे कि विशेष दिन है, और 5 तारीख को फिर से हम लोग एनवायरनमेंट डे के रूप में पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो उस समय की क्या तैयारियां हो रही हैं श्री गंगानगर में, थोड़ा सा बताइए हमें। और एज ए पत्रकार आपको तो काफी इंफॉर्मेशन रहता ही है, तो पर्यावरण दिवस को लेकर किस तरह की तैयारियां श्री गंगानगर में आसपास में हो रहा है?
0: हाँ सर, जो विश्व पर्यावरण दिवस है, अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, हम इसे बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाते हैं। और सबसे
1: जी
0: बड़ी बात है कि हमारे जिले के अंदर जो है इस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम जो है वो वन विभाग के माध्यम से किए जाते हैं, और जिसमें प्रमुख रूप से वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो एक सामूहिक प्रोग्राम करते हैं, जिसके अंतर्गत पेड़ लगाए जाते हैं। इन पेड़ लगाने का क्रम जो है वो चलता रहता है, हालांकि पूरे साल ही चलता रहता है, लेकिन इस दिन का विशेष महत्व है। इसके साथ में हम संकल्प लेते हैं कि जो पौधा हमने लगाया है वो जब तक पेड़ नहीं बन जाता तब तक उसकी हम रक्षा करते रहेंगे, उसको जो अन्न जल जो है उसको वो देते रहेंगे। तो
1: जी
0: हमारा श्रीगंगानगर जिले के अंदर विशेष रूप से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर तो कार्यक्रम होते ही है, इसके अलावा उपखंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर भी अनेक प्रकार के आयोजन यहाँ वन विभाग द्वारा किए जाते हैं। और इसके अलावा जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जिसके अंतर्गत भारत विकास परिषद हुई, एपेक्स क्लब हुई, इसके अलावा जो अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी इसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और विशेष रूप से जिला स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें जो स्कूली विद्यार्थी हैं, इसके अलावा कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं, और इसके अलावा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे जो है इन कार्यक्रमों के अंदर विशेष रूप से भाग लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। दीदी पारिक जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आगे आने वाले समय में जून 5 को खास ये चीज होने वाली है, तो निश्चित तौर पे हमें बड़ा अच्छा लगता है और हमें खुशी भी होती है। पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाना और पेड़ों को बड़ा करने के लिए संकल्प करना, ये सारी चीजें अच्छी लगती है। लेकिन इसके साथ में कुछ मिसिंग डायमेंशन है कि हम लोग हर साल पेड़ लगाते हैं, क्या उतने पेड़ हमें दिखाई देते हैं आने वाले समय में, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक लगता है। तो इस विषय को लेकर मैं चाहूंगा कि हमारे राजेंद्र वर्मा जी इस बात को अपने मन से बताएं, उनका क्या सर्वे है, क्योंकि आप सोशल वर्क भी थोड़ा करते हैं, तो निश्चित तौर पे पेड़ पौधे जब हम लोग लगाते हैं तो क्या अगले साल हमें वो पेड़ पौधे वहां पर दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते, तो इसमें हमें किस तरह का वर्कआउट करने की जरूरत है। जी राजेंद्र जी।
2: जी सर, धन्यवाद। इसमें क्या है सर कि पर्यावरण दिवस जो है, अगर मैं देखूं कि एक जागरूकता अभियान के रूप में भी चलाया जाए, और जागरूकता अभियान जैसे स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग संस्थान है, या सरकारी स्तर पर सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भी बहुत सी योजनाएं लाकर जागरूकता अभियान चलाया जाता है, और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से या प्रत्येक व्यक्ति छोटे बड़े गाँवों में अपने स्तर पर जो जागरूकता अभियान चलाता है उसमें अपने जो पेड़ पौधे लगाते हैं, मेरा ये मानना है कि पेड़ पौधे चाहे वो पूरी तरह से तैयार हो नहीं हो, लेकिन जितने लगते हैं उसका कुछ प्रतिशत एक जागरूकता के रूप में हमें आगे से आगे नई पीढ़ी को इन पर्यावरण जागरूकता के बारे में जानकारी का लाभ बहुत मिलता है। दूसरी बड़ी बात कि अगर विद्यार्थियों के में ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता रहेगी तो विद्यार्थी आगे से आगे जुड़कर इस चीज को बड़े महत्व देंगे, चाहे अपने कॉलोनी में पार्क लगाने की बात हो, चाहे किसी भी ऐसी भूमि पे जो खाली पड़ी हो और उसमें पेड़ पौधे लगाने की बात हो। इसमें भी कई प्रकार के सिस्टम रहते हैं, ग्रामीण परिवेश के क्षेत्र में से हम जुड़े लोग हैं, और अगर ग्रामीण परिवेश में ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएं जो कम संसाधनों में, कम पानी की आवश्यकता में फले फूले लंबे समय तक जीवित रहे और पर्यावरण को और अत्यधिक सुरक्षित दे सके, तो कुछ ऐसी छोटी नर्सरी है या छोटे संस्थान है जहाँ औषधीय पौधे भी लगाए जा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पहले मानसिक रूप से अगर हम सामाजिक वातावरण पर्यावरण के विरुद्ध जागरूक करेंगे, उसके साथ जागरूक करेंगे, तो चाहे पौधे कितने भी लगाए जाएं वो फलेंगे फूलेंगे, उनकी संभाल और देखभाल जरूर होगी। जी सर, हाँ जी सर,
1: राजेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा जो है वर्कआउट करने की जरूरत है, जिस तरह से आपने बातें की है। तो पेड़ लगाने के लिए कई बार हमारे पास जगह के बीच वो है एक निरीक्षण होने की जरूरत है। कई बार हम लोग जो है रास्ते में भी लगा देते हैं, अब रास्ते में लगाने के बाद उसको पानी कौन देगा, और इतना दूर लगाए तो वहां पर जाने वाला कौन है, ये थोड़ी सी बात आती है। तो मुझे लगता है कि इसका पूरा प्लानिंग आउट ओके करेंगे तो अच्छा है। सिर्फ फोटो के लिए हम लोग अगर लगा देते हैं, 5 तारीख आ गया और ले लिया पौधे, नर्सरी से उठा लिए और एक ग्रुप में बांट दिया, और ग्रुप जाके किसी और जगह लगा के भी आ गया, फोटो खिंचवा लिया, और आप भी खुश वो भी खुश, सारी चीजें होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों पर थोड़ा सा मार्किंग करने की जरूरत है। और मेरा पिछली बार शायद ऐसे ही आफ्टर कोविड या कोविड के बीच में महाराष्ट्र में जाना हुआ, एक गांव है जहां पर पूना से शायद 100 किलोमीटर की दूरी पर है, नारायण गांव करके, और वहां मैं रुका था। उसके बाद मुझे किसी एक और गांव की तरफ उन्होंने विजिट के लिए लेके गया कि भाई यहां पर हमने पर्यावरण पे काम किया है। तो हमने देखा कि वो बहुत ही अच्छी तरह से हरियाली पूरे गांव में बना हुआ है। जैसे आप एंटर करते हो तो चारों तरफ जो है वो नारियल के जैसे ही पेड़ हैं, पाम शायद ट्रीज हैं, बड़े बड़े ट्रीज वो लगाए हुए हैं, और चारों तरफ जो है बाउंड्री में गांव के लगे हुए हैं, बीच में चौपाल में लगे हुए हैं, और स्कूल के कैंपस में स्कूल के अंदर बड़े ही डेकोरेटिव तरीके से उसको लगाया गया है। तो मैंने बोला ये ऐसे संभव कैसे हुआ? तो फिर वहां दो लोगों ने जिम्मेवारी ली थी उस काम के लिए, दो लोगों ने मिलकर कहा कि पेड़ तो उनको मिल गए थे सरकार की तरफ से और सब जो है लगाना है, और लगाने के बाद उसको पानी देने का काम जो है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उन्होंने जहां जहां जैसे जैसे सोर्स है, जैसे समझो जहां पर भी पानी का व्यवस्था है, वहां से उन्होंने जो है पानी ड्रिप इरिगेशन का पाइप्स लगा दिए और उन पेड़ों को पाइप से जोड़ दिया। तो इस तरह से सब जगह जितने भी पेड़ लगाए थे उन सभी जगह पे उन्होंने ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगा के पानी का जो है सुधार किया, और जहां पर पाइप नहीं जा रहा है, ड्रिप इरिगेशन नहीं जा पा रहा है, तो वहां पर वो खुद सवेरे उठ के जो है बॉटल ये पानी के एक जो है टैंक छोटा सा लेके चलते थे और पानी जो है पेड़ पौधों को डाल के आते थे, और रोज उनका ये क्रम था, और उन्होंने पूरे 4 साल 3 साल तक लगातार किया। उसके बाद ये रिजल्ट उनके गांव में आया। तो उस व्यक्ति को सम्मानित तो किया, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने जो काम किया है वो बहुत बड़ा सराहनीय काम है, जिसपे हमें जो है वर्कआउट करना, एक व्यक्ति को या एक दो जन को या एक हमारा टीम हो छोटा सा, कि हमें इस तरह से काम करना है, इसके लिए हमें प्रतिज्ञाबद्ध होके अगर काम करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका रिजल्ट भी अच्छे होते हैं, और वो चीजें संभव भी है। तो आज भी जब जाते हैं तो गांव में आपको चारों तरफ हरियाली नजर आती है, कहीं भी आप जाएंगे तो बिना पेड़ आपको दिखे नहीं रहेंगे, इतना जो है वो उन्होंने खूबसूरत उस गांव को बनाया है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कोई और जगह क्यों नहीं हो रहा है, तो वही है कि जहाँ संकल्प की बात आती है, जिम्मेवारी की बात आती है, वो कहीं ना कहीं हमारी रह जाती है, जिसके वजह से हम लोग एक गाँव में अगर हो रहा है तो दूसरे गाँव में भी होना चाहिए, तीसरे गाँव में भी होना चाहिए, तो वो चीजें कहीं ना कहीं रह जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग चीजें कर पाते हैं, लेकिन बाद में उसको कंटिन्यू करने में थोड़ी मुश्किल आती है। तो आइए मैं अभी फिर से पारिक सर से जोड़ना चाहूंगा, आपको किस तरह से आप देखते हैं कि हमें आगे चल के इन चीजों को अगर बहुत अच्छी तरह से साकार रूप देना है, एक एग्जाम्पल सेट करना है, तो कैसे कर सकते हैं, क्या प्लानिंग कर सकते हैं, आपके व्यूज क्या है, या आपने कुछ ऐसे जो हरा भरा गांव देखा है या फिर एक ऐसे गांव जो खास इस विषय को लेकर उनको सम्मानित किया हो गया हो आदर्श गांव के रूप में, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हो तो जरूर बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही डीडी पारिक सर।
0: हेलो।
1: हाँ अभी आई।
0: हाँ सर, मैं कह रहा हूँ हमारे जिले के अंदर एक गांव ऐसा है जिसका नाम है 65 GB। उस गांव में मुझे जाने का मौका मिला तो मैंने वहां पर देखा कि वहां के नौजवानों ने एक ऐसा ग्रुप बना रखा है जिसका नाम उन्होंने हरियाली संरक्षण के नाम से दे रखा है। उसके अंतर्गत उन्होंने गांव के अंदर असंख्य पौधे लगा रखे हैं, यानी जहां उनको जगह मिली वहां पर उन्होंने पौधे लगा दिए और आज जो वो गांव है वो पूरा हरित गांव की श्रेणी में शामिल है। आसपास उन्होंने सड़कों के किनारे भी पौधे लगाए हैं और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। इसके अंतर्गत नवयुवकों ने ऐसा विशेष कार्य किया जिसके अंतर्गत उन्हें उन्होंने अन्य लोगों को भी प्रेरणा दी है इस काम को करने के लिए। इसके अलावा जो सामाजिक स्तर पर जो संस्थाएं हैं वो भी अनेक स्थानों पर कार्य कर रही है। इसके अलावा हमारे जो एक क्षेत्र है जैतसर, जैतसर के अंदर केंद्रीय कृषि राज्य फार्म यहाँ मौजूद है जो हरित क्रांति के अंदर विशेष रूप से कार्य कर रहा है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जो पौधे हैं उनको तैयार किया जाते हैं। इसके अलावा संकर नस्लें भी यहाँ पर तैयार की जाती हैं और हरित क्रांति के योगदान के अंदर जो है इस केंद्रीय राज्य फार्म और स्टेट के जो फार्म है इनका भी महत्वपूर्ण योगदान दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमारे पास में एक यांत्रिक कृषि फार्म भी है, सरदारगढ़ क्षेत्र में भी फार्म है, वो भी पेड़ों के प्रति नवाचार कर रहे हैं। हम जब इन फार्मों के अंदर हमें जाने का मौका मिलता है तो हम देखते हैं कि वहां पर असंख्य प्रकार के पेड़ हैं जो या तो पहाड़ी क्षेत्र में दिखाई देते हैं या फिर जो है वो इन फार्म क्षेत्र
1: हाँ जी पारिक सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें मिलेंगे जिससे हमारा जीवन जो है अच्छा फील करते हैं, हमें प्राउड फील होता है। तो ऐसे एग्जांपल्स जो है हमें बार बार याद करके दूसरे गांवों के पास भी हमें इस तरह के एग्जांपल्स सेट करने हैं। तो मुझे लगता है कि आज जर्नलिस्ट आप जो है इन बातों को देखते भी हैं तो उसके बारे में कुछ लिखिए और दूसरे गांवों को भी प्रेरित कीजिए ताकि वो भी गांव हरा भरा हो, ताकि सभी जो है उस गांव से प्रेरणा ले सके। आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि ऋतुराज जी कैसे हैं आप?
3: सर अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं सर?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आप अपने यहाँ के बारे में भी बताइए किस तरह से। वैसे तो वैसे भी कहा जाता है कि भाई बहुत सुंदर वहां का पर्यावरण बहुत अच्छा है और पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, ऐसा हमने सुन के रखा है तो रियलिटी में क्या है वो थोड़ा सा आप बताइए।
3: असम में तो आजकल तो पेड़ पौधों की तो है ही नहीं, पूरा सब मतलब डिफोरेस्टेशन हो गया, सब सब सबने ये सब पेड़ पौधे सबने काट दिए, इसीलिए तो बारिश नहीं होता। और आज का तो मौसम बहुत ही गर्मी है। आज मैंने जब बाहर गया था तो अभी एसी में ही हूँ, अभी तक मैं एसी रूम में ही हूँ क्योंकि बाहर में इतना गर्मी है और मतलब वो टॉलरेट नहीं किया जा सकता। और वो भी वो मई महीने में ही, और मतलब वो जून पड़ गया अभी। और वो भी जो मैं बोलना चाहता था कि इस बार तो अप्रैल में तो ऐसे तो बहुत बारिश होता है लेकिन इस बार तो बारिश ही नहीं हुआ, अच्छी तरह से बारिश ही नहीं हुआ। और मई मंथ में भी होता है लेकिन इस बार अच्छी तरह से बारिश ही नहीं होता है इस बार, इसीलिए तो मतलब बहुत गर्मी हो गया है, पूरा गर्मी हो गया है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि सब लोग पेड़ पौधों जुड़े, कोई बात है, ताकि अच्छे अच्छे हवा, अगर ताकि बारिश हो जाए, हवा बहते रहे, कोई बात है
1: जी। ऋतुराज जी मैं चाहूंगा कि एक जो है पर्यावरण से जुड़ा हुआ कोई भी गीत जो हमें कुदरत या फिर नेचर से जुड़े ऐसा कोई गीत आप जरूर सुनाइए।
3: अश्योर सर, ठीक है, ओके।
1: मैं चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक मित्र हैं जो हमें देख रहे हैं, आप भी कमेंट करके अपने पर्यावरण के बारे में आपने क्या सोचा है, किस तरह की आपके यहाँ का मौसम है या किस तरह का प्लान आप करते हैं पर्यावरण दिवस को मनाने में, जरूर हमें बताइए कमेंट करके।
3: श्योर श्योर श्योर सर।

0: हम कैसे जिएंगे।
1: थैंक यू सो मच,
2: बहुत बढ़िया रिजल्ट, बहुत ही अच्छा लगा।
1: थैंक यू सो मच,
2: प्यार से गीत आपने गाया और पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये गीत सुनकर अच्छा लगा, मन को खुशी हुई, बहुत ही प्यार से आपने गाया। और निश्चित तौर पे हमारे जीवन में पर्यावरण जो है, आसपास का आवरण, आसपास में पेड़ पौधे जितने ज्यादा होंगे उतनी हमारी खुशी बढ़ती है, उतनी हमारी ताकत बढ़ती है, उतना ही हमें अच्छा लगता है और एक खुशी महसूस होता है। जब सवेरे उठ के आप पेड़ पौधों को देखेंगे, फूलों को देखेंगे, तो निश्चित तौर पे आपकी खुशी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल जाता है और आपको अच्छा लगता है। खुशबू से, पंछियों की आवाज से, फूलों से आप जब रूबरू होते हैं उठते ही, तो आपका दिन जो है बहुत ही फ्रेश फील कराता है। तो हम सभी लोगों को ये पता भी है, एहसास भी है, लेकिन फिर भी आज हम लोग कहीं ना कहीं इस भागदौड़ वाली जिंदगी को देखते हुए डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग अपनी ही कुदरत से शायद दूर होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी इसके साथ में मैं चाहूंगा कि अगर हम छोटी छोटी चीजें कर सके, अपने आंगन में आप पेड़ पौधों को जगह दे सके, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो आइए मैं डीडी पारिक सर से वापस जोड़ना चाहूंगा कि कैसे हम लोग जो है आज डेवलपिंग कंट्री हमारी भारत देश है, और जहां चाहे वहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बिल्डिंग्स हो रहे हैं, जंगल्स कट रहे हैं, तो इस बीच फिर से हम जंगल को अगर अपने पास रखना चाहते हैं तो क्या क्या आइडियाज है आपके पास, क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा बताइए। जी आपका आवाज फिर से वापस थोड़ा सा गुम हो गया। जी हाँ
3: जी, मैं कह रहा हूँ कि अभी हमें एक बार पुनः जो है वो हरियाली की तरफ ध्यान देना होगा। काफी लंबे समय से आ रही आवाज सर मेरी
2: आ रही आवाज।
3: लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि पर्यावरण का नुकसान अधिक हो रहा है, अत्यधिक मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, हम अगर राजस्थान की भी बात करें तो हम देखते हैं कि राजस्थान में कभी पेड़ों की संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर भी जो पेड़ हैं वो अत्यधिक संख्या में काटे जा रहे हैं। और पेड़ काटने का ही जो कारण है कि वर्तमान में जो प्रकृति है वो अपना रूप बदल रही है। हम देखते थे कि जब पेड़ों की अधिकता होती है तो पर्यावरण संतुलित रहता है, नियत समय के ऊपर बारिश आती है, समय पर गर्मी आती है, सही समय पर सर्दी का अनुभव होता है। लेकिन अब अत्यधिक पेड़ों के कटने के कारण ना तो हमें पता लगता है कि कब सर्दी आ रही है, कब गर्मी आ रही है, कब बारिश का मौसम आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हिंदू महीने थे
2: जी जी
3: वो अब एक प्रकार से अलग होते नजर आ रहे हैं। पहले हम हिंदू महीना जब लगता था तो हमें पता लग जाता था कि ये हेमंत का महीना है, ये शिशिर का माह है, ये बसंत ऋतु है, ये ग्रीष्म ऋतु है, लेकिन अब एक समानता दिखाई देती है। ये सब कुछ पेड़ों के कटने के कारण हो रहा है, और पेड़ कटने के कारण अनेक दुष्प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं। अब हमें उन पेड़ों के कटने के कारण अब हमें पक्षियों की चहचहाट भी कम सुनाई पड़ रही है। पहले जो पेड़ थे, पेड़ अधिक होने के कारण पक्षी अक्सर इन पेड़ों के ऊपर अपने घोंसले बनाते थे, लेकिन अब वर्तमान समय के अंदर जो पेड़ हैं वो पक्षियों से विहीन हो गए हैं। अब हमें कुछ ऐसा ठोस कार्य करना पड़ेगा, हमें एक बार पुनः पर्यावरण की तरफ ध्यान देना होगा, पुनः इस हरियाली की तरफ हमें लौटना होगा। हमें एक युवाओं का एक ऐसा संगठन बनाना होगा जो प्रत्येक गांव के अंदर पेड़ पौधों की रक्षा करे। इसके अलावा नए पौधे तो वो लगाए ही, जो पुराने पौधे हैं उनका भी संरक्षण करें। एक ऐसी टीम बनानी होगी जो प्रत्येक गांव, प्रत्येक धानी, प्रत्येक कस्बे के अंदर वो ऐसा कार्य करे कि वहां पर वो पेड़ों की रक्षा तो करे ही, इसके अलावा लोगों को प्रेरित भी करे कि आप अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं। अकेली सरकार जो है वो इसमें अधिक योगदान नहीं दे सकती है, हालांकि सरकारें प्रयास कर रही हैं कि पेड़ अत्यधिक मात्रा में लगाए जाएं, लेकिन इसके लिए जो जनमानस को है वो साथ में आना होगा और पेड़ों की तरफ हमें ध्यान देना होगा।

दिनेश पारिक सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और इस बीच हमारे गुणवंत सर ने भी मैसेज किया है, बड़े प्यार से लिखते हैं कि वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, वेरी गुड।

0: सॉन्ग करके ऋतुराज जी मैसेज किया है, और उन्होंने मैसेज किया है कि इंडस्ट्री को लेकर साथ में ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने से भी पर्यावरण का काम सुधार हो सकता है या उसमें सुधार ला सकते हैं। तो निश्चित तौर पे जहाँ पर हम लोग ग्राम उद्योग की बात करें तो पर्यावरण को लेकर भी हम लोग इस तरह के काम कर सकते हैं और सरकार भी इसके लिए आपको हेल्प करती है। तो थोड़ा सा एक छोटा सा प्लानिंग करने की जरूरत है हम सभी को मिलकर, और अपने ही गाँव के आसपास में अगर हम पेड़ पौधों को लगाना चाहते हैं तो आप ग्राम उद्योग के माध्यम से भी ये चीजें कर सकते हैं, और सरकार में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो थोड़ी सी एक इंटरेस्ट की बात है ये सारी चीजें, बोलने से या बताने से नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपको करना जी। तो चलिए डीडी पारिक जी, मैं जाते जाते कहूंगा कि अभी जैसे कि बहुत सारे आपने कहा कि 5 जून को कार्यक्रम करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप एज ए राइटर, एज ए पत्रकार के रूप में आप पर्यावरण को लेकर क्या करना चाहेंगे, या कोई कॉलम आप लिखना चाहेंगे, या आपने अभी तक कुछ लिखा है पर्यावरण पे, तो या फिर एक छोटा सा कॉलम भी अगर आप जिसपे लोगों को प्रेरित करें ऐसा कुछ लिखे पर्यावरण को लेकर। जैसे आपने कहा कि गाँव है जहाँ पर हरियाली हरियाली है, तो ऐसे गांव के प्रति उनकी स्टोरीज अगर आप कवर करते हैं तो आप शायद, मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा कि और दूसरों को भी मोटिवेशन मिल सकता है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, थोड़ा सा बताइए जी।
1: जी हाँ सर, हमने उस गांव की स्टोरी को अपने अखबार के माध्यम से उठाया था, और जब हमने उस स्टोरी को उठाया, उसको जब पॉजिटिव स्टोरी के रूप में हमने जब लगाया, तो उसके बाद में लोगों ने उस स्टोरी को जब पढ़ा, तो उसके बाद में करीबन 3 गांव ऐसे थे जहां से एक युवाओं के संगठन तैयार हुए, और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से 65 जीबी के अंदर जो युवा पौधे लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं वहां पर, और पेड़ों बड़े जो पेड़ हैं उनको संरक्षित कर रहे हैं, तो हमें भी उसके अंदर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो गाँवों के अंदर जब वो समाचार पहुंचा तो लोगों के अंदर एक जागृति आई। उस जागृति के माध्यम से 3 गांव जो ऐसे हुए, उन्होंने उस 65 जीबी गांव से प्रेरणा ली और उन्होंने भी अपने गांव में नवाचार करने का प्रयास किया। हालांकि अभी तक जो उनका नवाचार है वो अभी हमारे समाचारों में हमने अभी दिखाया नहीं है, क्योंकि अभी जो एक उनकी पहल है, और जब ये वो कार्य जब उनका पूर्ण रूप से हो जाएगा तो उन गांवों को भी हम अपने समाचारों के माध्यम से उठाएंगे और अन्य लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के अंदर
0: जी
1: पिछले दिनों पिछले वर्ष जब राज्य सरकार ने एक मुहिम चलाई थी विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर, उसके अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा भी 4 पौधों का वितरण घर घर में किया गया था, जिसके अंदर औषधीय पौधे शामिल थे, जिसमें तुलसी, गिलोय, कालमेघ के ये जो पौधे थे वो घर घर बांटे गए थे। उसके अंतर्गत भी क्या हुआ था कि राज्य सरकार की जो ये मुहिम थी उसके अंतर्गत लोगों के जब घर पौधे पहुंचे, वन विभाग ने घर घर पौधे पहुंचाए, तो लोगों ने इन पौधों को संरक्षित रखा। और आज भी मैंने कई घरों के अंदर देखा है कि वो जो तुलसी के, गिलोय के, कालमेघ के जो पौधे हैं वो आज भी लोगों के घरों के अंदर लगे हुए हैं। और औषधीय पौधों का इनका बड़ा महत्व है। जैसे जब कभी लोगों के बुखार वगैरह आता है तो गिलोय जो है अगर उसका काढ़ा बनाकर पिलाया जाए तो ये बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा जो तुलसी है, तुलसी की अगर चाय के अंदर हम तुलसी के पत्ते डालकर अगर उसका सेवन किया जाए तो किसी भी प्रकार के खांसी जुखाम से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा जो काल मेघ है, या इसके अलावा जो औषधीय जो अन्य पौधे हैं, जिसमें अर्जुन का पौधा हो गया, इनके माध्यम से भी कहा जाता है कि अर्जुन का पौधा जो है वो जो हार्ट के जो मरीज हैं उनके लिए बड़ा अच्छा होता है, उनको उसका जो उसकी छाल है उसका सेवन करना चाहिए। तो ये भारतीय परंपरा के अंतर्गत जो पुराने पौधे हैं उनका महत्व तो है सर, उसके माध्यम से लोगों की एक बात जो है वो निकल कर सामने आती है और लोग आज उस महत्व को समझ भी रहे हैं, और घरों के अंदर जो औषधीय पौधे भी बहुतायत से लगाए जा रहे हैं। और विशेष रूप से मैंने अक्सर लोगों के घरों के अंदर देखा है जो गिलोय की जो बेल है वो अधिकतर घरों के अंदर अब लगी हुई है। उस बेल के माध्यम से लोग जो है उस बेल का काढ़ा बनाकर पीते हैं, जो अनेक प्रकार के रोगों के लिए लाभदायक है। अगर हम बात करें किसी अन्य औषधीय पौधे की, तो आज भी लोगों के घरों के अंदर कुछ अन्य औषधीय पौधे हैं, हालांकि उनके नाम हमें अभी मालूम नहीं है, ना
0: बिल्कुल
1: हम उन
0: बिल्कुल
1: पौधों के बारे में जानते हैं, लेकिन लोगों ने जहां से उनको पता किया वहां से वो पौधा लाए और उसको उन्होंने अपने घरों के अंदर लगाया, और आज उनके जो पौधे हैं वो घरों के अंदर लगे हुए हैं और उनसे वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मैं एक विशेष रूप से यहाँ पर एक नाम लेना चाहूंगा,
0: जी
1: एक हमारे क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति है जिनका नाम सुभाष देवाल है। उनके घर मैंने देखा कि उन्होंने पौधे अपना एक प्लाट ले रखा है, उन्होंने खाली जगह ली है उन्होंने, और उसके
0: अरे
1: अंदर उन्होंने तरह तरह के पौधे लगाए हैं, और वो लोगों को अपने जो पौधे लगाए हुए हैं उनको देखने के लिए वहां पर जब भी कोई गली से जब वो कोई व्यक्ति गुजरता है तो वो उनको उसको उसका हाथ पकड़ के वो दिखाते हैं कि मैं मेरे ये प्लाट मैंने लिया है और आप इनके अंदर पौधे देखिए, और वो लोगों को पौधे दिखाते हैं। और इसके अलावा उन्होंने जो वहां पर उस प्लाट के अंदर सब्जियां लगा रखी हैं, और वो सब्जियां कैसी हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं, किसी प्रकार का कोई उर्वरक जो है खाद वगैरह जो है वो नहीं डालते हैं, सिर्फ उसमें वो गोबर की जो खाद है वो उसके अंदर डालते हैं। और वो कहते हैं कि जो इनसे सब्जियां प्राप्त होती हैं वो उनको जब मैं घर पे बनाता हूँ तो इतनी स्वादिष्ट बनती हैं वो सब्जियां कि क्या कहना उनका। उन्होंने मुझे भी वो एक दिन जब मैं पहुंचा तो उनके पास उन्होंने मुझे वो सब्जी दी, वो कच्ची सब्जियां दी मुझे, और मैंने जब घर जाकर वो सब्जियां बनाई तो वास्तव में वो सब्जियां बड़ी स्वादिष्ट थी। जो हम उर्वरक फर्टिलाइजर की बनी हुई जो सब्जियां खाते हैं उनमें और उनमें रात दिन का फर्क था। तो ये
0: बिल्कुल
1: एक प्रकार की मुहिम जो है वो सभी लोग चला रहे हैं। अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, और इसके अलावा स्कूलों में भी जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि पर्यावरण संरक्षण कैसे करें, हम किस प्रकार के हम पौधे लगाएं। इसके अलावा जो राजस्थान सरकार की जो पुस्तकें हैं, केंद्र सरकार की जो पुस्तकें हैं, सीबीएसई बोर्ड है, आरबीएसई बोर्ड है,
0: जी
1: उनकी किताबों के अंदर भी बहुत सारी अब सामग्री हमें दिखाई देती है कि किस प्रकार हम पर्यावरण को संरक्षित करें, और बच्चे अब इसके प्रति अवेयर हो रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल डीडी पारिक सर, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। गुणवंत सर, आपने मैसेज करके याद किया, धन्यवाद। निवेदिता जी, उन्होंने भी याद भेजा है, ओम शांति करके लिखे भेजा है, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए मैं ऋतुराज जी, जैसे कि उन्होंने भी मैसेज किया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। जितना हो सके हमें जो है पेड़ों को जीवित रखना है, उसके आसपास में अगर हमको कहीं कुछ बनाना हो तो उसको साथ में रखते हुए अगर हम कंस्ट्रक्शन कर पाए तो ये और अच्छी बात है। यहाँ पर हमको अपनी कलाकारी दिखाने की जरूरत है। पेड़ों को काटे बिना अगर हम अपने आप को भी उसके साथ में रख लेते हैं तो ये और अच्छी बात है। तो इसके कई उदाहरण हमारे बीच में है, जैसे कि कई जंगल में अगर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो पेड़ों को एज इट इज जो है वो वैसे के रखे, और उसके आसपास में हम अपने आप को अपने दीवारों को कम करें या फिर उसको ऐसे डेकोरेट करें, वहाँ उतना स्पेस छोड़ दें तो वो और भी डेकोरेटिव लगता है। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल हमारे माउंट आबू में ज्ञान सरोवर में जब वो बनाया गया था तो उस समय वहाँ के जितने भी बड़े पेड़ थे उन्हें बिल्कुल काटा नहीं गया, उनको वैसे ही छोड़ दिया गया और उसके आसपास में उतना जगह छोड़ के उसको बनाया है। तो आप देख सकते हैं उन चीजों को, अगर हमारा संकल्प पावरफुल हो, थोड़ा मेहनत हम अगर लेते हैं तो चीजों को जो नेचर है उसको बना के भी रख सकते हैं और आप उसमें अपने आप को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, हो सकता है कि कुछ चीजें अच्छी भी दिखने में उतना खूबसूरत ना दिखे, लेकिन पेड़ों की वजह से वो उसकी खूबसूरती बनी रहती है और लोगों को एक मैसेज भी मिलेगा कि भाई आप अगर कंस्ट्रक्शन करते भी हैं तो पर्यावरण को साथ में लेके भी कर सकते हैं, ये हम मैसेज दे सकते हैं। तो ऋतुराज जी, मैं चाहूंगा कि जाते जाते आप एक छोटा सा दो लाइन जरूर गुनगुनाएं और फिर हम लोग पूरा करते हैं। और थैंक यू पारिक जी एंड राजेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें अपने शेयर किया और मुझे लगता है कि आज का जो हमारा सेशन है आगे भी हम लोग फॉरवर्ड करेंगे और भी बच्चों को दिखाएंगे ताकि वो पर्यावरण दिवस जो आ रहा है उसमें अपनी पूरी तैयारी अच्छी तरह से करें। और इस एपिसोड को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको सुनने के बाद आपके मन में विचार जरूर आएगा और एक दो पौधे या मेडिसिनल पौधे हो या फिर खुशबू देने वाले जिस भी तरह के पौधे हो उसे आप अपने गमले में लगा भी सकते हैं अगर आपके पास जगह नहीं है, और अगर आपके पास जगह है तो निश्चित तौर पे आप उस

0: थैंक यू ऋतुराज जी, बहुत ही प्यारा
1: थैंक यू
0: संदेश
1: सो
0: आपने
1: मच,
0: सुनाया, थैंक यू।
1: थैंक यू सो
0: चलिए
1: मच।
0: मित्रों, आज हम लोग पर्यावरण और अपने अनुभवों को साझा किया आपके साथ में, और ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं, लेकिन हम लोग इवेंट में जुड़ जाते हैं, जैसे डीडी पारिक जी हैं, कवरेज के लिए वो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है, मैं भी जब मुझे बुलाते हैं तो मैं भी जाता हूँ, चीजों को देखता हूँ, तो जो अच्छी चीजें हैं उसके बारे में बताते हैं, और मैं चाहूंगा कि हम सभी मिलकर एक दूसरे को हेल्प करते रहें, ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके रहें तो और अच्छा होगा। तो कहीं भी इवेंट होता है पेड़ पौधों का, तो आप देखिए कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, वो आप अपनी तरफ से आपको जो आसान लगे और अच्छा लगे वो जरूर करिए, और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी काम कीजिए पर्यावरण के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए नीड है। तो आगे ऐसा ना हो कि हमें पेड़ों के बारे में लोगों को बताना पड़े, है ना। तो चलिए, इन शुभाशाओं के साथ आप सभी पर्यावरण प्रेमी बने और पेड़ पौधे लगाएं, आप इसे शुरू कीजिए, उसके लिए प्लान कीजिए, और ऐसे शुभाशा के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खम्बा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: नमस्ते, मैं हूँ अलका याग्निक। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अर्जिया सारी मैं

मरम्मत मुकदर की कर दो मौला, तेरे दर पे झुका हूँ मिटा हूँ बना हूँ, तेरे दर पे

जो भी तेरे दर आया झुकने जो सो सर आया, मस्तियां पिए सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियां पिए सबको झूमता नजर आया। प्यास लेके

मरम्मत मुकदर की कर दो मौला। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियां पिए सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियां पिए सबको झूमता नजर आया। प्यास लेके आ

0: नमस्ते दोस्तों, जासूस धर्मचंद का नाम सुना है आपने? क्या कहा, नहीं सुना? तो चलो फिर मीना के पास, जो दीपो और सुनील को धर्मचंद जासूस की एक कहानी पढ़ के सुना रही है।
1: जासूस धर्मचंद ने एक बार फिर से लालू और कालू की तरफ देखा। लालू और कालू दोनों बहुत घबराए हुए लग रहे थे। धर्मचंद ने हमेशा की तरह एक गाजर खाई और बोला,
2: इंस्पेक्टर साहब, कालू को गिरफ्तार कर लीजिए, चोरी इसी ने की है, क्योंकि खिड़की में फंसा हुआ कपड़े का टुकड़ा कालू की कमीज का ही है।
1: और इस तरह कालू को पकड़वा के धर्मचंद ने एक और मामला सुलझा दिया।
2: वाह मीना, क्या कहानी थी, है ना सुनील?
3: हाँ यार दीपू, ये जासूस धर्मचंद तो कमाल का आदमी है, चुटकियों में कोई भी मामला सुलझा लेता है।
4: मामला सुलझा लेता है, गाजर चबा लेता है।
2: मीना, ये धर्मचंद जासूस हमेशा गाजर क्यों खाता रहता है?
1: शायद इसलिए दीपू, क्योंकि सब्जियां हमारे दिमाग को तेज करती हैं।
2: मीना, सुनील, क्या हम भी धर्मचंद की तरह जासूस नहीं बन सकते?
1: क्यों नहीं दीपू, बिल्कुल बन सकते हैं।
2: हम भी चुटकियों में सबकी मुश्किल हल कर देंगे,
5: और फिर एक दिन हमारी कहानियां भी छपेंगी, जासूस दीपू सुनील और मीना के किस्से।
2: चलो गांव का एक चक्कर लगा के आते हैं, क्या पता किसी को हमारी मदद की जरूरत हो।
5: हाँ, और फिर हम जासूस धर्मचंद की तरह उस मुश्किल का झट से हल कर देंगे।
2: लेकिन सबसे पहले हमें बहुत जरूरी काम करना होगा। हमें सबसे पहले चाहिए बहुत सारी गाजर, ताकि हम भी जासूस धर्मचंद की तरह गाजर खा के हर मुश्किल का हल ढूंढ सके।
3: हाँ, ये बात तो ठीक है, एक काम करते हैं, अपने अपने घर जाते हैं और गाजर लेके आते हैं।
4: गाजर लेके आते हैं, जासूस बन जाते हैं।
0: और फिर मीना, दीपू और सुनील गाजर खाते हुए गांव का चक्कर लगाने निकले।
1: सुनील, मीना, वो देखो। अरे, ये तो गीता दीदी है, लेकिन ये इतनी परेशान क्यों लग रही है?
2: लगता है कुछ ढूंढ रही है।
3: चलो उन्हीं से पूछते हैं।
1: क्या बात है दीदी, कुछ खो गया है क्या?
6: हाँ मीना, किसी ने मेरी गोभी चुरा ली है।
7: आप चिंता मत करो गीता दीदी, हम तीनों धर्मचंद जासूस की तरह आपकी गोभी चुराने वाले चोर को झट से ढूंढ निकालेंगे।
6: अरे वाह दीपू, ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: और फिर मीना, दीपू और सुनील ने धर्मचंद जासूस की तरह गाजर चबाते हुए गीता दीदी से सवाल पूछने शुरू किए।
1: गीता दीदी, हमें पूरी बात बताइए
2: शुरू से।
6: हाँ, सबसे पहले मैंने बाजार जाके गोभी खरीदी।
7: सुनील, ये बात कागज पे लिखो।
3: ठीक है दीपू, अभी लिखता हूँ। सबसे पहले बाजार जाके गोभी खरीदी, लिख लिया।
1: फिर आपने क्या किया?
6: फिर मैंने घर पहुँच के गोभी को काटा,
2: चाकू से या दांत से?
6: चाकू से।
3: गोभी को काटा, लिख लिया, फिर क्या हुआ दीदी?
6: फिर मैंने गोभी पकाने से पहले उसे साफ पानी से धोया, अच्छी तरह
3: धोया। लेकिन गोभी को?
7: ओफो सुनील, तुम बस चुपचाप लिखते रहो।
3: ठीक है, गोभी को साफ पानी से अच्छी तरह धोया, लिख लिया।
1: फिर आपने क्या किया गीता दीदी?
6: फिर मैंने, हाँ, फिर मुझे याद आया कि अरे घर में नमक तो है ही नहीं, मैं फिर से बाजार गई नमक लाने।
3: गीता दीदी नमक लाने बाजार गई।
1: क्या हुआ सुनील, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
3: वो पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, शायद ज्यादा गाजर खाने की वजह से। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। गीता दीदी, फिर आपने क्या किया?
6: लेकिन जब मैं नमक लेके वापस लौटी तो चोर मेरी गोभी ले जा चुका था।
1: गीता दीदी, क्या आपने गोभी इसी प्लेट में काटी थी?
6: हाँ मीना, मैंने इसी प्लेट में ही काटी थी अपनी प्यारी गोभी।
1: दीपू सुनील, सोचने वाली बात ये है कि आखिर वो चोर सिर्फ गोभी ही क्यों लेके गया, वो ये प्लेट भी तो ले जा सकता था।
2: हाँ बात तो सही है।
1: गीता दीदी, क्या आपने गोभी के साथ साथ धनिया भी काटा था?
6: हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला?
7: वो देखिए गीता दीदी, वो रहा चोर।
6: क्या, मेरी बकरी?
1: हाँ दीदी, जरा ध्यान से देखिए, आपकी बकरी के सींगों पे अभी भी कुछ धनिया लगा हुआ है, इसका मतलब आपकी बकरी ने ही खाई थी गोभी।
6: अरे वाह, तुम तीनों तो धर्मचंद जासूस के भी उस्ताद निकले।
0: मीना, दीपू और सुनील गीता दीदी के घर से निकले ही थे कि सुनील के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। मीना और दीपू ने सुनील को नर्स बहन जी के पास चलने के लिए कहा और रास्ते में मीना और दीपू ने धर्मचंद जासूस की तरह सुनील के पेट दर्द का मामला सुलझाने की कोशिश की।
7: सुनील, आज सुबह से तुमने क्या क्या किया?
3: सबसे पहले दांत साफ किए, नहा धो के स्कूल गया, घर वापस आके खाना खाया, मीना से धर्मचंद जासूस की कहानी सुनी, फिर
1: तुम अपने घर गए।
3: हाँ, फिर मैं घर गया, रसोई में से गाजर उठाई और भाग के तुम्हारे पास आ गया। उसके बाद
1: एक मिनट सुनील, तुमने वो गाजर धोई भी होंगी है ना?
3: नहीं, गाजर साफ ही तो थी, फिर भला उन्हें धोने की क्या जरूरत थी?
1: क्या तुम कच्ची सब्जियां खाने से पहले उन्हें कभी नहीं धोते?
3: नहीं, माँ भी कभी नहीं धोती, ऐसे ही पका लेती हैं। क्यों?
8: जासूस मीना और जासूस दीपू ने सुनील के पेट दर्द होने की वजह का पता लगा लिया।
1: और वो वजह ये है सुनील, कि तुमने गाजर खाने से पहले उन्हें साफ पानी से नहीं धोया था।
3: मैं कुछ समझा नहीं मीना।
6: मैं समझाती हूँ सुनील।
3: नर्स बहन जी, आप?
6: हाँ सुनील, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी और तुम्हारे पेट दर्द होने का कारण भी जान लिया। सुनील बेटा, ये बात तुम भी याद रखना और घर जाके अपनी माँ को भी बताना कि सब्जी पकाने से पहले उसे साफ पानी में धोना बहुत जरूरी है।
3: नहीं तो क्या होता है नर्स बहन जी?
6: बिना धुली सब्जियों में कीटाणु होते हैं जो हमारे पेट में जाके हमें बीमार कर देते हैं, जैसे अभी तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, समझे?
3: जी बहन जी।
6: अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पेट दर्द की दवा देती हूँ। और हाँ, मेरी बातें भूल मत जाना।
4: भूल मत जाना, सब्जियाँ धो के ही खाना और पकाना।
0: समझे दोस्तों? आप भी नर्स बहन जी की बात याद रखना, सब्जियाँ खाने और पकाने से पहले बिल्कुल ठीक कहा, उन्हें साफ पानी से धोना जरूरी है। अब समय है एक नई कविता का, आओ देखें आज मीना और मिट्टू ने कैसी कविता लिखी है।
1: कह दो अपने माँ बाबा से, दादी और नानी से,
4: सब्जी पकाने से पहले उसे धोए साफ पानी से।
0: वाह वाह वाह, क्या कविता लिखी है अपनी मीना और उसके प्यारे तोते मिट्टू ने, मजा आ गया। अब जब मजे की बात हो ही रही है तो क्यों ना एक मजेदार गाना भी सुन लिया जाए।

0: खाना गाना मजेदार, अब चलते हैं बिल्कुल ठीक कहा, अब चलते हैं खेलने।
1: बच्चों आज का खेल है बड़ा मजेदार, भेद खोलना है उसका जो बैठा है बीच में छुपकर। मैं तुम सबको चार खेलों के नाम बताऊंगी, उन चारों में से एक खेल ऐसा है जो बाकी तीन खेलों से किसी खास वजह से अलग है, बस तुम्हें नाम बताना है उसी अलग खेल का। तो शुरू करें ये खेल।
2: जी।
1: वो चार खेल हैं क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और फुटबॉल। बोलो कौन सा खेल बीच में छुपा हुआ है, यानी वो कौन सा खेल है जो है बाकी तीन से अलग। सोचो सोचो, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या फुटबॉल।
3: क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट का मैच टीवी और रेडियो पे आता है।
1: गोलू, टीवी और रेडियो पे तो बाकी के तीन खेल भी आते हैं। चलो चलो जल्दी से सोचो कौन सा खेल है जो बैठा है बीच में छुपकर, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या फुटबॉल।
4: बहन जी सही जवाब है बैडमिंटन।
1: बिल्कुल ठीक कृष्णा, अब ये बताओ बैडमिंटन का खेल क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल से अलग कैसे है।
4: क्योंकि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल 11-11 खिलाड़ियों की टीमों के बीच में खेले जाते हैं, जबकि बैडमिंटन 2 या 4 खिलाड़ियों के बीच ही खेला जाता है।
3: एक और भी कारण है बहन जी।
1: हाँ हाँ मीना बताओ।
3: क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल गेंद से खेले जाते हैं, जबकि बैडमिंटन में चिड़िया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शटल
1: कॉक।
3: हाँ शटल कॉक, बैडमिंटन शटल कॉक और रैकेट से खेला जाता है।
1: शाबाश मीना, बिल्कुल सही जवाब। तो मजा आया ना बच्चों।
2: जी बहन जी।
0: तो आपको भी मजा आया ना। क्या कहा, बहुत मजा आया। फिर ठीक है, अब मुझे दीजिए आज्ञा, जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
3: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 21वां पाठ, किसकी झलक किसकी छाप, पृष्ठ 192। आछी छी। आशिमा खिड़की के पास बैठी पढ़ रही थी। बहुत तेज हवा चल रही थी, धूल भी उड़ रही थी। अचानक आशिमा को जोर से छींक आई। आछी छी। आशिमा की माँ और पिताजी दोनों रसोई घर में सब्जी छांट रहे थे। माँ ने कहा, देखा, छींकती है तो बिल्कुल आपकी तरह। अगर आप यहाँ ना होते तो मैं समझती कि आप नहीं छींका है। तालिका में लिखो, आशिमा की छींक जैसी क्या तुम्हारी भी कुछ खास पहचान है जो तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से मिलती है? क्या और किससे? तालिका बनाओ जिसमें दो कॉलम हों। एक कॉलम में लिखो तुम्हारी खास पहचान और उसके आगे दूसरे कॉलम में लिखो किससे मिलती है। पृष्ठ 193। बताओ, तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से तुम्हारा चेहरा या कुछ और मिलता है? क्या क्या? इसके बारे में तुम्हें किसी ने बताया या खुद ही पता चला? जब लोग तुम्हारी तुलना तुम्हारे परिवार के सदस्य से करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है और क्यों? तुम्हारे घर में सबसे ऊंचा कौन हंसता है? उसकी हंसी की नकल करके दिखाओ। किसकी मौसी कौन? नीलिमा स्कूल की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई थी। उसने किसी को आते देखा और अंदर जाकर माँ से कहा, अम्मा देखो, तुमसे मिलने कोई मौसी आई हैं। माँ ने बाहर आकर देखा और कहा, अरे पगली, ये तुम्हारी मौसी नहीं, तुम्हारी बहन है। यह तो तुम्हारी सबसे बड़ी नानी के बेटे जगदीश की बेटी किरण है। असल में तो तुम इनके प्यारे से छुटकू समीर की मौसी हो। नीलिमा की बड़ी नानी से लेकर छोटे समीर तक के नामों की सूची बनाओ। नीलिमा का किससे क्या रिश्ता है? लिखो। पता करो, क्या तुम्हारे परिवार में भी अलग अलग उम्र के भाई बहन या मामा भांजे जैसे रिश्ते हैं? घर के बड़ों से पूछो। पृष्ठ 194। कैसे जुड़े हैं हम सब? यहाँ एक चित्र में दो तितलियां दिखाई दे रही हैं। एक बड़ी तितली, एक छोटी तितली, दोनों आपस में बातें कर रही हैं। बड़ी तितली छोटी तितली से कह रही है, तुम्हारी दादी की चचेरी बहन की जो दूसरे नंबर की बिटिया है, तुम बिल्कुल उसके जैसी दिखती हो। नीलिमा छोटे समीर से खेलने लगी। इतने में माँ ने कहा, किरण देखो, मेरी नीलिमा के बाल बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसे हैं, घने काले और घुंघराले। शुक्र है मेरे बालों की तरह सीधे भूरे और बेजान नहीं हैं। नीलिमा की नानी हंसकर बोली, हाँ हैरानी की बात है, जैसे हम बहनों के घने घुंघराले बाल थे, अब वैसे ही हमारी दूसरी पीढ़ी के बच्चों के हैं। सब की बातें सुनकर नीलिमा ने सोचा, कहने को तो हम दूर के रिश्तेदार हैं, मगर आपस में कितने जुड़े हैं हम सब। पता करो और लिखो, नीलिमा के बाल उसकी नानी की तरह घुंघराले हैं। तुम अपनी किसी बहन भाई, चाहे ममेरा भाई चचेरी बहन की कोई पहचान देखो, जैसे आंखों का रंग, गालों में गड्ढा जिसे डिंपल कहते हैं, कद, पतली या मोटी नाक, आवाज। बताओ कि यह पहचान यानी गुण उसकी माँ के परिवार से आई होगी या उसके पिता की तरफ से। एक तालिका बनाओ अपनी कॉपी में और इस तरह से भरो जैसे यहाँ हम नीलिमा का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। आप तालिका में 4 कॉलम बनाओ। पहला कॉलम नीलिमा खास पहचान घुंघराले बाल। दूसरा कॉलम किससे मिलती जुलती है, उसकी नानी से। तीसरा कॉलम माँ की तरफ से, उसमें राइट का निशान। पिता की तरफ से, उसमें गलत का निशान। इसी तरह से आप भी अपने भाई बहनों की तालिका बनाएं। क्या तुमने अपने या किसी और के परिवार में बहुत छोटे बच्चे को देखा है? बच्चे की आंखें, नाक, रंग, बाल या उंगलियां परिवार वालों में से किससे मिलती जुलती हैं? उनके नाम लिखो। पृष्ठ 195। नीलिमा के बाल अपनी नानी जैसे घने, काले और घुंघराले हैं। नीलिमा की माँ के बाल सीधे, भूरे और बेजान हैं। तुम्हारे बाल कैसे हैं? मोटे या पतले? चिकने या रूखे? तुम्हारे बालों का रंग क्या है? अपने बालों का नाप लो और लिखो। क्या तुम्हारे बाल तुम्हारे परिवार में से किसी से मिलते जुलते हैं? किससे? तुम्हारे परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं? तुम ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनके बाल 1 मीटर से लंबे हैं? क्या लंबे बाल होना उनके परिवार की पहचान है? क्या तुम अपने कद का नाप लेना जानते हो? सिर से पांव तक का नाप लो और लिखो। सोचो जब तुम बड़े होंगे तब तुम्हारी लंबाई कितनी होगी और किसके जैसी होगी? अपने घर के लोगों की लंबाई नापो और तालिका बनाओ। यहाँ 2 चित्र दिए हैं। पहले चित्र में एक बच्चा दादाजी के बाल नापना चाहता है, लेकिन दादाजी के तो बाल ही नहीं, बस पीछे की तरफ थोड़े से बाल हैं। बच्चा कह रहा है, दादाजी के बाल नापना आसान नहीं है। दूसरे चित्र में एक दादी को दिखाया गया है जिनकी कमर झुक गई है और वो लकड़ी के सहारे झुक कर खड़ी हैं। और बच्ची उनके सिर से ऊपर आ रही है जो बाल नापने की कोशिश कर रही है। नानी कहती हैं, भाई मैं पहले ज्यादा लंबी थी। पृष्ठ 196। यह कैसा आईना। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें 2 लड़कियां हैं। ऐसा लगता है कि एक लड़की आईने में अपना चेहरा देख रही है क्योंकि शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। क्या सरोजा आईने के सामने खड़ी है? जी नहीं, उसके सामने आईना नहीं, उसकी जुड़वा है। चकरा गए ना? जब कभी वे दोनों मिलती हैं तो उनके मामा जी भी गड़बड़ा जाते हैं। कभी सरोजा को डांट पड़ जाती सुवासिनी की शैतानी की, कभी सुवासिनी खुद अपने मामा को कहती कि सुवासिनी बाहर गई है। आजकल उनके मामा समझ लेते हैं, कहते हैं मराठी में गाकर दिखाओ, ये क्या तरीका हुआ? उनके बारे में पढ़ो तो समझ जाओगे। दोनों बहनें 2 हफ्ते की ही थीं जब सरोजा की चाची ने उसको गोद ले लिया था और अपने साथ पुणे ले गई थीं। चाची के घर में सभी को संगीत का बेहद शौक है। सुबह की शुरुआत ही संगीत से होती है। सरोजा को बहुत से गीत और गाने आते हैं, दोनों भाषाओं में, मराठी और तमिल। उसके घर पर सब लोग तमिल बोलते हैं और स्कूल में ज्यादातर बच्चे मराठी। सुभासिनी चेन्नई में अपने पिता के साथ रहती है। उनके पिता कराटे के कोच हैं। 3 साल की उम्र से ही सुभासिनी बाकी बच्चों के साथ कराटे करने लगी। छुट्टी के दिन दोनों बाप बेटी सुबह से ही अभ्यास करने लग जाते हैं। देखने में दोनों बहनें एक जैसी हैं, पर उनकी पहचान फिर भी काफी अलग है। अब तुम समझे उनके मामा ने उनकी पहचान का तरीका कैसे ढूंढा? चर्चा करो, सरोजा और सुवासिनी में क्या गुण, क्या बातें मिलती जुलती हैं और क्या अलग हैं? क्या तुम किसी जुड़वा को जानते हो? उनमें क्या एक जैसा है और क्या अलग? क्या तुम ऐसे जुड़वा को जानते हो जो एक जैसे नहीं दिखते? सरोजा और सुवासिनी दिखते तो एक जैसे हैं, पर इनमें कई बातें अलग अलग हैं। जैसे सरोजा को दो भाषाएं आती हैं। अगर सुवासिनी के घर पर दो भाषा बोलते तो वह भी दोनों भाषा बोलना सीख सकती थी। बहुत सी चीजें जैसे बुनाई, भाषा, संगीत या पढ़ने का शौक हम आसानी से पा लेते हैं जब हमें उसका माहौल मिलता है। पृष्ठ 197। परिवार से मिला। अपनी क्लास में यह मजेदार सर्वे करो, कितने बच्चे यह कर पाते हैं लिखो। एक, जीभ को तालू की तरफ मोड़ो बिना दांतों से छुए। दो, जीभ को किनारे से उठाकर एक लंबे रोल की तरह बनाओ। तीन, पैरों की सारी उंगलियों को खोलो, बाकी उंगलियों को हिलाए बिना छोटी उंगली हिलाओ। चार, हाथ के अंगूठे को अपनी कलाई से लगाओ। पांच, हाथ के बीच वाली उंगलियों का वी बनाओ, दोनों उंगलियां इधर उधर करके। छह, बिना छुए बाहरी कान हिलाओ। जो बच्चे ये कर पाए वे अपने परिवार वालों से भी ऐसा ही करने को कहें। क्यों, कितने बच्चों को ये बातें उनके परिवार से मिली हैं? क्या माँ बाप से नहीं मिला? सत्ती कुछ ही महीने की थी जब उसकी एक टांग में पोलियो हो गया। इतने वर्षों में उसने कभी भी अपनी इस दिक्कत को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया है। दूर दूर तक पैदल जाना और कई मंजिल सीढ़ियां चढ़ना उसके काम का हिस्सा रहा है। अब जब उसकी शादी हुई तो लोग उसे बच्चा पैदा ना करने की सलाह दे रहे हैं। उसे खुद भी डर है कि कहीं उसके बच्चे को भी पोलियो ना हो जाए। फिर उसने डॉक्टर से सलाह ली। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें डॉक्टर सत्ती से कहते हैं, नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो। माँ या बाप को पोलियो है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को भी होगा। पृष्ठ 198। क्या तुमने कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा या देखा है? क्या तुमने पोलियो की दवाई पिलाने के बारे में कोई खबर पढ़ी है? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पोलियो है? मटर के प्रयोग, चिकने या खुरदुरे। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म सन 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, पर परीक्षा के नाम से ही पसीने छूटते थे। क्या तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल है? यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे ना होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक यानी मुनि बनने का सोचा, ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके, जो मिला भी। पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। उफ, घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग जाते और फेल होते रहे। खैर, उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली। ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आई थी। मेंडल के मरने के कई साल बाद ही वे समझ पाए थे। जब कुछ और लोगों ने ये प्रयोग किए और पाया कि मेंडल ने इस पर पहले ही लेख लिखा था। मेंडल ने पौधों में क्या पाया था? उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुरदुरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने या खुरदुरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदुरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या हरे। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। यही नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज्यादा होंगे। पृष्ठ 199। कुछ परिवार से, कुछ हालात से। विभा दूर से ही जान जाती है कि उसके नाना आ रहे हैं, उनके ठहाके की आवाज सुनकर। नाना जोर से बोलते हैं, ऊंचा भी सुनने लगे हैं। तुम्हारे घर में कोई जोर जोर से बात करने वाले हैं? क्या उनकी ऐसी आदत है या वे ऊंचा सुनते भी हैं? क्या तुम किसी समय या किसी के सामने बिल्कुल जोर से नहीं बोलते? कब और किसके सामने और क्यों और कब जोर से बोलते हो? कुछ लोग सुनने के लिए कान पर मशीन लगाते हैं, कुछ लोग छड़ी या चश्मे की मदद लेते हैं। क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो? किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो ऊंचा सुनता हो। पता करो क्या वह बचपन से ही ऊंचा सुनता है, कब से ऊंचा सुनने लगा है, उन्हें क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। हमने देखा कि हमारे कुछ ऐसी पहचान यानी गुण होते हैं जो हमें परिवार से मिलते हैं। कई हुनर और कई बातें हम अपने माहौल से लेते हैं, पर कभी कोई बीमारी या ज्यादा उम्र की वजह से भी हम में कुछ बदलाव आते हैं। यह सब मिलकर ही हमारी पहचान बनती है। हम क्या समझे? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी कौन कौन सी ऐसी पहचान है जो तुम्हें माँ की तरफ से मिली है? किसकी झलक, किसकी छाप? अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 21वां पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।
2: पूजा तुम्ही देविता।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है बच्चों की दुनिया, जो कि होती है बहुत ही प्यारी, बहुत ही रंगीन और बहुत ही क्यूट, क्योंकि हमारे साथ हैं तीन बहुत प्यारे प्यारे बच्चे स्टूडियो में। तो एक बार आप लोग सब अपना अपना नाम और क्लास बता दीजिए, वहां से शुरू करते हैं, नील से।
3: मेरा नाम है नील, मैं 3rd क्लास पे गया हूँ।
4: मेरा नाम है मयंक वाधवानी, मैं 4th क्लास में हूँ।
5: मेरा नाम है देव।
2: कौन सी क्लास में हो आप?
5: KG1।
2: अच्छा, आप लोग कौन से गेम्स खेलते हो?
3: क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस।
2: आता है टेनिस खेलना है?
4: हाँ। नहीं, हम लोग कई चीटिंग करके बोल रहे हैं।
2: हाँ,
5: मैं करता हूँ।
4: अच्छा, से खेलता है।
2: छुपन छुपाई कौन खेलता है?
4: हम।
5: मैं
2: कहाँ छुपते
4: हो? पकड़ाई।
2: अच्छा, फेवरेट जगह छुपने की कहाँ? देव कहाँ जाके छुपते पहले ये बताओ।
4: बाथरूम में जनरल वॉशरूम।
2: कहाँ छुपते हो?
5: टेबल के नीचे।
2: और आप नील कहाँ छुपते हो? हैं, सीक्रेट जगह कौन सी है?
5: पर्दे के पीछे और कोई रूम खाली होगा उधर का ही छुप जाना, वॉशरूम पे छुप जाना।
2: जल्दी पकड़ में कौन आता है?
5: जल्दी पकड़ पे देव।
2: किसको सबसे जल्दी पकड़ लेना है बताओ?
5: मैं।
2: हाँ।
4: खुद पकड़ जाता है।
2: हाँ,
5: दिला दिया। बोलो ना, बोलो ना, क्या किया मेरी
2: और सब...
5: बोलो ना, क्या किया।
2: और सबसे अभी सबसे लास्ट में अभी गाना बांट रहे, पहले बात कर रहे हैं ना।
5: हाँ,
2: सबसे
5: ठीक है।
2: पहले क्वेश्चंस का आंसर देंगे फिर गाना, ठीक है?
5: ओके।
2: सबसे लास्ट में कौन पकड़ में आता है?
4: सबसे लास्ट में हम दोनों।
2: और क्या क्या खेलते हो गर्मी की छुट्टियों में? क्या करते हो मुझे ये बताओ।
4: हम लोग घूमने आते हैं माउंट आबू।
2: और क्या करते हो गर्मी की छुट्टियों में? डांस करते हो, गाना गाते हो, क्या करते हो?
4: वाटर पार्क पे जाते।
2: वाटर पार्क में जाते हो?
4: गर्मियों की छुट्टियों पे मैं गया ड्रीम एशिया वाटर पार्क।
5: मैं भी।
2: आप भी गए थे?
5: हाँ।
2: आप भी गए थे? तीनों गए थे?
5: हाँ।
4: अरे तू कैसे गया था?
5: हाँ।
4: नहीं गया था।
2: मयंक नहीं गया था?
4: हाँ दीदी।
2: हाँ।
4: मैं, ये लोग तो अलग रहते हैं, मैं तो कटनी में रहता हूँ। ये लोग तो किसी और शहर में रहते हैं। हाँ। तो इनको कैसे पता?
2: हाँ, वो दूसरे वाटर पार्क गया होगा, है ना? चलो बताओ, स्कूल को मिस नहीं करते? जब छुट्टी होती है तो स्कूल की याद नहीं आती?
4: नहीं,
2: बिल्कुल भी नहीं। अब दोस्त भी तो होते हैं स्कूल में, दोस्तों की याद नहीं आती?
4: नहीं,
6: जब मैंने ये तोला था ना तो इसने झोल दिया था।
2: स्कूल की याद किस किस को बिल्कुल नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती?
4: नहीं।
2: दोस्तों को मिस नहीं करते?
4: नहीं।
2: नहीं, तो घर पे क्या करते? दिन भर तो खेल नहीं सकते, फिर क्या करोगे दिन भर?
4: हम दिन भर ही खेलते हैं।
2: दिन भर खेलते हो? घर के अंदर इतनी धूप होती है बाहर तो गर्मियों में, फिर
4: हम लोग बाहर खेलते हैं।
2: गर्मी नहीं लगती इतनी धूप में? नहीं, पसीना नहीं आता ऐसे बहुत सारा?
5: पसीना तो बहुत आता है हमारे को तो।
2: हाँ, तब भी थकते नहीं हो?
4: नहीं
5: नहीं,
2: दिन भर खेलते रहते हो? ऐसा तो नहीं है मम्मी बुलाती तो होगी कि अब घर आ जाओ बहुत हो गया? नहीं,
5: हम खाना खाने ही बस आते।
2: बस खाना खाने जाते हो?
4: हाँ।
2: और खेलते रहते हो दिन भर?
5: रात भर खेलते ही।
2: रात भर खेलते हो?
5: हाँ। क्योंकि ट्यूशन भी नहीं रहती। हाँ। और स्कूल भी नहीं रहती।
4: हाँ,
2: केजी वन की ट्यूशन भी नहीं रहती होगी? नहीं देव।
4: हाँ।
6: मेरी छुट्टी लग गई,
2: छुट्टी लग गई इसलिए। लेकिन फिर नींद नहीं आती रात को?
4: नहीं।
2: अच्छा, एक दूसरे को स्टोरी सुनाते हो?
4: नहीं।
2: भूत वाली स्टोरीज?
4: नहीं।
2: हैं? कोई सुनाता है?
4: नहीं।
2: फिल्में देखते हो आप लोग हॉरर वाली, भूत वाली?
4: नहीं। हाँ, मैं भूतों की कहानियाँ देखता हूँ।
2: देखते हो?
5: मैं नहीं देखता, नहीं तो नींद नहीं आती।
2: नींद नहीं आती ना, डर लगता है ना? मुझे भी लगता है भूत वाली कहानी से तो मुझे,
5: और मुझे रोज ही भूत सपने पे दिखता है,
2: है ना?
5: फिर मैं स्वामान बोलता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा।
2: खुद को स्वामान अपना याद दिलाते ना कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मास्टर सर शक्तिवान हूँ। वेरी गुड। तो आपको नहीं मयंक डर लगता भूत वाली कहानियाँ देखते हो तो?
4: नहीं
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं। तो सपने में भूत आता होगा?
4: हाँ।
2: फिर
4: कुछ नहीं होता?
2: कुछ नहीं होता,
4: क्योंकि वो सब तो नकली होता है।
2: हाँ, नकली तो होता है, ये बात तो सही कही।
5: डरावने दिखते है।
2: हाँ, लेकिन वो देखने में कैसा डरावना सा होता है, ऐसे ऐसे टेढ़ा मुंह होता है, एक आंख होती है, ऐसे खून लगा होता है, कितना डरावना लगता है वो।
5: हाँ,
2: तो डर नहीं लगता?
4: डर नहीं लगता।
2: नहीं, अरे ऐसे।

0: मास्टर सरस्वती महात्मा तो फिर सपने नहीं आएंगे डरावने, तो मैं बोलता हूँ तो सपने हट जाते हैं,
1: हट जाते हैं क्योंकि हम जब भगवान को याद करते हैं ना, और याद करते हैं कि मैं कितना पावरफुल हूँ, तो सब डर के भाग जाते हैं, सारे भूत भाग जाते हैं, है ना। वेरी गुड, आप लोग तो बहुत ब्रेव हो यार, बहुत ब्रेव हो आप लोग तो दोनों ही। और फिर
0: मॉल में को भूत पकड़ता है तो मैं मास्टर सरस्वती मानू वो बोलता।
1: आपको पकड़ता है भूत है? कब पकड़ा आपको भूत ने, रात को पकड़ा कि सुबह पकड़ा?
0: सुबह तो कैसे पकड़ेगा,
2: मैं रात में ट्रेन में सोया तो ट्रेन में मेरे को भूत दिखा,
1: ट्रेन में भूत दिखा,
2: फिर जाला था ऐसे डरावना था, व्हाइट कपड़े
1: पहना था,
2: उसकी डरावना सी आइस थी,
1: डरावनी आइस थी। फिर क्या किया?
2: यश और लवेश मामा भी थे मेरे,
1: यश मामा भी थे,
2: लवेश मामा की दीदी।
1: फिर क्या किया आपने, भूत दिखा तो?
2: मैंने लवेश मामा को बोला भूत देखो,
1: उनको दिखा दिया भूत, उनको देख के तो भूत भाग गया होगा है ना, उसने बोला होगा ये तो बड़े बड़े लोग हैं साथ में इसके, तो भाग जाता हूँ मैं। भागा नहीं भागा भूत?
2: बजरंग बली को बुलाओ कि लाल पली शाह को बुलाओ,
1: आपने बोला ऐसा कि बजरंग बली को बुला लूंगा मैं अभी?
2: तो बोला था तो भूल गया,
1: भूल गए, भूत भाग गया होगा, आपने बोला ना मैं बजरंग बली को बुलाऊं तो भाग गया होगा फिर। अच्छा, मम्मी से डांट पड़ती है किसी को?
2: पड़ती है,
1: पड़ती है, क्यों पड़ती है?
0: इसकी मम्मी से,
2: तूने बहुत हो गया,
1: हाँ अब उसको थोड़ी देर दे दो,
0: अरे मुझे तो दे दो, मैंने तो किया ही नहीं हूँ।
1: अच्छा
0: मुझे दे दे।
1: अच्छा एक एक करके, एक एक करके,
0: अरे मैं इसके बाद तो मुझे होना।
1: अच्छा नील का चांस, फिर उसके बाद वापस देव का चांस।
0: नहीं।
1: अच्छा उसको थोड़ी देर दे दो भाई, थोड़ी देर बाद नील भैया को दोगे पक्का?
0: हाँ।
1: पक्का
0: हाँ।
1: ठीक है चलो
0: दे रही है।
1: हाँ बीच पिलाएंगे, पहले रुको, पहले बताओ देव, बताओ क्यों डांट पड़ती है मम्मी से? मैं बंद कर दूंगी अभी, आपको बोलना नहीं अभी आपको। क्यों डांट पड़ती है मम्मी से?
0: हम इधर उधर चले जाते हैं तो,
1: खेलने में, खेलते खेलते कहाँ चले जाते हो खेलते खेलते?
0: हमारी को पग्गी देखी तो हम ये कमर कुंच बटा, तो हम कमर कुंच घूम के आते, तीन नंबर ट्रांसपोर्ट तक जाते,
1: मतलब कहीं भी चले जाते हो बिना बताए मम्मी को तो डांट पड़ती है। और मयंक को पड़ती है डांट?
3: हाँ इसकी मम्मी चिल्लाती है।
0: क्यों तेरी मम्मी नहीं चिल्लाती क्या?
3: नहीं।
1: क्यों
3: नहीं।
1: आपकी मम्मी से डांट नहीं पड़ती आपको?
0: नहीं, मार पड़ती है, मगर
1: मार पड़ती है,
0: मार पड़ती है,
3: पड़ती है,
1: लेकिन मम्मी को बता के जाना चाहिए ना जहाँ भी जाना चाहिए, ये सही बात है या नहीं पहले सब लोग बताओ, मम्मी को बता के जाना चाहिए या नहीं, है मयंक? मम्मी को बता के जाना चाहिए या नहीं सब जगह?
3: हाँ मैं तो जाता हूँ,
0: मैं भी,
3: ये लोग बग्गी में, मैं तो जाता हूँ अपनी मम्मी को बता के। इन लोग की मम्मी अभी ना ब्रेड डिपार्टमेंट से भाग के आ गए, तो इसकी मम्मी ने मुझे डांटा, इन लोग को थोड़ी ना डांटा।
1: तो आप नील बता के नहीं जाते मम्मी को, तो बताओ फिर नील आप बता के क्यों नहीं जाते मम्मी को जहाँ जाते हो?
0: क्योंकि हम आ जाते हैं,
1: टाइम से आ जाते हैं, देर करते हो,
0: मगर मम्मी बॉस नहीं दे रहती, बॉस दे रहेगी तो मम्मी टाइम बोलेगी तो मैं टाइमिंग देख के आ जाऊंगा।
1: अच्छा मतलब घड़ी चाहिए आपको, घड़ी देख के टाइम देख के, तो मम्मी को बोला आपने कि मम्मी मेरे को घड़ी चाहिए
0: मम्मी
1: ताकि मैं टाइम से आ जाऊं?
0: मैं बोला था फिर भी नहीं दिलाई,
1: फिर भी नहीं दिलाई। अच्छा कोई बात नहीं मम्मी, हो सकता है आपको बड़े हो जाओगे आप थोड़ा तब दिलाएंगी वॉच, बड़े लोग पहनते हैं ना वॉच, है ना, आप लोग छोटे छोटे
0: हो। नहीं
1: नहीं
0: मम्मी इसीलिए नहीं बनाती है क्योंकि घूम कर देता,
1: घूम कर देते हो?
0: अभी घूम नहीं करूँगा, घूम नहीं करूँगा बोल रहा हूँ फिर भी नहीं दिला रही।
1: तो आप अच्छे बच्चे बन के दिखाओगे ना उनको, सब चीजें जगह पे रखोगे, बता के जाओगे।

0: तो फिर मम्मी दिलाएंगे वॉच, है ना देव? चलो तो हम सब इस गर्मी की छुट्टियों में अपनी अपनी मम्मी को प्रॉमिस करेंगे कि हम बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे, उनको बता के जाएंगे जहाँ भी जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। पहले बोलो यस, सब लोग बोलो यस, हम प्रॉमिस करते हैं,
1: हम प्रॉमिस कर ले।
0: मयंक ने बोला ही नहीं,
2: हम प्रॉमिस करते हैं।
0: फिर से 1 2 3 यस
3: यस,
0: हम प्रॉमिस करते हैं,
3: हम प्रॉमिस करते हैं,
0: जहाँ भी जाएंगे,
3: जहाँ भी जाएंगे
0: मम्मी को बता के जाएंगे,
3: मम्मी को बता के जाएंगे
0: और टाइम से घर वापस जाएंगे,
3: टाइम से घर वापस जाएंगे।
0: ये वेरी गुड, तो अब बजाएंगे हम गाना। अच्छा और लेते हैं इजाजत रेडियो मधुबन 107.8 FM से, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय
3: बाय बाय।

0: कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।
2: हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, आप सुन रहे हैं दिल है छोटा सा भावना बड़ी सी।
3: छोटी बड़ी बातें, इनमें छुपी है बच्चों के दिल की बात।

0: जी हाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी बड़ी बड़ी भावनाएं महसूस होती हैं, डर, खुशी, ईर्ष्या, गुस्सा, मगर उनके पास इनके लिए ना तो नाम है ना समझने का तजुर्बा। तो ऐसे में माता पिता या देखभाल करता होने के नाते हमें उनकी भावना को नकारना या अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे मान्यता देनी चाहिए, बच्चों को उसे समझने में मदद करनी चाहिए। मैं जब भी अपनी बेटी के साथ होता हूँ तो उसकी भावनाओं की पुष्टि करता हूँ, क्योंकि आज हम उन्हें खुद की भावनाएं समझने में मदद करेंगे तो आगे चलकर उन्हें अपने आप को समझने में मदद मिलेगी। लगता है एल्मो को भी कोई बड़ी भावना महसूस हो रही है। चलिए सुनते हैं एल्मो के मम्मी पापा कैसे उसे समझते और समझाते हैं।
1: एल्मो अपना नया बाजा बजाएगा, पी पी पी, जैसे पीकू बजाती है। ओहो, ऐसे नहीं, एल्मो को ठीक से बजाना है, पीकू जैसे। बजना भी नहीं आता, एल्मो को नहीं बजाना।
2: एल्मो, एल्मो, तुम तैयार हो? तुम्हारा पीकू के साथ खेलने का टाइम है, चलो मैं तुम्हें पीकू के घर छोड़ाऊं।
1: एल्मो को अभी पीकू के घर नहीं जाना।
2: अभी नहीं जाना? थोड़ी देर बाद जाना है एल्मो।
1: अभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना।
2: क्या हुआ एल्मो, तुम्हारा खेलने का मन नहीं है? तुमने तो कहा था अब तुम पीकू को बाजा बजा कर सुनाओगे।
1: एल्मो को बाजा नहीं बजाना, कभी भी नहीं।
2: बाजा नहीं बजाना तो कुछ और खेल लेना।
1: एल्मो को पीकू के साथ कुछ नहीं खेलना।
2: पीकू के साथ नहीं खेलना? क्या हुआ एल्मो, पीकू से कोई लड़ाई हुई है क्या?
1: एल्मो पीकू की तरह बाजा नहीं बजा सकता, इसीलिए एल्मो पीकू के साथ नहीं खेलेगा।
2: ओ ओ ओ, लगता है एल्मो को पीकू के सुर में बाजा बजाने से जलन हो रही है, इसलिए वो उसके साथ खेलना नहीं चाहता। अच्छा एल्मो, यहाँ आओ मेरे पास। क्या तुम्हें लगता है कि पीकू तुमसे अच्छा बाजा बजाती है?
1: हाँ मम्मी, एल्मो जब बाजा बजाता है तो उसमें से ऐसी आवाज आती है, पर जब पीकू बाजा बजाती है तो पी पी पी पी पी ऐसी आवाज आती है।
2: और एल्मो को ये सोचकर अच्छा नहीं लग रहा।
1: एल्मो को एकदम चू चू चिड़चिड़ लग रहा है ऐसे।
2: ओ एल्मो, लगता है कि तुम्हें एक बड़ी भावना का एहसास हो रहा है।
1: बड़ी भावना?
2: हाँ एल्मो, तुम्हें पीकू के बाजा बजाने के गुण से जलन हो रही है।
1: जलन?
2: हाँ एल्मो, कभी कभी जब कोई वो काम कर सकता है जो हम नहीं कर सकते, या उनके पास कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद है मगर हमारे पास नहीं है, तो हमें जलन होती है।
1: मम्मी को भी जलन होती है?
2: हाँ बिल्कुल, कभी कभी मम्मी को भी जलन होती है।
1: एल्मो को ये जलन वाली भावना एकदम अच्छी नहीं लग रही।
2: ठीक है एल्मो, ये भावना हमेशा नहीं रहने वाली। चलो हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमें फिर से अच्छा लगने लगे। तो हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे। रेडी?
1: एल्मो रेडी है।
2: अब कैसा लग रहा है एल्मो?
1: एल्मो की थोड़ी चू चू चिड़चिड़ कम हो गई।
2: बहुत बढ़िया, तो अब ये सोचो कि वो क्या है जो तुम अच्छे से करते हो, जो तुम्हें खास है।
1: एल्मो गाना गा सकता है ऐसे। ला ला ला ला ला ला ला अरे टट्टू अरे टट्टू ला ला ला ला ला ला ला ला अरे टट्टू।
2: अरे वाह एल्मो, तुम तो बहुत सुंदर गाते हो।
1: थैंक यू मम्मी। मम्मी, एल्मो को आइडिया आया है, एल्मो पीकू के साथ मिलकर एक बैंड बनाएगा।
2: बढ़िया आइडिया है।
1: हाँ, पीकू बाजा बजाएगी और एल्मो गाना गाएगा। चलो चलो मम्मी, जल्दी चलो, एल्मो को पीकू के साथ खेलना है।
2: ओहो एल्मो, हाँ हाँ चलो मैं चप्पल तो पहन लूँ।
0: अरे वाह मैं, आपने तो बहुत अच्छे ढंग से एल्मो की भावना की पुष्टि की, उसको समझा। आपकी मदद से एल्मो ने अपनी उलझन का कितना सुंदर हल ढूंढ निकाला।
2: हाँ, एल्मो को जब कोई बड़ी भावना महसूस होती है तो वो उलझ जाता है। उसे खुद समझने में मुश्किल होती है, उसे जो लग रहा है वो क्यों लग रहा है। इसलिए मैं उसे अपनी भावना समझने में मदद करती हूँ, ये बताकर कि कोई भी भावना गलत नहीं है।
0: हाँ, और आपने उसकी जलन की भावना को नकारा नहीं, बल्कि उसे अपनी भावना समझने में, स्वीकारने में मदद की। उससे ये नहीं कहा कि ऐसा मत सोचो या ये भावना अच्छी नहीं है।
2: हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ी भावनाएं होना ठीक है, हम सभी को ये भावनाएं होती है। हम बड़ों को भी तो सभी भावनाएं महसूस होती हैं। जब हम उन्हें समझाते हैं कि कोई भी भावना हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, तभी तो उन पर काबू पाते हैं।
0: बिल्कुल सही, बच्चों को भी वही भावनाएं होती हैं जो हमको, और आज हम उन्हें अपनी भावना की पुष्टि करने में, उसको मान्यता देने में, स्वीकारने में, समझने में मदद करेंगे, तो आगे भी उनको फायदा होगा। तो अपने बच्चों को देखें, समझें और भावनाएं समझने में मदद करें। तो चलो खेलें सब संग।
3: सेसेमी वर्कशॉप इंडिया द्वारा निर्मित, UBS ऑप्टिमस फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा समर्थित।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: EIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 11वां पाठ, सुनीता अंतरिक्ष में, पृष्ठ 99। सुनीता अंतरिक्ष में। दिल की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है? अपनी कॉपी में चित्र बनाओ, इसमें तुम कहाँ हो यह भी दिखाओ, अपने साथियों के बनाए चित्र को भी देखो। कैसी है हमारी पृथ्वी? उजैरा और शाहमीर ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे हैं, तुम भी पढ़ो वे क्या बातें कर रहे हैं। उजैरा बोली, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं। मैंने सुना है कि वे 6 महीने से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रहीं। शाहमीर ने कहा, ये रहा अमेरिका, ये है अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहाँ है? उजैरा बोली, अरे भाई ये सारा आसमान है, ये तारे चांद सूरज ये सब अंतरिक्ष में हैं। शाहमीर, हाँ पता है, सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेसशिप से गई थी, टीवी पर बताया था कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा। उजैरा बोली, हाँ वहाँ से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखाई देती है। शाहमीर बोला, अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो उसमें हम कहाँ हैं? उजैरा ने एक पेन उठाया और ग्लोब के ऊपर टिका दिया। उजैरा बोली, यहाँ ये रहे हम, यहाँ है इंडिया। शाहमीर बोला, फिर ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे, जरूर हम सब ग्लोब के अंदर होंगे। पृष्ठ 100। उजैरा बोली, अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है और तारे सूरज और चांद कहाँ होंगे? हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे, सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर होंगे। शाहमीर बोला, तो यहाँ क्या लोग उल्टे खड़े होंगे, ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? उजैरा बोली, हाँ अजीब सा लगता है, और यह नीला नीला समुद्र है ना, फिर यह पानी भी क्यों नहीं गिर जाता? तुम्हें क्या लगता है हम धरती पर कैसे टिके हैं? अगर पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं? सुनीता से बातचीत। जब सुनीता विलियम्स भारत आईं, तो उजैरा और शाहमीर जैसे हजारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती हैं कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थीं। कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता भारत आईं। पृष्ठ 101। सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें। हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते थे, यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह

इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। वहां खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही खड़े रहते। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था, लेकिन मुश्किल भी। यहां सुनीता विलियम्स के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र एक, यह भरी उड़ान, 9 दिसंबर 2006। अरे पांव टिकते ही नहीं, 11 दिसंबर 2006। यह खाना कहाँ उड़ा जा रहा है, 11 दिसंबर 2006। यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में, 16 दिसंबर 2006। फोटो देखो और लिखो। अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों रहते होंगे, बाल नीचे क्यों नहीं बैठते थे? सुनीता के इन सब चित्रों को देखो और बताओ कि उनमें कब क्या क्या होता दिख रहा है। क्लास बनी अंतरिक्षयान यानी स्पेसशिप। आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्षयान बन गई है। तुम शूं से 10 मिनट में अंतरिक्ष में पहुंच गए हो। तुम्हारा यान अब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब बताओ, क्या एक जगह बैठ भी पा रहे हो? बालों का क्या हाल है? अरे भाई, बस्ता और किताबें कहाँ घूम रही हैं? और टीचर जी क्या कर रही हैं? उनकी चौक का क्या हुआ? आधी छुट्टी में खाना कैसे खा पाए? पानी कैसे पिया? बॉल उछाली तो क्या हुआ? चित्र बनाकर या एक्टिंग करके ये सब दिखाओ। कुछ तो है कमाल। पृथ्वी पर कुछ भी उछालें तो वह वापस नीचे आता है। बॉल उछालकर वापस पकड़ पाते हो ना? पृथ्वी पर तो हम तैरते नहीं फिरते। पानी रखते हैं तो गिलास में रहता है या बाल्टी में टिका रहता है। बुलबुले बनकर घूमता नहीं फिरता। यह कमाल पृथ्वी का ही है। पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींच कर रखती है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सोचो, 360 किलोमीटर दूर कितना होता है? तुम जहां रहते हो वहां से 360 किलोमीटर कौन सा शहर है? सुनीता उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी। क्या अब बता सकते हो कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों थे? सोचो, किसी भी ढलान से पानी नीचे की ओर ही क्यों बहता है? पहाड़ से भी पानी नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं बढ़ता? पृष्ठ 104। जादू एक, नन्ना सा कागज, चला सिक्के की चाल। एक 5 रुपए का सिक्का लो और कड़े कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जो सिक्के के चौथाई भर हो। एक हाथ में सिक्का और दूसरे हाथ में नन्ना कागज पकड़कर दोनों एक साथ गिराओ। क्या हुआ? अब नन्हे कागज को सिक्के के ऊपर रखो और फिर दोनों को एक साथ गिराओ। इस बार क्या हुआ? चौंक गए क्या? जादू दो, चूहे ने हाथी को ऊपर उठाया। इस खेल के लिए एक छोटा पत्थर मेर के बराबर साइज का, एक बड़ा पत्थर नींबू के बराबर और एक कागज का रोल लो। कागज की कई तहों से एक रोल बना सकते हो।
लगभग 2 फुट लंबी डोरी लो। डोरी के एक सिरे पर छोटा पत्थर बांधो। कागज पर चूहा बनाकर पत्थर पर चिपकाओ या बांधो। डोरी के एक सिरे पर छोटा पत्थर बांधो। कागज पर चूहा बनाकर पत्थर पर चिपकाओ या बांधो। अब डोरी के दूसरे सिरे को कागज के एक रोल में डालो। इस सिरे पर बड़ा पत्थर बांधो और कागज पर बनाया हाथी उस पर चिपकाओ। कागज के रोल को गोल गोल घुमाओ ताकि छोटा पत्थर घूमने लगे। खींच रहा है ना चूहा हाथी को? खेल में चूहे ने ऐसा कमाल कैसे दिखाया होगा? लकीरें आखिर हैं कहाँ? स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती है, पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है। इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखती है। पृष्ठ 105। तुम भी देखो हमारी पृथ्वी का एक फोटो जो एक स्पेसशिप से लिया गया है। आज तो हम ये फोटो देख पा रहे हैं, पर हजारों सालों से लोग कल्पना ही करते रहे कि भला पूरी पृथ्वी कैसी दिखती होगी। वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते रहे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, कैसे घूम रही है। फोटो को देखो और बताओ, क्या भारत को पहचान पा रहे हो? क्या कोई और जगह पहचान पा रहे हो? देखो समुद्र कहाँ कहाँ है। ग्लोब और इस फोटो में क्या कुछ मिलता जुलता है? क्या कोई फर्क भी दिखता है? क्या सुनीता अंतरिक्ष से भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा को अलग अलग बता सकती थी? अपने स्कूल में ग्लोब को देखो और बताओ, क्या भारत को ढूंढ पाए? इसमें समुद्र कहाँ कहाँ दिख रहा है? इसमें कौन कौन से देश तुम देख पाए? भारत जिन देशों के साथ क्रिकेट मैच खेलता है, क्या उनमें से कुछ को देख पाए, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका? और क्या क्या देखा? उजैरा और शामिर ग्लोब पर अलग अलग देशों को देख रहे हैं। उजैरा बोली, ग्लोब पर तो सारे देशों के बीच लकीरें दिखाई देती हैं, क्या पृथ्वी पर ऐसी लाइनें खींची होती हैं? शाहमीर बोला, लकीरें तो होती हैं, हमारी किताब में इंडिया के नक्शे में भी हैं। देखो राज्यों के बीच में लाइनें साफ दिख रही हैं। उजैरा बोली, अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में जमीन पर ऐसी लाइनें दिखेंगी? पृष्ठ 106। अपने देश के नक्शे को देखो और बताओ, क्या तुम अपने राज्य को पहचान पाए? नक्शे पर उसका नाम लिखो। तुम्हारे राज्य से लगे हुए कौन से राज्य हैं? क्या तुम कभी किसी और राज्य में गए हो? शामिर यह सोचता है कि राज्यों के बीच में जमीन पर लाइन बनी होती है। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसे बहुत सुंदर लगी और उसके मन में कई ख्याल आए। सुनीता कहती हैं, इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और जमीन कहाँ है। अलग अलग देश नहीं दिखते। जमीन का देशों में बंटवारा तो हमारा ही किया हुआ है। ये लाइनें तो कागज पर ही होती हैं। मैं चाहूंगी तुम भी इसके बारे में सोचो कि लकीरें आखिर हैं कहाँ। चलो आसमान को देखें। शाहमीर एक आंख बंद करके चांद की तरफ देखते हुए और सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए बोलता है, मैं चांद को सिक्के से छुपा सकता हूँ। उजैरा बोली, वाह, इतने बड़े चांद को इतने छोटे से सिक्के ने छुपा दिया। तुम भी सिक्का लेकर चांद को छुपाने की कोशिश करो। सिक्के को आंखों से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर चांद को छुपा पाए? सोचो, क्या चांद सिक्के की तरह चपटा होगा
या बॉल की तरह गोल? क्या तुमने कभी रात में आसमान को गौर से देखा है? अंधेरी रात में चमकते तारों को देखने का मजा ही कुछ निराला है। कभी तो चांद चांदनी बिखराता है, तो कभी घुप अंधेरी रात में ढूंढते नहीं मिलता। पृष्ठ 107। आज चांद को देखो और उसका चित्र बनाओ। एक हफ्ते बाद कैसा दिखता है और 15 दिन बाद कैसा दिखता है, उसका भी चित्र बनाओ। आज की तारीख, एक हफ्ते बाद की तारीख और 15 दिन बाद की तारीख। पता करो अगली पूर्णमासी कब है, उस दिन चांद किस समय निकलेगा, कैसा दिखेगा। चांद से जुड़े कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? आसमान को ध्यान से 5 मिनट तक देखो, क्या क्या देख पाए? क्या कोई चीज चलती हुई सी भी दिखी? यह क्या हो सकता है? क्या वह तारा होगा या टूटता तारा या कोई उपग्रह जिसका इस्तेमाल टीवी के लिए, टेलीफोन या मौसम की जानकारी के लिए करते हैं? पता करो। अभ्यास। दिल्ली में कुछ दिनों तक चांद के निकलने और डूबने का समय तालिका में दिया गया है। तालिका। तारीख 28 अक्टूबर 2007। चांद निकलने का समय 19:16 और चांद डूबने का समय 8:50। तारीख 29 अक्टूबर 2007। चांद निकलने का समय 20:17। चांद डूबने का समय 10:03। तारीख 30 अक्टूबर 2007। चांद निकलने का समय 21:22। चांद डूबने का समय 11:08। तारीख 31 अक्टूबर 2007। चांद निकलने का समय 22:29। चांद डूबने का समय 12:03। पृष्ठ 108। तालिका के अनुसार बताओ 28 अक्टूबर को चांद शाम के रिक्त स्थान बचकर रिक्त स्थान मिनट पर निकला। 29 अक्टूबर को चांद शाम के रिक्त स्थान बचकर रिक्त स्थान मिनट पर निकला। 29 अक्टूबर को चांद निकलने में रिक्त स्थान घंटे और रिक्त स्थान मिनट का फर्क आया। अगर तुमने आज शाम को 7 बजे चांद निकलते देखा, तो क्या कल भी ठीक 7 बजे चांद देख पाओगे? 31 अक्टूबर को चांद डूबने का समय 12:03 दिया है। क्या तुमने कभी दिन के 12 बजे चांद देखा है? दिन में हमें चांद तारे आसानी से क्यों नहीं दिखते? कवि भी इस कविता में कुछ इसी तरह के सवाल उठा रहा है। आसमान में कितने तारे, क्या तुमको दिखते हैं सारे? किस किस का तुम नाम जानते, कौन है कितने पास तुम्हारे? आसमान में कितने तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे, रात में क्यों दिखते हैं तारे? क्यों होता है गोरख धंधा, जगमग क्यों करते हैं तारे? दिन में क्यों छिपते हैं तारे, हर तारे की बात पुरानी, कुछ की लेकिन सही निशानी। क्या देखा क्या जाना तुमने, बोलो इनकी राम कहानी, हर तारे की बात पुरानी। ये कविता अनवारे इस्लाम ने लिखी है। पृथ्वी का एक मजेदार फोटो। चांद पर एक स्पेसशिप गया था, उसमें लगे कैमरे ने चांद की सतह से पृथ्वी की ऐसी फोटो खींची थी। देखो पृथ्वी कैसी दिख रही है, चांद की सतह कहाँ दिख रही है। चित्र देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या कुछ सवाल आए? सवाल लिखो और क्लास में चर्चा करो। पृष्ठ 109। हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। सुनीता जब 5 साल की थी, उन्होंने टीवी पर
नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती हैं कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रहीं। सुनीता बनना तो गोताखोर चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे की पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने डट कर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। सुनीता कहती हैं कि जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कई नए दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। सुनीता से जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर, ताकि वे बच्चों को समझा पाएं कि विज्ञान और गणित कैसे जिंदगी से जुड़े हैं। हम क्या समझे? बच्चे फिसल पट्टी यानी स्लाइड पर नीचे की ओर ही क्यों फिसलते हैं, नीचे से ऊपर क्यों नहीं? अगर यह फिसलन सुनीता के अंतरिक्ष यान में पहुंच जाए तब क्या ऐसे फिसल सकेंगे? क्यों? तारे ज्यादातर रात में ही क्यों दिखते हैं? सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहां से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज पर ही होती हैं। इससे तुम क्या समझे? सुनीता अंतरिक्ष में। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का ये 11वां पाठ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में सफलता का आधार मूल्य शिक्षा। इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और काफी अच्छी बातें आप जो है पिछले एपिसोड में आपने सुना, हंसते हंसते मन के विचार। अब हम लोग आइए एक और टॉपिक पर विचार करेंगे जो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, और सदा खुश रहने का आधार स्वयं के मूल्यों पर विचार। तो मूल्य दीवारें शिक्षा में क्रांति ला सकते हैं, इसलिए कहा जाता है अगर व्यक्ति को कुछ बनना है तो आपको अपने विचारों को सुंदर बनाना है, अपने विचारों को सेट करना, अंग्रेजी भाषा में अगर हम लोग कह दें तो। विचारों का जो है क्रिएशन भी आप खुद करते हैं, उसकी पालना भी आप खुद करते हैं, लेकिन यही है कि ये सूक्ष्म है, इस पर कोई काम नहीं करता और हम लोग चीज़ों को देखते हुए उस आधार से सोचना शुरू कर देते हैं। वो बिल्कुल एक सेकेंडरी हो जाता है जहाँ पर हम अपने जीवन को संवार नहीं पाते, उसको मजबूत नहीं बना पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं के विचारों पे काम करता है, स्वयं के विचारों को नियंत्रण करता है और समाज और स्वयं के प्रति कल्याण की भावना से विचार करता है, वो व्यक्ति अपने जीवन को खूबसूरत बना सकता है। उसके लिए बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाता है, चाहे चीज़ें हो या ना हो, खुश रहना उसकी फितरत बन जाती है। तो सदा खुश रहने का आधार स्वयं के मूल्यों पर विचार, इस विषय को लेकर हमारे साथ हमेशा की तरह राजेश जी हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से राजेश जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे, मजे में।
0: जी जी जी, तो मैं चाहूंगा कि आज का हमारा जो विषय है, इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, थोड़ा सा बताइए अपने विचार।
1: देखिए, हमने जितने भी पिछले एपिसोड्स किए हैं या हमने जो बात की है, हमने ये जाना भी, समझा भी और अनुभव भी किया है कि खुशी, शांति, आनंद, प्यार, शक्ति, ये सब हमारे अंदर है। और ये हमने अनुभव भी किया है क्योंकि हमने योग के द्वारा इसको अनुभव भी किया कि जब हम योग में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, राजयोग करते हैं, अपने मन के ऊपर ध्यान एकाग्र करते हैं, तो हमें अपने अंदर सच्ची खुशी, सच्ची शांति, सच्चे आनंद का अनुभव होता है। लेकिन मुश्किल वहाँ आती है कि जब हम समाज में जाते हैं, अपने कर्म में जाते हैं, व्यवहार में जाते हैं, तो जो बाह्य वातावरण है वो हमें बाहर की तरफ खींचता है, तो हमारा मन जो है वो बाहर की तरफ भटकना शुरू हो जाता है, तो मन भ्रमित हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, बाहरी आकर्षण। जैसे मान लीजिए आप 5-स्टार होटल में जाते हैं, आपको पता है कि घर का खाना जो है, माँ के हाथ का बना हुआ खाना, उसका टेस्ट जो है वो आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो उस जैसा स्वाद आपको नहीं मिलेगा। लेकिन पर क्योंकि 5-स्टार होटल की चकाचौंध इतनी होती है कि आप एक दिन तो वहाँ का खाना खा सकते हैं, 2 दिन खा सकते हैं, 3 दिन खा सकते हैं, लेकिन सारी उम्र नहीं खा सकते हैं। अल्टीमेटली आपको याद किसकी आती है? माँ के भोजन की। तो इसी तरह ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो मूल्य हैं, ये हमारे अंदर ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाह्य जगत, जिसको आध्यात्मिकता में माया भी कहा गया है, ये जो बाह्य जगत है ये हमें भ्रमित कर देता है। भौतिक वस्तुएं हमें भ्रमित कर देती हैं कि शायद खुशी कहीं बाहर है, शांति कहीं बाहर है, मुझे ज़्यादा भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने में खुशी मिलेगी, या दूसरों से मिलेगी, या दूसरों के ऊपर निर्भर करने से मिलेगी, या मुझे बड़ी, बहुत बड़ी पदवी मिल जाए उसमें मिलेगी, या मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए उसमें मिलेगी। और मन हमारा जो है अपने ऊपर ध्यान एकाग्र करने की जगह, अपने ऊपर विचार करने की जगह दूसरी चीज़ों पर, बाहरी चीज़ों पर विचार करना शुरू कर देता और फिर भटक जाता है। फिर हम अपने कर्मों में भटक जाते हैं, फिर हम खो जाते हैं और ऐसी दुनिया में खो जाते हैं, कैसे हम बिल्कुल धरातल में चले जाते हैं, कहाँ पर एक पंछी आसमान में उड़ने वाला और कहाँ वो जो है वो धरातल पर आ जाता है, वो ज़मीन पर चलना शुरू कर देता है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है, खासकर हमें अपने ऊपर चिंतन करना है। जैसे हमने कहा कि ध्यान, ध्यान जो है हमारे जीवन की एक दिनचर्या बन जानी चाहिए, एक हिस्सा बन जाना चाहिए, अभिन्न अंग बन जाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो 21वीं सदी है ये भौतिकता का इतना युग है कि भौतिकता का भरमार है। तो जैसे हम भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, स्टडी करते हैं, अपनी नौकरी पर जाते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, इसलिए ध्यान करना, ध्यान करना माना क्या, अपने मूल्यों पर विचार करना कि खुशी मेरे अंदर है, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। हमें स्मृति स्वरूप बनकर रहना है, अपने मूल्यों पर ध्यान देना है, हमें अपने आप को समय देना है। तो कम से कम रोज हमें अपने आप को आधा घंटा देना, चाहे आप सुबह दें चाहे आप शाम को देंगे, क्योंकि सारे दिन में जब हम भटक कर आते हैं तो फिर हमारा वापस अपने उस आंतरिक केंद्र की ओर लौटना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी, सच्ची शांति, सच्चा आनंद मेरे अंदर ही है। और ये जो मूल्य हैं, ये हमारे जन्मजात मूल्य हैं, जिनको हमारी हम अपनी इनेट वैल्यूज़ कहते हैं या जिनको हम अपनी इटर्नल वैल्यूज़ कहते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर ही हैं, बाय बर्थ ही हैं, लेकिन हम ढूंढते उनको बाहर हैं। यही हमने जाना था ना सफलता का मतलब क्या, कि हम सदा खुश रहें, मेरा जीवन शांति से व्यतीत हो, मैं संतुष्ट हूँ। और इन्हीं मूल्यों के आधार से जो भी बाकी मूल्य हैं, इन्हीं से उनकी उनका जन्म होता है दूसरे मूल्यों का। कौन से दूसरे मूल्य हैं, जैसे ये इनेट मूल्य है, लेकिन पारिवारिक मूल्य, परिवार में रहना है तो हमें पारिवारिक मूल्यों की भी ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, आपसी प्यार की ज़रूरत है, एक दूसरे में विश्वास की ज़रूरत है। लेकिन ये मूल्य भी कहाँ से आते हैं, ये भी इनेट वैल्यूज से आते हैं। पारिवारिक मूल्य के बाद फिर हमें सामाजिक मूल्यों की आवश्यकता है। सामाजिक मूल्यों में ईमानदारी आ जाती है, पारदर्शिता आ जाती है, कि हम सब एक दूसरे के साथ ईमानदार रहें, पारदर्शिता से एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, पारदर्शिता से सरकारी ऑफिस में काम करें। उसके बाद फिर हमारी मॉरल वैल्यूज़ आ जाती हैं, हमारे नैतिक मूल्य आ जाते हैं, फिर हमारी प्रोफेशनल वैल्यूज़ आ जाती हैं, पेशेवर वैल्यूज़ आ जाती हैं। ये भी वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं, जब हमारे इननेट वैल्यूज़ जो हैं हमारे अंदर होंगी, वो हमारे ध्यान में होंगी, हमारा ध्यान उनके ऊपर होगा, तभी ये नेचुरली बाकी सारी वैल्यूज़ अपने आप ही हमारे अंदर आ जाएंगी। हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा, हमारी जॉब भी बहुत अच्छी जाएगी, हमारे पारिवारिक संबंध भी अच्छे हो जाएंगे, और हमारा समाज भी जो है उसके लिए हम एक एग्जाम्पल बन सकेंगे और हम अपने समाज के लिए कार्य कर सकेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि हम अपने उन इनेट वैल्यूज़ को भूलते जा रहे हैं और बाहरी जगत में जाते जा रहे हैं। अभी ही मेरे को याद आ रहा है, 3 दिन पहले मैंने न्यूज़ सुना कि एक सर्जन थी और केरला में वो गवर्नमेंट जॉब कर रही थी और गायनेकोलॉजिस्ट थी, सर्जन थी, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया। कारण क्या था? कारण था कि उसकी जिस लड़के से शादी होने वाली थी वो भी डॉक्टर था, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे बहुत बड़ा दहेज मांग लिया कि 15 एकड़ ज़मीन चाहिए, BMW गाड़ी चाहिए और 50 तोले सोना चाहिए। वो कुछ तो दे रहे थे लेकिन सारा कुछ नहीं दे रहे थे। कहते थे कि लड़के के माँ बाप ने शादी के लिए इनकार कर दिया। अब देखो, अपनी खुशी के लिए हम दूसरों पर निर्भर रह रहे हैं। वो लड़की को लगा, अगर इस लड़के से मेरी शादी नहीं होगी तो मैं जीवन में खुश नहीं रह पाऊँगी। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास जो है, जो मूल्यों का खजाना है, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन भौतिक वस्तुएं, भौतिक रिश्ते जो जिनको हम कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते, या हमें पता ही हमें धोखा देंगे, या हमें कभी ज़िंदगी में सुख नहीं दे रहे, उनके लिए हम अपना जीवन खराब कर रहे हैं। तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? अपने मूल्यों के ऊपर। जो हमारे पास है, हमारा ध्यान उनके ऊपर होना चाहिए। जो हमारे पास नहीं है, हमारा ध्यान उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम यही है कि लोगों के पास 90% चीज़ें हैं, खुशियाँ हैं, आनंद है, लेकिन जो उनके पास नहीं है उनके पीछे वो भाग रहे हैं और उनका जीवन जो है वो ख़त्म हो रहा है। इसीलिए हमेशा स्वयं के ऊपर अपना ध्यान रहें, न केवल इसके ऊपर। आप देखें, आप अपने पहचाने अपने आप को कि ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है, भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, और हम उसके लिए ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को, गॉड को, या जिसको भी आप सर्वशक्तिमान मांगते हैं या ऐसी शक्ति मानते हैं जो इस प्रकृति को चलाती है, जो इस नेचर को चलाती है, जो सर्वशक्तिमान है, उसने आपको कितना कुछ दिया है। आप सोचें ज़रा, देखें तो सही, विचार तो करें कि मेरे पास कितना अथाह मूल्य है, मेरे पास कितना ज्ञान है, मेरे पास कितनी भौतिक वस्तुएं हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मेरे पास जीवन है। अगर जीवन है तो सब कुछ है, अगर जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। आज देखें पूरी दुनिया में एक पूरे एक दिन में 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद ईश्वर का इसलिए दें कि आज मैं सुबह उठाऊँ तो मेरी आँख खुली है, मैं जीवित हूँ, भगवान ने मुझे जीवन दिया, एक और नया दिन जिसमें कि मैं पता नहीं क्या करूँ, कुछ खाऊंगा, कुछ गाऊंगा, कुछ आनंद करूँगा, कुछ एंजॉय करूँगा। सुबह उठते ही आप क्यों नहीं सोचते कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। 10 बार ये विचार कर लें कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, केवल यही कर लें विचार 10 बार सुबह उठते, देखें एक्सपेरिमेंट करके देखें अपने ऊपर। लेकिन हम करते नहीं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, अपने विचारों को बदलने की कोशिश नहीं करते, लेकिन दूसरों से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात देखें, भगवान ने मुझे कितना अच्छा स्वस्थ शरीर दिया है। भारत की जो जनसंख्या है 150 करोड़ जनसंख्या है, और इसमें भी 3% लोग हर दिन हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराते हैं। 3% माना अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 4.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज़ अस्पताल में जाते हैं। तो भगवान का शुक्रिया अदा करें कि भगवान ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है, नहीं तो हॉस्पिटल में तो लोग बीमारियों से मर रहे हैं, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी है, लेकिन आप स्वस्थ हैं। तीसरा, भारत की 4.5% पॉपुलेशन ऐसी है जो हैंडीकैप है।

0: देखे तो सही, दुनिया के पास कुछ भी नहीं है। आज हम एक्टर्स के पीछे दौड़ते हैं, लीडर्स के पीछे दौड़ते हैं, उनको देखते हैं, अगर ये तो इतने महान बन गए, इनका तो दुनिया में बहुत नाम है, हमारा तो कोई नाम ही नहीं है, हमें तो कोई जानता नहीं, हम डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन अगर उनका नाम है तो नाम क्यों है? आपकी वजह से है। लीडर बने तो आपकी वजह से ना, अगर आप उनको वोट नहीं देते तो क्या लीडर बनते? वो चीफ मिनिस्टर बनते, वो MLA बनते, वो पार्षद बनते? आपकी वजह से बने हैं, आपने उनको बनाया है। एक्टर तो एक्टिंग पहले ही जानता था, लेकिन कौन जानता था कि उसको एक्टिंग आती? जब तक आप थिएटर में जाकर उसको देखते नहीं हो, उसकी वाह वाह नहीं करते हो, टिकट लेके पैसा खर्च करके उसकी आप प्रशंसा नहीं करते हो, तब तक वो भी अपने आप को महान व्यक्ति अनुभव नहीं करते। वो महान हैं आपके कारण है। तो अपनी वैल्यू को समझें, अपने जीवन की वैल्यू को समझें, अपने जीवन को यूं ही हम व्यर्थ ना गंवाएं, उसको खर्च ना कर दें। सुसाइड की तरफ तो कभी जिंदगी में हमको सोचना ही नहीं चाहिए। प्रकृति है, ये चांद है, सितारे हैं, ये तारे हैं, ये फूल हैं, ये फल हैं, ये प्रकृति ने किस लिए बनाए? ये मनुष्य के लिए बनाए? मनुष्य कौन? मैं, मेरे खाने के लिए ये प्रकृति ने फल बनाए हैं, ये फूल बनाए हैं। तो अपने ऊपर विचार करें, मैं कितना महान हूँ। धन्यवाद करें उस ईश्वर का कि ईश्वर ने आपको क्या ना दिया है। तो हमेशा अपने मन में पॉजिटिव विचार रखें, जो दिया है उसके ऊपर ध्यान दें, जो नहीं दिया है उसके ऊपर नहीं ध्यान दें। तो अगर आप अपने विचारों के ऊपर, जो ईश्वर ने आपको दिया है, अपने मूल्यों के ऊपर ध्यान देंगे तो आप हमेशा सदा के लिए खुश रहेंगे। लेकिन एक नियम का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो मुझे दिया है मुझे उसके ऊपर ध्यान देना है, जो मुझे नहीं मिला है उसके ऊपर उसको मुझे इग्नोर कर देना है, उसके ऊपर मुझे ध्यान नहीं देना है, और जो दिया है उसको देख देख कर खुश होकर ईश्वर का धन्यवाद करना है।
1: जी जी, चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने बताया कि जो कुछ आपके पास है उसके लिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करते रहें। ये आपका लास्ट वाला मैसेज था, और निश्चित तौर पे इससे हम सदा खुश रह सकते हैं। और खुश रहने के सिंपल तरीके हैं कि आप खुश रहने के लिए अपने आप को समय दें और अपने आप पर विचार करें, जिस तरह से राजेश जी ने बताया। तो चलिए, मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक छोटा मैसेज क्या आप लोगों को देना चाहते हैं आप, कि सदा खुश रहना, ये हमें किस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं, और इसके लिए क्या, कौन से मूल्य को हमारे लाइफ में इनकलकेट करना है हमें? जी,
0: जैसे आपने कहा मूल्य कौन से रखने चाहिए, हमें मूल्य एक, इसको मूल्य कहेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन हम अपने ध्यान को इग्नोर कर दें। जैसे मान लीजिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या अगर प्राप्त करना भी चाहते हैं तो हमें उसके लिए बहुत सारा समय लग जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप देखते हैं, उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, लेकिन उसको देखकर हम कई बार परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, अरे मेरे पास भी कभी ज़िंदगी में ये गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी। तो इसको हम इग्नोर करना, कि उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देवें, कि अगर उसके पास है तो उसने उसको एक दिन में प्राप्त नहीं किया है, उसने उसके लिए मेहनत की है। हो सकता है उसने उसके लिए 5 साल लगाए हों, 10 साल लगाए हों, लेकिन हम चाहते हैं कि वो कुछ सेकंडों में, कुछ देर में, कुछ दिनों में हमारे पास आ जाए। लेकिन संयम रखकर, सहनशीलता रखकर, धैर्यता रखकर, कि वो कभी ना कभी अगर आपकी इच्छा है तो आएगी, लेकिन ये ना सोचें कि मेरे पास गाड़ी नहीं तो खुशी नहीं, उदास हो जाए, नहीं, खुशी तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके ऊपर ध्यान ना देकर अपने मूल्यों के ऊपर ध्यान देंगे, उसके ऊपर चिंतन करेंगे तो भौतिक वस्तुओं का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
1: जी जी, राजेश जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम जो है अपने मूल्यों के ऊपर ध्यान देते हुए हम अपने खुश रह सकते हैं। और यहाँ आपने बहुत अच्छी बात बताया कि हमें दूसरों की तरफ देखकर चीज़ों को सेट नहीं करना है, दूसरे व्यक्ति को देखकर हम अपने आप को सेट नहीं कर सकते, हम अपने आप में खुश रह सकते हैं। ईश्वर ने जो कुछ आपको दिया है उसका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप जो है चीज़ों को करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। कंपटीशन कर लिया या किसी के पास वो चीज़ें हैं, तब फिर बहुत मुश्किल होगा आपका खुश रहना, क्योंकि फिर आपको लगेगा ये मेरे से ज़्यादा है, मेरे पास कम है, ऐसा क्यों, सवाल खड़े हो जाएंगे और सवालों के जवाब ढूंढते हुए आप दुखी होते रहेंगे। इसलिए बहुत ही अच्छा मैसेज था कि भाई जो कुछ आपके पास है उसके लिए अनुग्रहित रहें, धन्यवाद दें, और मूल खुशी का मंत्र यही है और यहीं से जीवन शुरू हो जाता है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप को जितना सजाएं सवारें।

ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। और आज के लिए बस इतना ही। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद राजेश जी, थैंक यू सो मच।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए आज बात करते हैं 9 अक्टूबर की। जी हाँ, आज विश्व डाक दिवस है, जिसके बारे में हम आपको सुनाएंगे कुछ बातें। और साथ ही साथ गोपबंधु दास अमजद अली खां मंजूर बख्तवासलम राजा लक्ष्मण सिंह राधेश्याम बारले, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही काशीराम रविंद्र जैन सैफुद्दीन किचलू पुण्य, इनका पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग एक विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और विश्व डाक दिवस की बातें भी आपको आज बताने वाला हूं। ये डाक सेवाओं की उपयोगिता और इसकी संभावनाओं को देखते हुए हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की ओर से मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य ग्राहकों के बीच डाक विभाग के उत्पाद के बारे में जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना और डाकघरों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। तो चलिए इनके बारे में, डाक दिवस के बारे में बातें करेंगे ही। और कहते हैं कि अपनी विरासत की रक्षा करना हर मानव का पहला कर्तव्य होना चाहिए। इसीलिए अपनी विरासत को हमेशा जो है बना के रखें। युवाओं को आशावादी बनाने के लिए विश्व विरासत दिवस एक मुख्य भूमिका निभाता है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सुनते रहो, मस्कराते।

0: भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात करते हैं डाक दिवस के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे फिल्मी गीत भी बने हैं, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और डाकिया पहले के समय में जो है इतना बड़ा इम्पोर्टेंट और इनका अभिनय होता था कि लोग हर रोज डाकिये का इंतज़ार करते थे, है ना। और आज तो डाकिये का कोई इंतज़ार नहीं करता। आज डाकिया का जीवन कैसा है, कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, है ना। पहले साइकिल की घंटी बजती थी गांव के अंदर, तो लोगों को बड़ी खुशी हो जाती थी कि मेरा चिट्ठी तो नहीं आया, मेरा चिट्ठी तो नहीं आया। जिसकी आ जाती थी उनकी खुशी हो जाती थी, और लोग ज़रूर उनको पूछने लगते थे कि किसका तार आया, किसका चिट्ठी आया, कौन लिखा है, क्या लिखा है, है ना। तो एक चिट्ठी आती है और गाँव भर में चर्चा हो जाती थी। आज आइए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी समझते हैं कि आज का समय हमारा कैसा है और हम कहां पर हैं। तो इसलिए आधुनिक युग के डाकियों का जो रोल है वो बिल्कुल बदल गया है। अब मैं आपको ले चलता हूं, एक जो है गीत भी है, डाकिया डाक लाया, वो तो मैं सुनाऊंगा ही, लेकिन उसके पहले आइए आप सभी को मैं विश्व डाक दिवस की कहानी बता रहा था। सभी देशों के बीच पत्रों का आवागमन सहज रूप से हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए 9 अक्टूबर 1874 को जनरल पोस्टल यूनियन की गठन हेतु स्विट्जरलैंड में 22 देशों का एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ। इसी वजह से बाद में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाना भी शुरू किया गया। यह संधि 1 जुलाई 1875 को अस्तित्व में आई थी और 1 अप्रैल 1879 को पोस्टल यूनियन नाम बदलकर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन नाम दिया गया। सार्वभौमिक डाक संघ या यूपीयू, और ये यूपीयू की स्थापना वैश्विक संचार क्रांति की शुरुआत थी। डाकघर के दुनिया के एक जगह से लोगों को दूसरी जगह रहने वाले लोगों से संबंध और माध्यम उपलब्ध कराना था। 1979 में जापान ने टोक्यो में 9 अक्टूबर को विश्व डाकघर दिवस घोषित किया। जब दुनिया भर में डाक सेवाओं के योगदान को रेखांकित करने के लिए हर वर्ष इस दिन विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ये दिन अंतर्राष्ट्रीय पत्रों के पूरे विश्व में मुक्त प्रवाह के लिए मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास है। तो आइए भारत की डाक सेवा के बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में। और आपके लिए ले चलता हूँ मैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ, है ना। तो चलिए अब मैं ये गीत के साथ आपको जोड़ना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम लोग बातें करते हैं, है ना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

क्या बात है, डकिया डाक लाया, डकिया डाक लाया, डकिया डाक लाया। बड़ा सुंदर किशोर दा ने इस गीत को गुनगुनाया और गुलजार साहब ने इस गाने को लिखा। आशा भोसले के साथ मिलकर किशोर दा ने ये गाना गुनगुनाया और मुझे लगता है कि आप सभी को ये गीत याद ही रह जाता है। पलकों की छाँव में इस एल्बम से ये गीत आपने सुना, 1977 में ये गाना बना था। तो चलिए, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर पिक्चराइज किया गया एक गांव की सीन में ये गाना शूट किया गया था। और ज़माने में जैसे कि आज हम लोग फिल्मों में देखते हैं, एक गाना शूट करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा शूटिंग इधर उधर उधर इधर, बहुत सारे पिक्चर्स। अब एक गाना चलेगा, कोई बंदा जो है मुंबई में शूट हो रहा है थोड़ी सी एक क्लिप, और दूसरी क्लिप जो है लंदन की बता रहे हैं, और चौथी क्लिप जो है हिमाचल की बता रहे हैं। तो हज़ारों क्लिप्स इसमें जोड़े जाते हैं, लेकिन पहला ऐसा नहीं होता था। एक सिंपल सुंदर जो है एक गांव, और गांव का पूरा परिवेश एक जगह बसा होता था, और सारे ही एक्टर्स जो है अपने अपने एक गांव के रहन सहन की जो जीवन शैली है वो बताते थे, और उसमें हीरो और हीरोइन को मुख्य किरदार दिया जाता था और कुछ इनके सहपाठी होते थे। अब एक्टर जो है उनको उसी गांव में एक्टिंग करना है डाकिये का, तो डाकिये का रोल साइकिल पर उनको दिखाया गया है, और हीरोइन को चिट्ठी देना है तो हीरोइन अपने घर से चिट्ठी का इंतज़ार करता है, और एक बार वो जब आता है तो नहीं मिलता चिट्ठी, फिर दोबारा जब आता है तो चिट्ठी लेकर आता है, तो बड़ा खुशी होती है। तो इस तरह के छोटे से सिंपल जो पिक्चराइजेशन है वो होती थी, लेकिन वो देखने में बड़ा आनंद आता था। आज जो है तुरंत तुरंत पिक्चरें बदल जाती है, तो शायद आपको उतना जो एक बार देखने का वापस देखने का मन नहीं करता, लेकिन आप पुरानी फिल्मों को अगर देखेंगे तो उसमें एक स्टोरी के साथ हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं और लंबा समय तक उसे देखते हैं, है ना। तो चलिए, मेरी बातें भी आपको खुशी का पैगाम दे रही होगी, है ना। तो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और गीत की तरफ मैं आपको ले चलूंगा। हाँ, लेकिन डाक की बातें जरूर बताऊंगा, भारत में डाक सेवा की बातें। जी हाँ, 1 जुलाई 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बन गया, और सदस्यता लेने वाला भारत प्रथम एशियाई देश था। और भारत में डाक सेवाओं का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना 1854 को 1 अक्टूबर को लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। डाकघरों में बुनियादी डाक सेवाओं के अतिरिक्त बैंकिंग, वित्तीय व बीमा सेवाएं भी उपलब्ध है। एक तरफ जहां डाक विभाग सार्वभौमिक सेवा दायित्व के तहत सब्सिडी आधारित विभिन्न डाक सेवाएं देता है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी जनजातीय व दूरस्थ अडम्बन व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों में भी उसी दर पर डाक सेवाएं उपलब्ध कराता है। ये भारतीय डाक सेवा की एक अपनी खूबसूरती है। आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम, आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
5: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए विश्व डाक दिवस की आपको बार बार शुभकामनाएं, और डाक दिवस की अपनी खूबसूरती है कि वो हर फेस्टिवल को आपके लिए इजी कर देता है। लेकिन आजकल तो मोबाइल टेक्नोलॉजी के कारण डाक घर का जो है फेस्टिवल इतना मज़ा नहीं आ रहा। तो आप देखेंगे कि अगर रक्षाबंधन आता है तो अलग अलग तरह की राखी भेजने का काम देता है, और आप अगर से कोई शुभ दिन आता है तो डाक टिकट जो है अलग अलग तरीके के, और कभी कभी तो ये अलग अलग कार्ड्स भी बना के आपको देते हैं। और आजकल तो आप डाक का टिकट जो है आप अपने नाम से भी जो है एक डाक टिकट बनवा सकते हैं, और उसे कार्ड के रूप में बनाकर आप सबको सेंड कर सकते हैं, और आपके नाम का या आपके फोटो के साथ में डाक टिकट बन जाता है ना। तो ये भी एक खूबसूरती है। तो अलग अलग समारोह में डाक सप्ताह या डाक सेवाओं को आप अच्छी तरह से उपयोग में ले सकते हैं। स्पीड पोस्ट भी आ गया है आजकल, आप सभी स्पीड पोस्ट से चीज़ें जो है जल्दी पहुंचाते हैं और गारंटी के साथ, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय डाक सप्ताह भारतीय डाक विभाग के अनुसार 9 से 14 अक्टूबर के बीच विश्व डाक सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाने का उद्देश्य आम जन को भारतीय डाक टिकट के योगदान में अवगत कराना है। सप्ताह के हर दिन अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं। 10 अक्टूबर को सेविंग बैंक दिवस, 11 अक्टूबर को मेल दिवस, 12 अक्टूबर को डाक टिकट संग्रह दिवस, और 13 अक्टूबर को व्यापार दिवस तथा 14 अक्टूबर को बीमा दिवस मनाया जाता है। सेविंग दिवस पर ग्राहकों को डाक बचत योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। ग्राहकों को बताया जाता है कि कौन सी बचत योजना लाभदायक है। डाक सप्ताह दिवस का उद्देश्य ग्राहकों के बीच डाक विभाग के उत्पाद के बारे में जानकारी देना है, उन्हें जागरूक करना है, और डाकघरों के बीच समंजस स्थापित करना है, कनेक्शन बनाना है। डाक दिवस पर बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को विशेष सम्मानित भी किया जाता है। तो ये है राष्ट्रीय डाक सप्ताह। तो राष्ट्रीय डाक सप्ताह की कुछ और बातें आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अभी आपको ले चलता हूं पूरे 7 दिन की कहानी आपको पता चल गया है। तो आप आज से जो है डाक टिकट से डाक विभाग से संपर्क करें और इन सारी योजनाओं का लाभ भी ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और खूबसूरत गीत की तरफ। अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। डाक दिवस की शुभकामनाओं के साथ चलिए अब मैं कुछ शख्सियतों के बारे में बात करते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में बात करते हैं और राधे श्याम बारले के बारे में भी बात करेंगे। गोप बंधु दास की कहानी तो आपको पता है, इसलिए फिर वक्त मिले तो ज़रूर सुनाऊंगा। आइए, राजा लक्ष्मण सिंह की बातें आपसे शेयर करूंगा, एक देशभक्त के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र युग से पूर्व की हिंदी गद्य शैली के मुख्य विधायक थे। उन्होंने हिंदी को हिंदी संस्कृति के अनुकूल संस्कृत निष्ठा बनाने की चेष्टा की थी। आगरा से प्रजाहितेशी पत्र भी उन्होंने निकाला। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश और मेघदूतम का हिंदी में अनुवाद किया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले के मुख्य हिंदी गद्यकार लक्ष्मण सिंह का जन्म 9 अक्टूबर यानी आज ही के दिन 1826 को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। घर पर उर्दू और हिंदी पढ़ने के बाद उन्होंने कॉलेज में अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की और पश्चिम उत्तर प्रदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यकाल में अनुवादक नियुक्त हो गए। फिर वे तहसीलदार बने और 1857 में अंग्रेजों की सहायता करने पर डिप्टी कलेक्टर का पद या राजा की उपाधि मिली, किंतु विदेशी सरकार की सेवा करते हुए साहित्य के क्षेत्र में भी वे सक्रिय हुए। आइए आगे बढ़ते हैं, आप सभी को ले चलते हैं। लेखन कार्य की बात करें तो 1861 में राजा लक्ष्मण ने आगरा में प्रजाहितेशी नामक पत्र निकाला। 1863 में महाकवि कालिदास की अमर कृति अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद शकुंतला नाटक के नाम से प्रकाशित किया। इसमें हिंदी की कड़ी बोली का जो नमूना आपने प्रस्तुत किया, उसे देखकर लोग चकित ही रह गए। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंदी ने अपना गुटका से इस रचना को स्थान दिया और इस समय के प्रसिद्ध हिंदी प्रेमी फ्रेडरिक पिंकट अपनी भाषा और शैली से बहुत प्रभावित हुए और 1875 में इसे इंग्लैंड में प्रकाशित करा। आप समझ सकते हैं, जब ये इंग्लैंड में छापा गया, इस कृति से लक्ष्मण सिंह को पर्याप्त बहुत ख्याति मिली और इसे इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में पाठ्यक्रम पुस्तक में भी उसके रूप में से स्वीकार किया गया। इससे लेखक को धन और सम्मान दोनों मिले। इस सम्मान से राजा साहब का तो अत्यधिक प्रोत्साहन मिला और उन्हें 1877 में कालिदास के रघुवंश महाकाव्य का हिंदी अनुवाद भी किया। तो है ना कमाल के व्यक्ति लक्ष्मण जी। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। चलिए आगे बात करते हैं, ख्याति प्राप्त होने के बाद राजा लक्ष्मण सिंह की अत्यधिक जो है प्रशंसा हुई अनुवादक के रूप में और भाषा के संबंध में उनका मत ये था, हिंदी और उर्दू अलग अलग है, ये आवश्यक नहीं कि अरबी फारसी की शब्दों के बिना हिंदी ना बोली जाए। आप शब्द प्रति शब्द के अनुवाद को उचित मानते थे और यहाँ तक कि विभक्ति प्रयोग और पद विन्यास भी संस्कृत की पद्धति पर ही रहते थे। राजा साहब के अनुवादों की सफलता का रहस्य भाषा की सरलता और भाव व्यंजना की स्पष्टता थी। उनकी टकसाली भाषा का प्रभाव उस समय के सभी लोगों पर पड़ा और तत्कालीन सभी विद्वान उनके अनुवाद से प्रभावित हुए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सफर इस कार्यक्रम को सुनना है तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में। हिंदी के बहुत ही पॉपुलर राइटर की कहानी, खास महाकाव्य कालिदास का जिन्होंने ट्रांसलेशन किया शकुंतला नाटकम, अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास साहब का लिखा हुआ ग्रंथ, उसे उन्होंने शकुंतला नाटक नाम से हिंदी में प्रकाशित किया। तो इसकी वजह से उनकी जो है काफ़ी नाम हो गया और विदेश तक नाम पहुंच गया, है ना। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। कभी कभी एक छोटे से काम से भी आपका जीवन भर की कमाई हो जाती है। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी पुस्तक लिखा जिसे सिलेबस में ही यूज करने लगे तो फिर आपकी तो कमाई कमाई है ना। आप सुनाए है रीडवाज 107.8 FM, सुनते रहो मस्कराते रहो।

0: नमस्ते, मैं हूं हमसिका अय्यर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में बात कर, उनकी बात ही सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। एक ऐसे राइटर जिन्होंने एक ही बार काम किया और जिंदगी भर नाम कमाते रहे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। चलिए राधे श्याम बारले के बारे में आप बात करते हैं। ये भी एक ऐसे व्यक्ति है जिनके बारे में आपको सुनकर अच्छा तो लगेगा ही। छत्तीसगढ़ के ये पॉपुलर व्यक्ति है, एक बहुत ही सुंदर डांसर थे, नृतक थे और इनको देश के प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री 2021 में मिला। अब तक इस पुरस्कार से छत्तीसगढ़ में 16 लोगों को नवाजा जा चुका है। राधेश्याम बारले ने अपने कला साधना से छत्तीसगढ़ और देश को गौरव किया है। डॉक्टर बारले लोक कला पंक्ति नृत्य के ख्याति नर्तक है और पंक्ति नृत्य के माध्यम से उन्होंने बाबा गुरु घासीराम के संदेशों को देश दुनिया में प्रचारित और प्रसारित करने में, उनका प्रचार प्रसार करने में अमूल्य योगदान किया है। तो आइए ऐसे विशेष राधेश्याम बारले जो नृतक है उनकी पूरी कहानी आपको सुनाते हैं थोड़ी देर में। और मैं चाहूँगा कि आप अपने फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 94 14 15 14 15 इस नंबर पर और अपनी बात बता सकते हैं। डॉक्टर राधेश्याम बारले का जन्म दुर्ग जिले के पाटना तहसील में खोला गांव में आज एक दिन 9 अक्टूबर 1966 को हुआ। अब डॉक्टर बारले की बात अगर मैं कहें तो ये MBBS के साथ ही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से लोक संगीत में डिप्लोमा कर चुके थे। उनको उनकी कला साधना के लिए कई सम्मान तो प्राप्त हो चुके हैं, इस कड़ी में भारत सरकार और की ओर से पद्म सम्मान भी, उन्हें पद्म श्री का सम्मान भी मिला हुआ है। तो इनके योगदान की कुछ खास बातें मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। आप सुनाए हैं रिनमार 107.8 FM पर। सफर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से, तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए डॉक्टर बारले के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर बारले अपने पंती नृत्य के साथ देश दुनिया के लोगों को इसका ट्रेनिंग भी दिया करते हैं, और बारले ने बाबा गाछीराम के संदेशों को देश दुनिया में पहुंचाने का काम किया है, और कलाकारों के साथ नृत्य ट्रेनिंग और जो घासीराम के संदेशों को देते हुए उन्हें ट्रेन किया। अब ये बात जो है सारे भारत में तो जानते ही थे, लेकिन फिर इन्हें अमेरिका और मास्को के कई कलाकारों को राधेश्याम बारले ने पंती नृत्य का अवगत कराया और उन्हें छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति से परिचय कराया। डॉक्टर बारले को बचपन से नृत्य के बारे में जानकारी तो रही है, क्योंकि बहुत कम उम्र में ही उन्होंने ये नृत्य शुरू किया था, और पंती नृत्य में होने वाले नाटकों में डॉक्टर बारले महिला नर्तक का रूप धारण करते थे और नृत्य करते थे। डॉक्टर बारले के नाम ही ये रिकॉर्ड कायम है, जिन्होंने देश के अलग अलग चार राष्ट्रपतियों के समक्ष अपने नृत्य कला का परिचय दिया है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम में डॉक्टर बारले को अवसर अक्सर देखा गया और सुना जा सकता है कि जहां वे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, इसके अलावा देश विदेश के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी उनकी भागीदारी देखी जाती है। बोरमदेव, सिरपुर, खुजारो और देश में अन्य जगहों पर होने वाले महोत्सवों में डॉक्टर राधेश्याम बारले अपनी नृत्य शैली से लोगों का मन मोह लेते थे। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के लगभग हर कार्यक्रम में उनके नृत्य को देखा जा सकता है। यहाँ तक कि एक नक्सल प्रभावी इलाकों में भी डॉक्टर बारले ने अपने नृत्य शैली से शांति का संदेश दिया। ये अपने आप में यूनिक था, और युवाओं को हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में शामिल होने की अपील करते रहे। तो ये थी कुछ खास बातें डॉक्टर बारला के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। नृत्य सीखना, एक डॉक्टर होते हुए नृत्य को इतनी प्राथमिकता इन्होंने दी। MBBS तो साइड में रह गया, लेकिन नृत्य के माध्यम से उन्हें काफ़ी सम्मान मिला, और एक संदेशवाहक के रूप में भारतीय छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और गाझीराम की संदेशों को पूरे विश्व में उन्होंने पहुँचाया। और साथ ही साथ आखिरी में आपने देखा कि नक्सलवादियों को भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वहाँ पर भी ये जाके नृत्य के माध्यम से अपना संदेश पहुँचाते थे, है ना कमाल की बात। तो चलिए, एक सलाम तो बनता है, डॉक्टर बारले जी को सलाम। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर इस कार्यक्रम को। आइए एक और गीत आपके नाम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हुए चलिए कार्यक्रम के इस पड़ाव में। आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभी 5 बजने वाले हैं और आप सभी को ले चलते हैं, एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं। जैसे कि कल हमने कहानी लोमड़ी और सारस की सुनाई थी, काफ़ी सुंदर संदेश आपको मिला था। अब मैं एक और कहानी आपको सुनाऊंगा जिसे आपने सुनी होगी, क्रिस्टल बॉल की कहानी। यहाँ एक गेंद की कहानी है, बहुत दिन पहले की बात है। एक बार एक छोटा सा लड़का राम अपने बगीचे में खेल रहा था। उसे अपने बगीचे के बरगद के पेड़ के नीचे, बगीचे में जो बरगद का पेड़ था, पेड़ के पीछे एक जो है उसे क्रिस्टल बॉल मिली। पेड़ ने उससे कहा कि ये एक जादुई क्रिस्टल बॉल है जो कि उसकी इच्छा पूर्ति करेगा। अब जो है बड़ा अच्छा लगा छोटे बच्चे को, राम को, कि आजकल तो जादू बड़ा काम करेगा और मेरा काम हो जाएगा। ये सुनकर राम बड़ा खुश हुआ, बच्चा बहुत खुश हुआ और उसने बहुत सोचा, लेकिन दुर्भाग्य से उसे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली जिसे कि वो उस क्रिस्टल बॉल से मांग सके। इसलिए उसने क्रिस्टल बॉल को अपने बैग में रखा और तब तक इंतज़ार किया जब तक कि वो अपनी इच्छा पर फैसला नहीं कर लेता। अब छोटा बच्चा है तो सोच के भी क्या सोचे, इसलिए उन्होंने उसको समझ में नहीं आया कि इस जादुई शक्ति से क्या मांगू, इस बॉल से क्या मांगू। तो उन्होंने बैग में रख लिया और ऐसे ही सोचते बहुत दिन बीत गया, लेकिन उसे अभी तक भी ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर में क्या मांगे। साथियों, यहाँ पर ये कहानी, बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर आधी कहानी में मिल जाता है कि हमें ठीक से मांगना ही नहीं आता। कभी कभी हम अपनी मांग को इतनी छोटी कर देते हैं तो सामने वाला भी हंस लेता है अंदर से कि मांग के क्या मांगा यार। तो इसीलिए अगर आप मांग हो तो ऐसी मांग हो जिससे जीवन सवर जाए, जिससे जीवन बन जाए, जिससे आपको संपत्ति बन जाए, आपको जीवन भर खुश रहने का

माध्यम मिल जाए, है ना। तो ऐसा कुछ मांगा जाए ताकि फिर से मेहनत करने की जरूरत नहीं। एक दिन उसका मित्र उसे उस क्रिस्टल बॉल के साथ देख लेता है। अब राम जी जो है पूछ तो नहीं रहा है, लेकिन उसके बैग में पड़ा हुआ वो बॉल वो बार बार देख कर रखता है। तो उसका दोस्त ने उसे देख लिया और क्रिस्टल बॉल के साथ उसको लगा कि कुछ तो भी है। वही उसने राम से वो क्रिस्टल बॉल चुराया और गांव के सभी लोगों को दिखाया। कहानी में ट्विस्ट हो गई। उन सभी ने अपने लिए मेडल और धन की और बहुत सारा सोना मांगा, लेकिन वे सभी भी एक से अधिक इच्छा नहीं कर सके। उन सभी ने अपने लिए महल धन बहुत सारा धन सोना मांगा, लेकिन वे सभी भी एक से अधिक इच्छा नहीं कर सके। अंत में हर कोई नाराज था क्योंकि उन्हें वो सब कुछ नहीं मिल पाया जिन्हें की उन्हें चाह थी। वे सभी बहुत दुखी हुए और उन्होंने राम से मदद मांगने का फैसला किया। उनकी बातें सुनकर राम ने एक इच्छा मांगना चाहा। वही राम ने अपनी ये इच्छा मांगी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इससे पहले जो सभी गांव वालों ने अपने लालच को पूरा करने की कोशिश की थी, उनकी सभी चीजें गायब हो गई। यानी कि उनके द्वारा मांगी गई महल और सोना गायब हो गया और गांव वाले एक बार फिर खुश और संतुष्ट हो गए। अंत में सभी ने राम को उसकी सूझबूझ के लिए धन्यवाद कहा। तो कहानी से क्या सीख मिलता है दोस्तों? ऐसा अगर जादुई बॉल आपके पास आ जाए, जो मांगो सो मिल जाए, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाए ना। लेकिन वो बल्ले बल्ले थोड़ा टाइम रहता, उसके बाद आपकी जीवन में संतोष चला जाता है, लालच और चीज वैभव में अशांति बढ़ जाती है। कहानी की सीख ये है कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पैसा और दौलत हमेशा खुशी नहीं लाते, है ना। खुशी तो अपने गांव में रहना, अपने लोगों के साथ रहने में मिलता है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। तो आशा करूंगा कहानी की जो मेन मैसेज है वो आपने पकड़ ली होगी, अदरवाइज कभी कभी कहानी अच्छा लगता है मैसेज छूट जाता है। मेरे भाई, ऐसा ना हो आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत, और इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत और जाते जाते एक खूबसूरत विचार। कहते हैं विश्व विरासत एक ऐसा अवसर है जिसके माध्यम से आप अपनी जड़ों को मजबूत कर सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं, है ना। आप सुना है रिवाज 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कर।

0: रुका रुका रुका। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखला दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? और तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई? हैं? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हैं।
1: हेलो हेलो हेलो, एक बार आप नाम बोलो।
2: हेलो राधिका।
1: ठीक है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच, और युवाओं के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक ख्याल होता है जो युवाओं के मन में भी होता है, जब बड़े हो रहे होते हैं तो बच्चों के मन में भी होता है और पेरेंट्स के मन में भी होता ही है, कि क्या होगा भविष्य का, जॉब क्या करनी है, और अगर जॉब अच्छी चाहिए तो उसके लिए पढ़ाई या एग्जाम कौन सा देना है। यानी एक सवाल और न जाने कितने सारे सवाल उसके साथ जुड़े चले आते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात कराएं अलग अलग फील्ड में जो कार्यरत हैं उन सभी से, ताकि आप उस फील्ड को बेहतर जानें और उसकी तैयारी कैसे करनी है उसको भी पहचानें और सही दिशा में आगे बढ़ते जाएं। तो आज हमारे साथ राधिका है स्टूडियो में, और राधिका डेवॉप्स इंजीनियर है, HSC नोएडा से वो आए हैं। तो उनका क्या एक्सपीरियंस है वो जानेंगे, सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि चीज़ें और आसान हो जाएं हम सभी के लिए। राधिका, आपका स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: तो राधिका, सबसे पहले तो ये जो शब्द है डेवॉप्स, आई थिंक मेरे लिए भी नया है, तो ये होता क्या है थोड़ा आप बताओ।
2: तो इंजीनियरिंग में ही एक स्ट्रीम है डेवॉप्स, जिसमें डेवलपमेंट और ऑपरेशंस, इन दोनों के बीच में सो डेवॉप्स इज डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस के बीच में हम लोग कैसे चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, उसके लिए डेवॉप्स इंजीनियर मैं बनी हूँ। तो इसमें क्या होता है कि डेवलपर्स ने कुछ कोड लिखा है, जैसे हमारी फेसबुक एप्लीकेशन है जैसे हम सब लोग यूज़ करते हैं, तो उस एप्लीकेशन को किसी ने लिखा होगा किसी कोडिंग में, तो उसको डेवलपमेंट बोलेंगे। ऑपरेशंस होगा जब वो फेसबुक, जब आप उसको लॉग इन कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, खोल पा रहे हैं, तो वो लाइव है एप्लीकेशन। इसके बीच में कोड जो है वो बिल्ड होता है, उसको कहीं सर्वर पे डाला जाता है।
1: ओके okay.
2: है ना। उसके बाद उसमें थोड़ा टेस्टिंग होता है, आप लोग जो चलाते हैं उससे पहले टेस्टिंग होता होगा। तो सर्वर पे डालने का काम, टेस्टिंग का काम, स्टेबल है कि नहीं, इतनी सारी जनता उसको यूज़ कर पा रही है कि नहीं, उसके अलग अलग टेस्ट्स, वो सारा काम डेवॉप्स इंजीनियर करता है। तो फेसबुक फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिया, मेरा दूसरा एप्लीकेशंस पे काम है, तो मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया जिसे सब लोग समझ पाएं।
1: ओके तो जैसा कि आपने बताया, एक बैलेंस है, और जब डेवलप किया जाता है उसकी टेस्टिंग भी होती है, उसका कोऑर्डिनेशन होता है, ताकि वो फीजिबल हो लोगों के लिए, आसानी से वो यूज़ कर सके और बार बार यूज़ कर सके।
2: हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई ग्लिचेस नहीं आए चलाते हुए।
1: ओके सो राधिका, शुरू से अगर शुरू करें तो इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सुनाई देती है, मतलब स्ट्रीम्स तो हैं ही, इलेक्ट्रिकल हम जानते हैं, कंप्यूटर साइंस है, अभी हम और नई नई काइंड ऑफ इंजीनियरिंग्स भी देख रहे हैं कि पता चलती है। आपने कौन सी इंजीनियरिंग की और वो कैसे चूज किया, उस बारे में आप कुछ बताओ।
2: बिल्कुल, अभी बहुत सारे टाइप की इंजीनियरिंग आ गई हैं, एंड आई थिंक मेरे टाइम पे भी थी। 2011 में मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट करी थी, उस टाइम पे भी बहुत सारे टाइप्स की थी, बट अवेयरनेस नहीं थी, जो कहीं ना कहीं मुझे भी नहीं मिली। तो मुझे लकीली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिली, एंड मैं उसी में ही आगे बढ़ी। मेन मोटिव बस ये था कि अच्छे नंबर लाने हैं। बाय चांस फिर जॉब जो लगी वो कंप्यूटर साइंस वाली बैकग्राउंड से लगी। तो यूजुअली जो मैंने अपने टाइम पे देखा, अब तो चीज़ें बदल भी रही होंगी, अपने टाइम पे जो मैंने देखा उसमें ये था कि मोस्टली मेरे कॉलेज में जो कंपनीज आई थी वो कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साइड पे आई थी, और वहीं मेरा भी हो गया एडमिशन और मैंने उसी में कंटिन्यू किया। थोड़ा सा मेरे ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर था कि इलेक्ट्रिकल लेना है, तो मैंने इलेक्ट्रिकल लिया। बट इलेक्ट्रिकल जब हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जितने भी फील्ड्स के हैं, तो उसमें मैंने अपने अंदर ये पाया कि मुझे कंप्यूटर्स की तरफ थोड़ा झुकाव है ज़्यादा। अच्छा लगा मुझे। तो जो लोग इंजीनियरिंग करेंगे या कर रहे हैं, उनको मैं अपनी तरफ से ये ही सलाह दूंगी कि जो भी आपको पसंद है उसको अच्छे से कीजिए, उसमें मन लगा के कीजिए, क्योंकि अगर आप जो चीज़ चाहते हैं दिल से, जो आपको मज़ा आ रहा है करने में, उसमें आप कहीं ना कहीं एक स्टेप ऊपर ही रहेंगे दूसरों से, क्योंकि आपके दिल से आ रहा है वो करने का ना।
1: राइट।
2: तो मैंने कंप्यूटर्स में करा और मुझे बाय चांस कंप्यूटर्स में ही नौकरी मिल गई, तो मैं थोड़ा आगे उसी में बढ़ गई।
1: दैट्स वंडरफुल। और जैसा हमने कहा, जो करें अच्छे से करें. एक चीज़ है राधिका, जैसे आजकल हम सुनते हैं कि शुरू से कि इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत कंपटीशन है, तो कई बार लोगों को लगता है कि जॉब्स हैं इस फील्ड में या हम कैसे आगे बढ़ेंगे, मतलब इंजीनियरिंग तो कर ली मगर अब आगे क्या. तो पढ़ाई करके जो ट्रांजिशन होता है जॉब के जाने के लिए वो कैसा होता है?
2: वो बहुत ड्रास्टिक होता है. बहुत ऊपर नीचे होता है क्योंकि हम लोग जब कॉलेज में होते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के आंचल में तो होते ही हैं, है ना, जो हमें नहीं पता लगता है कॉलेज में. बट अब जब जॉब करने लगते हैं सब कुछ खुद से मैनेज करना पड़ता है, खुद का खाना, रहना, ऑफिस जाना, तबीयत खराब होती है वो मैनेज करना, और फिर ऊपर से काम करना. क्योंकि अभी आपको सिर्फ अपने से पढ़ाई करनी थी कॉलेज में, जब आप ऑफिस जाएंगे तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अगर आपको कुछ काम दिया है तो उसका रिजल्ट आप दें अपने मैनेजर्स को या अपने बड़ों को, जो भी आपको काम दे रहे हैं. तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट मुझे लगता है कि अपनी निजी ज़िंदगी में भी जब हम मन लगा के कोई भी चीज़ काम करते हैं, अपने लिए करते हैं, अगर हमें कुछ अच्छा खाना है तो हम खाते हैं उसको, है ना, कुछ भी हमें चाहिए तो हम वो कर लेते हैं. तो वैसे ही अगर हम जॉब कर रहे हैं तो मतलब हमें कोई पैसे भी दे रहा है, कहीं हम अर्निंग भी कर रहे हैं अपनी, ना, तो उसके लिए आई थिंक पूरी श्रद्धा से अगर हम काम करें तो हो जाता है वो बैलेंस, धीरे धीरे हो जाता है.
1: ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली कि पूरे डेडिकेशन से करना. कभी कभी क्या होता है, हम स्मार्ट वर्क को समझते हैं कि हम कर भी लें, थोड़ा कम में भी कर लें और किसी को पता भी ना चले, ना. स्मार्टनेस की डेफिनेशन कई बार हम गलत समझ लेते हैं, पर जैसे मैंने कहा कि डेडिकेशन से करें,
2: बिल्कुल,
1: है ना. और जब पढ़ रहे थे, मतलब थोड़ा सा आपने बताया कि कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था, लेकिन एक अच्छा इंजीनियर अगर हमें बनना है तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए?
2: अच्छा इंजीनियर बनने के लिए जैसे मैंने बताया कि जो भी करो वो मन से करो, जितना भी करो वो बस उसमें अच्छे से करिए वो सब चीज़ें, है ना. एंड थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, सिर्फ अच्छे की डेफिनेशन से तो नहीं होता है. बट हाँ, जैसे जब मेरा जॉब लेने का टाइम था, तो अब जब हम जॉब ले, पढ़ाई में और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में बहुत डिफरेंस होता है. तो जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमने सब पढ़ा समझा, ठीक है, अब चार साल में जितना पढ़ा वो सारी चीज़ें आप एक दिन में तो नहीं बता सकते हैं इंटरव्यूअर को, ना. तो बेसिकली जब मैंने पढ़ाई की थी तो एप्टीट्यूड टेस्ट्स की एक बुक आती थी, वो पढ़ लेते थे, लॉजिकल रीजनिंग होती थी, इंग्लिश या वोकैबुलरी इम्प्रूव करने में जो होती थी. तो आई थिंक थोड़े से टेस्ट्स जब हम अपने प्रॉपर रखेंगे इंटरव्यू से पहले तो हम क्लियर कर जाएंगे. और बेसिकली इंटरव्यूअर हमारे में भी ना वो डेडिकेशन ही देखता है कि जो काम इनको दिया जाएगा वो क्या वो डेडिकेटेड हैं. तो आई थिंक हम कहीं ना कहीं रेजोनेट कर सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से भी कि जो चीज़ें हम अचीव करना चाहते हैं. मानो कि अगर मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है तो मैं क्या वो डेडिकेटेडली कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं है कि बस ऐसे ही कर रहे हैं, मन लगा के कर रहे हैं ना,
1: कभी किया कभी नहीं किया.
2: तो रोज उसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम और अच्छे ही होते जाएंगे. या जिस भी फील्ड में, जिसको भी पेंटिंग है तो पेंटिंग रोज अलग अलग, अब और कितने टाइप की पेंटिंग्स आ गई हैं, तो सब उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आई थिंक और अच्छा होता जाएगा. तो वैसे ही आपके अंदर भी आपकी बेसिक स्किल्स देखी जाती हैं कि आप कमिटेड हैं अपने काम के लिए, डेडिकेटेड हैं, और आप करना चाहते हैं या बस हम ऐसे ही कर रहे हैं, किसी का जोर है तो बस हम कर रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए बस.
1: और उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए,
2: इंटरेस्ट आना चाहिए.
1: जैसे क्योंकि पहले कहा था ना, पसंद भी होना बहुत जरूरी है व्हाट आप जो कर रहे हैं उस चीज को. अच्छा, लेकिन अगर तैयारी की बात करें, जैसे इंजीनियरिंग में पेपर्स होते हैं, आपके एग्जाम्स होते हैं, पहले ईयर में आपने बोला कि सब कुछ पढ़ाते हैं, उसके बाद और थोड़ा आप जो जिस स्ट्रीम में आपने अप्लाई किया है वो होता जाता है, लेकिन उसके जो प्रिपरेशंस है या एंट्रेंस देते हो आप, तो भी होती है कि भाई स्कूल की पढ़ाई करें कि भाई अब इतने सारे एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी की जाए?
2: इसके लिए अभी कल ही मैं बाई चांस अपने पेरेंट्स से डिस्कशन कर रही थी, और उन्होंने फिर मैंने रिकॉल करा, सिंस मेरे को अभी 10 ईयर्स तो आई थिंक हो गए हैं
1: साल
2: स्कूल छोड़े हुए. तो मैंने यही वापस उसको रिकॉल करा कि जैसे मैंने ये गलती करी थी कि 12th भी करा, दूसरा भी प्रिपेयर करने, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत टाइम लगाया, और दोनों ही जगह कुछ बहुत अच्छा नहीं हो पाया. अगर अब मैं वापस देखती हूँ तब तो अच्छा लग रहा था सब कुछ, बट अब वापस देखो तो लगता है कि हाँ और बेहतर कर सकते थे. तो आई थिंक आज के जनरेशन के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो 100% अपना दोनों जगह दीजिए. वरना मेरे टाइम में, एंड आई होप अभी भी ऐसा होता है कि 12th के मार्क्स पर भी काफ़ी कॉलेजेस के फॉर्म्स निकलते हैं, एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स के 96, 97, 98% थे तो उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल गया इंजीनियरिंग कॉलेजेस में. तो आई थिंक अगर हम थोड़ा सा वेयर रहेंगे कि एग्जाम्स के अलावा भी हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो बच्चे 12th को ही डेडिकेटेडली पढ़ना चाहते हैं या नहीं दे पा रहे हैं कोई और एग्ज़ाम्स, तो ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं. तो थोड़ा सा रिसर्च रखें, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं.
0: पहले तो नहीं मिलती थी.
2: कुछ गवर्नमेंट पोर्टल्स पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन्स होती हैं जो थोड़ा सा अवेयर रहेंगे. और अगर सच में करना चाहते हैं तो आप 10 लोगों से बात भी करेंगे तो किसी न किसी एक जने से आपको कोई ऐसी बात पता ज़रूर लगेगी जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी. तो वो करते रहें,
0: पता करते रहें, नॉलेज अपनी बढ़ाते रहें.
2: बिल्कुल,
0: अवेयर होना बहुत ज़रूरी है ना. कभी कभी ऐसा नहीं होता कि जिस दिन फॉर्म निकला है उसी दिन वो आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी. पहले से अपनी जानकारी आप रखिए और पता करते रहिए. सोर्सेज आज बहुत हैं. अच्छा, अगर राधिका बात करें जॉब की इंटरव्यू की, तो वो बहुत नर्वस होते हैं लोग, पहली बार दे रहे हैं खास तौर से. बाद में तो चलो फिर भी एक बार एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन फर्स्ट टाइम जब इंटरव्यू देते हैं तो लगता है हमने पता नहीं कैसे कपड़े पहने हैं या क्या पूछेंगे. अच्छा, अगर वो हमें नहीं आता हो तो बोल दे नहीं आता है या कुछ और ट्राई करके बता दें, या क्या होना चाहिए? और एक इंजीनियरिंग का इंटरव्यू कैसा दिखाई देता है, मतलब कैसा होता है?
2: या आपने बिल्कुल सही बोला कि इंटरव्यू जब नया नया देते हैं तो डर बहुत होता है ना. लेकिन हमने सुना है ये डर के आगे जीत है.
0: बिल्कुल
2: है ना. तो अगर आप में सच में श्रद्धा है, डेडिकेशन है ना कुछ कर गुजरने की, तो आप ना अपने ऊपर मेहनत करेंगे इंटरव्यू से पहले. अगर आपको कहीं भी लगता है कॉन्फिडेंस में मेरे पहनाव में कमी है, मेरे दिखने में कमी है, तो थोड़ा पहले आप उसकी तैयारी कीजिए. शीशे के सामने खड़े होकर आप अपने आप से बात कीजिए. और वैसे तो मेरे भी पेरेंट्स बोलते थे कि अपने फ्रेंड्स से इंग्लिश में बात कीजिए, कम्युनिकेशन करेंगे तो और अच्छा होगा. बट फ्रेंड्स के साथ तो थोड़ा मजाक ही होता है, है ना, वो सब नहीं हो पाता है. बट मैंने अपने करियर में ये देखा कि अगर आपको बोलने में हिचकिचाहट होती है तो आप रिकॉर्ड कीजिए अपनी आवाज़. बोलिए, सोचिए कि आपके सामने इंटरव्यू बैठा है, खाली रूम में बैठिए, रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए और सोचिए, सिर्फ इमेजिन कीजिए कि सामने आपके इंटरव्यूअर बैठा है और वो सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि अपने बारे में बताइए, व्हाट इज़ योर नेम एंड व्हाट डू यू डू, है ना. तो आप अपने आप बोलेंगे, आपको खुद को नहीं अच्छा लगेगा कि ये मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा हूँ या कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रही हूँ. तो उसी पे थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप को हम ऐसे ही पॉलिश कर सकते हैं. और इंटरव्यूअर को भी पता है कि आपने अभी तक जॉब नहीं करी है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं है आपसे.
0: अच्छा,
2: एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है, बस आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो इंटरव्यूअर को आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता.
0: ये बहुत बड़ी बात है. अगर खुद को कॉन्फिडेंट हम अपने में नहीं रखते हैं तो दूसरा कैसे करेगा हमारे ऊपर विश्वास. विश्वास कैसे लाएं ये बताया आपने कि किस तरीके से तैयारी करें. और अगर बात करें पढ़ाई की, तो अभी तक हमने एग्जाम्स दिए थे, बुक्स पढ़े थे, उनको लिखा था. अब कोई सवाल पूछ रहा है, वो प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस है, मतलब आपको करके दिखाना है, तो अपनी तैयारी कैसी होनी चाहिए?
2: प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तो वो नहीं वैसे करा के देखते हैं जो मेरे टाइम में था. बट हाँ, ऑनलाइन आप हमेशा सर्च कर सकते हैं. आप चैट जीपीटी का यूज़ कीजिए. चैट जीपीटी पे आप लिखेंगे, बिल्कुल उस पर आप लिखेंगे कि इनिशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर सो एंड सो ब्रांच फ्रॉम बीटेक या वट एवर, आप लिखेंगे तो आपको क्वेश्चंस देगा. है ना, आप उससे इंटरेक्ट कीजिए. जो आपके मन में सवाल है वो उससे बात कीजिए, क्योंकि वो सारा इंटरनेट सर्च करके आपके लिए बेस्ट चीज़ें लाएगा. है ना. तो अगर आपकी इलेक्ट्रिकल की फील्ड है तो कुछ कुछ टॉपिक्स मोटर्स के, ट्रांसफार्मर्स के, कुछ कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो सब चाहते हैं कि पता होना चाहिए. है ना. अगर कंप्यूटर साइंस के हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब मेरे को नहीं पता कि कोर्स में क्या होगा, बट उस टाइम पे सी लैंग्वेज बहुत पढ़ा, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी. तो अगर आपने सी पढ़ी है ना, तो अगर आप उसमें प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्राम लिख पा रहे हैं कि नहीं, कुछ लूप्स यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, तो कुछ कुछ होते हैं हाई लेवल क्वेश्चंस जो आई थिंक आप गूगल करेंगे या चैट जीपीटी से भी पूछेंगे, तो वो उनको बोलो कि बेस्ट फाइव बेस्ट एडवांस क्वेश्चंस विच आई कैन यू नो प्रैक्टिस फॉर द इंटरव्यू. वो सब आप चीज़ें देखेंगे तो बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा. और अगर आप इंटरव्यूअर के सामने 10 क्वेश्चंस में से 5 भी बता पाए हैं और कॉन्फिडेंस से बता पाए हैं, दिखा पाए हैं कि मेरे अंदर विल है और पढ़ने की,
0: अच्छा
2: अभी हम इतना ही पढ़ पाए हैं तो बताया है, बट आगे हमारे अंदर विल है तो बिल्कुल हो जाएगा.
0: ओके अच्छा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कई बार हमें लगता है एक भी रॉन्ग किया तो मतलब मुश्किल है, तो हम कोशिश करते हैं ना कैसे भी उसको बोल दें, थोड़ा घुमा दें और थोड़ा इधर से बोल दें कुछ, है ना, तो वो नहीं करना है मतलब ऑनेस्टी.
2: हाँ थोड़े बहुत आई थिंक जो भी जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रे करके जाइए कि जो आपके लिए अच्छा है ना वो हो आपके लिए. कभी कभी हमें इंटरव्यूज ऐसे भी मिल जाते हैं जो शायद सुनना चाहते हैं कि कुछ भी बता दो, है ना, तो थोड़ा बहुत बता दीजिए. बट अगर आप नहीं बता पा रहे ना तो होपलेस नहीं होना है कि नेक्स्ट आंसर हमें आता भी हो तो हम डर के मारे ना बता पाए.
0: राइट
2: ना, थोड़ा सा प्ले अलोंग करना पड़ता है जो आई थिंक विद एक्सपीरियंस आ जाएगा. बट अभी जब एकदम शुरू शुरू में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके मन से जो आ रहा है वो कीजिए, बस कॉन्फिडेंस से कीजिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको.
0: मेन चीज कॉन्फिडेंस है.
2: हाँ.
0: ना नहीं तो आता हुआ भी भूल जाता है.
2: भूल जाता है.
0: और जैसा एक और पॉइंट आपने बोला था कि विल सीखने की पढ़ने की वो डिटर्मिनेशन दिखना चाहिए.
2: बिल्कुल,
0: है ना, कि हम कर लेंगे.
2: यस
0: ओके आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल टिप्स हैं, बिकॉज चाहे हमने कितनी भी पढ़ाई की हो, अगर एग्जाम प्रेशर इंटरव्यू प्रेशर दिमाग में आ जाता है तो वो उस मोमेंट में वो पढ़ाई हम उसको नहीं यूज़ कर पाते हैं, है ना.
2: एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंटरव्यू दे रहे होंगे पेरेंट्स के प्रेशर में, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पेरेंट्स को कि एक जॉब हो बच्चे के पास, एक इनकम हो तो वो अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं. बट आपका मन हो सिंगिंग का, डांसिंग का, या कहीं म्यूज़िक का, जहाँ पे इनिशियल लेवल पे नहीं हम पैसे कमा पाते हैं, तो उन लोगों को मैं ये सजेशन दूंगी कि अगर पेरेंट्स आपको चाह रहे हैं करना और आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 50% अपना इनिशिएटिव ले सकते हो उनका मन रखने का, तो आप वो कीजिए. और उस जिस डोमेन में आप घुसे हैं, जो भी जॉब में घुसे हैं, उसमें काबिल इतना बनिए कि आपका जो पर्सनल आप जो चीज़ करना चाहते हैं ना वो अपने मन से साथ साथ रह के कर लीजिए.
0: ओके
2: जिससे आप अपने पेरेंट्स को भी दिखा पाएं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आपने जो कहा है वो भी और जो मैं चाहता हूँ वो भी.
0: वो भी
2: नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने मन का कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो हम खुद होपलेस हो जाते हैं. पेरेंट्स तो पहले से ही होपलेस थे हमारे लिए और हम भी हो गए, तो वो बहुत खराब हो जाता है.
0: कहते देखो बोला था ना तुम्हें फिर सुनना भी पड़ता है.
2: बिल्कुल सबसे इजी होता है वो, सब कोई भी एकदम से बोल देता है कि हमने तो पहले ही खाया था.
0: पहले ही खाया था नहीं, बिल्कुल ठीक बात है. और सही मायने में देखा जाए राधिका, हम देख रहे हैं कि इंडिया में तो जो रिसर्च होती है कि यूथ में डिप्रेशन के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं. बहुत कारण है, डेफिनेटली एक कारण नहीं है, लेकिन हाँ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है. टू मच प्रेशर, और जैसा आपने कहा पेरेंट्स का भी सुने, अपना भी करें. अपना मन मार के जीने में भी थोड़ा मुश्किल है, और पेरेंट्स के अनुभव को भी हम एकदम नजरअंदाज नहीं कर सकते.
2: बिल्कुल,
0: तो एक बैलेंस, पीच का रास्ता. ओके ठीक है, आई थिंक रास्ते सबके अपने अपने हैं, बढ़ते जाइए आगे करते जाइए. लड़का जब जॉब करने लगते हैं तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और उसको यू नो आपने कैसे क्रॉस किया?
2: जॉब हम जब करने लगते हैं तो हमारी लाइफ 360 डिग्रीज टर्न हो जाती है.
0: ओके
2: क्योंकि हम सच में आई थिंक उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होता है कि आप अभी तक अपने पेरेंट्स के शेल में ही थे, अब आपको सब कुछ देखना है. शुरू शुरू में आई थिंक जो नए बच्चे होते हैं उनके लिए कंपनीज़ भी सपोर्टिव होती हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं पता होता है कि बच्चे नए आए हैं. बट डिफरेंस होता है बिहेवियर में. आप कॉलेज में होते हो तो आप कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो, बट ऑफिस में रह के आपको एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है. एंड आई थिंक अगर आप ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप नया नया जॉब कर रहे हैं तो आप से सीनियर्स जो हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस जो हैं, उनसे शुरू में ही सीख लीजिए. फिर हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ना, तो लोग ज़्यादा चाहते नहीं है कि ये सीखे कुछ. आसपास ऐसा एनवायरनमेंट भी मिलता है कि लोग नहीं प्रोग्रेस करने देते हैं, तो शुरू में आपके पास
0: कंपटीशन अगली हो जाता है.
2: बिल्कुल बिल्कुल. सबको लगता है ना कि आप ज़्यादा अगर ग्रो कर जाएंगे तो उनकी भी जॉब कहीं ना कहीं खतरे में हो सकती है. तो शुरू में आप जितना सीख सकते हैं और जितना ग्राउंडेड रह के सीख सकते हैं, जितना हम्बल रह के सीख सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस से सामने वाले को भी भला ही हो, आपसे अच्छा ही हो, है ना, उस तरीके ये एटीट्यूड लेके सीखें. थोड़ा सा डिफरेंस तो आता है, बट आई थिंक आपकी सराउंडिंग आपको सिखा देती है. थोड़ा डिफिकल्ट भी किसी किसी के लिए हो जाता है, बट अल्टीमेटली आई थिंक सराउंडिंग्स हमें आगे बढ़ा देती हैं. बस ग्रास्प करते चलिए जिससे आप जो भी सीख सकते हैं, मतलब वेल बन जाओ एक ना, कि कोई भी कहाँ से कुछ भी लेके वेल में ड्रॉप करते चलें कि आगे हम उसको यूज़ कर सकें.
0: सीखते जाना है हर तरफ से.
2: बिल्कुल.
0: ओके. और जैसा आपने कहा हम्बल होके सीखते जाना है. ओके. तो अगर सस्टेन करने की बात करें एक जॉब को या ग्रो करने की बात करें, तो कई बार हमें लगता है हम बहुत फास्ट ग्रोथ होनी चाहिए और हमारी प्लानिंग्स भी होती हैं एक साल, दो साल, तीन साल की, यू नो अब हमें यहाँ से यहाँ पहुँच जाना है. तो वो एम्बिशन जो है वो कितना ठीक है, मतलब वो ग्रोथ फास्ट होनी चाहिए या उसका पेस जो हमारे माइंड में होता है वो अलग होता है और रियलिटी में अलग होता है?
2: बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला है कि हमारे माइंड हमारा बहुत ना फिकल है या बहुत बचकाना है, आज कुछ सोचेगा कल कुछ सोचेगा ना. तो मुझे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि आपको जो भी मन करता है ना सीखने का, बनने का, उसको लिखिए रोज़.
0: ओके.
2: है ना, रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार लिखिए कि ये बनना है, ये सीखना है. क्योंकि करना बहुत कुछ है पर सोच हम बहुत रहे हैं, क्या हम एक्शंस ले रहे हैं उसके लिए?
0: ओके, राइट.
2: थोड़ा
0: प्लानिंग है.
2: बिल्कुल, वही मन का वही हो रहता है कि प्लान हम बहुत करते हैं, एक्ट हम कुछ नहीं करते हैं. इमोशनल होके हम प्लानिंग कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, कि उसको देखा हमने कि वो ये कर रहे हैं हम भी ये करेंगे. फिर हम किसी और को देख लेते हैं तो हमें लगता है नहीं ये ज़्यादा अच्छा है, ये कर लेते हैं. तो लिखिए, अपने आप से बात कीजिए. जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया ना कि रिकॉर्डिंग करके सुन रहे हैं अपने आप को, तो वैसे शीशे में बात कीजिए अपने आप से. समझिए कि क्या जो मैं ये बोल रहा हूँ वो मेरे दिल से रेजोनेट कर रहा है, जो मैं दिल में सोचना चाह रहा हूँ उससे आ रहा है. और कहीं ना कहीं अगर सच में आ रहा है तो आप फिर एक्शन आइटम्स अपनी लिखिए कि इसको अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. धीरे धीरे बढ़िए, किसी और को देख के मत बढ़िए कि वो इतने आगे पहुंच गए. क्योंकि इस दुनिया में सबका अलग अलग मिशन है, अलग अलग मोटिव है, अलग अलग पेस है, अलग अलग टाइम पे ग्रो करेंगे. तो कंपेयर करके परेशान नहीं होना है, बस जितना हम ग्रो कर रहे हैं वो अच्छे से ग्रो करना है. तो कितना भी टाइम लीजिए, बट अगर हम एक महीने में एक स्टेप भी ले पा रहे हैं तो हमने एक स्टेप तो लिया ना, वो ग्रोथ ही है हमारी.
0: मतलब अपनी ग्रोथ को किसी और की ग्रोथ के साथ कंपेयर नहीं करना है. वो भी कई बार डिमोटिवेट कर देता है नहीं तो लाइफ में. सबकी अपनी पेस है, सबकी अपनी जगह, सबका अपना मोटिव है. आगे बढ़ते रहिए, खुद को खुद से ही कंपेयर कीजिए.
2: yes.
0: ओके. और अगर मान लीजिए जैसे हम सीखते हैं, तो एक और सवाल ये आता है कि कितना टाइम हमें देना चाहिए. मतलब क्या हमारी पूरी लाइफ हमारा जॉब होता है या वो एक बैलेंस रखना चाहिए या क्या करना चाहिए? कितना समय दें?
2: देखिए, जॉब हम तभी कर पा रहे हैं जब हमारा बॉडी हेल्दी है. है ना, तो अपनी बॉडी और अपने माइंड के लिए भी वक्त निकालिए रोज़. चाहे हम सब बोलते हैं कि नहीं एक्सरसाइज करने का तो टाइम नहीं है, मेडिटेट करने का तो टाइम नहीं है, बट अगर हम किसी से रैंडमली भी बात करने लगते हैं तो 10-15 मिनट, आधा घंटा कहाँ निकल जाता है पता नहीं लगता है. तो रोज़ सुबह उठ के अगर आप 1 मिनट, 2 मिनट, नहीं तो 20 सेकेंड ही मेडिटेशन स्टार्ट भी कर सकते हैं, तो थोड़ा वो कीजिए. आधा घंटा कोशिश कीजिए एक्सरसाइज करने का, और नहीं भी हो पाता है, एक दिन नहीं हो पाया, दो दिन नहीं हो पाया, तो तीसरे दिन फिर से खड़े होके कीजिए. वो अपने स्केड्यूल को अपने हिसाब से बनाइए कि आपका पर्सनल टाइम भी रहे और आपका जॉब का टाइम भी रहे. आजकल जैसे कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम होने लगा है तो कहीं ना लीनियंसी आ गई है कि ज़्यादा देर हम लोग ऑफिस का काम करें, और कहीं ना कहीं इजी भी होता है कि बेड पे लेट के काम कर लिया, कभी कहीं बैठ के काम कर लिया, कभी कहीं बैठ के काम कर लिया. तो काम को भी एक लिमिट दीजिए कि अगर मेरा टाइम 9 से 6 का है तो मैं 9 से 6 में कंप्लीट कर लूँगी अपना काम, और नहीं हो पाता है तो उस टाइम में मैं कुछ और करके रात को बैठ जाऊँगी थोड़ी देर. बट अगर हम पूरे ही दिन काम करते रहेंगे या पूरे ही दिन घूमते रहेंगे तो वो गलत है. अपने हिसाब से बैलेंस कीजिए. बट जो चीज़ आपकी कोई हॉबीज़ होती हैं या पर्सनल हेल्थ के कुछ चैलेंजेस हैं, उन सबको टाइम दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम जॉब इसलिए कर रहे हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ अच्छी कर पाएँ, और वो अच्छी नहीं है तो फिर जॉब करने का क्या फ़ायदा है.
0: मतलब कई बार तो ये सोचते ही नहीं, एक लूप की तरह हम चलते रहते हैं उसमें, लेकिन वो कर क्यों रहे हैं और वो पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं, वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है. ओके, अच्छा राधिका, एक और क्वेश्चन ये था कि जब आपने इंजीनियरिंग करी तो जॉब के लिए क्या अलग, मतलब उस समय जो चूज़ करना है, जैसे आपने एक चॉइस तो करी जब आपने इंजीनियरिंग चूज़ की, तो उसमें कौन सी आपको करनी है, उसके बाद जॉब के समय भी क्या चॉइसेस होती हैं कि उसमें अलग अलग फील्ड्स हैं?
2: दोनों टाइम पे चॉइसेस होती हैं. एंड आई थिंक अगर मैं पहले बताऊं, जब आपने बीटेक करा या कुछ भी इंजीनियरिंग में आपने चूज़ करा और आपको आपने आसपास पूछा, आपको जो समझ आया आपने वो स्ट्रीम चूज़ कर ली,
0: राइट,
2: आप कॉलेज चले गए, फर्स्ट ईयर में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसके बाद भी एक ऑप्शन होता है, जैसे मेरे कॉलेज में था कि अगर आपके 80% प्लस परसेंटाइल आई है फर्स्ट ईयर में तो यू हैव एन ऑप्शन टू स्विच योर ब्रांच.
0: अच्छा,
2: जो आपने ब्रांच लेके आप गए थे उसके अलावा आप दूसरी भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको रहते रहते समझ आ जाता है कि किस डायरेक्शन में आपकी पढ़ाई होगी,
0: एक बेहतर आउटलुक मिलता है.
2: बिल्कुल, तो आप स्टार्टिंग में जॉब सॉरी कॉलेज जाने से पहले आपको जो समझ आ रहा है वो चूज़ कीजिए, जो आपके मन से आ रहा है या जो आपके आसपास के लोग समझा रहे हैं, आपको जो समझ आ रहा है वो लीजिए. अंदर जाके एक साल पढ़िए, आपको नहीं समझ आता तो अच्छे नंबर से ऐसे पढ़िए कि आप चूज़ कर पाएँ उसके आगे, है ना. और उसके बाद जब आपकी जॉब लग जाती है, फिर उसमें जो भी आपकी जॉब लगती है, अगर अब दो टाइप्स की कंपनीज होती हैं, एक होती हैं जो वेल सेटल्ड कंपनीज होती हैं, जैसे MNCs हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, या स्टार्टअप्स होती हैं, है ना. तो यूजुअली मैंने जो देखा है, स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा कोडिंग की जाती है. तो अगर आपको अपने कंपनी में पता लग गया, जैसे आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं और आपको पता लग गया है कि मुझे जावा करनी है, तो उसमें आपको जावा करनी है या सी में आपको करना है, और आपको उसी टाइप की कंपनी भी मिल जाती है, है ना, तो आप उसमें आगे बढ़ के और वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज़ वो आपको हेल्प करेगा और ज़्यादा लेवल पे कोडिंग अपना एनहांस करने का. ये स्टार्टअप्स की बात हो गई. और अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज में जाते हैं तो आपके पास फिर से ऑप्शन होता है कोई भी डोमेन अपनी सिलेक्ट करने का. फॉर एग्ज़ाम्पल, मल्टीनेशनल कंपनीज में जो मैंने देखा है उसमें हमेशा 4 महीने 5 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं फिर से, जो जो रिक्वायर्ड होंगे एक आईटी कंपनी में या किसी भी बैकग्राउंड में. तो आपको जब पढ़ाएंगे आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि आपको क्या पसंद है. तो जैसे एक डेवलपमेंट, जैसे मैं डेवऑप्स में हूँ ना, तो डेवलपमेंट आपको करनी है, तो डेवलपमेंट यूजुअली जावा में होती है या पाइथन में होती है, तो ये सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, है ना, तो आपको इसमें कंटिन्यू करना है तो आप इसमें जा सकते हैं. टेस्टिंग होते हैं, टेस्टिंग के भी अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसमें जा सकते हैं, और भी तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तो जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है उसमें जा सकते हैं. कंपनीज आपको ऑप्शंस देती हैं कि आपको इसमें वैकेंसी आई है तो आप इसमें आ जाइए. शुरू सिंस हम नए होते हैं तो हमारे पास ज़्यादा बार रिजेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, एक आध बार. हर कंपनी की पॉलिसी होती है कि आप एक बार रिजेक्ट कर सकते हैं फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, है ना, तो वो कर सकते हैं. और अगर नहीं मिलती है तो मेरा तो फंडा यही है कि आपको जो मिल रहा है आप उसमें इतना अच्छा कीजिए कि अगर आपको चेंज भी करना है तो सामने वाला आपको रोक नहीं पाए.
0: मतलब उनको आपकी ये पता चल जाए कि इनकी ये क्वालिटी है, ये कैपेसिटी, ये कर सकते हैं.
2: बिल्कुल,
0: दिल डू इट.
2: बिल्कुल,
0: वो विश्वास हो जाता है लोगों को. ओके, मतलब जो एक मॉरल ऑफ द स्टोरी कहे वो निकल के आ रही है बात, कि जो करो अच्छे से करना है. उसको पूरा बेस्ट देना है,
2: बिल्कुल बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख के करना है.
0: ओके, तो ये हमें पढ़ाई में भी काम आ रहा है, जॉब में

0: इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि आप सर्टिफिकेशन ही करो जस्ट टू शो कि हाँ मैंने सर्टिफिकेशन किया है.
1: Okay.
0: अगर आप जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं तो आप कीजिए सर्टिफिकेशन. आप नहीं भी करेंगे शुरू के स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट हाँ, आगे जाके आपको करना पड़ता है. थोड़ा सा सर्टिफिकेशन में होता है कि एडवांस नॉलेज आपको गेन होती है. तो इफ़ यू आर रियली विलिंग टू लर्न, आई थिंक हमेशा पॉजिटिव पॉइंट तो रहता ही है सर्टिफिकेशन का. बट स्ट्रेस नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए. जो हम सर्टिफिकेशंस में सीखेंगे वो अगर हम प्रैक्टिकली खुद से भी सीख लें. अब जैसे हम जावा पे काम कर रहे हैं तो खुद से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स होते हैं जो हम डाउनलोड करके और उसको कंपाइल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. अगर हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो हम कुछ भी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं. रैंडम सिनेरियो हम गूगल पे से उठा सकते हैं एंड वी कैन ट्राई टू क्रिएट आवर ओन स्क्रिप्ट.
1: अच्छा,
0: उसको रन कर सकते हैं. तो अगर आप में सच में वो विल पावर, अगेन आई एम यूजिंग द सेम वर्ड, अगर आप में सच में है यू विलिंग टू लर्न, तो आप कैसे भी अट्रैक्ट कर लोगे उसको, है ना. खुद से भी आप मेहनत कर, मैं यही कहूँगी कि खुद से पहले मेहनत करना सीखिए. खुद से कोशिश कीजिए कि हाँ मुझे करना है, उसके बाद सर्टिफिकेशंस भी हो ही जाएंगे. बट स्ट्रेस नहीं लेना है कि हाँ किसी ने किया है या ऐसा बोला जाता है तो करना है. नहीं, आपके दिल से जो आ रहा है वो कीजिए. अब तक
1: लर्निंग होनी चाहिए, मतलब
0: हाँ,
1: कोर्स से हो या अपने आप हो,
0: बिल्कुल,
1: है ना. वो एंड नहीं होना चाहिए. मैं ये नहीं लगना चाहिए मैंने सीख लिया, अब कर लिया. सीखते रहना है.
0: यस.
1: ओके, राधिका, कई बार लड़कियों को भी ये कहा जाता है कि ना इंजीनियरिंग शायद आपके लिए इतना सूटेबल नहीं है, क्योंकि एक तो पहले साइंस चूज करने में ही कई बार होता है कि हाँ रे तुम लड़की हो, मतलब ठीक है आर्ट्स ले लो या फिर कॉमर्स भी चलो ठीक है, बट साइंस टेक्निकल है और फिर आगे उस तरह के जॉब्स हैं. तो कई बार लड़कियों को इतना इंकरेज नहीं किया जाता है, और अगर किया भी जाता है तो वो मेडिकल लाइन पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं उनको आगे भेजना. तो इंजीनियरिंग और गर्ल्स, क्या आपको लगता है क्या ये कॉम्बिनेशन अभी कुछ चेंजेस हैं या क्या है इस समय सिनेरियो?
0: मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पर्सनली कि कोई इंजीनियर हो गर्ल. मेरे घर में भी ऐसा था कि डॉक्टर बनने से मना किया था क्योंकि ज़्यादा एज हो जाएगी पढ़ते पढ़ते, फिर शादी नहीं हो पाएगी. तो इस चक्कर में आपको आसपास आई थिंक सराउंडिंग से और आपके पेरेंट्स से या इंस्टेंट सराउंडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो आपको अचीव करने के लिए रोकेंगी. बट आप क्या करना चाहते हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपको क्या करना है. इंजीनियरिंग भी अगर गर्ल्स कर रही हैं तो आजकल कंपनीज इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं, इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गई हैं गर्ल्स की सेफ्टी के लिए कि अगर नाइट शिफ्ट है तो आपको कैब्स में स्पेशली गार्ड होगा फॉर द लेडी कि उसको ड्रॉप करेंगे एंड लास्ट ड्रॉप नहीं होगा. कोई और अगर बॉयज भी होंगे तो लास्ट ड्रॉप किसी भी गर्ल का नहीं रखेंगे. और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अगर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ है ऐसी कंपनीज जो गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रिकॉशंस उनके लिए रखती हैं. तो आई थिंक अब काफ़ी एडवांसमेंट हो गया है जहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी मेजर्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं. तो आई डोंट थिंक कि अनसेफ है लड़कियों का इंजीनियर बनना, बहुत सेफ है. बस ये है कि आप खुद से स्ट्रांग रहिए. दूसरों की बात तो सुनिए सबकी, बट करिए अपने मन की,
1: अपना डिसीजन लीजिए,
0: अपना डिसीजन खुद लीजिए और स्ट्रांगली लीजिए. ये नहीं कि आज हमने किया, जो आपने चूज कर लिया है फिर उस पर रहिए, चाहे उसमें अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब सारी कॉन्सिक्वेंसेस फिर आपके ऊपर हैं. तो वो आपको इतना इनिशिएटिव आपको लेना है ऐसे कि आप कॉन्सिक्वेंसेस उसके बियर कर पाए.
1: ये बहुत बड़ी बात है. कई बार हम छोड़ देते हैं या फिर कुछ ठीक नहीं हुआ हमारे अकॉर्डिंग, जो हमने सोचा था नहीं हुआ, तो उसको वहीं पे जाने देते हैं. सोचते हैं हमने ये डिसीजन क्यों लिया, ये किया गलत किया, और फिर पैनिक भी हो जाते हैं. लेकिन कॉन्सिक्वेंस को झेलना भी है और आगे बढ़ना भी है सीख के,
0: बिल्कुल,
1: है ना, तभी वो प्रोग्रेस हो पाती है किसी भी फील्ड में.
0: बिल्कुल.
1: तो जाते जाते आप कुछ कहना चाहोगे स्टूडेंट्स से जो तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ टिप्स हैं आपके पास कि वो एग्जाम्स बेहतर कैसे दें या अच्छे इंजीनियर कैसे बने या आगे बेटर कैसे करें, कोई भी टिप्स?
0: आई थिंक एंजॉय करो लाइफ को, अपनी हॉबीज फॉलो करो. एंड आई थिंक जो भी आपका दिल करता है, मैं यही विश्वास करती हूँ कि जो आपका दिल करता है वो कीजिए और मज़े से कीजिए. तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी तरक्की ना हो.
1: पढ़ाई को एंजॉय कर सकते हैं.
0: कभी कभी कर सकते हैं, अब मैं जॉब करती हूँ।

0: तो मेरे को बाय चांस ऐसी चीज़ मिल गई है जिसको करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, तो कहीं ना कहीं दूसरों से बेहतर हो जाता है मेरा काम, ऐसे मेरे सीनियर्स बोल देते हैं, तो वो बहुत मज़ा आता है उसको करते करते। तो पढ़ाई में भी मज़ा है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है कि किस पढ़ाई में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है।
1: ये इंटरेस्टिंग बात है, पढ़ाई में तो मज़ा है अपने लिए, लेकिन ढूंढना पड़ता है कि वो कहाँ छुपा हुआ है। ओके, तो इंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, ऊपर नीचे होगा भी तो भी सीखिए और आगे बढ़िए। और हमेशा एक वो कहते हैं ना कि जब तक जीवन है तब तक सीखना है, तो सीखने की उत्कंठा कहते हैं होनी चाहिए मन में, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, अच्छा करते जाएंगे। और कॉन्फिडेंस जैसा मैंने बताया था बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं।
0: यस,
1: थैंक यू सो मच राधिका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई थिंक जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ जानने सीखने को मिलेगा, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल है।
0: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
1: थैंक यू। और दोस्तों, अगर आपके कुछ सवाल हैं या आप जुड़ना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, या कोई भी बात है जो आप रेडियो मधुबन से शेयर करना चाहते हैं, दोस्तों अगर आपके पास कोई मैसेजेस भी आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, हम एक बार फिर से बता दें कि हर मैसेज, हर फोटो, हर वीडियो सच्चा नहीं होता। अगर आप वेरीफाई कराना चाहते हैं कुछ, तो भी आप रेडियो मधुबन को मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर इस नंबर पर जो कि है 9414151415, यानी कि 9414151415। फिलहाल लेते हैं इजाजत, मुलाकात होगी अगली कड़ी में, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए।
2: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
3: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
2: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रुका, ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, एक बाइक पे तीन हैं, ओए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ओए बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, ओए तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टैंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में 6:07 हो चुके और मैं हूं आपकी दोस्त मोना। चांद चलता क्यों है, ये सवाल रूहानी के मन में जरूर है। सिर्फ मेरे मन में नहीं, रूहानी के दिमाग में भी जरूर है। तो इसी विषय पर आज अमेजिंग जानकारी जरूर होगी, साथ ही साथ कविता, कहानी और सवाल भी होगा जिसका जवाब देंगे आप
1: 9414151515 पर।
0: तो चलिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए,
1: मुस्कुराते रहिए।

0: अमेजिंग जानकारी आपके लिए आज की उड़ान में, क्योंकि आप जुड़े हो आपके फेवरेट कार्यक्रम
1: उड़ान के साथ।
0: मैं हूँ आपकी दोस्त मोना, मेरे साथ है
1: रूहानी।
0: चलिए अमेजिंग जानकारी किस विषय पर? हम चंदा हमारे साथ साथ चलता हुआ क्यों दिखाई देता है?
1: रात में जब हम चलते हैं तो चांद भी आसमान में हमारे साथ साथ चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, ये हमारी आंखों का भ्रम होता है।
0: चांद पृथ्वी से औसतन करीब 3.84 लाख किलोमीटर दूर है। इतनी अधिक दूरी के कारण हमारी जगह बदलने पर चांद की दिशा में भी बहुत कम बदलाव दिखाई देता है। इसके विपरीत हमारे आसपास की चीजें काफी पास होती है, जैसे कि पेड़, घर, पौधे, बिजली के खंभे, सड़क के किनारे की वस्तु। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये चीजें तेजी से पीछे की ओर दिखाई देती है जाते हुए। इसे विज्ञान की दृष्टि में परिपेक्ष प्रस्पेक्टिव से समझा जा सकता है।
1: चांद हमसे बहुत दूर है, इसलिए हम कुछ मीटर या कुछ किलोमीटर आगे बढ़ जाएं तो भी उसकी दिशा में बहुत ज्यादा बदलाव नजर नहीं आता। इसी वजह से हमें लगता है कि वह हमारे साथ साथ चल रहा है।
0: जब हम आगे बढ़ते हुए ये बात और नोटिस करते हैं कि चांद का आकार हर रात बदलता हुआ हमें दिखाई देता है। चांद वास्तव में अपना आकार बिल्कुल नहीं बदलता, पर हमें तो दिखाई वैसा ही देता है। रूहानी, आगे इसके बारे में बता दो।
1: बल्कि हमें उसका रोशन हिस्सा अलग अलग आकार में दिखाई देता है। चांद अपनी रोशनी खुद पैदा नहीं करता, वह सूर्य की रोशनी को परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट करके चमकता है और पृथ्वी की परिक्रमा करता है।
0: इस दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंदा की स्थिति बदलती रहती है, इसी वजह से हमें चांद का प्रकाशित हिस्सा अलग अलग रूप में दिखाई देता है। जब चांद का रोशनी वाला भाग हमारी ओर नहीं होता तब
1: अमावस्या होती है। इस समय चांद हमें दिखाई ही नहीं देता। जब चांद का थोड़ा सा चमकीला हिस्सा दिखाई देने लगता है इसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कहते हैं।
0: धीरे धीरे ये हिस्सा बड़ा होता जाता है और पूर्णम के दिन पूरा गोल चांद दिखाई देता है। पूर्णिमा के बाद चंदा का दिखाई देने वाला रोशन हिस्सा फिर से धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन इतनी सारी बातों के साथ ये तीन ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका भारत के साथ जुड़ाव है, पर भारत में एक व्यक्तित्व का जन्म नहीं हुआ, बाहर हुआ। इनमें से किन का जन्म भारत के बाहर हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है ए मदर टेरेसा, बी कपिल देव, सी महात्मा गांधी। सही जवाब
1: 9414151415 पर देना
0: और गीत ये खास सुन लेना।

0: चलिए दोस्तों, इनमें से किनका जन्म भारत में हो भारत के बाहर हुआ था, अर्थात भारत में नहीं हुआ था। आपके सामने हमने ऑप्शन रखा, ए
1: मदर टेरेसा, ऑप्शन बी है कपिल देव, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी।
0: भाई देर मत करिए, हमारे लिए कॉल करिए। इस सवाल का जवाब देने के लिए नंबर है हमारा
1: 9414151415।
0: जी हाँ, झटपट जवाब दीजिए, सुनते रहिए,
1: मुस्कुराते रहिए।
2: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
3: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
2: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
3: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच एक श्रोता कण भी जरूर है।
1: ओम शांति दीदी, ओम शांति,
0: ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया हूँ। चार से प्रोग्राम सुन रहा हूँ। चांद की जानकारी बहुत ही अच्छे लगे और गीत भी अच्छे लगे और सवाल भी अच्छा है, जवाब है मदर टेरेसा।
0: ओके, थैंक यू। आपका जवाब लॉक करते और प्यारी सी कविता इसके बाद लेकर आ रहे हैं, उसको जरूर सुनिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू, नमस्कार। चलिए दोस्तों, सीधे बढ़ते हैं। हमारे सुभाष जी कॉल करके आज के सवाल का जवाब दे चुके हैं। माँ की मूरत भूली सूरत थी वो मदर टेरेसा महान, गरीब दुखियारों की सेवा हेतु जिसने किया अपना जीवन कुर्बान।
2: कलकत्ता के शहर में बसकर किया निस्वार्थ दान का काम, ऐसी माँ जो विश्व की माँ है, हम सबका सादर प्रणाम।
0: दर्द में जो थे बेसहारा, उनके आंसू पोंछ दिए, प्यार और ममता की खातिर सारे अपने सुख छोड़ दिए।
2: श्वेत साड़ी नीली किनारी, रूप था उनका पावन सा, जैसे धरती पर उतर आया हो कोई फरिश्ता सावन का।
0: नोबल पाकर भी वो रही हमेशा उतनी ही विनम्र, करुणा की वो मूरत थी मानवता का उनका मंत्र।
2: शत शत नमन है आपको ओ ममता की मूरत महान, युगों युगों तक गूंजेगा तेरा ये पावन यशोगान।
0: जी हाँ, युगों युगों तक गूंजेगा तेरा ये पावन यशोगान। चलिए एक खूबसूरत गीत आप तक पहुंचा देते हैं। आज की उड़ान में ही पुनः सवाल दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। इनमें से किन का जन्म भारत के बाहर हुआ था? आपके लिए ऑप्शन है ए
2: मदर टेरेसा, ऑप्शन बी है कपिल देव, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है आप साथियों का। कौन बोल रहे हैं सर?
1: नमस्कार, पालमपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति
0: जी। फिरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करिए कॉल करने के लिए।
1: जी जी, चमड़े की अपने चमड़े की जवान है तो कभी कभी। हेलो।
0: हाँ जी, बोलिए बोलिए।
1: तो हमने जो पूछा इसमें मदर टेरेसा है प्रश्न का जो हम।
0: जी ओके, थैंक यू। और आपकी पोती कैसी है फिरोज जी?
1: बहुत एकदम बच्ची है पोती भी। अभी पोती को मैं फोन लगाता हूँ
0: जी,
1: कोई अच्छा अच्छा गीत सुना है।
0: जी थैंक यू, नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चलिए दोस्तों, हमारे फिरोज जी थे, आगे बढ़ते हैं।

0: करोड़ों ने पाया इनसे बहुत सारे सुख, लेकिन बे टिकट बेकर बकरी ये वाला कहानी आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। कैसे? ट्रेन के डिब्बे में टॉयलेट के पास अपनी गठरी से सट कर बैठे थे मोजीलाल, पर जैसे ही टीटी की नजर पड़ी उन पर, उन्होंने मोजीलाल क्या बोला, मोजीलाल को क्या बोला गया?
1: टिकट। मोजीलाल बोला, हुजूर बस जल्दी में चढ़ गयो, अगले स्टेशन पर उतर जाऊं।
0: इतने में टीटी ने कहा, ये कौन है गठरी के पीछे?
1: बेचारा मौजी सिर से सरकता लाल साफा संभालता हुआ उठा तो गठरी में छुपी हुई बकरी भी उठ खड़ी हुई।
0: टीटी ने तुरंत रसीद काट डाला और बोले, निकालो 300 रुपए।
1: मौजी गिड़गिड़ाया, हुजूर इतने रुपये मेरे पास कहाँ?
0: और गाड़ी ने अपनी स्पीड नहीं पकड़ी थी, इसी बात का फायदा उठाकर बकरी छोड़ मौजी गाड़ी से कूद गया। ये देख टीटी चलाया, अरे अरे अरे अरे,
1: पैसेंजर कूद भागा, गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली थी, रसीद भी कट चुकी थी। टीटी बड़बड़ाने लगा,
0: कौन चुकाएगा पैसा इस बकरी का?
1: इधर मझोले कद की वह चितक कबरी बकरी बोगी में बोरे से घूमने लगी। कुछ लोग आनंद ले रहे थे तो कुछ को बकरी के घूमने पर गुस्सा आ रहा था।
0: बोगी में बैठे बच्चे बकरी को बिस्किट केले खिलाने लगे तो बकरी का भय भी जाता रहा। तभी टीटी के मन में आया, क्यों ना इस बकरी से ही पैसा वसूल लो।
1: पर अब टीटी महाशय क्या करे इस बकरी का, बिना पैसा चुकाए पैसेंजर तो भाग गया, गठरी भी ले गया अपनी, और इसकी बेटिकट बकरी अभी भी मस्ती के साथ सफर कर रही है।
0: ओह माय गॉड, ट्रेन का मजा तो बकरी ही लूट रही है। उधर मौजी बकरी को यूं ही कैसे छोड़ देता, वो दूसरी बोगी में चढ़ गया।
1: अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो टीटी ने वहां खड़े सफाई कर्मचारी को बुलाकर कुछ बात की और उसने भी सिर डुलाकर हाँ में भर दी।
0: बकरी को स्टेशन में उतार लिया गया, उसके गले में रस्सी को थमाकर वह कर्मचारी उसे दूर ले गया और बकरी को बेचने की कोशिश करने लगा। टीटी साहब ने ये काम उसे क्योंकि सौंपा था।
1: देखते ही देखते लोग इकट्ठा होने लगे।
0: सफाई कर्मचारी मद्दू पूरी निष्ठा के साथ बकरी बेचने में लगा था कि उसी ट्रेन से उतरकर एक आदमी भागा भागा आया, बोला,
1: भैया बकरी मैं खरीदूंगा। टीटी ट्रेन के गेट पर खड़ा था, ट्रेन भी रुकी खड़ी थी कि बकरी बिके, पैसा वसूल हो और नुकसान की भरपाई हो।
0: यूं ही भीड़ में से सब तमाशा देख रहे थे, खरीदार कोई नहीं था। कोई ट्रेन से उतरा, कोई सामान के साथ जाने की जल्दी में था, तो किसी को सफर के लिए ट्रेन में चढ़ने की हड़बड़ी थी।
1: बकरी का ग्राहक देख मद्दू झट तैयार हो गया। 30 रुपए दाम पर मद्दू ने 3 उंगलियां का इशारा कर गेट पर खड़े टीटी साहब को सौदा कर लेने की बात पूछी। साहब खुश हाथ हिलाकर हाँ में भर दी।
0: उसे लगा उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, भाग कर गया और गेट पर खड़े साहब को 3 नोट दे दिए।
1: 10-10 के 3 मुड़े टूटे नोट लेकर मद्दू ने बकरी लाल साफे वाले ग्राहक को सौंप दी।
0: टीटी ने देखा 10-10 के 3 नोट, यानी कि सिर्फ 30 रुपए।
1: टीटी हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि मद्दू ने 3 उंगलियों का इशारा किया था 30 रुपयों के लिए। उधर बकरी अपने ही मालिक लाल साफे वाले मौजी के साथ मस्ती में चली जा रही थी।
0: टीटी ठगासा रह गया क्योंकि वो ठग चुका था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस गीत के बाद एक और कहानी लेकर आते हैं।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच एक साथी हैं, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ, मैं सादिया बोल रही हूँ।
0: हाँ सादिया, कैसी हो?
1: मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताओ आज क्या सुनाने वाली हो?
1: मैं गीत सुनाने वाली हूँ।
0: सुना दो।
1: मैं लख समझाऊं मैटा, दिल समझने पाता तेरा, तेरी खैरिया तो मेरा मैं झूठा, तेरा मैं झूठा।

0: थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया साजिदा। आगे बढ़ते हैं और आपको शुक्रिया अदा करते हैं। और इसमें से आपको पता है इनमें से किन का जन्म भारत के बाहर हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है ए
1: मदर टेरेसा, ऑप्शन बी है कपिल देव, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी।
0: झटपट बता दो।
2: मदर टेरेसा।
0: मदर टेरेसा, थैंक यू साजिदा, बहुत खुश रहो, मुस्कुराते रहो।
2: और हमारे बड़ा ने बोला था, इसलिए मैंने आज फोन करा है।
0: ओके थैंक यू।
3: बेटे हुए थे दरबार में, सभी दरबारी अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई बादशाह से किसी राज्य की बात कर रहा था तो कोई अपने काम का हिसाब बता रहा था। लेकिन उस दिन बादशाह अकबर कुछ ज्यादा ही शांत थे। वो बार बार अपने सामने रखी चीजों को देख रहे थे और फिर कुछ सोचने लगते थे। अब क्या होता है कि उस समय बीरबल किसी जरूरी काम से दरबार से बाहर गए हुए थे। अकबर ने कुछ देर इंतजार किया लेकिन बीरबल वापस नहीं आए। तभी अकबर ने अपने एक सैनिक को पास बुलाया और कहा, जाओ बीरबल को तुरंत दरबार में बुलाकर लाओ। सैनिक तुरंत वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। बीरबल ने आते ही बादशाह को झुककर प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, आपने मुझे याद किया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराए, फिर बोले, हाँ बीरबल, आज मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी चुनौती सोची है जिसे सुनकर शायद तुम भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। यह सुनते ही पूरे दरबार की नजर बीरबल पर टिक गई। दरबारी आपस में देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह आज बीरबल से कैसी चुनौती लेने वाले हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चुनौती कैसी भी हो, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं उसे हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने कहा, कोशिश नहीं बीरबल, आज मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। ये सुनते ही दरबार में बिल्कुल शांति छा गई। अब क्या होता है कि बादशाह अकबर अपने सिंहासन से उठते हैं। उन्होंने अपने सामने रखी एक छोटी सी रोटी उठाई, फिर उस रोटी को हाथ में लेकर बोले, बीरबल, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूँ कि आज तुम इसी एक रोटी से पूरे दरबार का पेट भरो। ये सुनते ही पूरा दरबार एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। कुछ दरबारी हंसने लगे। एक दरबारी ने तो धीरे से मुस्कुराकर दूसरे दरबारी के कान में कहा, एक रोटी से पूरे दरबार का पेट, यह तो बिल्कुल असंभव है। दूसरा दरबारी भी हंसते हुए बोला, आज तो बीरबल भी फंस गया। लेकिन बीरबल चुपचाप खड़े थे। उन्होंने रोटी को देखा, फिर दरबारियों को देखा और फिर बादशाह अकबर की तरफ देखकर बोले, जहांपनाह, क्या पूरे दरबार का मतलब यहाँ मौजूद हर व्यक्ति? अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, इस दरबार में जितने भी लोग हैं, आज उन सभी का पेट इसी एक रोटी से भरना है। बीरबल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। अब उनके सामने एक अजीब चुनौती थी, एक रोटी और सामने पूरा दरबार। आप ही सोचिए दोस्तों, अगर आपके सामने ऐसी चुनौती रख दी जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस एक रोटी को सबके बीच बांट देंगे? लेकिन अगर रोटी के टुकड़े बहुत छोटे कर दिए जाए तो क्या उससे किसी का पेट भर सकता है? या फिर बीरबल के दिमाग में कोई ऐसी बात आ गई थी जो बाकी किसी के दिमाग में नहीं आई? अब क्या होता है कि बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, आज तुम्हें इसी दरबार में साबित करना होगा कि एक रोटी से पूरे दरबार का पेट कैसे भरा जा सकता है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा जहांपनाह। अब बीरबल रोटी लेकर दरबार से बाहर जाने लगे। लेकिन तभी एक दरबारी जोर से हंस पड़ा। वह बोला, बीरबल जी, रोटी छोटी है और दरबार बड़ा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि रोटी बांटते बांटते आपकी बुद्धि ही खत्म हो जाए। पूरा दरबार हंसने लगा। लेकिन बीरबल ने उस दरबारी की तरफ देखा भी नहीं और वह मुस्कुरा दिए और आगे बढ़ गए। अब क्या होता है कि बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे होते हैं, लेकिन वह बीरबल को जाते हुए देख रहे थे। बीरबल दरबार से बाहर पहुंच गए थे। उन्होंने अपने साथ मौजूद एक सेवक को बुलाया, फिर उससे कुछ सवाल पूछने लगे। सेवक ने बीरबल के सवालों का जवाब दिया। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने रोटी को देखा। उनके चेहरे पर अब पहले वाली चिंता बिल्कुल नहीं थी। मुस्कुराकर वह आगे बढ़ गए, जैसे उन्हें चुनौती का जवाब मिल गया हो। थोड़ी देर बाद बीरबल वापस दरबार में आए। अकबर ने बीरबल को देखते ही पूछा, तो बीरबल क्या तुम्हें अपनी चुनौती का जवाब मिल गया? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह। अकबर ने पूछा, तो बताओ इस एक रोटी से पूरे दरबार का पेट कैसे भरेगा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। अकबर बोले, पूछो। बीरबल ने कहा, क्या इंसान

0: इंसान का पेट सिर्फ खाने से भरता है। यह सुनते ही अकबर थोड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, यह कैसी बात हुई? भूखे इंसान का पेट खाने से ही भरेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आज चुनौती पेट भरने की नहीं है। आज चुनौती यह समझने की है कि एक रोटी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। अकबर ध्यान से बीरबल की बातें सुनने लगे। बीरबल ने उस रोटी को अपने हाथ में लिया, फिर बोले, जहा पना, अगर मैं इस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके पूरे दरबार में बांट दूं तो क्या होगा? अकबर बोले, सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। बीरबल ने कहा, क्या उससे किसी का पेट भर जाएगा? अकबर ने कहा, नहीं। बीरबल बोले, बस यही गलती हम अक्सर करते हैं। पूरा दरबार अब बिल्कुल शांत था। बीरबल ने आगे कहा, अगर हमारे पास कोई चीज कम है तो उसे बराबर बराबर बांट देना हमेशा सही समाधान नहीं होता। कभी कभी उस चीज का इस्तेमाल ऐसी जगह करना पड़ता है जहां उससे बहुत बड़ा फायदा हो। अब अकबर की आंखों में उत्सुकता दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा, लेकिन बीरबल, मेरी चुनौती अभी पूरी नहीं हुई। मैंने कहा था कि इसी एक रोटी से पूरे दरबार का पेट भरना है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहा बना, अभी तो असली बात बाकी है। अब क्या होता है कि बीरबल दरबार के बीच में रखी एक बड़ी थाली के पास गए। उन्होंने उस एक छोटी सी रोटी को थाली में रखा, फिर दरबारियों की तरफ देखकर बोले, आज इस रोटी को कोई नहीं खाएगा। यह सुनकर सब हैरान हो गए। एक दरबारी बोला, लेकिन फिर पेट कैसे भरेगा? बीरबल ने कहा, धैर्य रखिए। फिर बीरबल ने कहा, इस रोटी को देखकर हम सबको एक बात समझनी होगी, अगर एक चीज कम हो तो उसका मूल्य और भी बढ़ा जा सकता है। इसीलिए हमें पहले यह तय करना होगा कि इसे किसके लिए इस्तेमाल किया जाए। बीरबल ने उस रोटी को रसोई में भेज दिया। अब रसोई में उस रोटी का इस्तेमाल एक खास काम के लिए किया गया। उस रोटी के सहारे रसोइयों ने दरबार में मौजूद अनाज और बाकी खाने की मात्रा का सही अंदाज लगाया। फिर बीरबल ने रसोइयों से कहा कि जो भी खाना उपलब्ध है उसे इस तरह पकाया जाए कि कोई भी खाना बर्बाद ना हो, सबके लिए बराबर मात्रा में खाना बनाई जा सके। कुछ देर बाद पूरे दरबार के सामने भोजन परोसा गया। सभी दरबारी आराम से भोजन करने लगे। जब सबका पेट भर गया तो अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। अकबर बोले, लेकिन बीरबल, मैंने तो कहा था कि एक रोटी से पूरे दरबार का पेट भरना है, यह तो बाकी खाना भी इस्तेमाल हुआ है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहापना, यही तो इस चुनौती का जवाब है। आपने मुझे यह नहीं कहा था कि बाकी चीजों को इस्तेमाल नहीं करना है। आपने सिर्फ यह कहा था कि एक रोटी से पूरे दरबार का पेट भरो, और मैंने उस एक रोटी को भोजन नहीं बल्कि पूरे दरबार को भोजन की शुरुआत बनाने के लिए इस्तेमाल किया। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि का मतलब सिर्फ मुश्किल सवाल का जवाब देना नहीं होता बल्कि कम साधनों से बड़ा समाधान निकालना होता है। यह सुनते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन दोस्तों, इस कहानी की असली बात अभी बाकी है। देखो, हमारे पास जिंदगी में हमेशा बहुत सारी चीजें नहीं होती है। कभी पैसा कम होता है, कभी समय कम होता है, कभी साधन कम होते हैं, और कई बार लोग हमें देखकर कहते हैं, तुम इतना बड़ा काम कैसे करोगे? लेकिन समस्या हमेशा साधनों की कमी नहीं होती। कई बार समस्या ये होती है कि हम जो हमारे पास है उसका सही इस्तेमाल करना ही नहीं जानते। बीरबल के पास सिर्फ एक रोटी थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि रोटी छोटी है। उन्होंने सोचा कि इस छोटी सी चीज से शुरुआत कैसे की जा सकती है। और दोस्तों, जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आपके पास आज बहुत पैसा नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके पास बड़ा घर नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके सपने छोटे होने चाहिए। अगर आपके पास बहुत साधन नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी शुरुआत नहीं हो सकती। आपके पास जो है वहीं से शुरुआत करो, क्योंकि बड़ी चीजें हमेशा बड़े साधनों से शुरू नहीं होती। कई बार बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत सिर्फ एक छोटी सी चीज से होती है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उस छोटी सी चीज को देखकर कहते हैं, इतना कम है, इससे क्या होगा। और कुछ लोग उसी चीज को देखकर कहते हैं, इतना है, अब इससे क्या किया जा सकता है। यही सोच इंसान को बाकी लोगों से अलग बनाती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आज आपके पास कम है तो परेशान मत होना। अपने पास मौजूद चीजों को गिनो और फिर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, मैं जो मेरे पास है उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। हो सकता है आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत वहीं से हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको बीरबल की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना। अगर आपके पास सिर्फ एक रोटी हो और आपको पूरे दरबार की मदद करनी हो तो आप उस एक रोटी का इस्तेमाल कैसे करोगे। और ऐसे ही मजेदार, रोचक और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल अरुण की कहानी को।
1: चलिए दोस्तों, प्यारी सी कहानी सुन ली और अब सवाल पुनः एक बार और दोहरा देते हैं।
2: इनमें से किनका जन्म भारत के बाहर हुआ था?
1: आपके सामने ऑप्शन है ए मदर टेरेसा, बी कपिल देव, सी महात्मा गांधी। देर मत करिए, झटपट सही जवाब दीजिए। नंबर है हमारा
2: 9414151415।
1: सुनते रहो,
2: मुस्कुराते रहो,
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

सुनकर इतना ज्यादा शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे, पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं भूल के तन।

0: मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: बहू, मुझे लड़का ही चाहिए।
2: अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
3: माँ, अब तो बस करो।
1: बहू, क्या सोच रही हो? घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो।
4: कोख को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।

0: वेल दोस्तों, सही जवाब देने का वक्त भी आ गया। इनमें से किन का जन्म भारत के बाहर हुआ था? भाई महात्मा गांधी का, रूहानी?
1: नहीं।
0: कपिल देव जी का?
1: नहीं।
0: तो
1: मदर टेरेसा का?
0: जी हाँ दोस्तों, सही जवाब मदर टेरेसा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे।
1: तब तक के लिए उड़ान से कहना चाहेंगे गुड बाय।
0: वेल कल तो है फ्राइडे, आज तो है फ्राइडे, कल है सैटरडे, सो सोमवार को जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, मधुबन रेडियो से मैं हाकम खान। हमने एक संगीत कला केंद्र खोल रखा है। हमारा भारत में व राजस्थान में विवाह, जन्मदिन, लोक गीतों का कार्यक्रम देते हैं। हम मांगणियार कलाकार रजवाड़ों में लोक गीतों का कार्यक्रम देते हैं। शादी विवाह, जन्मदिन पर ढोल हारमोनियम बजाने का कार्यक्रम करते हैं। हमारे संगीत का वो गायकी जीवित रहे, ताकि हमारे बच्चे संगीत सीख अपनी कला को देश विदेश में प्रोग्राम करवा सके, अपने आजीविका कमा कर और परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ केसरिया बालम पधारू मारे देश। राग मांड साजन आहे हे सखी, मैं कहीं मनवार करूं, थाल भरूं गज मोतियां ऊपर नैन धरूं। साजन आवत देख कर तोड़ दियो गलहार, लोक जाने मोती चुगे झुकझुक करे नमन। तो ये केसरिया बालम जो मांड राग में गाया जाता है, जब कोई मेहमान घर पे आती है या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो उसमें केसरिया बालम पधारू मारे देश शुरुआत करने जा रहा हूँ। केसरिया बालम पधारू।
2: अभी बजे हैं शाम के 7। अगले इस एक मिनट में मन को रखिए प्रभु के साथ।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते हैं, ढाणी में जाते हैं, मगरा में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, प्रशासन गांव के संग जाते हैं, प्रशासन का साथ जो गतिविधि हो रही सब तक जन जन तक पहुँचाने के लिए सरकार का जो मंच है, आसपास गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही सब तक मिले सब तक पहुँचे, आज इस कार्यक्रम को लेकर नई जमीन में पहुँचे जो कि धनारी और आगे खुले रहा बीच में ही नई जमीन और यहाँ पर पहुँचे। सबको धन्यवाद देते क्योंकि हमारा कार्यक्रम सुंदर रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक आदिवासी अंचल में आए और हमारा मेट साहब भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और वो भीष्म पितामह जैसे लीडर है। तो सर आपका परिचय देंगे, सर अपना नाम बताइए।
1: कालूराम।
0: कालूराम के लिए जोर से ताली बजाओ तो भाई। कालूराम हमारा मेट के लिए, उनका परमिशन बिना हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सरकार का जो मंशा है आसपास को सुख शांति खुशी देने के लिए आज रेडियो मधुबन पहुंचे। एक आदिवासी गीत सुनेंगे। सभी माताएं रेडी? आई लोग रेडी? हाँ जी बोलो।
2: हाँ जी।
0: चलिए एक गीत सुनेंगे।

Sabure mata re gure wa de a sabure mata.

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, क्योंकि जब भी जाते हैं आदिवासी एरिया में, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, इस तरह कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, हमारा कार्यक्रम को हेल्दी वेल्दी और हैप्पी करा देते हैं। सभी आपने के लिए ताली बजा जोर से भाई। वाह क्या बात, क्या बात है। ये था कुछ आदिवासी गीत में जो शुद्धता, जो पवित्रता, जो अपनापन देखने को मिलता है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद सुनेंगे। और आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। और एक को देखकर दूसरे भी सीख जाते हैं, और छोटे बच्चे भी बड़ों को देखकर सीख जाते हैं। आए लोग ऐसे गीत गाते हैं तो हमारा इस कार्यक्रम को देखकर सीख जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे। लेकिन जब आए इतना दूरस्थ जगह, जो कि पिंडवाड़ा और आबू रोड ब्लॉक दोनों ब्लॉक के बीच में ही नए जमीन में पहुंचे, बहुत अच्छा लगा। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है आज इस कार्यक्रम को सभी आई लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और हमारा कार्यक्रम जो रेडियो में सब तक पहुंच रहा है। थेमरो हूँ नाम मूवी और थेमरो
1: खेतू
0: और थेमरो चले सबको धन्यवाद देते हैं और एक प्रस्तुति एक गीत और सुनेंगे लेकिन हमें खुशी है इतना दूरस्थ जगह से आप रोड से तो सुनते हैं एक प्रस्तुति क्योंकि इनको मौका नहीं मिल रहा था इनको कोई पूछ नहीं रहा था लेकिन आज मीडिया वाला आए हैं तो उनका आवाज़ को रेडियो में प्रसारण करने के लिए पहुंचा है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एनजीओ बड़ा एनजीओ है भगवान का माउंट आबू में तो आज चलिए एक प्रस्तुति सुनेंगे और एक भजन सुनेंगे सभी आ गए एक देखकर क्योंकि हमारा आवाज़ ही उनको बुला दिया भाई हमारा कोई गीत गा रहा है इसे कान पकड़ कर चलो यहाँ पर सब आ गए ऐसे होता है। चलिए और एक प्रस्तुति
2: चलिए सभी आगे बहुत अच्छा देखो इस तरह खुशी का बात ऊपर वाला भी हमें देखकर खुशी हो रहा है ऊपर वाला हमारा बाप है ना छोटा बाप चलिए शुरू करते हैं।

大丈夫だ、人形言うてね、もにゅうらいるの。ロイルは GK 言うてね、モニオ。

राइड लाजी जात बिलो मांगतो राइड ला जांखी उतारो गोमरे राइड राइड ला जांखी उतारो गोमरे राइड।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम को लेकर पूरा ढाणी तक मगरा तक पहुंचता है और जिसको कोई पूछता नहीं है, लेकिन रेडियो मधुबन उनका आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए कोशिश करता है, तो बहुत खुशी लगा। आदिवासी गीत में जो दम है, जो शुद्धता है, जो भोलापन देखने को मिलता है, सभी आई लोग के लिए जोर से ताली बजाओ भाई, वेरी गुड। और हमारा मैट को कौन भूलेगा भाई, मैट भी हमारा साथ दिया तब जाकर आप में इतना संगठित हुआ। मैट के लिए भी धन्यवाद कालू राम जी को। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अभी तो प्रतियोगिता जैसे हुआ भाई, हम तो गाए दो गीत, उनको भी दो भाई, उनको भी चांस दो, वो भी क्यों उलाना देगा, तो वो भी दोष देगा हमें, ब्लेम करेगा, वो भी गीत गाएगा, क्योंकि आज तो कॉम्पिटिशन है। तो हमारा आई एक सबका पर भारी पड़ेगा, बोलते एक बिहारी सबका पर भारी है, लेकिन हमारा एक माता है कम नहीं है आकाश में, जैसे सूरज है रात को चांद है पूरा आकाश में, जैसे एक माता भी कम नहीं है, तो वो गीत गाएगी, लेकिन दम है, वो उसका नाम बताएंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है। आज तो सबका आवाज का गुलदस्ता बन रहा है, क्योंकि गुलदस्ता में जैसे वेराइटी फूल होता है, ये आवाज का दुनिया में भी आवाज, कालू भाई का भी आवाज लिया, माताओं को भी आवाज लिया, मेरा तो आवाज हमेशा सुनते हैं, लेकिन आज नए जमीन में आए तो नया गीत मिलेगा, नया आवाज, नया पहचान, क्योंकि सभी का आवाज अभी सोच रहे कौन सा गीत गाएंगे, ये आपस में बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बात करने दो, चलिए ओके शुरू करते हैं।

है, सबका जय हो और माताओं आयु लोग का भी जय हो, क्योंकि वंदे मातरम कहते जहाँ नारी शक्ति का सम्मान होगा वो देश महान होता है, नारी को जहाँ सम्मान होता है वहाँ देव देवता का वास होता है, इसलिए नारियों का शक्ति आज देखने को मिल रहा है, उनका आवाज ही उनका पहचान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8

चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हमें बहुत खुशी है आज इतना दूरस्थ जगह में आए हैं और पहाड़ी का गोद में बसा हुआ एक गांव है और चार तरफ पूरा जमीन ही जमीन, इसका नाम ही नई जमीन। चलिए इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ और एक प्रस्तुति के लिए आगे आ रहे हैं और मणि, मणि नाम है, आत्मा तो मणि है, आत्मा तो स्टार है, आत्मा को मणि कहते हैं, ज्योति कहते हैं और मथा की मणि है। चलिए मथा के मणि को स्वागत करते हैं।

तो सभी को नाम का साथ, एक एक का नाम का साथ हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और रेडियो मधुबन इस कार्यक्रम को सजाने के लिए यहाँ पर पहुँचे। तो खुशी लग रहा है, सभी को चांस मिला और सबको जब चांस मिला चांसलर बन गए, एक मौका था जो आवश्यक था आज मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद मैट को, क्योंकि मैट साहब का बिना ये काम अधूरा होता है, तो जो कमी था मैट उसको परिपूर्ण कर दिए, फिलअप कर दिए। तो सभी खुद के लिए और रेडियो मधुबन के लिए और शिव बाबा के लिए जोर से ताली बजा भाई, एक जोर से ताली। ताली का साथ समाप्त करते हैं आज के लिए, हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ माने आवे पिया जीरी हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचे। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ माने आवे पिया जी हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752। ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निदेशक हाकम खान

नमस्ते मित्रों, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ सॉन्ग, जीवन एक बहुत सुंदर संगीत है। सिंग इट, सिंग इट। जीवन एक बहुत सुंदर गीत है और इस गीत को हमें गाना बजाना आना चाहिए। मुझे एक सिंगिंग कंसर्ट में बुलाया गया और मुझे ये बताया गया कि ये कंसर्ट जो है कुछ अलग है, यूनिक है। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि वो जो सारे कंसर्ट में जो पार्टिसिपेंट थे वो पूरी तरह अंधे थे। चाहे वो गीत गायक क्यों ना हो, बजाने वाले क्यों ना हो, दे वर ऑल पीपल हु वर नॉट एबल टू सी। एक डेढ़ घंटे का जब मैं ये प्रोग्राम सुना मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज इट वॉज सच अ वंडरफुल कलरफुल शो बाई दोज पीपल हु हैव नेवर सीन कलर इन देयर लाइफ। उसी तरह जीवन एक बहुत सुंदर गीत है, उसको गाना बजाना आना चाहिए। अगर हम उन गायक की तरह गीत नहीं गा सकते हैं, अगर हम लता मंगेशकर की तरह गीत नहीं गा सकते, नथिंग टू वरी, लेकिन हमारे शब्द तो मीठे हो सकते हैं ना, हमारे शब्द तो सुखदायी हो सकते हैं ना। इसलिए मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मैंने एक स्लोगन पढ़ा जिसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये बोलना, पहले सुनना, और वो है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। क्योंकि हमारे शब्द जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है। सभी बोलेंगे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। ठीक है।

0: ladies and gentlemen.
1: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है. सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

मैं हूं जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी, परमात्मा मठ प्रयागपीठ से आप सभी सुन रहे श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन से रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा शुभ प्रेम। ओम शांति।

मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे। रेडियो मधुबन 90.4।

माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शिकटकर. मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी. मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं. माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम. एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र जो है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा. और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है.

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी के साथ कितनी सारी बातें जुड़ी है ना दोस्तों, इतनी सारी परिस्थितियां आती हैं और कुछ ऐसी हैं जो याद रहती हैं और कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें ना चाहते हुए भी बार बार याद करते हैं। अब आज की परिस्थिति में हम प्रेजेंट रह पाए और पुरानी को टाटा बाय बाय कह पाए, जिंदगी को खुशनुमा तरीके से प्यार से जी पाए, उसकी एक पहल, उसकी एक कोशिश है हमारा ये कार्यक्रम। और आज हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट ग्लोबल अस्पताल से। हमारे साथ जुड़ी हैं कल्पना जी, जो कि हमारी गाइड और दोस्त है ही, आप एक स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं और साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरुषि जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने रेडियो के श्रोताओं से मिलने का, बातें करने का मौका मिलता है, जिससे कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए मैं हमेशा से ही इस बात के लिए बहुत उत्सुक रहती हूँ।
0: कल्पना जी, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक बहुत इंसाइटफुल होते हुए भी बहुत सरल कॉन्वर्सेशन होता है आपके साथ, जो हम समझ भी पाते हैं, जीवन में अपनाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि हर चीज कई बार नहीं कर पाते, लेकिन ये कोशिश जारी रहेगी आपके साथ। आज परिस्थितियों के बारे में, जैसे मैंने कहा, जब भी हम किसी की जीवनी पढ़ते हैं या बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं उसमें लिखा होता है ये परिस्थिति आई, ऐसे क्रॉस किया, ये किया। एक परिस्थिति के बारे में क्रॉस करके वो व्यक्ति बहुत बड़े बने होते हैं। हमारे जीवन में भी परिस्थितियां आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, और हम बात कर रहे थे सिचुएशंस के साथ कैसे अवेयरनेस हमारी रहे। आपने हमें लास्ट टाइम बताया था ऑब्जर्व करना पहला स्टेप है, ऑब्जर्व करना। उसके लिए आपने कहा था कुछ और हम चीजें जानेंगे, कुछ एक्टिविटीज या कुछ जो हम बेहतर कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: तो अगर वहीं से शुरुआत की जाए।
1: जी बिल्कुल, आपने अच्छा याद दिलाया। हमने एक सीक्वेंस बनाया था कि परिस्थिति को कैसे एक्शन लेने से पहले एनालाइज करना है। तो हमने कहा था ऑब्जर्वेशन, देन अंडरस्टैंडिंग, देन एंड सिचुएशन की अवेयरनेस एंड एक्शन। ये हमारा सीक्वेंस था। इसमें एक बहुत सुंदर जो टेक्निक है, जिस उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं SOS टेक्निक। आपने SOS शब्द तो सुना होगा। डॉक्टर्स जब कभी बीमार को मेडिसिन देते हैं तो कहते हैं भाई आपको जरूरत हो तब इस मेडिसिन को लेना, उसको वो SOS कहते हैं। और भी कई भाषाओं में कई तरीके से SOS का इस्तेमाल किया जाता है।
0: जी,
1: यहाँ सिचुएशन अवेयरनेस में SOS बहुत सुंदर रीति से उपयोग में लाया जा सकता है। S stands for step back। जब भी कोई परिस्थिति आती है तो एक कदम पीछे होकर उस परिस्थिति का थोड़ा सा डिटैच होकर जायजा लेना। तो पहला है step back and then observe। अब आपका जो एंगल है परिस्थिति को देखने का वो वाइड एंगल हो जाता है। जब आप परिस्थिति के बिल्कुल क्लोज होते हैं मेंटली, तो वो एंगल एक शॉर्ट एंगल हो जाता है, जिसमें कई सारी चीजें ऑब्जर्व होना रह जाती है। When you step back mentally, उसके बाद आपको थोड़ा वाइड एंगल मिलता है। तो स्टेप बैक, ऑब्जर्व एंड देन स्टीयर। स्टीयरिंग अर्थात स्टीयरिंग को चलाना शुरू करें या एक्शन ले,
0: मतलब जो गाड़ी जैसे चलाते हैं हाथ रख के स्टीयरिंग पे।
1: गाड़ी चलाते समय भी हम क्या करते हैं, गाड़ी में बैठने के बाद मिरर चेक करते हैं,
0: मिरर चेक करते हैं,
1: तीनों मिरर चेक करते हैं, अपनी सीट को एडजस्ट करते हैं, एंड देन ब्रेक्स, अपने पैर जो सही जगह पर है कि नहीं उसको देखते हैं, एंड देन हम आराम से चाबी घुमा के गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अपना गियर चेंज करते हैं, एंड देन हैंड ब्रेक छोड़ देते हैं, और फिर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है। उसी तरह से SOS टेक्निक बहुत पावरफुल टेक्निक है। एक्शन करने से पहले, रिएक्ट करने से पहले, अगर स्टेप बैक, ऑब्जर्व एंड देन स्टीयर, ये छोटा सा प्रोसेस अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत सारी बातों से हम बच जाते हैं। बहुत सारी बातों से बच जाते हैं।
0: मुझे लग रहा है कि जैसे किताब बहुत आंख के पास हो तो वो सच में पढ़ने में नहीं आती। थोड़ा सा तो दूर रखना पड़ता है पढ़ने के लिए, वैसी शायद परिस्थिति को पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है। लेकिन इसमें मेरा एक सवाल है, जैसे जब हम उस परिस्थिति में होते हैं, कई बार ये भी कहा जाता है अगर कुछ चल रहा है मेरे सामने और मैं उसे महसूस नहीं कर रही हूँ, मान लीजिए बहुत सारे चेंजेस आए हैं कोई भी लेवल पे, तो जब ये फील हुआ है कि गलत हो रहा है और मुझे फील हुआ है गलत हो रहा है, तभी वो चेंज करने की जो एक अंदर से मोटिवेशन आता है, हिम्मत आती है, तभी आया है वो। तो अगर मुझे वो अप क्लोज इतने मेरे पास नहीं है, मैं थोड़ा स्टेप बैक कर ले रही हूँ, तो उस परिस्थिति को मैं दूर से देख रही हूँ, महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मेरे अंदर वो चेंज की भावना कैसे आएगी, वो बदलाव का जज्बा कैसे आएगा?
1: बिल्कुल आएगा। जो ये छोटा सा पॉज हम लेते हैं ना, उस पॉज के दौरान कई सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर होने लगती हैं। उस पॉज में हमारा ब्रेन सही एक्शन को लेने के लिए कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन। हाँ, तो वो जो SOS वाला पॉज है ना, वो 10 सेकंड का भी हो सकता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं हर रोज, तो वो 10 सेकंड का भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पति घर पे आया नौकरी करके, तो उसने आते ही वाइफ ने उसको कुछ न कुछ सारे दिन की शिकायतें करना शुरू कर दी, और वो परेशान होके उसने बोला, आप 1 मिनट फुर्सत नहीं लेने देते हो, और मैं घर में आया हूँ थक के, मेरी क्या प्रॉब्लम है, उसको पूछे बिना आप में अपनी बातें सुना रहे हो, तो वो चिढ़ जाते हैं।
0: ये होता है।
1: हाँ, तो चिड़चिड़ाहट में दोनों ही एक दूसरे पर बरस पड़ते हैं, सिचुएशन बिगड़ जाती है
0: जी।
1: तो जैसे हम घर में घुसते हैं, उस समय पहले चप्पल हम बाहर छोड़ के आते हैं ना
0: जी।
1: हाँ, तो अगर घर में घुसने वाला व्यक्ति चप्पल के साथ अपने सारे टेंशन, प्रॉब्लम्स, जो बैगेज लेकर आ रहा है, उसको भी बाहर छोड़ दे और मुस्कुराते हुए अंदर आए, और जो रिसीव करने वाला व्यक्ति है, वाइफ है, वो भी थोड़ी देर के लिए उनको रिलैक्स होने दे, पानी पीकर थोड़ा सा बैठने दे, और आराम से उनको पास बैठकर पूछे कि कैसे रहा आपका दिन, सब कुछ ठीक था ना, तो ये कन्वर्सेशन की शुरुआत जब इतना पीसफुली और पॉजिटिवली और खुशनुमा होती है, तो आगे का कन्वर्सेशन फिर वो शिकायतों भरा क्यों ना हो, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली दोनों ही लोग प्रिपेयर हो पाते हैं। तो वो SOS टेक्निक बहुत काम करती है कि भाई थोड़ा चुप, शांत रहो, थोड़ा स्टेप बैक करो, मतलब टाइम दो सामने वाले व्यक्ति को, और खुद भी टाइम लो एक्ट करने के लिए या रिएक्ट करने के लिए।
0: कितना टाइम? लेकिन
1: मैंने कहा ना, 10 सेकंड भी हो सकता है।
0: अच्छा, ओके।
1: या अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो पॉज जो है वो 10 सेकंड का भी हो सकता है।
0: इतना छोटा भी हो सकता है।
1: हाँ जी,
0: हाँ। हमें लगा टाइम लेना है, मतलब पहले 1 दिन 2 दिन ऐसे सोच रहे हैं, फिर बाद में डिसीजन दे रहे हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। वो पॉज अंडरस्टैंडिंग के लिए है, पर छोटा भी हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: ओके, इंटरेस्टिंग। तो पहले स्टेप बैक करना है, उस परिस्थिति से थोड़ा बाहर निकलना है, पीछे हटना है, फिर उसको ऑब्जर्व करना है, पॉज लेना है, और फिर एक्शन देना है, स्टीयर करना है।
1: बिल्कुल।
0: ओके, इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से हम परिस्थिति को समझ सकते हैं, अवेयरनेस हमारी हो सकती है, एक्चुअल जैसी परिस्थिति हमें वो वैसी ही समझ में आएगी फिर।
1: बिल्कुल। सो आज की एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगी
0: जी।
1: अमेरिका से एक बहन आई है माउंट आबू खास मेडिटेशन सीखने के लिए। तो आते समय, उसने वहां से निकलते समय सोचा कि मैं माउंट आबू में जाऊंगी और मुझे रहने के लिए अच्छा स्थान मिलेगा, सब कुछ सही होगा, ऐसा सोचकर वो यहाँ आई। प्लान कुछ था नहीं, जाकर सीखना है मेडिटेशन। यहाँ आकर देखा तो यहाँ होटल्स तो बहुत महंगे हैं, और वो महंगा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसने एक कम बजट वाला अकोमोडेशन तो लिया, बट खाने पीने की प्रॉब्लम। अब 5 दिन बाद उसको वो स्थान छोड़ देना है, तो 5 दिन हो चुके हैं, और 5 दिन बाद उस, तो वो दिन भर इसी टेंशन में बिताती है कि 5 दिन बाद मेरा क्या होगा,
0: क्या होगा।
1: सो 5 दिन बाद की टेंशन के लिए जो मेरे 5 दिन मेरे हाथ में है, उनको भी मैं बिगाड़ रही हूँ, है ना, मैं एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो 5 दिन तो कम से कम मेरे हाथ में
0: टेंशन है बहुत।
1: और जब हम थोड़ा सा प्री प्लान्ड होते हैं, मेंटली थोड़ा सा प्लान करके, इतनी बड़ी उड़ान भरने से पहले आपने कुछ रिसर्च किया होता, सर्च किया होता, या यहाँ से किसी से बात करके आप आए होते कि अगर मैं यहाँ आऊँ तो मुझे कहाँ रहना है, क्या करना है, अचानक निकल पड़े, और अब अगर आपको डिफिकल्टीज आ रही है रहने खाने पीने में, तो तब आप सोच रहे हो, तो वो कितना क्या कहेंगे इसको,
0: है ना? मतलब प्लानिंग ठीक नहीं हुई कहीं ना कहीं। तो अब लेकिन अगर मेरे पास अब 5 दिन है, तो अभी मुझे 5 दिन पहले ही प्लानिंग करनी पड़ेगी
1: अगले पांच दिन की। बिल्कुल, पर टेंशन लेके नहीं।
0: पर टेंशन लेके हाँ ये प्लानिंग हो रही थी या टेंशन हो रहा था, दोनों मिक्स हो गया, एक ही लगने लगा.
1: राइट. सो हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स है ना, पॉजिटिविटी है, वो हमें बहुत जल्दी सोल्यूशन तक ले जाती है. जब हम पॉजिटिविटी के ट्रैक से नीचे उतरते हैं, नेगेटिविटी के ट्रैक में जाते हैं, तो जो होने वाला है, सोल्यूशन जो मिलने वाला है, वो भी नहीं मिल पाता है.
0: राइट. ओके. तो नकारात्मकता मतलब हमें प्लानिंग जो हम चाहते हैं करना उससे भी दूरी ले जाती है, हो नहीं पाती है.
1: नहीं हो पाता है.
0: ओके. तो ऐसे में क्या करना है? मान लीजिए जैसा आपने कहा कि जो भी आपने बताया था स्टेप बैक करें, तो अब मैं क्या स्टेप बैक करूं? अगर मुझे 5 दिन बाद पता है कि एक परिस्थिति आने वाली है, ये तो पहले से ही पता चल गया, आई नहीं है, आई है तो मुझे स्टेप बैक करके उसको देखना है. अब जब मुझे पता चला परिस्थिति आने ही वाली है 5 दिन, तो अभी क्या करूं?
1: पहला थॉट है जो ऑप्टिमिज्म को ले आता है. ऑप्टिमिस्टिक होना मतलब कि आशावादी रखना है ना, कि आशावाद से मतलब आशा से अपने मन को पहले शांत करना. पीसफुल माइंड से आपको सॉल्यूशन क्लियरली दिखाई देते हैं. जब आप पीसफुल हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं और आशावादी रहते हैं, तो कुदरत, प्रकृति, यूनिवर्स और परमात्मा आपके साथ जुड़ जाते हैं. तो आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, वो पाने के लिए शुरुआत पॉजिटिविटी और पीस से करनी होगी.
0: ओके. तो पहला थॉट पॉजिटिव.
1: राइट.
0: इसमें पॉजिटिव थॉट क्या होगा? लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति है तो
1: मैंने कहा ना, आशावादी रहना कि हो जाएगा,
0: हो जाएगा, मिल जाएगा,
1: मिल जाएगा.
0: ओके. ठीक है. तो पहले पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है कि हो जाएगा, जो भी परिस्थिति आने वाली है सोल्यूशन हो जाएगा.
1: हो जाएगा.
0: और उसके बाद फिर प्लानिंग करना.
1: हाँ बिल्कुल. जैसे कि अभी वो मेडिटेशन सीखने के लिए आई है हमारे पास, तो 2 घंटा जब वो मेरे पास मेडिटेशन सीखने के लिए आई है, तो उसमें से आधा घंटा यही डिस्कशन करने में चला जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा. उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है. तो मैंने कहा कि अभी 2 घंटे के लिए आप ये सोचना बंद कीजिए कि क्या होगा, 2 घंटे बाद आपको सोचना है उसके बारे में, है ना. ये जो स्टॉप बटन है ना हमारे माइंड में,
0: ये है एक्चुअली,
1: है
0: दिखता नहीं है, मिलता नहीं है, इतनी आसानी से ये बटन कहाँ चला गया है पता नहीं. ओके. मतलब है स्टॉप बटन.
1: पॉज बटन, स्टॉप बटन. सो इट गिव्स अस पीस, शांति देता है. अगर आप मेडिटेशन सीख रहे हो और मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस समय वही करो. फिर अपने माइंड को हमें समझाना है कि भाई ये 2 घंटे के बाद मुझे अपना आगे का फ्यूचर प्लानिंग के लिए टाइम देना है. सो इफ यू मिस आउट फ्रॉम द मोमेंट, आप उस मोमेंट को मिस कर देते हैं, तो ना आप इधर के रहते ना उधर के.
0: मतलब ना सोल्यूशन निकल रहा है और ना अभी का टाइम यूज हो रहा है, ना आगे के लिए बेनिफिट, ना अभी के लिए बेनिफिट.
1: बिल्कुल.
0: ओके. तो मतलब हम इसको भी प्लान कर सकते हैं, थॉट्स को भी प्लान कर सकते हैं.
1: बिल्कुल.
0: वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. तो जैसे हम क्योंकि परिस्थिति की अवेयरनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और आपने बताया हा? किस तरह से पहले ऑप्टिमिस्टिक रहना है, सकारात्मक रहना है, हो जाएगा निश्चय रखना है, फिर उसके बाद प्लानिंग करनी है. वो भी हर वक्त दिन भर प्लानिंग नहीं करते रहना है, अभी को भी यूज करना है और प्लानिंग के लिए भी टाइम डिसाइड करना है.
1: बिल्कुल.
0: ओके. तो यहाँ पे एक और सवाल आता है कि जब परिस्थिति ऐसी है जिसमें से हम थोड़ा स्टेप बैक कर सकते हैं, तब तो ठीक है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है जिसमें और लोग इन्वॉल्व हैं बहुत सारे, सिर्फ मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा है, मेरे परिवार पे असर हो रहा है, मेरे दोस्तों पे असर हो रहा है, तो उस समय वो लोग सब पेन में हैं, मैं देख रही हूँ वो परेशान हैं, तो मुझे तो उस वक्त लगता है कि मुझे उसी वक्त कुछ करना है. वो स्टेप बैक कैसे, ऑब्जर्व कैसे करूं व्हेन हर कोई उस दर्द में है?
1: बिल्कुल. देखिए ये बहुत जरूरी है कि हर बार सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा सा रुक कर ये सोचना

0: कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है, रिएक्ट मैं नहीं कहूंगी बट मुझे एक्ट कैसे करना है।
1: ओके
0: सो जब हम ये सोचते हैं तो हमें वो तरीका मिल जाता है कि कैसे पॉजिटिवली पीसफुली हम सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो इसलिए हमें थोड़ा सा रुकना बहुत जरूरी है। अच्छा फॉर एग्जांपल,
1: लेकिन उस टाइम ऑब्जर्वेशन बहुत मुश्किल लगती है, मतलब हर कोई पेन में है, मैं देख रही हूँ रो रहे हैं मेरे सामने, मेरी माँ रो रही है या फिर बच्चे रो रहे हैं या मेरे दोस्त रो रहे हैं, तो मैं उस समय स्टेप बैक नहीं कर पा रही हूँ, ऑब्जर्व नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उनको रोता हुआ छोड़ के मैं पीछे होके ऑब्जर्व
0: नहीं नहीं नहीं वो आप फिजिकल स्टेप बैक आप फिजिकल समझ रहे हैं, फिजिकल नहीं, फिजिकली आई एम देयर ओनली इन द सिचुएशन, मैं मेंटली स्टेप बैक की बात कर रही हूँ।
1: कैसे उस वक्त, कैसे कोई रो रहा है मेरे सामने तो उस समय मेंटली मैं क्या करूँ?
0: बिल्कुल, आपको अपने आप में आ जाना है, खुद के साथ जुड़ जाना है और मन से थोड़ा सा उस सिचुएशन से अपने आप को अलग कर लेना है और दूर से देखना है, मन में दूरी, मन में दूर से, मन में डिटैचमेंट से देखना है कि आप सब लोग रो रहे हैं, अगर मैं भी उनके रोने में रोकर शामिल हो जाऊं तो वो कोई फायदा नहीं होगा उसका। अगर सब लोग रो रहे हैं तो मुझे रोना है कि नहीं रोना है ये मुझे तय करना है कि नहीं मुझे रोना नहीं है, मुझे सबको शांत करना है, ये मेरा काम है। लेकिन अगर मैं इमीडिएट एक्शन लेती हूँ, अरे सब लोग रो रहे हैं और मुझे भी रोना आ गया, मैं भी उनके साथ रोने बैठ गई, तो फिर सिचुएशन को संभालेगा कौन? सो आप जिस भी सिचुएशन में हो, जब आप खुद के पास लौट आते हो और ये सोचते हो कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके किसी मित्र ने आपको मैसेज भेजा, फ्रेंड ने आपको मैसेज भेजा कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, अरे आप उसके इस आंसर से, उसके इस मैसेज से तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हो और हमारे मन जो है वो अलग अलग कहानियां बनाना शुरू करता है कि अरे क्या हुआ, पता नहीं मैंने कहा गलती की, तो ये गिल्ट फीलिंग आई। फिर दूसरा मैं सोचती हूँ बहुत अपने आप को बहुत बड़ी समझती है आजकल, इसको बहुत अहंकार आ गया है, ईगो आ गया है, ये है मैं भी ईगो में आ जाती हूँ। सो या तो मैं अपने आप को दोषी मानती हूँ, गिल्ट में चली जाती हूँ,
1: या तो ईगो
0: ईगो आ जाता है, या मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये क्या बात है, ये क्या इसकी पर्सनालिटी, दूरी बना लेती हूँ, है ना। अच्छा अब मुझे क्या करना है, ये है स्टॉप बटन, पॉज बटन कि चलो फ्रेंड ने मुझे मैसेज भेजा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, फ्रेंड है मेरी इतने सालों से, मैं उसे जानती हूँ, अगर वो ऐसा लिख रही है तो जरूर उसका कुछ कारण होगा, लेकिन इस समय बात करके कोई फायदा नहीं है। तो कहानी बनाने की बजाय सिचुएशन को समझ लेना है, ओके वो मुझसे नाराज है, क्या मैंने कुछ गलत किया है, पहले वो चेक करूं मैं क्या वो किसी प्रॉब्लम में है। अब ये समझने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मेरे पास अभी पूरी जानकारी नहीं है कि हुआ क्या है एक्चुअली,
1: पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक मैसेज आया बस,
0: हाँ कुछ नहीं। सो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव हूँ तो मैं भी बोल सकती हूँ, मैं भी लिख सकती हूँ,
1: मुझे भी नहीं करनी बात जाओ,
0: मुझे भी नहीं करनी बात जा, तुम अपने आप को समझती क्या हो, ये रिएक्शन हो गया, एक्शन का रिएक्शन। बट अगर मैं सिचुएशन अवेयरनेस के साथ उससे बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ठीक है अब तुम्हारा मूड इस समय ठीक नहीं है, इसलिए तुम जब शांत हो ना तब मुझे बताना कि क्या हुआ है, हम बाद में बात
1: करेंगे,
0: जब तुम ठीक महसूस करो, जब तुम्हें लगे कि तुम मुझे बता सकती हो तो मैं जरूर सुनूंगी कि क्या बात है, है ना। तो आपने पॉज दे दिया, आपने कुछ कहानी नहीं बनाई मन में, आपने उस सिचुएशन को पॉज दे दिया, होल्ड पर रखा और उनको मौका दिया कि वो जो लिखा है उन्होंने मैं तुमसे बात नहीं करूंगी उसका एक्सप्लेनेशन शांत होने के बाद आराम से दे।
1: उनको भी टाइम दिया पॉज करने का, खुद तो लिया है। सामने वाले मतलब अपना पॉज बटन और उनका दोनों
0: एक साथ दबा दिए,
1: दोनों एक साथ। अच्छा है, मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि खुद के लिए भी हेल्पफुल हो ये पॉज बटन और सामने वाले के लिए भी, ताकि वो भी परिस्थिति को एक स्टेप बैक करके देख पाए और फिर वापस हम उसको बेहतर तरीके से डील कर पाए।
0: जी
1: वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, बहुत प्रैक्टिकल चीजें समझ में आ रही हैं, अपनी परिस्थितियां दिख रही हैं, और ये भी समझ में आ रहा है कि कितना अलग अलग रिजल्ट हो सकता है दोनों एक्शंस का हमारी लाइफ पे, कितना कुछ बदल सकता है सिर्फ ये कदम उठाने से, एक बड़ा अंतर आ सकता है। तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि अपनी हर परिस्थिति में स्टेप बैक करें, पॉज करें और फिर ही एक्शन में आए। क्या हम कुछ कोई ऐसी मेडिटेशन प्रैक्टिस या कोई ऐसे अफर्मेशंस है दीदी जिनका हम अभ्यास कर सकते हैं ताकि वो परिस्थिति आने पे हमें याद रहे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर अभ्यास है। देखिए, जब भी परिस्थिति आती है तब हमारी एंग्जायटी बढ़ती है, और एंग्जायटी को कंट्रोल करने का सबसे सुंदर साधन प्रकृति ने हमें दिया है, वो है हमारी ब्रीदिंग। सो हम अपने ब्रीदिंग पर फोकस अगर करते हैं, दिन में कई बार अपने श्वासों को आते जाते हुए देखते हैं, तो हमारा मन अपने आप शांति का महसूस करता है। तो इसीलिए जब भी हम श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि 1-2 मिनट के लिए हमें मेडिटेशन करना है, तो उसकी शुरुआत हमेशा लंबी और गहरी सांसों से होती है। तो आइए चले हम कुछ देर के लिए शुरुआत करें, अपने आप को शांति की ओर ले जाते हुए गहरी और लंबी सांसें लें। महसूस करें अपने सांस को भीतर जाते हुए, बाहर आते हुए, हर सांस के साथ अपने संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। अपने मस्तक के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं, वहां जो आत्मशक्ति है उसी आत्मशक्ति में मेरा मन है, और अब मैं अपने मन को ट्रेन कर रही हूं जब भी कोई परिस्थिति आएगी मैं थोड़ी देर के लिए रुकती हूं, गहरी और लंबी सांस लेती हूं, परिस्थिति को चारों ही एंगल से अच्छी तरह से देखकर समझने की कोशिश करती हूं, और फिर सजगता के साथ उस परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया देती हूं। गहरी और लंबी सांस लें, याद करें मेरा मन हर परिस्थिति में शांति का अभ्यास करता है, मैं हर परिस्थिति में शांत रहकर प्रतिक्रिया देती हूं। शांत मन सही रूप से परिस्थिति को समझने की शक्ति प्रदान करता है। गहरी और लंबी सांस ले और इस प्रक्रिया को रिपीट करें अपने मन में। पॉज, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड। रुके, देखे, समझे और फिर प्रतिक्रिया दे। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच कल्पना जी। आई थिंक ये जो आपने अभी अभ्यास कराया ये भी हम करते रहें, और साथ साथ जो बात समझ में आई है कि परिस्थिति चाहे कितनी बड़ी हो छोटी हो, लेकिन एक स्टेप बैक करके जब समझते हैं और पॉज करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो रिजल्ट में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। तो उस अंतर को लाने के लिए हम कोशिश करेंगे अभ्यास करने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस एपिसोड में।
0: धन्यवाद आरुषि जी। श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी काफी पेशेंटली हम ये सुनते हो, समझते हो, धन्यवाद।
1: जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि जिंदगी के कई राज खुलने वाले हैं और कई खजाने हमें मिलने वाले हैं। फिलहाल लेते हैं इजाजत और जिंदगी को खुल के कहते हैं कि लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते।

0: 19वीं सदी के आखिरी तीन दशकों और 20वीं सदी के पहले दशक में भारत को साम्राज्यवादी वर्चस्व और एंग्लो ईसाई औपनिवेशिक शासन से आजाद कराने के लिए अंतिम संघर्ष की नींव रखी जा रही थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वर्ष 1875 में वंदे मातरम के जरिए देश को एक शक्तिशाली मंत्र दे दिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धारा में प्रवाहित होते हुए इस गीत वंदे मातरम ने 150 वर्षों से भी अधिक समय तक राष्ट्र के भाग्य को गढ़ने का कार्य जारी रखा। भिकाजी कामा और बिंदु घोष, सिस्टर निवेदिता, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के हृदय में ये एक ज्वाला के रूप में धधकता रहा और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। 1908 में महाराष्ट्र के अमरावती में एक सभा को संबोधित करते हुए महान स्वतंत्रता सेनानी अरबिंदो घोष ने भी वंदे मातरम गीत की महिमा की।
1: मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि यह गीत वंदे मातरम भारत के सभी हिस्सों में बेहद लोकप्रिय हो गया है। इसे बार बार गाया जा रहा है। इस राष्ट्रगीत को ही मैं अपने भाषण का विषय बना रहा हूं। यह गीत केवल एक राष्ट्रगीत नहीं है, जैसा कि यूरोपीय राष्ट्र अपने गीतों को मानते हैं। यह असीम शक्ति से परिपूर्ण एक पवित्र मंत्र है। यह मंत्र हमें आनंद मठ के रचयिता द्वारा प्रदान किया गया है, जिन्हें एक प्रेरित ऋषि भी कहा जा सकता है। यह मंत्र कोई मनगठन तो रचना नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन मंत्र का पुनरुद्धार था, जो एक व्यक्ति नवकिशन की गद्दारी के कारण लगभग विलुप्त हो गया था। बंकिम चंद्र के इस मंत्र को उनके अपने समय में उचित सराहना नहीं मिली थी। तब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा समय अवश्य आएगा जब संपूर्ण भारत इस गीत के गायन से गूंज उठेगा, और उस भविष्य वक्ता के वचन चमत्कारिक रूप से सत्य सिद्ध हुए। उस समय इस गीत का वास्तविक अर्थ इसलिए नहीं समझा गया क्योंकि तब लोगों में सच्ची देशभक्ति का अभाव था। उस समय की देशभक्ति का अर्थ केवल इतना ही था कि भारत को इंग्लैंड और अन्य देशों की छाया बना दिया जाए। ऐसे देश जिनकी शानो शौकत और वैभव ने इस मातृभूमि की संतानों की आंखों को चकाचौंध कर दिया था। उस काल के तथाकथित देशभक्तों भले ही भारत के शुभचिंतक रहे हों, लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसे लोग नहीं थे जो भारत से सच्चा प्रेम करते हों। जो व्यक्ति अपने मां से सच्चा प्रेम करता है, वो कभी भी उसकी कमियों पर दृष्टि नहीं डालता। वो कभी भी अपनी मां को एक अज्ञानी, अंधविश्वासी, पतित अथवा जर्जर स्त्री मानकर उसका तिरस्कार नहीं करता।
0: वीर सावरकर के लिए भी वंदे मातरम एक जोशीला क्रांतिकारी गीत था, जो स्वतंत्रता सेनानियों के बीच एक अभिवादन के रूप में प्रयोग किया जाता था। वो देशभक्ति का एक प्रतीक, समझौता चाहने वालों के लिए चेतावनी और एक ऐसा मंत्र था जिसने संघर्ष की ज्वाला प्रज्वलित की। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में मैडम भिकाजी कामा ने सावरकर और उनके साथियों को प्रतिनिधित्व करते हुए पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। सावरकर, कामा और श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किए गए इस ध्वज पर वंदे मातरम शब्द प्रमुखता से अंकित थे, जो सावरकर पर इस गीत के गहरे प्रभाव को दर्शाता था।
2: दीदी, आपने मुझे अनेक वीर सेनानियों के किस्से सुनाए, लेकिन अब तक श्यामजी वर्मा के बारे में कुछ बताया नहीं है। वे कौन थे?
3: ओहो बन्नो, पहले तो तुम्हारी प्रशंसा करनी होगी।
2: क्यों क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया?
3: अरे मेरी प्यारी बहना, तुम्हारी लगन और जिज्ञासा की तारीफ करना चाहती हूँ। कि तुम कितना ध्यान पूर्वक इस ऐतिहासिक कथा को सुन रही हो। श्याम जी कृष्ण वर्मा ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने न केवल देश विदेश में अंग्रेजों से मुक्ति का वातावरण बनाया बल्कि क्रांतिकारियों की एक पूरी पीढ़ी का मार्गदर्शन भी किया। इसमें विनायक सावरकर से लेकर मदन लाल ढींगरा तक एक लंबी श्रृंखला है, इसलिए उन्हें क्रांति गुरु भी कहते थे। हो भी क्यों ना, जब जन्म ही क्रांति के बीच हुआ था।
0: वो 1857 का साल था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। 10 मई को दिल्ली से 40 मील उत्तर पूर्व में मेरठ के गैरिसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। धीरे धीरे उसकी आग बढ़ती जा रही थी। ये लपटें गुजरात के अहमदाबाद, सौराष्ट्र, सूरत, गोधरा, नांदेड़ एवं दाहोद जैसे शहरों तक भी पहुंच चुकी थी। तभी अक्टूबर के महीने में कच्छ जिले के मांडवी गांव के संस्कृत विद्वान श्री कृष्ण वर्मा के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो और कोई नहीं, श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। पिता संस्कृत के विद्वान थे तो माँ गोमती देवी भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के अनुरूप जीवन शैली में रची पसी थी। आरंभिक शिक्षा गांव में होने के बावजूद बालपन में ही श्याम जी को संस्कृत का अद्भुत ज्ञान हो गया था। उन्होंने घर में ही भारतीय वाङ्मय के संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया। जब वो 11 वर्ष के थे तब माँ उन्हें सदा के लिए छोड़कर चली गई। दादी ने देखभाल की। स्कूल की पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा के लिए श्याम जी मुंबई चले गए। वहां विल्सन कॉलेज में उनका दाखिला हुआ। धीरे धीरे यहां भी उनकी कुशाग्र बुद्धि और संस्कृत के ज्ञान की खूब चर्चा होने लगी।
4: श्याम जी, तुम तो संस्कृत के बड़े विद्वान हो। इन दिनों मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती आए हुए हैं, उनसे मिलने नहीं चलोगे?
5: हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलूंगा।
0: ये साल 1875 की घटना है, जब श्याम जी की भेंट स्वामी दयानंद सरस्वती से हुई। उनके प्रवचन सुनने के बाद आर्य समाज की विचारधारा ने उन्हें काफी प्रभावित किया। वो आर्य समाज द्वारा किए जा रहे वेदों के भाष्य अनुवाद से जुड़ गए। स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य बनने के बाद श्याम जी ने पूरे देश में उनकी शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए दौरे किए। काशी में उनका भाषण सुनकर काशी के पंडितों ने उन्हें पंडित की उपाधि दे दी। ऐसी उपाधि पाने वाले वो पहले गैर ब्राह्मण थे। इसी वर्ष लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रमुख मोनियर विलियम भारत आए थे। वो ऐसे संस्कृत विद्वानों से मिलना चाहते थे जो अंग्रेजी भी जानते हों। उनकी मुलाकात युवा श्याम जी से हुई।
6: आप तो अद्भुत है, संस्कृत का इतना ज्ञान, मैं स्तब्ध हूँ। आप लंदन क्यों नहीं आते, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में?
5: मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ, बहुत खर्च होगा।
6: आप एक बार घर वालों से विचार विमर्श कर लीजिए, फिर मुझे जवाब दीजिएगा।
0: श्याम जी की पत्नी भानुमती के पिता एक बड़े व्यापारी थे। भानुमती ने अपने पिता से बात की।
7: पिताजी, लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा हासिल करने का आमंत्रण मिला है।
5: किसे मिला है?
7: आपके दामाद जी को मिला है।
5: अच्छा, फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया है?
7: वो इस दुविधा में है कि कैसे जाएंगे, बहुत खर्चा आएगा और वो कहां से होगा। फिर भी मोनियर जी ने सोच समझ कर जवाब देने को कहा है।
5: ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूं, लेकिन श्याम जी को बुरा तो नहीं लगेगा?
7: मैं उन्हें समझा लूंगी।
0: इस तरह भानुमती के पिताजी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को लंदन भेजने की व्यवस्था की। साल 1878 में वो इंग्लैंड चले गए। लंदन में कुछ दिन मोनियर के सहायक के रूप में काम करने के बाद 1879 में उन्होंने बीए करने के लिए बालियोल कॉलेज में प्रवेश लिया। पढ़ाई के साथ वो निजी स्तर पर संस्कृत का अध्ययन भी निरंतर करते रहे। बीए के पश्चात उन्होंने एमए और बारेट लॉ की पढ़ाई पूरी की। लंदन में रहकर ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय थे। उनकी नियुक्ति ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापक के पद पर हो गई थी। ऑक्सफोर्ड में वो संस्कृत के साथ भारतीय छात्रों को गुजराती और मराठी भी पढ़ाया करते थे। प्राध्यापक के रूप में कार्य करते हुए श्यामजी ने वकालत की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने बर्लिन कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 7 साल लंदन में रहने के उपरांत साल 1885 में वो भारत लौट आए और मुंबई में वकालत शुरू की।
2: वाह दीदी, श्याम जी की कहानी तो बड़ी दिलचस्प लग रही है। आगे क्या हुआ बताओ ना।
3: थोड़ा धैर्य रखो बन्नो, बताती हूँ। श्याम जी ने वकालत शुरू कर दी थी, लेकिन अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर हो रहे जुर्म उन्हें विचलित कर रहे थे।
2: फिर क्या हुआ दीदी?
3: श्याम जी को वो सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके सामने कोई विकल्प भी नहीं था। वे वकालत छोड़कर मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर रतलाम चले गए।
0: रतलाम पहुंचने के बाद श्याम जी रियासत के दीवान बन गए। कुछ दिन वहां रहने के उपरांत साल 1893 में वो राजस्थान के उदयपुर चले गए। वहां राज्य काउंसिल के सदस्य बने। उदयपुर में 3 वर्ष रहने के बाद जूनागढ़ गए और वहां के दीवान का पद संभाला। परंतु जूनागढ़ में तैनात एक अंग्रेज से विवाद हो गया। उनके मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति नफरत पैदा हो गई। वो नौकरी से इस्तीफा देकर मुंबई वापस लौट गए और वकालत शुरू कर दी। श्याम जी एक संवेदनशील और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति समर्पण भी अटूट था। उन्होंने हर कदम पर भारतीयों का अपमान देखा था, इसलिए उनके स्वाभिमान रक्षा के लिए श्याम जी ने समाज को जागृत करने का संकल्प किया। सबसे पहले अपने साथी वकीलों का एक समूह बनाया और ऐसे भारतीयों के समर्थन में मुकदमा लड़ना आरंभ किया जिन पर पुलिस अत्याचार करती थी और बिना किसी अपराध के जेल में ठूस देती थी।
3: जानती हो बन्नो, ये साल 1898 की बात होगी। पुणे के प्लेग गवर्नर कमिश्नर रैंड की चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, बाद में फांसी भी दे दी गई, लेकिन उसकी गूंज पूरे देश में फैल गई। उन्हीं दिनों तिलक जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनको श्याम जी अपना आदर्श मानते थे।
2: श्याम जी वर्मा को बड़ा धक्का लगा होगा ना दीदी, उन्होंने कुछ किया नहीं इस पर?
3: ऐसा हो सकता था क्या? श्याम जी और वकीलों के समूह ने तिलक जी की गिरफ्तारी के विरोध के अलावा चापेकर बंधुओं पर मुकदमा चलाने के तरीके पर गहरी आपत्ति जताई थी, क्योंकि चापेकर बंधुओं पर चला मुकदमा एक औपचारिकता था। वकीलों के समूह ने महाराष्ट्र कांग्रेस से भी आपत्ति दर्ज कराने का आग्रह किया। कांग्रेस ने आवेदन तो दिया, पर विरोध के लिए खुलकर आगे ना आ सकी। उन्हीं दिनों स्वामी श्रद्धानंद मुंबई आए। श्याम जी की उनसे भेंट हुई और संघर्ष की योजना बनी।
8: क्यों ना देश भर के उन संघर्षशील नौजवानों को संगठित किया जाए जो अपने स्तर पर अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र अभियान चला रहे।
9: हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है।
8: ठीक है, फिर मैं बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र की यात्राओं पर निकलता हूँ और युवा क्रांतिकारियों से संपर्क करने का प्रयास करता हूँ।
0: योजना के तहत श्याम जी निकल पड़े और और उन्हें अपने मकसद में सफलता भी मिली। पंजाब के क्रांतिकारियों का बंगाल और महाराष्ट्र से संपर्क बना और इसमें श्याम जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन श्याम जी के मन में कुछ और भी चल रहा था। वो लंदन में रह रहे भारतीय नौजवानों का स्वाभिमान जगाना चाहते थे, जिन्हें अंग्रेजों का अपमान सहने की आदत पड़ चुकी थी। इसलिए उन्होंने दोबारा से लंदन लौटने का निर्णय लिया।
2: दीदी, अब क्या होगा? श्याम जी तो फिर विदेश चले गए।
3: ओ मेरी प्यारी बन्नो, अब वे पहले वाले श्याम जी नहीं रहे थे। इस बार लंदन वे देश के स्वतंत्रता संग्राम के एक सिपाही की तरह गए थे।
2: वो कैसे दीदी?
3: समझाती हूँ। श्याम जी विदेश में रहने वाले युवाओं में देश प्रेम की लौ जागृत करना चाहते थे, इसलिए लंदन में उन्होंने 3 काम आरंभ किए। पहला, वहां रहने वाले सभी भारतीयों को एक सूत्र में पिरोने का। दूसरा, लंदन में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का। और तीसरा, भारतीयों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक समाचार पत्र निकालने का।
0: श्यामजी कृष्ण वर्मा ने साल 1905 के फरवरी महीने में लंदन में द इंडियन होम रूल सोसाइटी नाम के एक संस्था का गठन किया। श्यामजी इसके संस्थापक अध्यक्ष बने और इस केंद्र को नाम दिया इंडिया हाउस, जो 65 क्रॉमवेल एवेन्यू हाईगेट में स्थित था। इसे एक छात्रावास का रूप दिया गया था, जिसमें 25 छात्रों को रहने की व्यवस्था थी। औपचारिक उद्घाटन 1 जुलाई को सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन के हेनरी हाइंडबैंड द्वारा हुआ। इस अवसर पर दादा भाई नारोजी, लाला लाजपत राय, मैडम कामा, लंदन पॉजिटिव सोसाइटी के शिस्वनी और हैरी, एस आर राणा, विनायक दामोदर सावरकर, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और लाला हरदयाल उपस्थित थे। इंडिया हाउस का सारा खर्च श्याम जी स्वयं उठाते थे। देखते ही देखते ये भारतीयों की सभा संगोष्ठियों और क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रेरणा केंद्र बन गया। यहाँ होने वाली सभाओं में भारत की स्वतंत्रता पर खुलकर बातें होती। गांधी जी से लेकर भगत सिंह, गोखले भी यहाँ रुके। आगे चलकर अनेक क्रांतिकारी नौजवान श्याम जी के शिष्य बने, जिनमें मदन लाल ढींगरा और वीर सावरकर उनके प्रिय शिष्यों में थे। सावरकर ने श्याम जी के मार्गदर्शन में ही 1857 की क्रांति पर पुस्तक लेखन आरंभ किया था। इसके साल भर बाद ही भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित अनेक आंदोलनकारी बंदी बना लिए गए। खबर इंडिया हाउस भी पहुंची, सभा बुलाई गई, जिसमें अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी प्रतियां समाचार पत्रों को भी भेजी गई। इसके साथ ही श्याम जी ने विभिन्न देशों और नगरों में जाकर संगोष्ठियों में भाग लेना आरंभ किया। वो अब अंग्रेज सरकार के विरोध में खुलकर बोलने लगे थे। होलबोर्न टाउन हॉल में आयोजित यूनाइटेड कांग्रेस ऑफ डेमोक्रेट्स की संगोष्ठी में जोरदार भाषण दिया।

0: दिन के समाचार पत्रों में उनकी गतिविधियों की आलोचना होने लगी। ब्रिटिश सरकार विरोधी लेखों को लेकर श्यामजी अंग्रेजों के निशाने पर आ गए, साथ में उनका इंडिया हाउस भी। सीक्रेट सर्विस के एजेंट उन पर नजर रखने लगे, उन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। इस कारण श्यामजी ने इंडिया हाउस की जिम्मेदारी वीर सावरकर को सौंपी और खुद पेरिस के लिए निकल गए। ये साल 1907 की बात होगी। हालांकि अंग्रेज सरकार ने उन्हें वहां भी परेशान करना नहीं छोड़ा। तब श्याम जी ने फ्रांसी राजनेताओं से संपर्क बनाना शुरू किया और वहीं से पूरे यूरोप के भारतीय क्रांतिकारियों को एकजुट करने, उनको मदद करने, कई भाषाओं में अखबार छपवाने आदि में मदद करने लगे। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक सीक्रेट समझौते के चलते उन्हें पेरिस भी छोड़ना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले श्याम जी स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा के लिए निकल गए।
1: क्या जेनेवा में वे भारतीय क्रांतिकारियों की मदद कर पाए?
2: क्या कहूं बन्नो, समय साथ नहीं दे रहा था उनका और ना अंग्रेज पीछा छोड़ रहे थे। जेनेवा में भी उन पर थोड़ी बहुत पाबंदियां थी, फिर भी जितना संभव था वे यूरोप में सक्रिय भारतीय क्रांतिकारियों की मदद करते रहे।
0: विश्वासघात क्या होता है, इसका आभास श्याम जी को नहीं था। जब तक कि उन्हें ये पता नहीं चला कि जिस प्रो इंडिया कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर ब्रीस से वो सबसे ज्यादा बातचीत करते थे, वो एक ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट थे। उधर मदनलाल ढींगरा ने जैसे ही भारत के सचिव वाइली की हत्या की तो इंडिया हाउस अंग्रेजी सरकार के निशाने पर आ गया। आखिरकार 1910 में इसे बंद कर दिया गया। फिर 30 मार्च 1930 का वो काला दिन आया जब जिनेवा में भारत के वीर सपूत श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जीवन की अंतिम श्वास ली। उनकी मौत पर लाहौर की जेल में बंद भगत सिंह और उनके साथियों ने शोक सभा रखी, जबकि वो खुद कुछ दिनों के मेहमान थे।
1: दीदी, क्या उनका शव जनेवा से भारत आ पाया?
2: बन्नो, श्याम जी को एहसास हो चला था कि उनकी अंतिम घड़ी कभी भी आ सकती है, इसलिए मरने से पहले उन्होंने जनेवा की सेंट जॉर्ज सिमेट्री में 100 साल तक अपनी अस्थियां सुरक्षित रखने की फीस भर दी थी। बाद में उनकी पत्नी की अस्थियां भी उसी सिमेट्री में रखी गईं। उन्हें आशा थी कि जब भी देश स्वतंत्र होगा तो देशभक्त उनकी अस्थियां भारत ले आएंगे। 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन किसी को श्याम जी की अस्थियां भारत वापस लाना याद नहीं रहा। आखिरकार 22 अगस्त 2003 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनेवा की धरती से श्याम जी और उनकी पत्नी भानुमती की अस्थियां भारत मंगवाई। मुंबई से उनके जन्म स्थान मांडवी तक भव्य जुलूस निकाला गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अस्थि कलश लाया गया। इतना ही नहीं, श्याम जी के जन्म स्थान पर एक भव्य स्मारक क्रांति तीर्थ का निर्माण भी कराया गया। उस परिसर के श्याम जी कृष्ण वर्मा कक्ष में उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखा गया। ये स्थल वैसा ही बना जैसे कि श्याम जी कृष्ण वर्मा का लंदन में इंडिया हाउस होता था। 13 दिसंबर 2010 को इस मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित किया गया। कच्छ जाने वाले सभी देशी विदेशी पर्यटकों के लिए मांडवी का ये क्रांति तीर्थ एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है।
0: श्याम जी कृष्ण वर्मा का एकमात्र स्वप्न था स्वतंत्र भारत, जहां हर नागरिक स्वाभिमान से जी सके। अपने राष्ट्रवादी विचारों से उन्होंने ना सिर्फ देश बल्कि विदेश में रह रहे भारतीयों के हृदय में क्रांति की लौ जगाई, जबकि खुद उनके हृदय में वंदे मातरम गीत एक अग्नि की तरह धधकता रहा, उनके जज्बे को बल देता रहा। उस एक ध्वनि ने पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में

बांधा। वो केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत के आत्मगौरव, स्वाधीनता और एकता का शाश्वत प्रतीक है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे देश के एक अन्य वीर सपूत से। तब तक सुनते रहिए एक गीत, एक नारा और एक और इतिहास रचती कहानी के साथ। जय भारत, वंदे मातरम।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। विचार पर करेंगे विचार और नुस्खों का देंगे जरूर साथ। खुशनुमा जीवन की करेंगे बात तो नई नई व्यंजन भी बनाएंगे साथ। और प्रश्न पूछने वाली हूँ आज, प्रश्न का जवाब दे सकते हो। हमारे नंबर है 94-1415-1415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो। तो आइए सुनते हैं एक गीत, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, लोभ सदा हानि पहुंचाता है, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना एक कला है। लोभ सदा हानि पहुंचाता है, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। कैसे, तो आज के विचार का विस्तार एक छोटे से दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी कि बहुत समय की बात है, एक बहुत धनवान राजा था, उसका नाम था मिडास। धनवान होने पर भी वह संतुष्ट बिल्कुल नहीं था, उसे पैसे और सोने का बहुत ही अधिक लालच था। एक दिन उसके सपने में एक परी आई, वह जाग उठा, उसने देखा कि वह परी उसके सामने खड़ी है। अपने बिस्तर से उठकर के राजा परी के चरणों में गिर गया। उसने परी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप कितनी सुंदर हो, मैंने सुना है कि परियां मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण करती हैं। परी मुस्कुराते हुए बोली, हे राजन, कहिए आपकी क्या इच्छा है, हम आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। राजा को कुछ समय तक तो समझ में ही नहीं आया कि वह क्या मांगे। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा कि हे परी, आप मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे कि मैं जिस चीज को भी छूं वह सोना बन जाए। परी ने राजा की इच्छा पूर्ण कर दी। धीरे से राजा एक पत्थर के पास गया। राजा ने अपना हाथ जब पत्थर को लगाया तो पत्थर सोना बन गया। राजा तो जैसे खुशी से नाचने लगा। राजा ने एक फूल को देखा, उसे छुआ तो वह भी सोना बन गया। राजा अपने बगीचे में जाकर के सब फूल पौधों को छूने लगा। वह जिसे भी छूता वह सोने में परिवर्तित हो जाता। राजा तो जैसे खुशी से पागल हुआ जा रहा था। कुछ देर बाद जब उसे भूख लगी तब उसने फल और पानी मंगवाया, और जब खाने के लिए हाथ लगाया तो फल सोने में बदल गए। पानी के जग को छूते ही वह भी सोना हो गया। राजा अब न कुछ खा सकता था न ही पी सकता था। अपनी मूर्खता पर राजा को बहुत ही दुख हुआ। राजा को दुखी देख करके राजा की बेटी उसके पास आई, तो राजा ने बड़े प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा तो वह भी सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा और भी ज्यादा दुखी हो गया। पश्चाताप के आंसुओं में राजा जब डूबा हुआ था तब वही परी उसके सामने पुनः प्रत्यक्ष हो गई। उसने कहा, हे राजन, मैंने तो सोचा कि आप बहुत खुश होंगे, लेकिन आप तो बहुत दुखी दिख रहे हैं। क्या आपको मिली हुई शक्ति से आप खुश नहीं हैं? क्या आपको और कुछ चाहिए? तब राजा ने परी के पांव पकड़े और माफी मांगते हुए कहा, कृपया आप ये शक्ति वापस ले लीजिए और मुझे, मेरी बेटी तथा मेरा सामान्य जीवन वापस दे दीजिए। मेरे पास बहुत धन है और आज से मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा, अपना धन गरीबों में बांटूंगा। ये सुनकर के परी ने अपनी दी हुई शक्ति वापिस ले ली। राजा बहुत खुश हो गया और सदा के लिए उसने सोने के प्रति अपने लालच को छोड़ दिया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि लोभ सदा हानि पहुंचाता है, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

0: किसान हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। छाती का दर्द हो, पसली का चलना हो, अगर ये सारी समस्याएं हैं तो बहुत ही अच्छा आपको नुस्खे देने वाली हूँ कि अजवाइन एक चम्मच आप 250 ग्राम पानी में उबालिए, ठीक है। एक चौथाई भाग रह जाए, फिर आप इस काढ़े को छान करके रात को सोते समय गरम गरम पी करके ओढ़ करके सो जाइए। दिन में दो बार इस तरह आपको पीना है। इससे 5-7 दिन में छाती का दर्द खत्म हो जाएगा, और काढ़ा 2 चम्मच की मात्रा से दिन में 2 बार निरंतर कुछ दिन लेने से पसली का चलना भी ठीक हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर नुस्खा है, फिर से दोहरा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि अजवाइन एक चम्मच 250 ग्राम पानी लीजिए और उसमें डाल करके उबालिए, फिर एक चौथाई रह जाए तो इस काढ़े को छान करके रात को सोते समय गरम गरम पी करके ओढ़ करके सो जाइए। दिन में इस तरह आपको 2 बार पीना है, ठीक है। इससे 5-7 दिन में छाती का दर्द ठीक हो जाएगा, और ये काढ़ा 2 चम्मच की मात्रा से दिन में 2 बार निरंतर कुछ दिन तक लेने से पसली का चलना भी ठीक हो जाएगा। अगर आप 6 महीने से लेकर के 12 महीने के आयु वाले छोटे बच्चे को ठंडे मौसम व ठंडी हवा के कारण सर्दी लग जाए, छाती में कब बोले, छाती में दर्द हो या पसली चले, तो आधा कप पानी में 10-12 दाने अजवाइन के डाल करके उबालिए। बड़ों के लिए आपने सुना है, अभी बच्चों के लिए दे रही हूँ। 6 महीने से 12 महीने वाले जो साल भर के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए, ठीक है। 10-12 दाने अजवाइन के डालिए और उबालिए। आधा रहने पर इसे कपड़े से छान लीजिए, और ये अजवाइन पर काढ़ा, थोड़ा सा ये जो अजवाइन का काढ़ा बनाया है, थोड़ा सा गरम गरम पर सहता सहता, ऐसे नहीं कि एकदम गरम, बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए सहता सहता एकदम नवसे का हो जाए ना कि बच्चे को अब पिलाने की स्थिति में है ये काढ़ा, तब पिलाइएगा। गरम गरम एकदम जलता हुआ नहीं देना है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर आप कहेंगे उषा दीदी ने कहा है कि गर्मा गर्म देना, अरे भाई अब बड़े तो हम पी सकते हैं थोड़ा सा गर्म, चाय दूध कैसे पीते हैं, गरम गरम पीते हैं ना, इस तरह काढ़ा भी पी सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं पी सकते हैं, इसलिए बच्चों को बच्चे के हिसाब से नवसेका देना है, दिन में 2 बार, ठीक है, और रात में सोने से पहले देना है और सुबह देना है। दिन में 1-2 बार दे सकते हैं, इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर होगा। तो इस तरह बच्चों को भी सर्दी जुकाम या पसली, छाती में दर्द जो भी है, उसमें आप इस अजवाइन के काढ़े को दे सकते हो। साथ ही अजवाइन का काढ़ा यकृत, तिल्ली, हिचकी, वमन, मिचली, फिर खट्टी डकारे आना, पेट की गुड़गुड़ाहट, इन सभी समस्याओं में भी ये फायदा करता है। तो कहते हैं ना कि एक वस्तु और फायदे अनेक, तो ज़रूर आप आजमा सकते हैं। अगर दमा है, दमा की शिकायत है, तो सुहागा का फुल्ला और मूलहटी को अलग अलग खरल, या फिर इसको कूट पीस करके कपड़ छन कर दीजिए, और मैदे की तरह बारीक इसका चूर्ण बना लेना है। फिर इन दोनों औषधियों को बरोबर वजन मिला करके किसी बोतल में कांच की शीशी में सुरक्षित रख लीजिए। बस श्वास, खांसी, जुकाम के ये सफल दवा है। अब इसको आप कैसे लेंगे, तो आप क्या करेंगे, साधारण मात्रा 0.5 ग्राम से 1 ग्राम तक दवा दिन में 2-3 बार शहद के साथ चाटिए, या गर्म जल के साथ लेना है, ठीक है। बच्चों के लिए आप 0.5 ग्राम माने रत्ती भर की मात्रा आप आयु के अनुसार दे दीजिए। परहेज में दही, केला, चावल, ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, बड़े हैं तो मात्रा को बढ़ा दीजिए, बच्चे हैं तो रत्ती भर ही दीजिएगा। फिर से दोहरा रही हूँ कि सुहागा का फुल्ला और मूलहटी, इनको अलग अलग खरल या फिर खरल में बांटिए, या हमारे में कूट पीस करके कपड़ छन करके मैदे की तरह बारीक चूर्ण बना लेना है, ठीक है। फिर इन दोनों औषधियों को बरोबर वजन मिला करके किसी कांच की शीशी में सुरक्षित रख दीजिए। बस श्वास, खांसी, जुकाम इन सब के लिए ये सफल दवा है। लेना कैसे है जो आपको बता रही हूँ कि साधारण मात्रा आधा ग्राम से एक ग्राम तक दवा दिन में 2-3 बार शहद के साथ चाटिए या गर्म जल के साथ लीजिएगा। और बच्चों के लिए एक रत्ती, ठीक है, मात्रा आयु के अनुसार इसी तरह देना है। परहेज में दही, केला, चावल, ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। तो ये सारे ही नुस्खे फायदेमंद है और आप चाहो तो आजमा सकते हो। अब आइए ले लेते हैं एक अल्पविराम, पुनः लौट करके आ रही हूँ, फिर आपको मैं प्रश्न भी पूछूंगी, खुशनुमा जीवन की बातें भी आपके साथ करेंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: देंगे। तो ये आज का प्रश्न है, जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है 94-14-15-14-15। बहुत ही सरल प्रश्न है और अगर आप जवाब देंगे तो साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि यह कब आने वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर आज का प्रश्न है कि ऐसी तिथि आने वाली है, चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे भी खाएंगे, गरबा रास भी करेंगे। तो ऐसी कौन सी तिथि आने वाली है और कब ये तिथि है? हेलो,
1: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: जी जय श्री हरि, जय माता दी। नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
1: सबसे पहले तो हमारे कंचन पर यात्रा में गए तो बस बाबा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी यात्रा सफल और मंगलमय रहे।
0: जी,
1: और आपका सवाल तो बहुत ही सुंदर है, आंसर दे दो।
0: हाँ जी, बिल्कुल दे दीजिए। अगर आप ऑफ एयर देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। ऑफ एयर देंगे तो अच्छा रहेगा, हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी थोड़ा सोचने का अवसर मिलेगा।
1: तो कोई बात नहीं,
0: आज के विषय में बोल रही हूँ। तो गरीब पर मत हंसना साहब, कहीं ऊपर वाले ने सुन लिया तो कटोरा बदलने में देर नहीं लगेगी। तो गरीबों पर अक्सर हम कमेंट करते हैं, अक्सर उन पर हंसते हैं, हीन भावना से उनको देखते हैं, उनका मतलब समय प्रति समय वो कहते हैं ना कि लोग बाग अपमान भी करते हैं, क्या कहेंगे आप?
1: देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी मतलब तेज मतलब ऊपर से कोई अमीर बन के नहीं आता है।
0: जी,
1: ऊपर से तो सब खाली हाथ ही आते हैं।
0: जी,
1: तो मतलब जो वो गरीब है ना, उनको उनका सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि देखिए हर एक इस धरती माता के ऊपर तो सब उनके पुत्र समान है।
0: जी,
1: वो देखिए मतलब जो पैसे वाला होता है उसको भी अन्न उगा के खिलाती है।
0: जी,
1: और जो गरीब होता है ना उसको भी अन्न मिलता है। प्रभु ने कितनी अच्छी बात बताई है कि देखिए मतलब जो सोते हैं तो कोई भूखा नहीं सोता है।
0: जी,
1: उसको बोले कोई सूखी रोटी खाता है, कोई माल पानी खाता है।
0: जी,
1: मगर उठते हैं तो सब भूखे उठते हैं, पैसे वाला हो या गरीब हो।
0: हाँ जी, बिल्कुल। तो कहते हैं कि भूखे उठते सभी हैं, लेकिन ईश्वर सभी को मतलब भूखा सुलाता नहीं है, उठाता जरूर है लेकिन सुलाता नहीं है,
1: कुछ ना कुछ खिला के सुलाता है।
0: जी जी,
1: तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए आज के मंदिरों पे भी अपन देखते हैं तो कितने गरीब लोग बैठते हैं कटोरा लेके।
0: जी,
1: तो आपने सही बात की कि किसी की गरीब से हंसना अच्छी बात नहीं है। जो भी आपके हाथ में लगे तो दे दो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है।
0: जी बिल्कुल,
1: मगर उसके ऊपर हंसोगे ना तो वो कल उठ के वही कटोरा अपने हाथ में आ सकता है, क्योंकि पलक झपकते ही करोड़पति रोड़पति बन सकता है।
0: जी जी, हो रहा है, देख रहे हैं समाज में। बहुत बहुत आभार।
1: बस तो यही कहना चाहता हूँ कि मतलब ये कुछ भी नहीं है, बस मतलब उसके कुछ पिछले कर्मों का होगा तो उसको मिल रहा है, बाकी अपन को मतलब उसके प्रति अच्छी भावना रखनी है।
0: जी,
1: ताकि अपना जीवन सुधर सकेगा।
0: बहुत सुंदर, बहुत
1: और अपन सच
0: जी
1: अपने अंदर से जो भी अच्छे विचार निकले वो उसको भी मतलब हिम्मतवान बनाए और उसको भी अच्छी राह दिखा सके।
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने स्पष्ट किया है कि भाई देखिए कुछ नहीं कह सकते, आज बीज है तो कल तीज है, कब किसकी परिस्थितियाँ बदल जाए। हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो?
2: बहुत अच्छे दीदी, अगर आप आ गए तो और अच्छे हो गए।
0: अच्छा,
2: एकदम कार्यक्रम तो हम सुनते थे लेकिन कार्यक्रम सुनते थे, लेकिन आज आपसे रूबरू बात हो रही है तो बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी,
2: और बहुत अच्छी बात हो रही है, विषय भी अच्छा है, प्रश्न भी अच्छा है। प्रश्न तो मैं बाद में दूंगा
0: जी,
2: लेकिन विषय बहुत अच्छा दिया है दीदी। गरीब और अमीर
0: जी
2: बहुत फर्क है, माने तो
0: जी,
2: वरना कुछ नहीं है।
0: जी
2: वो कहता है कि हम भी कभी कभी ऐसे पहले थे, लेकिन आज हम थोड़ा सा जो पैसे वाले बन गए, तो आज हम गरीब को बोल नहीं सकते।
0: जी
2: कहते हैं कि हर किसी को ऐसा दिन आता है और उसको मजा करना, उस पर कुछ बोल देना तो सही बात नहीं है। आज देखते हैं हम कई परिवार ऐसे हैं तो खाने का भी नहीं मिल रहा है, ऐसे परिवार है, लेकिन इसको हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन उसकी मजाक तो जरूर नहीं करना चाहिए कभी।
0: बिल्कुल,
2: मदद नहीं करो तो चलेगा, लेकिन मजाक नहीं करना कभी।
0: जी
2: आज कई गरीब परिस्थिति वाला ऐसे लोग होते हैं, तो इसके ऊपर लोग फंसते हैं, उसको ताना बाना मारते हैं, उसके कहते हैं कि भी आप कुछ करो, पैसा क्यों मांग रहे हो, सारी लड़की कर रहे हो, तो ऐसा तो बोलना सही नहीं। आपके पास हो तो जो, वरना तो आपके पास थोड़ा सा ले जाएगा, तो ऐसे ना करके हम कुछ ना कुछ मदद करेंगे तो ही सही है, क्योंकि सब तो अमीर नहीं होता
0: जी।
2: तो सबका हाल ऐसा आता है, सबका दिन आता है कभी कभी, तो ऐसा पर हम हंसने से नहीं कि हम कुछ मदद करें, इसको कोई मदद करे, इसके साथ कोई मजाक करे तो अच्छा नहीं है
0: जी।
2: तो बस ऐसे मजाक नहीं करना, क्योंकि कभी कभी ईश्वर भी सुनता है और ईश्वर भी कहता है कि चलो भाई वो तो आज ऐसा है, आप पैसे वाले, कभी कभी आपका भी दिन ऐसा आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, आपके पर लोग भी हंसेंगे, तो ऐसे ना करके हम जो हमारे पास हो उसकी मदद करें।
0: बिल्कुल, वो कभी कभी नहीं रोज सुनते हैं, लेकिन कहते हैं ना खुदा की लाठी की आवाज नहीं होती है,
2: नहीं होती। और कई लोग कई किस्से दीदी देखे हैं हमने कि बहुत पैसे वाले थे, आज वो भी ऐसे हालत में हो गए, बहुत गुस्सा करते थे गरीबों पर
0: जी,
2: अत्याचार करे
0: जी,
2: और गरीबों को ताना उटाना मारे
0: जी,
2: तो वो सही नहीं है। वो इसके हिसाब से गरीब है, लेकिन वो ऐसा तो नहीं है कि किसी का घर में जाके ले जाए, ऐसा तो है नहीं। इसको चोरी करे, गरीब चोरी नहीं करता है कभी, ये हमने देखा है
0: जी।
2: तो बस कुछ न कुछ हम तो ऐसा कुछ मदद कीजिए और मजाक नहीं करना बस।
0: जी जी, बहुत सुंदर,
2: ठीक है
0: जी,
2: नमस्कार,
0: आभार आपका। तो देखिए सुरेश भाई बाहर है, फिर भी देखे जिनको रुचि है रेडियो के प्रति, वो कहीं पर भी जाते हैं तो भी रेडियो से जुड़े रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप सुनते ही नहीं है, अमल भी करते हैं, और रेडियो को कितना आप दिल में बसाए रखते हैं इस बात से पता चलता है। तो बात चल रही थी कि भाई गरीबी का, जैसे कि सुरेश भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं गरीब की, तो उसकी मजाक भी मत करिए, बहुत अच्छी बात है। कितनी बार हमारे घर के बाहर जैसे कोई मांगने आते हैं। हेलो
3: हेलो, नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई, देवपूजक दानेरा।
0: हाँ जी नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
3: बस अच्छे है, और पहले जो रेडियो हमारे यहाँ पता नहीं क्यों फ्रिक्वेंसी बिल्कुल नहीं पकड़ रहा था, अब तो बात भी हो रही है सुरेश भाई ने, अभी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं हम।
0: जी जी जी,
3: और अभी रेडियो ऑन किया है जब सुरेश भाई का कॉल था, तो किस बारे में चर्चा हो रही है,
0: बात हो रही है कि गरीब पर, देखिए कि मैं एक शेर बोलती हूँ, गरीब पर मत हंसना साहब, कहीं ऊपर वाले ने सुन लिया ना तो कठोरा बदलने में देर नहीं लगेगी। मतलब जो गरीब के हम हंसी मजाक उड़ाते हैं, उनको तुच्छ नजरों से देखते हैं, हीन भावना से देखते हैं, ये जी तो क्या कहेंगे।
3: सुरेश भाई ने जैसे बात बताई उस पर और मैं ऐड करना चाहूंगा कि कई भी ऐसे गरीब थे जो आज अपनी मेहनत से, मैंने देखा है जो अपनी मेहनत से वो कुछ अपने कदम पर चल रहे हैं, और वो कभी कभी पुराने याद करते हैं, पुरानी बात, जब वो गरीब थे, इधर ठोकरे खाई, ऐसे ठोकरे खाई, तो एक संदेश देते हैं कुछ लोगों को कि आप जो गरीब होते हैं खास करके उन लोगों को,
0: जी।
3: पहले हमारी ऐसी परिस्थिति और हमने ऐसा किया, जब हम अपने कदम पर खड़े हुए, आप भी ऐसा कीजिए, अगर हम अपने कदम पर चले और मेहनत और अपनी नीति धर्म सब कुछ अच्छे रखे, तो गरीबी दूर हट सकती है, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। और हम जो वैसे ही परिस्थिति में रहे और जैसे कि अभी बताया कि चोरी चकारी ऐसे कुछ करते हैं, तो ऐसे ही करते रहेंगे तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही, और हम कुछ ना कुछ बातें करते ही रहेंगे।
0: जी जी,
3: तो मेरा ही राय ये है दीदी।
0: जी बहुत बहुत आभार
3: जी। दीदी अब तो रेडियो चालू हो गया तो हम हर रोज जुड़ेंगे।
0: जरूर जरूर, प्रश्न का जवाब देंगे आप?
3: प्रश्न सुना नहीं दीदी, क्या है?
0: अच्छा, प्रश्न है कि ऐसी तिथि आने वाली है, चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे सब खाएंगे और गरबा रास भी करेंगे, ऐसी कौन सी तिथि आ रही है और कब है वो तिथि?
3: वो अभी कुछ ही दिन है, शायद आज 12-13 से 2-3 ही बाकी अभी आने वाली पूनम की बात करती है शायद आप।
0: अच्छा ठीक है, आप आशना सुनिए, हम जरूर जवाब देंगे आपका। ठीक है,
3: थैंक यू दीदी, नमस्कार।
0: जी वेलकम, नमस्कार। तो आइए यहीं पर एक छोटा सा गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: माता रानी कहती है, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो, भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इनको देना, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा। मेरे दर पर मांगने वाले, तुझे बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। तुझे बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि गरीब लोगों पर अक्सर हम छिटाकसी करते, हीन भावना से देखते, उनकी मजाक उड़ाते हैं, और उनको वो कहते हैं ना कि अगर चार जनों के बीच कोई गरीब रिश्तेदार, कहते हैं ना चार जने रईस बैठे हुए होते और कोई गरीब रिश्तेदार आकर के बैठ जाता है, तो उसको ऐसे नकारने की कोशिश करता है कि अरे नहीं नहीं, इनसे तो हमारा कोई लेना देना ना, ये तो बहुत दूर से है। भले सगे भाई भी होगा तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं ये तो दूर से भाई है, हमारा कोई ऐसा खास रिलेशन नहीं है। मतलब गरीब लोग इतने आपको ऐसे लगते हैं कि उसमें भी बहुत लोगों को अपने इंसल्ट महसूस होती है कि मेरा रिश्तेदार इतना गरीब है तो मैं कैसे दूसरे लोगों के सामने इसके साथ रहूं। अंदर भले वो काम लेंगे, अंदर ही अंदर उनसे कहेंगे आपसे, और देखिए आप देखिए, गरीब लोग जल्दी से आपकी मदद करेंगे, पैसे वाले मदद नहीं करेंगे। फिर भी पैसे वालों के पीछे सभी दीवाने होते हैं, उनके गुणगान करेंगे बिना कारण, उनकी तारीफ करेंगे। और गरीब भले आपकी मदद करता होगा लेकिन चार जनों के बीच में खुल करके उसके आप तारीफ भी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ। हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति।
1: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति। कुपाराम जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी कुपाराम।
1: हाँ जी कुपाराम जी, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में। कैसे हो आप?
2: चलो प्रश्न तो आपका है वो शरद पुनमारी है
1: जी। चलिए हम जवाब जरूर देंगे, सही है या गलत आपको इंतजार करना पड़ेगा जी।
2: गरीब, पहली बात पे थोड़ा ये उल्लेख करना, वास्तव में गरीब किसको मानेंगे? और मेरे यहाँ कई भी मांगने वाले जो आते हैं ना
1: जी,
2: उनके मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको हाँ सरकार राशन दे रही है
1: जी,
2: वो राशन तो यहाँ किराने की दुकान में आके गेहूँ बेचते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा,
2: मांग के खाते हैं
1: जी।
2: मेरे पास कभी आते हैं, मैं पूछता हूँ मेरे को बीड़ी पीते हो? जगह हाँ
1: जी।
2: तो मैंने कहा आज तो कुछ देता एक दो रुपया, लेकिन आज नहीं दूंगा जी। क्यों? बीड़ी छोड़ के आना मैंने
1: जी।
2: अब उसको बीड़ी की क्या जरूरत है
1: जी, अब गरीब हो तो बीड़ी सिगरेट पीने की क्या जरूरत है। सही कहा,
2: दो रुपए जिनकी पीता है ना
1: जी,
2: 20 साल के अंदर 54,000 रुपए होते हैं उसके
1: जी। क्या बात, जब
2: वो भीख मांगने वाला बीड़ी पीता है
1: जी।
2: अच्छा उसको बोलेंगे कि थोड़ा धंधा करो, मजदूरी चलो, तो वो कभी मजदूरी नहीं करेगा वो
1: जी,
2: क्योंकि उसको एक तो आदत पड़ गई है मांगने की
1: जी।
2: मानता हूँ गरीबी है, ऐसी बात नहीं, मजबूरी में भीख मांगता है तो वो बरोबर है
1: जी,
2: लेकिन जब उसे समझ आ जाएगी फिर तो उसको भीख मांगना बंद करना चाहिए, फिर धंधा मजदूरी करना पड़ता है
1: जी।
2: हाँ जी, मेरा ये विचार था।
1: हाँ जी, हाँ।
2: अच्छा दूसरी बात ये रही, अब वो एक सुबह उठ के आता है तो वो स्नान करके क्यों नहीं आता, जब पानी का तो पैसा लगता नहीं है
1: जी। बिल्कुल सही कहा आपने।
2: मेरे हिसाब से उनको गरीब को थोड़ा, ये गरीब जिसको मानते हैं उनको थोड़ा विचार देना है कि वो भीख ना मांगे, वो सफाई से रहे
1: जी,
2: तो अपना विचार बदल जाएंगे
1: जी। जी क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। बहुत बहुत आभार कुपाराम जी, आपके आपके इन विचारों ने मुझे भी कुछ बातें याद दिला दी है। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर बात कही है कि देखिए गरीबी मतलब गरीब किसे कहते हैं, कोई दिल से होते हैं तो कोई वो नेचुरल गरीब होते हैं, वो बात अलग है, वो खुददारी से जीवन जीते, वो हाथ नहीं फैलाते किसी के सामने, खुददारी से वो अपने रोजगार करते रहते, छोटा मोटा जो भी उनको मिला है मजदूरी करके पेट भरते, लेकिन हाथ नहीं फैलाते। और जो इस तरह के बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो हाथ फैलाने की आदत हो जाती है, वो उनके कितने भी सरकार मदद करे लेकिन वो मदद उनको मतलब लेना ही नहीं आती है, ले लेते, जैसे कि कुपाराम जी ने बताया कि राशन से जो उनको अनाज मिलता है बेच देते हैं, थोड़े से 2-4 रुपए दुकान वाले ज्यादा दे देते तो उस लोभ में बेच देते हैं, और भले बेच करके वो सिगरेट बीड़ी पियेंगे, शराब के भी आदि होते हैं, बहुत सारे गरीबों को देखा है शराब के भी आदि होते हैं, लेकिन उनको वही जीवन अच्छा लगता है। रेडियो मधुबन की टीम कभी आपने सुना भी होगा, पहले भी हम बोल चुके हैं इस बात को कि हमारे आबू के अंचल में ही कुछ कचरे बीनने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को हमने पढ़ाया, उनको जैसे कि कुपाराम जी ने कहा ना कि वो गंदे रहते हैं, नाना तो कम से कम हैंडपम्प लगे होते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है, तो हमने देखा है कि उन गरीब बच्चों के घर के बाहर ही हैंडपम्प लगा हुआ है, लेकिन वो स्नान ध्यान नहीं करते, इतने गंदे रहते हैं, और कपड़े तो देख लो कि क्या डिजाइन है क्या कलर है समझ में ही नहीं आता, तो उन बच्चों को नहलाना धुलाना सब सिखाया, कपड़े धुलाना भी सिखाया। उन बच्चों का कहना था कि उनकी माता क्या करती है, कपड़ों को जला देती है, 8-10 दिन पहने रहते हैं, फिर उन कपड़ों को जला देती, फिर मांगने चले जाते हैं, और लोग देते भी है, क्योंकि अब बच्चों के जो कपड़े छोटे हो जाते हैं, बच्चे की हाइट बन जाती है, तो वो फिर इस तरह गरीब बच्चों को दे देते हैं, तो उनको नए नए कपड़े मिल जाते हैं पहनने के लिए, और कीमत तो उनको पता नहीं, क्योंकि खरीदते हैं पैसे दे करके खरीदते हैं, तो उस चीज़ की कीमत नजर आती है, और भीख में मिल गई ना, दान में मिल गई, उस चीज़ की क्या वैल्यू। तो उन बच्चों को उस वैल्यू का एहसास कराया कि आपकी माताएं जला देती है जाने दो, लेकिन आपको खुद को नहा धो करके स्वच्छ होकर के पढ़ने के लिए आना है, कपड़े धुलाई करके आना है, तो बच्चे अच्छी तरह आने लगे। लेकिन माता पिता की आदत है ना, कुछ पिता लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग जो कचरे बीनते हैं उसमें से 50-60 रुपए वो कमा लेते हैं पूरे दिन के, और पिता लोग शराब पी करके पड़े रहते हैं, ऐसा भी हमने इन आंखों से देखा है, और उनको काफ़ी समझाने की भी कोशिश की कि आपके बच्चों का भविष्य इस तरह आप क्यों खराब करते हो। उनका स्कूल में एडमिशन भी कराया गार्जियन के तौर पर, लेकिन नहीं समझते हैं ना वो, बदलना ही नहीं चाहते अपनी परिस्थितियों को, उनको ऐसे कि बस 50-60 रुपए वो, फिर 50-60 रुपए उनकी बीवी कमा के लाती है कचरा बीन करके, 100-150 रुपए आ गए हो गए, आप पूरे दिन का आराम से गुजारा चल जाएगा, इससे आगे वो बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप। इसलिए ये भी सही है कि जानबूझकर के लोग अपनी आदतों से मजबूर होकर के भी लोग कुछ काम धंधा नहीं करना चाहते, लेकिन चलिए ये तो बात हो रही थी भाई गरीबों की कि वो अपनी आदत से मजबूर है, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे गरीब जो अपने स्वाभिमान में रहते हैं, आप उनकी मदद लाचार स्थिति को देख करके अगर मदद करेंगे तो वो मदद भी नहीं लेंगे, खुददारी से जीवन जियेंगे, नहीं नहीं साहब हमारे पास कोई कमी नहीं है, वो नहीं लेते हैं, तब ऐसा लगता है कि कोई कोई तो उसको गलत समझ लेते हैं कि अरे देखो गरीब है फिर भी इतरा रहा है, लेकिन इतरा नहीं, वो स्वाभिमानी है। और कहीं कहीं पर मजबूरी भी होती है, माताएं बहनों को देखिए आप, कहीं कहीं पर पति गुजर जाता है या फिर शराबी कबाबी होता है, बच्चे हो जाते हैं तो माताएं मजबूर हो जाती हैं, वो खुद के लिए फिर भीख नहीं मांगेगी, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो भीख मांगेगी, क्योंकि उनको काम अगर नहीं मिलता है तो। बहुत सारी माताओं को तो जैसे कि कुपाराम जी ने कहा कि भाई काम के लिए कहते हैं कि आइए और काम करिए, लेकिन बहुत सारे गरीब को कोई काम, ऐसे भी लोग हैं जो देना नहीं चाहते कि अरे भाई बहुत गरीब है, कहीं घर से कुछ उठा के ले गया तो, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको परखना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, गरीबों के लिए ये ज़रूर करना चाहूँगी कि भाई वो स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहेंगे, कपड़ों की शर्म नहीं है कि उन्होंने फटा पहन रखा है या पुराना पहन रखा है, फटे है तो आप सिलाई कर लीजिए, लेकिन स्वच्छ कपड़े पहनिए, धुलाई करके पहनिए, अगर आप स्वच्छ रहेंगे स्वच्छ कपड़े पहनेंगे तो लोग आपको 2 नहीं 4 काम देंगे। घर पर देखिए आजकल माताएं बहनें भी क्या है, सर्विस ज़्यादा करती है या फिर घर पर भी रह करके बिजनेस करती है, तो उनको सारा काम करने का समय नहीं मिल पाता है, तो झाड़ू पोछे बर्तन में भी माइयों को रखते हैं, तो ऐसा काम तो कर सकते हैं ना। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं है हमारी, हम गरीब है तो कोई सा भी काम शर्म नहीं, काम करने की कभी ऐब या शर्म नहीं रखनी चाहिए, चोरी झूठ छल कपट इनकी शर्म होनी चाहिए, इसलिए काम का शर्म नहीं करनी है। जैसे कि एक बार शुक्रवार को जब हम स्पेशल कोई माता बहन से आपको मिलवाते हैं, तो एक बहन से भी मिलवाया, नेपाल की बहन थी, किस तरह वो झाड़ू पोछा करके 6-7 हज़ार महीने के कमा लेती है, और देखिए अच्छे घर होते हैं वहाँ से फिर बच्चों के कपड़े है फिर खाने पीने का है वो भी देते हैं, वो देखिए ऐसे नहीं कि उनका दया देख करके कि उन पर दया करके दे रहे, नहीं, स्वाभाविक है 4 जनों का खाना बनाते हैं तो 5वें का बन ही जाता है, 1 जनों का ज़्यादा बनता ही है, और लास्ट में भोजन करने के बाद बचता है तो वो हम अपनी माइयों को ही देते हैं कि भाई ये बच्चा है जो ले जाओ, तो वो तो ताजा खाना ही है ना, बच्चा इसलिए दे रहे हैं और उनको पता है कि बच्चा है इसलिए दे रहे हैं, स्पेशल नहीं बनाया हमारे लिए या फिर हम उनके लिए स्पेशल नहीं बना रहे हैं, तो वो बात अलग है। तो गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन स्वाभिमान से जीना ये अच्छी बात है। कि गरीबी तो परिस्थितियां सभी के अंदर आती है, और बात रही हंसने की कि गरीब को देख करके हंसी मजाक नहीं करना है। वो कहते ना कि कभी भी ये पहिया घूम करके, ये चक्र घूम करके हमारे तक भी आ सकता है। हेलो
3: हेलो, नमस्कार दीदी, मैं फिर से सुरेश भाई दानेरा से। मुझे एक सच्ची घटना याद आई है
1: जी,
3: कि एक गरीब जो तो वो मांग रहा था, तो जो ज्यादा भीड़ में फुटपाथ पर, तो उनका जो मांगने का जो वक्त का होता है ना, वो लोगों को पैरों से इधर उधर हो रहा था, पैसे भी गिर रहे थे। तो एक इंसान ने देखा और वो बोला कि तुम इधर ऐसे ही हर रोज रहते हो, कुछ पैसा इकट्ठा करके क्यों कुछ काम नहीं करते, कि मेरे पास इतने पैसे है नहीं। तो उन्होंने पैसा 500 रुपया दिया और कुछ कुछ काम कर लो ऐसा बोलकर वो तो चला गया
1: जी।
3: और लगभग 4-5 साल बाद जब वो 500 रुपया देने वाला जा रहा था, तो एक इंसान ने पकड़ा और पैरों में गिर गया और के अपने साथ ही चलो, अरे भाई मैं आपको पहचानता नहीं, आप है कौन। तो बहुत छोटा मोटा घर था, उनके घर में ले गया और अच्छी सी खातिरदारी की, लेकिन आप बताओ तो सही है कौन
1: जी।
3: तो क्या आपको याद हो 4-5 पहले जो आपने 500 रुपया दिया और मैं भीख मांग रहा था ना वो फुटपाथ पर, वो मैं ही हूँ। आपने सिर्फ उन दिन 500 रुपया ही नहीं दिया, लेकिन मुझे जीने की तरकीब सिखाई है। तो ये सब कुछ आपका ही है और आप बहुत धन्यवाद दिया, सब कुछ किया। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि गरीब कोई भी

ठीक है वो गरीब है, लेकिन हमें उसके हंसी मजाक उड़ाने की कहां आवश्यकता है। कभी कभी इंसान बेमतलब ही गरीबों की हंसी उड़ाते हैं, उनके ऊपर कमेंट कसते हैं, न जाने कितने व्यंग मार देते हैं। मांगने वाले के भी आप देखना, कोई मांगने हमारे दहलीज पर आता है तो बहुत सारे लोग तो उसका पूरा ही अपमान कर देते हैं। अरे भाई अच्छे खासे हो, कुछ काम धंधा करो ना, ऐसे मतलब व्यंग में। नहीं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो आया है हमारे द्वार पर तो उसकी कुछ मजबूरी होगी। अगर आप मदद कर सको तो ठीक है, नहीं तो मत करिए। क्योंकि आजकल किसी का कुछ नहीं कह सकते कि कोई मदद मांगने आता है और अपना ही चेन वगैरह खींच के ले जाता है, ऐसा भी हो रहा है अभी वर्तमान में। तो मत करिए, लेकिन हंसना नहीं है, उसके ऊपर छीटा कसी नहीं कसनी है कि अरे तुम क्या करते हो, तुम तो काम धंधा कर सकते हो। प्यार से कहो कि भाई काम धंधा करके अपना गुजारा करो, मांगना अच्छा नहीं है। ये बात तो अलग है, एक सलाह देना हुए, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि ऐसे ताने मारते, ऐसे डांटते हैं कि जैसे उसने कोई गुनाह किया हो। हमने दिया भी कुछ नहीं और बहुत कुछ सुना दिया, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा करने से भी सामने वाला अगर वो मजबूरी से आया, हमें नहीं पता कि वो किस आशय से, किस मतलब भाव से आया है, लेकिन हमने उसका अपमान किया और उसका दिल दुख गया, उसको ताने मारे, उसके ऊपर व्यंग कसे और उसका दिल दुख गया, तो भी पाप के भागीदार तो हम हो जाएंगे ना। इसलिए कोई मांगने आ रहे हैं, देना न देना अपने हाथ में है, लेकिन अपमान नहीं करना है गरीब का, क्योंकि कब समय पलटी खाए, कब परिस्थितियां हमारे पास आ जाए, तो उस समय हम क्या करेंगे। हो रहा है समाज में, देखिए करोड़पति के रोड़पति बन रहे और रोड़पति के करोड़पति बन रहे, जैसे योग्य बच्चे निकलते हैं पढ़ लिख करके होशियार बन जाते हैं, अच्छी ऊंची पोस्ट पर विराजमान हो जाते हैं, तो उनकी परिस्थिति अच्छी संभल जाती है, तो वो अच्छा जीवन जीने लगते हैं। बहुत सारे लोग जो अहंकार में रहते हैं, हमारे जैसा कोई है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता, वो देखो आप भीख मांगते नजर आते हैं। वो कहते हैं ना, कुछ कुछ रॉयल भिखारी भी होते हैं कि लोगों से पैसे मांगने की आदत होती है और देना नहीं होता है। तो दरअसल गरीब तो उनको ही कहेंगे जो पैसे तो ले लेते हैं लोगों से, कि धंधे में डालना, उसमें डालना, इसमें डालना, और फिर उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। जो मांगने आते हैं ना, उनको मुंह भी नहीं दिखाएंगे और घर परिवार में समझा देंगे कि बता देना भाई, वो आवे तो बोल देना कि घर पर नहीं हूं, और वो ही जवाब मिलता है। बेचारे लोग कितना धक्का खाएंगे, 10-15-20 धीरे धीरे फोन कॉल्स भी बंद, उठाना बंद, नंबर बदल देंगे। गरीब वो है जो इस तरह लोगों का मांग मांग करके खाते, मेहनत करने वाले कभी गरीब नहीं होते। इसलिए स्वाभिमान का जीवन जीना है और स्वाभिमान में रहना है, यही दरअसल दिल के अमीर कहलाते हैं। और आज के प्रश्न है कि ऐसी तिथि आने वाली है, चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे भी खाएंगे और गरबा रास भी करेंगे, तो ऐसी कौन सी तिथि आने वाली है अभी जो ये सब हम करने वाले हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए सुनेंगे फिर से एक गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: मैं हूं जयप्रदा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। परंतु आज के प्रश्न का जवाब बहुत सरल है। पहले मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, जो भी आशियाना कार्यक्रम सुन रहे हैं आप प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है और ये तिथि बहुत ही जल्दी आने वाली है। ऐसे

0: तो भाई ऐसी कौन सी तिथि आने वाली है? नवरात्रि तो देखिए बहुत सभी ने गरबा रास किया, डांडिया किया, मजा आ गया सभी को, है ना। तो गरबा रास अपने अपने सोसाइटी में हुए हैं और किए भी होंगे, लेकिन फिर से गरबा रास करेंगे परंतु कौन सी तिथि को? जवाब दीजिएगा। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अब आशियाना की किचन में आज बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट वानगी, गुजराती में वानगी कहते हैं और वैसे हम कह सकते हैं कोई भी एक अच्छे से डिश, तो बनाएंगे राजस्थानी कचौरी चाट। राजस्थानी कचौरी चाट का नाम सुनते ही तो पानी आ ही गया होगा, और वो भी जोधपुरी कचौरी चाट, उसका तो कहना ही क्या है। जगह जगह पर भले मिष्ठान वालों की दुकानें होती हैं, वहाँ पर बहुत सारे दुकानों पर लिखा होता है कि जोधपुरी कचौरी, लेकिन चलिए जोधपुरी कचौरी आज हम सभी को बनाना सिखाएंगे ताकि आप सभी बना करके आनंद ले सको। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: ओम शांति।
0: हाँ जी, नमस्कार लीला जी, ओम शांति, कैसे हो आप?
1: एकदम बढ़िया है मैडम जी, आपकी अपनी फर्स्ट क्लास आवाज आज बराबर आई है, क्योंकि एक तो नहीं रहा ना, आवाज बराबर नहीं सुनाई दे रहा था।
0: अच्छा,
1: हाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, बराबर गुर गुर गुर गुर करके तो मजा नहीं आ रहा था सुनने में।
0: चलिए आज तो आवाज एकदम क्लीन आ रही है।
1: बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी पूनम में घर के लिए तैयारी कर रही हूँ।
0: अच्छा, तो आ जाइए फिर, करेंगे हम सभी रेडियो मधुबन में धमाल।
1: बिल्कुल बिल्कुल, पूनम आ रही है।
0: जी जी जी, चलिए हम देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं है। आ रही है तो कब आ रही है?
1: जल्दी जल्दी खीर, पौवे की खीर बनाएंगे और फिर चांदनी रात में रख देंगे और फिर चंदा मामा से अमृत गिरेगा अंदर।
0: जी जी, क्या बात है। बहुत अच्छा।
1: तो सर बुनमनी रात जो चांदनी है उगियो सखी सखी मारा चौक में।
0: क्या बात है। बहुत खूब। तो लीला जी, हम जरूर आएंगे इस बार, भाई ज्यादा बनाना, ठीक है?
1: बहुत देर बनाएंगे अपन, कमी नहीं पड़ेगी।
0: ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और उस दिन हमारे श्रोता बंधु को आप ही सिखा देना, ठीक है? दूध पोहे।
1: ठीक है मैडम जी।
0: ओके जी, बहुत बहुत आभार आपका। जी, तो आज आपको कचौरी, राजस्थानी कचौरी चाट बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है? तो पहले मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ, पेन और डायरी आप तैयार होगी आपके हाथ में, सामग्री लिख लीजिए, क्योंकि देखिए ये चीजें ऐसी है कि लिख लेना अच्छा है। आप रोज कुछ ना कुछ सिखाते हैं तो फिर भूल ही जाते हैं, तो लिख लीजिए कि सामग्री है मैदा 250 ग्राम, फिर आप धुली हुई मूंग की दाल ले लीजिए 100 ग्राम, और हरी मिर्च ले लीजिए 3-4, अदरक भी एक छोटा सा टुकड़ा आप ले सकते हैं, 1 चम्मच जीरा ले लीजिए, हींग चुटकी भर लेना है, पीसी हुई लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच लेना है, मोटा कुटा हुआ गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच ले लीजिए, और मोयन और तलने के लिए तेल आवश्यकता के अनुसार लेना है। भरने की सामग्री दोहरा रही हूँ, 4-5 उबले हुए आलू लेना है, और हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया ये आप आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, चाट मसाला भी लेना है, हरी चटनी और इमली की सौंठ ये भी आपको तैयार रखना है, बीकानेरी भुजिया और फेटा हुआ दही, और ये सब आपको तैयार रखना है, ठीक है? तो फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री, ध्यान दीजिएगा कि राजस्थानी कचौरी चाट, वैसे तो देखिए राजस्थान के लोग चटपटा खाने के बहुत ही प्रसिद्ध है, जोधपुर की स्पेशल कचौरी की चाट खाने के बाद तो दिनों तक, बहुत दिनों तक उसका स्वाद याद आता रहता है। अक्सर आपने देखा ही होगा, क्योंकि कोई ऐसे नहीं होंगे हमारे श्रोता बंधु जिन्होंने जोधपुरी कचौरी चाट नहीं खाई होगी, और उसका आज मैंने याद दिला दिया होगा तो उसका टेस्ट भी याद आ गया होगा कि कैसा उसका स्वाद रहता है। लेकिन अब ये रोज तो बाहर से लाके नहीं खा सकते हैं, इसलिए घर पर बना करके आप जरूर खा सकते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छी रहती है। तो मैदा 250 ग्राम लीजिएगा, दाल लेना है 100 ग्राम मूंग की दाल, ठीक है। हरी मिर्च, अदरक सब अपने आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, जैसे 3-4 हरी मिर्च है, 1 अदरक का टुकड़ा है, जीरा 1 चम्मच है, चुटकी भर हींग है, पीसी हुई लाल मिर्च और नमक दोनों ही अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। और अमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच लेना है, और मोटा कुटा हुआ गरम मसाला भी आधा छोटा चम्मच ले लीजिए, और मोवन के लिए और तलने के लिए आवश्यकता के अनुसार तेल लेना है। फिर भरण की सामग्री है भरने की उबले हुए आलू 4-5 ले लीजिए, और हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया ये सब आपको आवश्यकता के अनुसार लेना है। इसके साथ चाट मसाला भी आपको लेना है थोड़ा सा। अब इसमें आप तैयार रखेंगे हरी चटनी, इमली की सौंठ, बीकानेरी भुजिया और दही आपको लेना है, ठीक है। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए, तब तक के लिए गीत सुनेंगे, उसके बाद राजस्थानी कचौरी चाट कैसे बनाई जाती है वो जरूर सिखाएंगे। परंतु आज का प्रश्न है, हमारे जो भी श्रोता बंधु सुन रहे हैं दे सकते हैं आज के प्रश्न का जवाब। प्रश्न है, ऐसी तिथि आने वाली है चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे भी खाएंगे तो गरबा रास भी करेंगे। जवाब जरूर दीजिएगा, हमारे नंबर है रेडियो मधुबन के 94-14-15-14-15, और सुनते हैं गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टर नी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टर नी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: ना। अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती।
4: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे हैं राजस्थानी कचौरी चाट। सामग्री आप सभी को लिखवा चुकी हूँ, आप लिख चुके होंगे। अब बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि आप क्या करेंगे। मैदे को छानिए, छान करके एक बड़ा चम्मच तेल इसमें डालिए और थोड़ा सा नमक मिला करके नरम नरम इसको गूंदना है, और गूंद करके गीले कपड़े से ढक करके रख देना है, ठीक है। फिर एक कढ़ाई रखिए गैस पर, कढ़ाई में तेल डालिए और हींग जीरे का तड़का लगाइए। फिर दाल जो हमारी भीगी हुई है, दाल को क्या है भिगो के रखना है एक घंटे पहले ही, ठीक है। तो इसका छोक लगा दीजिए, पानी निकाल देना है और छोक देना है दाल को। फिर नमक लाल मिर्च डाल करके कम पानी में गलने तक पकाइए, हल्के हल्के से छींटे देते जाने हैं। पानी तो निकाल ही देना है, बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो हाथ में लेकर के थोड़ा सा छींटा दीजिए, ठीक है, ताकि दाल हमारी थोड़ी सी गल जाए। गलने के बाद यदि वो पानी तो रखना ही नहीं है, फिर भी है तो आप उसको सुखा दीजिए और अच्छी तरह इसको मेश करिए। गरम मसाला और अमचूर मिलाइए, थोड़ा हरा मसाला भी मिला दीजिए। मैदे की छोटी लोइया बना करके बीच में मूंग का मिश्रण थोड़ा सा फैलाना है लोइया बना करके, ठीक है। फिर मूंग के दाल की ये पिट्ठी रखिए और इस मिश्रण को भर करके चारों ओर से मोड़ करके गोलाई में बंद करिए। हथेली से हल्का सा दबा करके कचौरी की तरह बनाइए, ठीक है। फिर गरम तेल में इसको डाल दीजिए, मंदी आँच पर करारी होने तक तलना है, तो कचौरी फूलना अवश्य। देखे कचौरी आप डाल रहे हैं, तल रहे हैं, तो कचौरी फूलनी जरूर चाहिए, ठीक है। अगर नहीं फूली बैठ जाएगी तो फिर वो कचौरी की तरह दिखाई नहीं देगी, इसलिए इस बात पर आपको पूरा ध्यान देना है। एक आध बिगड़ जाए तो दूसरी पर अच्छी मेहनत करनी है। अच्छी तरह इसका लुआ बनाना है, लुआ बना करके इसको हथेली से ही चौड़ा चौड़ा बना करना है। फिर मसाला जो पिट्ठी बनाई है दाल की बीच में रख करके गोल गोल फिर से लुआ बना करके हल्के हाथ से दबा देना है कचौरी की तरह। फिर तेल गरम हो जाए उसको मध्यम करके मध्यम आंच पर कचौरियां तलिए, दोनों तरफ से सुनहरी सुनहरी हो जाए, फिर आप निकाल दीजिए और दूसरी कचौरिये तल दीजिए। कचौरिये फूलनी जरूर चाहिए। कचौरी को ऊपर से थोड़ा फ्राई करके उसमें कटे हुए आलू, हरा मसाला, जैसे कि हमने सामान लिया ना भाई, उबले हुए आलू 3-4 लिए, उसके आप थोड़े से कटके कर लीजिए, काट लीजिए, ठीक है। और उसमें ये हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, कटा हुआ चाट मसाला, ये सभी आपको बताया था तो लीजिए। फिर आलू डाल करके हरा मसाला और चाट मसाला अपने स्वाद के अनुसार डालिए, और हरी मिर्च, बीकानेरी भुजिया ये भी डाल दीजिए, इमली की सौंठ भी इसमें डालनी है।

ये इमली की सौंठ बोले तो चटनी, ठीक है, और दही और नमक सब छिड़क करके पिरसी है, तो ये बन गई कचौरी, राजस्थानी कचौरी चाट। इसके खाने का जायका ही अलग है, बनाने का भी तरीका और खाने का भी स्वाद पूरा ही आपको अलग ही लगेगा और बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी। बच्चे, बुजुर्ग, किशोर सभी इसको पसंद करते हैं और सभी खा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कचौरी चाट तैयार है, अब देर किस बात की, लीजिए एक प्लेट, प्लेट में ये सब रखिए और अच्छी तरह इसमें सब कुछ मसाला डालिए और एक थाली में रख दीजिए, स्वच्छ थाली में, और भी आपने कुछ बनाया है वो भी रखिए, तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए और ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद ले सकते हो कचौरी चाट का। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था कि भाई आप सभी ने सुना ही होगा कि ऐसी तिथि आने वाली है चंदा में सभी झूमने वाले हैं, दूध पोहे भी खाएंगे तो गरबा रास भी करेंगे। तो आज के प्रश्न का जवाब सभी ने सही दिया है, नाम मैं पहले सुना रही हूँ, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, सुरेश भाई जोटाना से, सुरेश भाई दानेराव से, कुपाराम जी कोजरा से और लीला जी माउंट आबू से, सभी ने सही जवाब दिया है शरद पूर्णिमा जय। तो सही जवाब, आप सभी के लिए तालियां। और अब खाली दो लाइन में गीत की सुनाऊंगी क्योंकि समय भी होने को आ चुका है, इसलिए सिर्फ दो लाइन गीत की सुनाऊंगी, आप लेंगे गीत का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी

0: आप हमरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हमरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। किसे कहते हैं दोस्तों, हर किसी की जीवन अलग होती है। हर किसी के अंदर एक ख्वाब होता है, मुझे अपने जीवन को ऐसे जीना है। बचपन में हम माँ बाप के कहे हुए मार्ग पर चलते हैं और जैसे ही हम होश संभालते हैं और दुनिया को देखने लगते हैं, हम आसपास के लोगों को देखने लगते हैं, हमारे जीवन में भी कुछ आशाएं उत्पन्न होती हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है और मैं अपने जीवन को इस तरीके से जीना चाहता हूँ। तो वो सपने और वो सोच बुनना शुरू हो जाता है। फिर फाइनली जब हम युवा अवस्था में आते हैं तो थोड़ी बहुत दिशा मिल जाती है और हम अपनी डेस्टिनी की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं जीवन जीना मतलब बाल्यकाल में स्कूल जाओ, युवावस्था में पढ़ाई पूरा करो, फिर नौकरी करो, फिर शादी करो, फिर सेट हो गया, फिर मिडिल एज में आकर के जिम्मेवारियां संभालो, फिर वृद्धाप्य में आ गया तो फिर बाल बच्चों के साथ खुश होके जीवन पूरा हो गया। क्या यही जीवन है या हर कोई ऐसे जीना चाहते हैं या कुछ हटके भी जी सकते हैं? आइए आज हम इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है इसमें जानेंगे। हमारे साथ है एक योगी जीवन जीने वाले, ब्रह्म कुमारी के मुख्यालय में समर्पित रूप से अपनी जीवन को जीने वाले आदरणीय श्याम भाई जी। आप वर्तमान समय में हेडक्वार्टर्स में रहते हुए अनेक कार्यों को आप मार्गदर्शन करते हैं, तो वो क्या करते हैं और ये जीवन उन्होंने क्यों और कैसे चुना है, उनके ही जीवन के अनुभवों से आज हम जानेंगे। श्याम भाई जी, आपको आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू रेडियो मधुबन वालों का हमको बुलाया उसके लिए।
1: शुक्रिया भाई जी, पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने समय निकाला हमारे श्रोताओं के साथ अब अपनी जीवन की बहुमूल्य पलों के बारे में साझा करने के लिए। हम सबसे पहले उन पलों के बारे में हम जानना चाहेंगे, आपका जो बचपन रहा है, आपका जन्म कहाँ हुआ है, किस परिवार में हुआ और आपकी लौकिक परिवार का क्या माहौल रहा है, आप कितने भाई बहन हैं, आपका अपना लौकिक जीवन का परिचय थोड़ा संक्षिप्त में बताएं।
2: ओम शांति। मेरा पूरा नाम श्याम बाबू गुप्ता है और मैं भोपाल जोन पोरसा मध्य प्रदेश एमपी से निकला हुआ हूँ। एज मेरी 51 है अभी। और हमारे फादर जो थे 2012 में उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो हमारा पहले बिजनेस था, आड़त का काम था, जो सरसों गेहूं वगैरह जो खरीदने का होता है तो वो काम था हमारा। तो उस समय हम बिजनेस में भी रहते थे, प्लस सेंटर की सेवाओं में भी अपना समय देते थे। तो हालांकि उस समय पिताजी थोड़े हमारे एंटी थे इस चीज से, ज्ञान में हम नहीं आए, वो सोचते थे कि हम शादी कर लें। तो उन्होंने काफी हमारे आजू बाजू और भी संपर्क वालों से कोशिश किया कि मैं कैसे भी करके शादी ये कर ले। और कभी कभी लोग बोलते थे कि आप दोनों शादी कर लो, भले ही ज्ञान में चलना शादी के बाद। तो और दूसरे लोगों का जो उदाहरण देते थे, उन्होंने भी शादी किया, रामचंद्र जी ने भी शादी किया, ऐसे करके देते थे। तो उनको हम उसी हिसाब से गाइड करते थे। फिर हमारा ज्ञान में आने का सिद्धांत यही रहा, क्योंकि हमें अपना जीवन जिस प्रकार से देश के लिए सेवा के लिए करना है, तो उस प्रकार से हमने अपने जीवन को एक संघर्ष माना, जीवन को सोचा चलाने के लिए। तो हमारी माताजी और हमारी लौकिक सिस्टर वो पहले से ही ज्ञान में थे,
1: मतलब ये ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो राज्यों की पढ़ाई है वो पढ़ते थे,
2: ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो पढ़ाई पढ़ते थे पहले से ही। तो उनके माध्यम से भी हम संस्था से जुड़े और फिर इस संस्था में धीरे धीरे हम अपना आना जाना होता रहा और काफी चीजों का अनुभव मिला मुझे, जो ज्ञान का अनुभव नहीं था कि जीवन में जीने की कला क्या है। तो वो चीज हमें वहाँ सीखने को मिली, क्योंकि जीते तो सभी हैं लेकिन जीना कैसे है वो बाबा ने हमें सिखाया कि कैसे जीना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाना है। कि दुनिया में लोग आते तो हैं और अपना जीवन सारे समय ऐसे ही निकाल देते हैं, जवानी से लेके बुढ़ापे में अपने गृहस्थ में ही जीवन निकाल दिया। लेकिन हमारा एक मतलब यही था कि अपने जीवन को हम अपना श्रेष्ठ बनाएं, यही हमारी एक भावना है।
1: तो श्याम भाई जी, आपको जीवन श्रेष्ठ बनाने की इच्छा थी, देश की सेवा करने की इच्छा थी, तो बचपन में भी आपको ऐसा ही फील होता था। कहाँ तक पढ़ाई किया था आपने?
2: हमने 12th किया था पढ़ाई
1: जी। तो घर की माहौल ऐसी थी या फिर आपको कहीं से ऐसी?
2: घर का माहौल नहीं, हमारा क्या है, बचपन से ही एक बिजनेस का संस्कार पड़ गया था। तो हमारे लौकिक भाई थे, वो M.Com किया था उन्होंने, लेकिन हमारा क्या, एक बनिया क्वालिटी में आते हैं ना, उनको नौकरी बहुत कम मिल पाती थी उस समय। तो इसलिए हमने कि नौकरी करके क्या करना है, करेंगे तो बिजनेस ही करना है। तो इसलिए हमारे काफी साथी भाई बहन थे जो, तो वो सब माना थोड़ा ही पढ़ के अपने बिजनेस में लग गए थे
1: जी। आपकी सिस्टर कहाँ तक पढ़ाई की थी?
2: सिस्टर ने तो कुछ M.Com ऐसा कुछ MBA कुछ किया हुआ है, MBA किया हुआ है।
1: तो आप दो भाई एक बहन हैं?
2: हम दो भाई और छह बहनें हैं।
1: छह बहनें,
2: जिसमें एक की शादी नहीं हुई है, जो समर्पित टीचर बहन है, और बाकी जो सिस्टर हैं वो सब ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान
1: से जुड़े हुए, अपना शादीशुदा जीवन जी
2: जी शादीशुदा जीवन जी करके वो ज्ञान में
1: चल रहे हैं
2: जी।
1: तो जैसे आपने कहा कि आपको ये ख्याल चलता था कि देश की सेवा करना है, ये आम जीवन मुझे नहीं जीना है, तो आपके जीवन में कोई आदर्श रहे जिनसे आप ऐसी प्रेरणा लेते थे, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपको प्रेरित करते थे?
2: मुझे उस समय क्या है, बचपन था तो किसी से हमारा ऐसा संपर्क नहीं हो पाया कि भाई उनके साथ में रह करके और हम इस प्रकार से देश की सेवा कर सकें। तो वो संपर्क हमें ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद ही वो प्रेरणा मिली, वो हमें रास्ता मिला, तो उस प्रकार से हम उस रास्ते पे आकर के और अपने आप को श्रेष्ठ बना रहे।
1: नहीं, बचपन में आपको क्यों लगा मुझे देश की सेवा करनी है?
2: क्योंकि केवल दुनिया में जीना है तो केवल अपने स्वयं के लिए जीना होता है, स्वयं के परिवार के लिए जीना होता है, लेकिन हमारा संकल्प हम देश के लिए जिए।
1: तो बचपन में आपको ऐसा फील होता था
2: जी?
1: तो मतलब आपने कोई मूवी देखी थी या किसी फौजी को देखे थे?
2: मूवी वगैरह तो देखता था, लेकिन मुझे इतना याद नहीं रहता है उस चीज का, क्योंकि
1: नेचुरली आपको फील होता था
2: जी जी
1: ऐसा देश की सेवा करना चाहिए
2: जी जी
1: इस तरीके से। बहुत अच्छा। तो जब आपकी बचपन से ही ये देश की सेवा करने का इच्छा थी और आपको एक दिशा मिल गई वो सेवा की भावना को ब्रह्म कुमारी इसके आने के बाद, तो फिर ज्ञान जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो ज्ञान मिलता है वो सत्य ज्ञान है, इसके ऊपर निश्चय कैसे हुआ आपका?
2: उसके ऊपर निश्चय ये है कि भगवान हमें जो रोज मुरली सुनाता है, तो मुरली हम सुनते हैं और जो हमारे संकल्प आते थे तो वो संकल्प हमारे ऑलरेडी बाबा पूरा कर देता था। जैसे मान लो, संकल्प तो अलग चीज है, लेकिन मैं 2003 की बात है समथिंग, तो उस समय ग्राम विकास अभियान की रैली निकल रही थी जो सारे विश्व में भ्रमण होता था, और माउंट आबू में उसका समापन समारोह था। तो उस समय में
1: पूरी भारत में वो रैली घूम के फिर माउंट आबू में
2: जी,
1: समापन
2: जी,
1: होता।
2: तो उस समय में वो गाड़ी को लेकर के माउंट आबू आने वाला था, तो गाड़ी की हम तैयारी कर रहे थे उस समय। तो वहां पर एक ऐसी घटना घटी हमारे साथ। तो उस समय क्या है, हम एक लोहे का पाइप जो बाबा की गाड़ी में झंडा लगाने के लिए लेके आ रहे थे, तो एक घर के आगे एक लाइन थी 33,000 KV की, तो उस लाइन से मेरा वो ध्यान नहीं था उस समय, क्योंकि यंग एज होती है, इतना वो नहीं होता है। तो पाइप क्या है, वो 3 फीट दूर से खींच लेता है, तो ऐसे ही मुझे वो 3 फीट दूर से वो पाइप खींचा, लेकिन मैं तो एकदम अचानक
1: मतलब बिजली खींच गई थी
2: जी जी। तो लाइट क्या है, वो पाइप तो मुझे नहीं मालूम, मेरे के आगे तो एकदम अंधेरा हो गया बिल्कुल, केवल छाया चित्र रह गया आत्मा का। फिर मैं अंदर ही अंदर महसूस कर रहा हूँ कि मुझे करंट लग गया और मेरा इस दुनिया से खेल अभी पूरा हो गया। तो फिर धीरे धीरे मैं वहाँ गिर गया, और मुझे नहीं मालूम उस चीज का गिरने के बाद फिर क्या हुआ, लेकिन वो गिरे भी थे, वो भी आत्मा महसूस कर रही थी। लेकिन उस समय मुझे बाबा की बात याद आई, बाबा ने बोला कि अंत समय में केवल मुझे ही याद करना है, कोई देहधारी को याद नहीं करना है। तो उसी समय में ये गिरने से पहले मैंने अपनी बुद्धि को और बाबा की याद से जोड़ लिया,
1: परमात्मा
2: की याद से जोड़ा, फिर मैं धीरे धीरे वहाँ गिर गया। उसके बाद बताते हैं कि मेरे कपड़ों में भी आग लग गई थी, तो वहाँ कुछ भाई बहन थे, तो उन्होंने अपने दस्ताने पहने हुए थे तो उन्होंने आग को बुझाया, फिर हॉस्पिटल लेके गए। तो कहने का भाव ये है कि उसमें मुझे 6 महीना कंप्लीट ठीक होने में लगा, तो 3 महीना तो ज्यादातर हम बेड पे ही रहे और उसके बाद धीरे धीरे एक चलना सीखा माना लाठी के सहारे, फिर धीरे धीरे अपने आप को माना ठीक हो पाए हम। तो उससे हमें विश्वास हुआ है, बाहर वाले भी दुनिया में भी लोग जब हमको देखने आ रहे थे हॉस्पिटल में तो उस समय वो लोग यही बोल रहे थे कि इनका बचना नामुमकिन है, लेकिन परमात्मा की ऐसी दया होती है, परमात्मा की जो सेवा करते हैं तो उसमें परमात्मा भी हमें पूरा सहयोग देता है और परमात्मा ने उस समय हमें उस जिंदगी को नया जीवन दिया। तो नया जीवन दिया तो हमें भी एक संकल्प आया कि हमें अभी पूर्ण रूप से देश की सेवा करनी है। फिर हम अपनी अच्छी तरह से ठीक हो गए और फिर हम बाबा की सेवा में पूर्ण रूप से अपना जीवन दे दिए।
1: जी, मतलब उस हादसे ने परमात्मा की महावाक्यों की सच्चाई आपको अनुभव कराई,
2: जी,
1: जिसे आपको विश्वास हुआ कि ये सत्य ज्ञान है और यही परमात्मा है,
2: जी, जी,
1: और जीवन को उद्धार करते हैं।
2: जी,
1: तो ये फिर आप रिकवर हुए और सब ठीक हो गया, लेकिन समर्पित होने का ख्याल कहाँ से आया आपको?
2: समर्पित होने
1: घर में पिताजी का विरोध तो था ही ना।
2: समर्पित होने का मुझे नहीं मालूम, मैंने अपने जीवन में बाबा के आगे माना एक यही संकल्प था मेरा, तो कि जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म किए जाओ फल की इच्छा ना करो, कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है लेकिन फल की इच्छा करना वो उसके बस में नहीं है। तो वो मेरा एक संकल्प रहता कि सेवा करते जाओ, कर्म करते जाओ, बाकी फल देने वाला भगवान है, वो मेरा काम नहीं है। तो मैं मधुबन में भी जब आया था 2006 में तो मैं बहुत सीधा सिंपल था, तो कुछ लोग बोलते थे कपड़े भी थोड़े वैसे पहने होते, हमारे एक वो होता है रीति रिवाज कहें जो भी है, तो लोगों को थोड़ा अच्छा लगता था। तो लेकिन हमारा एक संकल्प था सेवा करते जाओ, तो हम अपनी सेवा करते गए और 2006 में हम जब आए तो उसके बाद हमें डायरेक्ट जुलाई में आए थे, पहले सेवा करके गए ऐसे 6 महीने करके, फिर उसके बाद हम 2007 में भी सेवा करने आए, फिर 2008 में हमें स्पेशल निर्मल दादी शांता मणि दादी जो है हमारी उनकी सेवा के लिए स्पेशल हमको जून में 24 जून मम्मा डे के समय हम आए थे और
1: शांतामणि दादी के पास,
2: जी शांतामणि दादी के पास, निर्मल शांतामणि दादी, तो उनकी गाड़ी की रथवान के सेवा किया मैंने उनके पास। और हमारा अगस्त में ट्रायल फार्म भी भर गया, तो मुझे नहीं मालूम कि कैसे अचानक सब कुछ हो गया। तो मैं तो वैसे जो भी कुछ होता था, जैसे 2006 में मैं आया था सेवा में तो मैंने बाबा को यही बोला, बाबा मुझे अब कहीं नहीं जाना है, बस मुझे आपकी यहीं सेवा करनी है। तो बस बाबा को ही मैंने योग में जब करते मेडिटेशन करते थे तो उस समय बाबा को मैं बता दिया, तो बाबा ने ऐसे फटाफट ये काम करा दिया मेरा।
1: तो आपको घर से छुट्टी मिल गई थी?
2: घर से हमारी माता जी तो हमारे पूरे सहयोगी थे, लेकिन पिताजी थोड़ा सा एंटी थे, तो पिताजी ने हमारे को यही बोला कि अगर आप दुकान पर नहीं रहेंगे तो फिर हम आपको हिस्सा नहीं देंगे।
1: अच्छा, प्रॉपर्टी में हिस्सा,
2: प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमको नहीं देना, आप हमें नहीं चाहिए, तो हमने ऐसे कह करके उनको बता दिया, क्योंकि उस समय दुकान को छोड़ना, क्योंकि दुकान पे ज्यादातर हम ही पूरा संभालते थे, बाकी पिताजी थे और हमारे भाई थे, वो तो बाहर का कारोबार देखना वो रहता था उनका, तो इसलिए फिर मेरा संकल्प यही था कि मैं अपने लिए कमाऊं कि किसके लिए कमाऊं। भाई मैं तो अकेला हूं, मान लो माँ बाप है, जिम्मेवारी थी वो तो हमारी चलो पूरी हो गई थी, वो माँ बाप की सेवा के लिए भी चलो हमारे भाई हैं या कभी कभी जाना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेवारी समझ करके हमारी जो भी जिम्मेदारी थी वो हमने अपनी पूरी कर दिया, उसके बाद हम बाबा के घर में समर्पित
1: हो गए। तो फिर आप जब मधुबन आए समर्पित होने, उस समय क्या उम्र थी आपकी?
2: उस समय हमारी उम्र हो गई लगभग 30 साल।
1: 30 साल की उम्र में आप, जब आप 30 साल की उम्र में आए परमात्मा के घर में समर्पित होके सेवा करने के लिए, उस समय जो आप अपने आप को देखते हैं और अभी आप अपने आप को देखते हैं, क्या अंतर महसूस करते हैं आप?
2: उस समय काफी अनुभव हमको बढ़ता है, क्योंकि शुरू शुरू में जब आते हैं तो उस समय इतना हमको अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वो सब चीजें देखते हैं, धीरे धीरे जब यहाँ रहते हैं तो उस चीज का अनुभव बढ़ते, बड़ों से हमें पालना मिली, तो जैसे हमारे आदरणीय निरूर भाई साहब जो थे ब्रह्मा कुमारी के सेक्रेटरी जनरल, तो उनकी हम सेवा में रहे थे, रद्वान के रूप में भी सेवा किया था और प्लस उनके अंग संग रह करके भी उनका साथ रह करके उनकी सेवा किया था। लेकिन बड़ों के साथ रह करके हमें दूसरों के साथ अपना कैसा व्यवहार रखना चाहिए, कैसे उनके साथ चलना चाहिए, तो भाई साहब ने हमेशा यही सिखाया कि हमेशा आपस में प्यार से रहने का होना चाहिए, कभी आपस में खटपट नहीं होना चाहिए। तो प्यार से रहने से वाइब्रेशन भी अच्छे रहते हैं, प्लस जो रहने वाले हैं वो भी उनका माइंड भी अच्छा रहता है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ खटपट अगर होती है, जैसे बाहर की दुनिया में भी देखा है, अगर घरों में कभी खटपट होती है तो वो वायुमंडल खराब हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने हमें जैसे कहा कि आपस में प्यार से रह करके और एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाओ।
1: तो कोई ऐसी चीजें है जो आपको लगता है कि अगर मैं बाबा के घर में या मधुबन में नहीं आता, समर्पित नहीं होता, तो मेरा जीवन का ये भाग्य नहीं बनता या मेरे जीवन में ये जो परिवर्तन है वो कभी नहीं हो पाता?
2: ये चीज तो हमने कभी सोचा नहीं था कि मेरा भाग्य नहीं है। ब्रह्मा कुमारी संस्था से जब मैं जुड़ा तो सब सौंप दिया प्यारे प्रभु को, तो मैं तो यही सोचता हूँ बाबा के ऊपर है, बाबा को जो करना है वो जाने। मैं काफी बार कभी कभी अनुभव करता हूँ कि हम मनुष्य सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन करण करावन हार जो शिव बाबा है उसे क्या मंजूर है वो तो वो ही जानता है। तो हमने तो अपने जीवन बाबा के हवाले कर दिया, लेकिन बाबा को क्या करना है वो बाबा जाने। बाकी हमने ये कभी संकल्प ही नहीं किया कि बाबा के नहीं बनते तो हमारा जीवन क्या होता, वो हमने कभी संकल्प नहीं किया।
1: हाँ, शुरू से आपको ये था मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, बस हो गया। बहुत सुंदर भाई जी, ये भी कितनी अच्छी सोच है कि सिर्फ मैं और परमात्मा हमारा यही रिश्ता है। बहुत सुंदर भाई जी। तो अभी जब आपके परिवार वाले आपसे मिलते हैं, 20 साल से आप एक योगी जीवन जी रहे हैं और इस संस्था के जो मुख्य दादियां और भाई साहब थे उनके अंग संग रह करके आपने अपने आध्यात्मिक उन्नति की है, तो जब आपकी लौकिक परिवार अभी मिलते हैं तो फिर वो क्या महसूस करते हैं?
2: उन्हें यही एक अच्छा लगता है कि भाई देखो मधुबन में रह रहे हैं तो इन्होंने अपना जीवन बहुत अच्छा सफल कर लिया। वहाँ की दुनिया में तो हालत खराब होती है, देखते हैं तो उन्हें एक ये चीज लगता है। दूसरा, हमारे फादर जो थे तो वो बाद में वो ज्ञान में आए तो फिर धीरे धीरे वो पॉजिटिव होते गए, फिर मधुबन में भी आए तो मधुबन में भी उनको हमने सब घुमाया, तो माना एक जो उनके अंदर नेगेटिवता थी वो पूरा पॉजिटिव में परिवर्तन हो गया कि उनको भी लगा कि हाँ भी अच्छी जगह रह रहे हैं, तो वो भी अभी जो नेगेटिव अंदर भरा हुआ था वो सब निकल गया उनका। माना वो भी ज्ञान में काफी साल चले, 4-5 साल शायद मैं समझता हूँ, ज्यादा भी हो गया।
1: शरीर छोड़ने से पहले?
2: हाँ, शरीर छोड़ने से पहले लगभग 5-6 साल वो बाबा के यज्ञ में मुरली वगैरह रोज सुनना, गीत भी गाना बाबा के, वो उनकी लगन लग गई थी। हर गुरुवार को वो कुछ न कुछ फल वगैरह बाबा के लिए लेके जाते थे।
1: बहुत सुंदर। बचपन में पढ़ाई करते हुए आपने दुनिया की महान आत्माओं को भी देखे होंगे, सुने होंगे, और आप जब संस्था में आए यहाँ पे महान योगियों को देखा, आप क्या अंतर महसूस करते हैं?
2: हमें तो यही लगता कि हमने जानकी दादी को भी साथ में देखा है, गुलजार दादी के पास जब भाई साहब के साथ में हम जाते थे ना, तो गुलजार दादी को भी हम एक बार ज्ञान सरोवर से नक्की लेके वगैरह गाड़ी से घुमाने लेके आ गए थे, तो उनका जीवन हमने जो देखा एकदम वैराग्य वृत्ति होता है, उनकी दृष्टि वृत्ति कृति एकदम शुद्ध प्योर, क्योंकि उनके साथ जो भी मिलने सामने जाएगा तो पूरा एकदम संपूर्ण जैसे कहें तृप्त आत्मा हो जाती है, ऐसे उनका जीवन एक अनुभव होता है उनको। तो उनकी तपस्या, जिन्होंने इतनी तपस्या की थी पहले से हमारी दादियों ने, हमारे वरिष्ठ भाइयों ने, तो उनकी तपस्या ही उनकी सेवा थी, क्योंकि बाबा भी हमेशा बोलता है ना कि आपके चेहरे से ही सेवा हो, तो ऐसे ही हमारी दादियां जो थी, हमारे बड़े भाई थे, भाई साहब थे, तो उनके चेहरे से ही बाबा की सेवाएं अनेक होती हैं और हमें उससे ही सीख मिलती है कि हमें अपना जीवन भी इस प्रकार से योग तपस्या के माध्यम से ही अपने आप को परफेक्ट बनाएं, जिससे सामने वाले को भी वो चीज अनुभव हो।
1: तो श्याम भाई जी, आपको जीवन में कब और कैसा महसूस हुआ कि यही जीवन है, इसे ही जीना कहते हैं या जीना इसी का नाम है? कोई ऐसा मोमेंट या कोई पल रहा जो आपको महसूस हुआ कि हाँ यही जीना इसी का नाम है, इसे कहते हैं?
2: मैं जब ब्रह्म कुमारी से नहीं जुड़ा था तो उस समय तो हम मंदिर वगैरह में भी जाते थे कभी कभी, कोई कोई धर्म के कर्म भागवत हो रहे हैं या जो भी होता है तो उससे भी भावना वो रहती थी मंदिरों में जा कर के। तो फिर जब ब्रह्म कुमारी से जुड़े तो हमने अपने आप को ओनली कोई संकल्प नहीं रखते थे, बस बाबा की सेवा, आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते थे। जो बाबा की सेवा मिलती थी, हमारी ज़्यादातर पहले शुरू शुरू में रथवान गाड़ी चलाने की सेवा रहती थी, तो गाड़ी से जो भी गेस्ट आते थे उनको अहमदाबाद लाना, उदयपुर से लाना, छोड़ना, ऐसे करके स्टेशन का भी छोड़ना। तो जो लोग हम सेवा करते थे तो वो लोग के अंदर से यही भावना निकलती थी कि ये लोग कितने निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, कभी भी किसी से कुछ लेना देना ऐसा नहीं रहता है इनका, तो वो लोग भी काफ़ी संतुष्ट होकर के जाते थे। तो हमारी यही भावना रहता है कि हम कभी किसी की सोचा ही नहीं कि हमारा क्या होना है क्या नहीं होना है, वो हमने नहीं कभी सोचा।
1: बहुत सुंदर भाई जी, वर्तमान समय में आप क्या सेवा करते हैं मुख्यालय में?
2: वर्तमान समय हमारे आदरणीय ब्रह्म कुमारी के सेक्रेटरी जनरल निर्वर भाई साहब जो थे, जब उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद तो हमारे डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी जो ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और हमारी आदरणीय शशि दीदी जो पांडवन को संभालते हैं, तो उनके द्वारा हमें जो भी गाड़ी अरेंजमेंट करने की सेवाएं रहती हैं तो उनको हम फिर गाड़ी अरेंज कराते हैं। और फिर उसके बाद कभी हमको भी जाना होता है, किसी कोई भी गेस्ट आ रहे हैं तो उनको लाना ले जाना, प्लस हमारा महादानी कॉटेज जो है जो उनके मार्गदर्शन में ही उनके निमित्त है तो उसको संभालने के लिए हम निमित्त बनाया हुआ है बाबा ने।
1: बहुत सुंदर, मतलब जो भी गेस्ट होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन का आप कारोबार देखते
2: जी,
1: हैं
2: जी।
1: बहुत सुंदर भाई जी, तो अंत में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं, एक योगी का जीवन या एक योगी एक आदर्श जिसे हम कहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर कोई सोचते हैं कि मैं भी इस तरीके से जीवन जीऊं तो उनको क्या करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
2: मेरा तो यही एक मानना है, क्योंकि हम इस सृष्टि पर जन्म लिया है तो इस जीवन को जितना भी हो सकता है दूसरों को सुख देने का काम करें। तो जितना आप दूसरों को सुख देंगे उतना आपकी पुण्य की पूंजी कहें, दुआएं कहें, वो आपकी जमा हो जाएंगी और वो ही दुआएं आपको जन्म जन्म वो आपके काम आती हैं। तो हमारा तो यही एक संकल्प है कि जो भी भाई बहन इस चीज को सुन रहे हैं तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है और ब्रह्म कुमारी का जो हमने चुना है तो उसे भी अपने जीवन में अगर कुछ हमारा मेडिटेशन होता है राजयोग के द्वारा तो उसको भी अगर आप करेंगे साथ साथ तो आपका जीवन भी श्रेष्ठ बन जाएगा और आपकी जो गृहस्थ जीवन भी कहें, जो गृहस्थ जीवन वाले भी हैं, और उनका भी जीवन श्रेष्ठ बन सकता है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, आज आप अपनी अमूल्य समय लेकर के हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियोज में आए। जीना इसी का नाम है, इस कार्यक्रम के जरिए आपकी योगी जीवन की उन जीवन के अनुभवों को हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।
2: थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों यहीं पे हम विराम लेते हैं आप सभी से। अभी तक आप सुन रहे थे श्याम भाई जी को, जो ब्रह्म कुमारी के मुख्यालय में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए योगी के साथ और उनके जीवन के अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं हूं श्रवण राठौर, श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण टीम, और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी म्हारो गांव म्हारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते हैं, ढाणी में जाते हैं, मगरा में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, प्रशासन गांव के संग जाते हैं, प्रशासन का साथ जो गतिविधि हो रही सब तक जन जन तक पहुँचाने के लिए सरकार का जो मंच है, आसपास गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही सब तक मिले सब तक पहुँचे, आज इस कार्यक्रम को लेकर नई जमीन में पहुँचे जो कि धनारी और आगे खुले रहा बीच में ही नई जमीन और यहाँ पर पहुँचे। सबको धन्यवाद देते क्योंकि हमारा कार्यक्रम सुंदर रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक आदिवासी अंचल में आए और हमारा मेट साहब भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और वो भीष्म पितामह जैसे लीडर है। तो सर आपका परिचय देंगे, सर अपना नाम बताइए।
1: कालूराम।
0: कालूराम के लिए जोर से ताली बजाओ तो भाई कालूराम हमारा मेट के लिए। उनका परमिशन बिना हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सरकार का जो मंशा है आसपास को सुख शांति खुशी देने के लिए आज रेडियो मधुबन पहुंचे। एक आदिवासी गीत सुनेंगे। सभी माताएं रेडी? आई लोग रेडी? हाँ जी बोलो।
2: हाँ जी।
0: चलिए एक गीत सुनेंगे।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, क्योंकि जब भी जाते हैं आदिवासी एरिया में, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, इस तरह कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, हमारा कार्यक्रम को हेल्दी वेल्दी और हैप्पी करा देते हैं। सभी आपने के लिए ताली बजा जोर से भाई। वाह क्या बात, क्या बात है। ये था कुछ आदिवासी गीत में जो शुद्धता, जो पवित्रता, जो अपनापन देखने को मिलता है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद सुनेंगे और आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। और एक को देखकर दूसरे भी सीख जाते हैं और छोटे बच्चे भी बड़ों को देखकर सीख जाते हैं। आए लोग जैसे गीत गाते हैं तो हमारा इस कार्यक्रम को देखकर सीख जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे। लेकिन जब आए इतना दूरस्थ जगह जो कि पिंडवाड़ा और आबू रोड ब्लॉक दोनों ब्लॉक के बीच में ही नए जमीन में पहुंचे, बहुत अच्छा लगा। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है आज इस कार्यक्रम को सभी आई लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और हमारा कार्यक्रम जो रेडियो में सब तक पहुंच रहा है। थेमरो हूँ नाम मूवी और थेमरो
1: खेतू
0: और थेमरो चले सबको धन्यवाद देते हैं और एक प्रस्तुति एक गीत और सुनेंगे लेकिन हमें खुशी है इतना दूरस्थ जगह से आप रोड से तो सुनते हैं एक प्रस्तुति क्योंकि इनको मौका नहीं मिल रहा था इनको कोई पूछ नहीं रहा था लेकिन आज मीडिया वाला आए हैं तो उनका आवाज को रेडियो में प्रसारण करने के लिए पहुंचा है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एनजीओ बड़ा एनजीओ है भगवान का माउंट आबू में तो आज चलिए एक प्रस्तुति सुनेंगे और एक भजन सुनेंगे सभी आ गए एक देखकर क्योंकि हमारा आवाज ये आवाज ही उनको बुला दिया भाई हमारा कोई गीत गा रहा है इसे कान पकड़ कर चलो यहाँ पर सब आ गए ऐसे होता है। चलिए और एक प्रस्तुति
2: चलिए सभी आगे बहुत अच्छा देखो इस तरह खुशी का बात ऊपर वाला भी हमें देखकर खुश हो रहा है ऊपर वाला हमारा बाप है ना छोटा बाप चलिए शुरू करते हैं।

Roy do a GK, you tenemonium.

राइड राजी जात मिलो मांगतो राइड ला जाखी उतारो गमरे राइड राइड ला जाखी उतारो गमरे राइड।

राइडोला जी किम जाए के आयो राइडोला।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम को लेकर पूरा ढाणी तक मगरा तक पहुंचता है और जिसको कोई पूछता नहीं है, लेकिन रेडियो मधुबन उनका आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए कोशिश करता है, तो बहुत खुशी लगा। आदिवासी गीत में जो दम है, जो शुद्धता है, जो भोलापन है देखने को मिलता है, सभी आई लोग के लिए जोर से ताली बजाओ भाई, वेरी गुड। और हमारा मैट को कौन भूलेगा भाई, मैट भी हमारा साथ दिया तब जाकर आप में इतना संगठित हुआ। मैट के लिए भी धन्यवाद कालूराम जी को। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अभी तो प्रतियोगिता जैसे हुआ भाई, हम तो गाए दो गीत, उनको भी दो भाई, उनको भी चांस दो, वो भी क्यों उलाना देगा, तो वो भी दोष देगा हमें, ब्लेम करेगा, वो भी गीत गाएगा, क्योंकि आज तो कॉम्पिटिशन है, तो हमारा आई एक सबका पर भारी पड़ेगा। बोलते एक बिहारी सबका पर भारी है, लेकिन हमारा एक माता है कम नहीं है आकाश में, जैसे सूरज है रात को चांद है पूरा आकाश में, जैसे एक माता भी कम नहीं है, तो वो गीत गाएगी, लेकिन दम है, वो उसका नाम बताएंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है। आज तो सबका आवाज का गुलदस्ता बन रहा है, क्योंकि गुलदस्ता में जैसे वेराइटी फूल होता है, ये आवाज का दुनिया में भी आवाज, कालू भाई का भी आवाज लिया, माताओं को भी आवाज लिया, मेरा तो आवाज हमेशा सुनते हैं, लेकिन आज नए जमीन में आए तो नया गीत मिलेगा, नया आवाज, नया पहचान, क्योंकि सभी का आवाज अभी सोच रहे कौन सा गीत गाएंगे, ये आपस में बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बात करने दो, चलिए ओके शुरू करते हैं।

है, सबका जय हो और माताओं आयु लोग का भी जय हो, क्योंकि वंदे मातरम कहते जहाँ नारी शक्ति का सम्मान होगा वो देश महान होता है, नारी को जहाँ सम्मान होता है वहाँ देवी देवता का वास होता है, इसलिए नारियों का शक्ति आज देखने को मिल रहा है और उनका आवाज ही उनका पहचान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर, आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8।

चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हमें बहुत खुशी है आज इतना दूरस्थ जगह में आए हैं और पहाड़ी का गोद में बसा हुआ एक गांव है और चार तरफ पूरा जमीन ही जमीन, इसका नाम ही नई जमीन। चलिए इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ और एक प्रस्तुति के लिए आगे आ रहे हैं और मणि, मणि नाम है, आत्मा तो मणि है, आत्मा तो स्टार है, आत्मा को मणि कहते हैं, ज्योति कहते हैं और मथा की मणि है। चलिए मथा के मणि को स्वागत करते हैं।

सभी को नाम का साथ, एक एक का नाम का साथ हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और रेडियो मधुबन इस कार्यक्रम को सजाने के लिए यहाँ पर पहुँचे। तो खुशी लग रहा है, सभी को चांस मिला और सब कुछ जब चांस मिला चांसलर बन गए, एक मौका था जो आवश्यक था आज मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद मैट को, क्योंकि मैट साहब का बिना ये काम अधूरा होता है। तो जो कमी था मैट उसको परिपूर्ण कर दिए, फिलअप कर दिए। तो सभी खुद के लिए और रेडियो मधुबन के लिए और शिव बाबा के लिए जोर से ताली बजाओ भाई, एक जोर से ताली। ताली का साथ समाप्त करते हैं आज के लिए, हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ माने आवे पिया जी हिचकी, मारो वादीलो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमाईचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन न खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ माने आवे पिया जीरी हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752 ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान

0: रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे बेहतरीन मूल्य कह सकते हैं, एक ऐसे इम्पोर्टेंट मूल्य के बारे में जानेंगे जो सभी के जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं रेजिलियंस, और हिंदी में अगर हम कहें तो लचीलापन, यानी कि कोई भी परिस्थिति हो उसे कैसे हम बाहर निकल करके आ सकते हैं, पास्ट की चीज़ें हैं उसे कैसे भूल करके आगे बढ़ सकते हैं। हर परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए लचीलापन अपने अंदर होना बहुत आवश्यक है, लेकिन इसे कैसे अपनाएं, क्या क्या परिस्थिति है जहाँ पर लचीलापन के साथ साथ कुछ और मूल्य भी कनेक्टेड है और मूल्य भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे मध्य बहुत ही अनुभवी स्वरिति जी हैं, और आप द हार्ट स्पेस वेलनेस सेंटर से पधारे हैं आज रेडियो मधुबन पर। आप साइकोथेरेपिस्ट हैं, इसके साथ साथ आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं। स्वरुति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में।
2: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।
1: धन्यवाद आने के लिए। और आपसे तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस प्रैक्टिस में आप कैसे आए।
2: मेरा शुरू से मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट था। आई थिंक 15 साल की एज से मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते थे माइंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, और उसी को अनुभव करने के लिए, उसी की गहराई में जाने के लिए मैंने साइकोलॉजी की फील्ड को चुना। और वैसे तो मैं साइंस स्टूडेंट थी 12th तक, लेकिन उसके बाद फिर मैंने साइकोलॉजी में अपनी बाकी की पढ़ाई की, और लगभग 8 से 10 साल की ट्रेनिंग करते करते साथ में फिर मैंने प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया।
1: जी, तो आपको निश्चित तौर पे बहुत सारे अनुभव हैं, और आपकी बचपन से जो इच्छा थी और आप चाहते थे कि इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, तो आपने बहुत सारे युवाओं को और लोगों को हेल्प भी किया है।
2: जी।
1: तो आज जिस वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे वो है रेजिलियंस। इसको आप थोड़ा समझाइए अपने भाषा में, आप क्या सोचते हैं, आपकी डेफिनेशन क्या है?
2: जी, सो रेजिलियंस ये जो वर्ड है आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, लोग इसके बारे में बहुत बात भी करते हैं। मेरी जो ये समझ है रेजिलियंस के बारे में, मुझे लगता है कि जीवन में परिस्थितियां तो आती हैं, हमें कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसी सिचुएशंस हम फेस करते हैं जहां पे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं और हमें एक तरीके से चैलेंज किया जाता है परिस्थितियों द्वारा। ऐसी सिचुएशन में अपनी सेल्फ वर्थ है ना, और अपने से जो सेल्फ लव हम जिसे कहते हैं उसको बनाए रखना, खुद से एक रिश्ता बनाए रखना, उसी को हम रेजिलियंस मैं समझती हूँ। इट इज़ दी एबिलिटी टू रिमेन कनेक्टेड टू योर सेल्फ, इट इज़ दी एबिलिटी टू रिमेन कनेक्टेड टू योर वैल्यूज नो मैटर वॉट इज गोइंग ऑन। कई बार हम जब परेशान होते हैं तो बाहर की परिस्थितियों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेजिलियंस का सही अर्थ ये है कि हम खुद से जुड़ के, खुद से कनेक्ट होकर कैसे परिस्थितियों के चेंज होने का वेट ना करें, परंतु खुद को ऐसे हम चेंज करें कि हम अडाप्ट कर पाएं, हम अपने आप को मोल्ड कर पाएं।
1: ओके जी, मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगातार 3 बार फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो और फिर लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा
2: जी,
1: तो इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले
2: मैं समझ सकती हूँ, अगर कोई बार बार, जैसे आपने कहा, अगर कोई 2 से 3 बार मान लीजिए सेम चीज़ में फेल होता है तो कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है, एक अंदर से होपलेसनेस की फीलिंग होने लगती है, कि ऐसा लगता है कि जिसे हम नाउम्मीदी कहते हैं ना। ऐसे में सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फेलियर तब तक माना नहीं जाता है जब तक हम ट्राई करना बंद नहीं कर देते हैं।
1: जी.
2: हम सिचुएशंस जब हमारे हिसाब से नहीं जाती है या सिचुएशंस जब हमें ऑपोजिशन मिलता है सिचुएशन से, कहीं ना कहीं हम उसे फेलियर मान लेते हैं और उसे एक तरीके से है ना डेड एंड समझ लेते हैं
1: जी.
2: परंतु उस समय हताशा और निराशा को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय हमें अपना ध्यान अपनी स्ट्रेंथ्स पर और जो अभी तक हमने जर्नी कवर की है उस पर लेकर आना चाहिए. क्योंकि हर बार मान लीजिए मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं कोई एग्जाम क्लियर करूं, है ना. हमारे बहुत सारे यंग लिसनर्स होंगे जो जिनकी उम्मीद होगी कि मैं एक एग्जाम क्लियर करूं या फिर मैं एक इंटरव्यू क्लियर करूं. भले आपका वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया या इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन हर बार जब आप अटेम्प्ट करते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो
1: जी.
2: आपको पिछली बार से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन होता है. और किसी भी सिचुएशन में सक्सेसफुल होने के लिए कई बार लाइफ हमें टेस्ट करती है, हमारा है ना, हमें एक चैलेंज देती है कि हम कब तक ट्राई करने की, कब तक कोशिश करते रहने की हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ है
1: जी.
2: तो ऐसी सिचुएशंस में अपना ध्यान उस सो कॉल्ड फेलियर या डेड एंड से हटाकर सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ और जो मैंने अभी तक सीखा है, जो मेरी लर्निंग हुई है, उस पर लेकर आना चाहिए, ताकि अभी तक जो मैंने लर्निंग्स ली हैं उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे लिए हेल्पफुल थी और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मेरी सक्सेस में कहीं ना कहीं एक रोड ब्लॉक क्रिएट किया, उसको सही ढंग से इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है. जिसे हम कहते हैं परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न कि व्हाट इज हेल्पिंग मी वर्सेस व्हाट इज नॉट हेल्पिंग मी. अगर हम उसे बारीकी से, क्लैरिटी से उसकी जांच करें तो हम ये समझ पाएंगे कि अगर मैं अपने निर्धारित रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकी या पहुंच सका तो उसके पीछे रीजंस क्या थे. उसे ऑब्जेक्टिविटी और क्लैरिटी के साथ देखना बहुत ज़रूरी होता है
1: जी. तो उसके लिए कुछ सूत्र है, कुछ टिप्स है, कैसे देखें, कैसे जाने और जानने के बाद फिर कैसे शुरुआत करें
2: जी. तो इसमें जिसे हम कहते हैं ना वर्ड रिवर्स इंजीनियरिंग, है ना. अगर मुझे किसी गोल तक पहुंचना है, मान लीजिए मुझे नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है या फिर IAS का एग्ज़ाम क्लियर करना है, आई नीड टू नो कि वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, वॉट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी टू अराइव एट दैट डेस्टिनेशन
1: जी.
2: और एक बहुत ही अच्छा तरीका है इसको सोचने का, दैट इज वॉट डू आई नीड टू बिकम इन ऑर्डर टू रीच दैट गोल. अगर मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है तो मेरे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज और वैल्यूज का होना जरूरी है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ना. क्योंकि जो डिसिप्लिन आपको IAS बनने में हेल्प करेगा वो वही डिसिप्लिन IAS बनने के बाद आपको उस करियर को सस्टेन करने में हेल्प करेगा
1: जी.
2: राइट. और दूसरा जो एक तरीका होता है इवैल्यूएशन का, वो है मैं अपनी 6 मंथ्स की या 1 ईयर की जर्नी को देखूं कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी, ऐसे मैंने कौन सी चीज़ें फॉलो करी, ऐसे कौन से मेथड्स फॉलो करे जिनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ
1: जी.
2: सो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना, जिसे हम कहते हैं व्हाट वेंट वेल, है ना. व्हाट वर द मिनी सक्सेसेस दैट यू एक्सपीरियंस्ड, है ना. तो उसका फॉर्मूला क्या था, मैंने ऐसा क्या किया जो मैं वहाँ तक भी पहुँची, है ना, पहले माइलस्टोन तक भी पहुँची. और उसके बाद फिर ये देखना कि व्हाट आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, ऐसे मेरे अंदर कौन से मेरे पंस है या कौन से ऐसे मेरे काम करने का तरीका है जो हेल्पफुल नहीं है. हो सकता है मेरे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत हो, काम को टालने की आदत हो, हो सकता है कि मैं चीज़ों को उतने थरली समझने की कोशिश नहीं करती हूँ
1: जी,
2: उन बारीकियों को आइडेंटिफाई करके फिर उसको कैसे हमें ओवरकम करना है उसका एक प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से बात करना, किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करना, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, रादर देन बैटलिंग विथ एन अननोन टेरिटरी एन अननोन पाथ। जितनी हम क्लैरिटी लेकर आएंगे अपने प्रोसेस में उतना हमें मदद मिलेगी। और साथ साथ अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, अपना प्रोत्साहन करने के लिए भी मेरे पास स्ट्रैटेजीज होनी बहुत ज़रूरी है कि मैं अपनी छोटी छोटी सक्सेसेस को कैसे सेलिब्रेट करूंगी
1: जी,
2: मैं खुद को कैसे इनकरेज करूंगी। ये अगर हमारे पास प्लान होता है तो हमारे लिए फेलियर्स को ओवरकम करना काफी आसान हो जाता है।
1: अपने आप से बातें करना और अपने आप को मोटिवेट करना आना चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब हमें किसी भी तरीके से निराशा का सामना करना पड़ता है, सबसे पहले तो जो हम एक गलती करते हैं वो है हम अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को कम समझना, अपने आप को कई बार कोसना भी शुरू कर देते हैं। और जो हमारे है ना कहीं जो हमारे बिलीव्स होते हैं अपने बारे में जो हेल्पफुल नहीं है, वो बिलीव्स हमारे ट्रिगर हो जाते हैं। तो ऐसे समय पर अपने आप से बात करना, अपने आप को समझाना और अपने से कंपैशन के साथ बात करना बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे मान लीजिए इस बार नहीं हो पाया, दैट डज नॉट मीन दैट आई एम अ फेलियर, दिस जस्ट इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू कम बैक इवन स्ट्रोंगर एंड आई एम गोइंग टू ट्राई हार्डर, है ना। लेकिन खुद के साथ मेरा जो रिश्ता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ के प्रयास में अगर मेरा खुद से रिश्ता खराब हो रहा है, एंड दैट्स अ वेरी बिग कॉस्ट दैट आई एम पेइंग एंड इट्स नॉट वर्थ इट। ऐसे में सक्सेस मिल भी जाएगी तो उसके साथ जो खुशी होनी चाहिए
1: वो नहीं होती। ओके, तो खुद के साथ रिश्ते को मजबूत कैसे बनाएं? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना कि अगर मैं ज़्यादा खुश हूँ या फिर ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट कर रही हूँ तो शायद मैं अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच पाऊँगी, या लोग बोलेंगे अभी कुछ मिला ही नहीं, अब से क्यों इतना खुश है, तो ये भी हमें लगता है, तो कैसे करें?
2: तो खुशी हमारा फ्यूल है सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए। खुशी हमें वो शक्ति देती है जो हमें एक तरीके से आगे बढ़ने के लिए, खास करके उन परिस्थितियों में जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ा चैलेंज आया है, तो आपके जो अंदर की खुशी है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू इन मूविंग फॉरवर्ड। आपने बिल्कुल सही कहा, कई बार लोग है ना ये कहते हैं कि जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लेते तब तक आपको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, राइट?
1: फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मेरे 10th में जस्ट फर्स्ट क्लास आया था तो मेरे पापा मिठाई बांट रहे थे, तो लोगों ने उनको बोला ये कोई मार्क है जो आप इसके लिए मिठाई बांट रहे हो, इतना खुश क्यों हो? तो इस प्रकार से भी सामने आते हैं चीजें
2: जी। आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया और मैं आपके फादर की है ना सराहना करने चाहूंगी, क्योंकि अगर उन्होंने उस जो आपने एफर्ट लगाया था, क्योंकि फर्स्ट क्लास लाने के लिए भी तो एफर्ट चाहिए होता है, अगर उस एफर्ट को उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया होता, उसको सराहा नहीं होता, उसको देखा नहीं होता, तो आपकी डिस्टिंक्शन लाने की हिम्मत कहीं ना कहीं जुड़ी नहीं पाती। और ये गलती हम अक्सर अपने साथ कर देते हैं कि हम एक पैरामीटर सेट करके रखते हैं कि मैं तभी खुश हो सकती हूँ इफ आई अचीव दिस, तब तक मुझे खुश होने का हक नहीं है। बट इनफैक्ट ये देखा गया है टाइम एंड अगेन कि जो लोग खुद के साथ कंपैशनेट होते हैं, अपने ऊपर करुणा करते हैं, अपने से प्यार से बात करते हैं, और यहाँ पे हम कोई एरोगेंस की बात नहीं कर रहे हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग चाहे मैंने कुछ अचीव किया हो या ना किया हो, आई डिजर्व कंपैशन, आई डिजर्व दैट काइंडनेस फ्रॉम माई सेल्फ. और हम अपने आप को कोई झूठा दिलासा नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब खुद से रिस्पेक्ट से बात करना, खुद से प्यार से बात करना, ये रिसर्च ने दिखाया है कि किसी भी व्यक्ति का अपने से ऐसे बात करने से उनका जो अचीवमेंट है, उनकी जो सक्सेस है, उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है.
1: ओके.
2: इसका मतलब अगर वो कोई चीज़ 10 साल में अचीव करने वाले थे, दे आर एबल टू डू दैट विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड दे आर एबल टू डू दैट विदाउट स्ट्रेस, है ना
1: जी.
2: सो खुद से रिश्ता मजबूत करने के लिए हम खुद से कैसे बात करते हैं, हम खास करके फेलियर्स में या फिर जब चीज़ें अपोजिट चल रही होती हैं तब हम खुद को कैसे ट्रीट करते हैं, दैट डिसाइड्स कि आपका अपने साथ रिश्ता कैसा बन रहा है
1: जी.
2: और उस रिश्ते को हम और भी कई तरीके से मजबूत बना सकते हैं
1: जी. बिल्कुल. और सक्सेस होने के मंत्र या फिर सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है, अचीवमेंट्स की डेफिनेशन भी अलग अलग हो सकती है, तो हम उसे जज ना करें फिर.
2: बिल्कुल.
1: ओके जी. एक सिचुएशन है जैसे ऑफिस में आपकी मेहनत को बार बार कोई दूसरा व्यक्ति अपने नाम से प्रस्तुत कर देता है, क्रेडिट ले लेता है, तो उस परिस्थिति में आपको शांत रहकर आगे बढ़ना भी है लेकिन अंदर ही अंदर आप परेशान भी है, तो कैसे हैंडल करें उस सिचुएशन को?
2: कई बार ऐसा होता है कि खास करके कॉर्पोरेट्स में ऐसा देखा गया है कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, है ना. और जब हम देखते हैं कि कोई हमारी चीज़ों का क्रेडिट ले रहा है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो जाता है. हमें कहीं ना कहीं ये भी लगने लगता है कि क्या कभी ऐसा होगा कि मुझे भी रिकग्नाइज किया जाएगा. तो ऐसे सिचुएशन में अगेन कमिंग बैक टू जो हम बात कर रहे थे, ऐसे सिचुएशन में कई सारी फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं. एक तो होता है कि मेरा जो खुद के साथ रिश्ता है वो कैसा है, उसके अलावा मैं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्पेस है उसको मैं कैसे समझ रही हूँ, क्या मेरे पास उन सिचुएशन से डील करने के लिए वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है जो मैं उस सिचुएशन को फेस कर पाऊँ. सो पहली बात आती है सेल्फ बिलीव की, है ना. ये एक वर्ड है कि मेरा खुद के ऊपर ट्रस्ट कि ठीक है मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और ऑफिस के डायनामिक्स को और पॉलिटिक्स को समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन अब मैं ये समझ गई हूँ कि चीज़ें यहाँ पर ऐसे काम करती हैं
1: जी.
2: राइट. ऐसे में मेरा खुद के ऊपर भरोसा रखना, अपनी क्रिएटिविटी पे, अपनी स्किल पे, अपनी कैपेसिटी पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर मैंने सामने वाले के बिहेवियर को या फिर ऑफिस में जो पॉलिटिक्स चल रहा है उसको देखते हुए अगर मैंने अपना एफर्ट लगाना बंद कर दिया तो मैं कहीं भी नहीं पहुंच पाऊंगी
1: जी.
2: राइट. एंड द सिचुएशन हैज मैनेज टू ओवर पावर मी. मेरा जो इंटरनल पावर है वो बहुत डिप्लीट हो चुका है और सिचुएशन और रिलेशनल डायनामिक्स मेरे ऊपर हावी हो चुके हैं
1: जी.
2: तो ऐसे में खुद का अपने ऊपर विश्वास फिर से जगाने की बहुत ज़रूरत है. और ऐसे सिचुएशन में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की है, वो है कि जब हम लोगों के बिहेवियर को देखते हैं कई बार हम उसे पर्सनली ले लेते हैं
1: जी.
2: हम ये सोच लेते हैं कि ये मेरे साथ इसलिए ऐसे बिहेव कर रहे हैं क्योंकि मैं क्रेडिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं वैल्यूएबल नहीं हूँ, बॉस ने मेरी जगह उसकी बात पे ध्यान दिया, मे बी बिकॉज आई एम नॉट टैलेंटेड इनफ. तो ऐसे टाइम पे सेल्फ डाउट क्रीप इन होना बहुत कॉमन है
1: जी.
2: राइट. तो अपने आप को उससे प्रोटेक्टेड रखने के लिए ये जांच करना और ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट व्हाट आर माय बिलीव्स अबाउट माय सेल्फ. मेरा खुद का खुद के ऊपर कितना भरोसा है, दैट इज नंबर वन. उसके अलावा अगर मैंने ये समझ लिया है कि सामने वाले का जो संस्कार है, उसका जो बिहेवियरल पैटर्न है, वो यही है
1: जी,
2: तो उस मोमेंट में अगेन परखने की शक्ति को यूज करके मुझे सही डिसीजन लेना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम से जब मैं कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रही हूँ या फिर किसी चीज में पिच इन कर रही हूँ, राइट, मैं किस तरह से अपनी चीजों को कम्युनिकेट करूं ताकि जो मैंने आइडिया दिया है मुझे उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट, या फिर क्रेडिट भी नहीं कहेंगे बट अक्नॉलेजमेंट मिल सके
1: जी,
2: है ना,
1: कोई उसका मिसयूज ना करें।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई बार हम आइडियाज का क्रेडिट या एक्नॉलेजमेंट इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि हम चाहते हैं हमारा नाम हो, बट समवेयर वी वुड लाइक टू टेक द ओनरशिप ऑफ द आइडिया दैट वी हैव गिवन, कि ये मैंने आइडिया प्रेजेंट किया है और मैं जेन्युइनली इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती हूँ, राइट, दैट इज समथिंग दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ जॉय या इज माई जेन्युइन इंटरेस्ट। सो सेकेंड थिंग आती है कि मैं अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कैसे कर रही हूँ, एम आई कम्युनिकेटिंग इट टू द राइट पीपल, राइट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार मैंने परख लिया कि सामने वाले का ये स्वभाव है तो मुझे फिर अपने डिसीजन मेकिंग को ऑल्टर करना पड़ेगा
1: जी।
2: और तीसरी जो बात आती है वो है ये समझना कि ग्रोथ के प्रोसेस में हमेशा चीजें मुझे डायरेक्टली जैसा मैं चाहती हूँ हो सकता है वैसी ना मिले
1: जी।
2: कई बार सिचुएशंस हमारे सामने ऐसे प्रेजेंट होती हैं जिसमें हमारी जो वैल्यूज हैं, हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, वो चैलेंज होती है, वो क्वेश्चन में आती हैं। सो क्या मेरे लिए उस वक्त ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आइडिया मेरा आइडिया होके प्रेजेंट हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन को या कलेक्टिव को उससे बेनिफिट हो
1: जी,
2: इन दैट मोमेंट व्हाट इज माय प्रायोरिटी। तो ये दो या तीन चीजें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स और ऑफिस डायनेमिक्स को नेविगेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। कई बार हमारे पास बहुत यंग लोग आते हैं जिन्होंने इन्हीं रीजंस की वजह से हर दो या तीन महीने में जॉब्स चेंज की हैं और डिस्पाइट बीइंग रियली टैलेंटेड and despite being very intelligent and sharp, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने emotions को उस समय regulate या manage नहीं कर पाए, तो जब उनका CV हम देखते हैं या वो अपने CV को कहीं लेके जाते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि अरे ये तो सिर्फ दो या तीन महीने एक job में रह पाया। It's not because they are not intelligent, उनका IQ बहुत ज़्यादा है लेकिन EQ यानी कि emotional quotient, कठिन परिस्थितियों में अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रख पाना
1: जी,
2: ये क्योंकि क्षमता कम है तो उसकी वजह से कई बार उनकी सक्सेस में, उनकी ग्रोथ में ये एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। सो अगर हम अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखना सीखें

0: सामने वाले को भी उसका फायदा हुआ हो।
1: जी, सो कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं, मुझे याद आता है हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे और नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट था, बहुत सारे हमने स्पीकर्स को, गेस्ट्स को बाहर से बुलाया हुआ था
0: जी।
1: और हमारा एक प्रोग्राम रन होता था, तो उस समय कई सारे ऐसे मैं कहूँगी कॉलीग्स या स्टाफ मेंबर्स थे जिनको बहुत इंटरेस्ट नहीं था कि हमारा डिपार्टमेंट ये प्रोजेक्ट कर रहा है, और वो एक फीलिंग होती है ना कई बार कि ये आपका काम है, दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद अस। तो जो सपोर्ट और जो एक कमराडरी हमें उनसे जिसकी उम्मीद थी, वो कहीं ना कहीं हमें उनसे उसका ऑपोजिट बिहेवियर हमने एक्सपीरियंस किया। पर उस समय में मैंने अपने अंदर जो एक चीज़ नोटिस की, और मैं इसका पूरा श्रेय ना जो मेडिटेशन का अभ्यास मैं करती हूँ उसको देना चाहूँगी, कि उस पूरे मुझे लगता है 2 या 3 महीने का ड्यूरेशन होगा, जब मेरा जो फोकस था वो प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने पर कम्प्लीटली उसी पर मेरा ध्यान था, और इन दैट मोमेंट नथिंग एल्स मैटर्ड।
0: जी,
1: प्रोग्राम अच्छे से होना चाहिए, हम लोगों को बुला रहे हैं बाहर से ताकि जो हमारे सिटी के लोग हैं उनको बेनिफिट मिल पाए, दैट वाज आवर मेन इंटेंशन। तो हमारा जो फोकस था वो इतना शार्प था प्रोग्राम के ऊपर और प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में, कि ये जो साइड सीन्स होते हैं ना, जो आसपास चीजें चल रही होती हैं, लोगों का बिहेवियर या फिर वो सपोर्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उन बातों पर हमने अपना ध्यान नहीं लगाया, अपना टाइम उस पर वेस्ट नहीं किया।
0: जी।
1: क्योंकि जब आपका पूरा फोकस अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ने का होता है, तो ये सारे जो साइड में चीज़ें हो रही होती हैं, इस पर ना केवल इट्स इम्पॉर्टेंट टू नॉट गिव टाइम टू इट, लेकिन मन में भी उनके लिए विचार चला के, संकल्प चला के, और कहीं ना कहीं यू नो क्वेश्चन करके कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या इनका इंटेंशन होगा, इन सारी चीज़ों पर जब हम अपना टाइम और अटेंशन नहीं लगाते हैं, तो हम अपने एनर्जी को और टाइम को और फोकस को कंजर्व कर पाते हैं और उसको रीडायरेक्ट कर पाते हैं ऐसी डायरेक्शन में जहाँ पे एक्चुअली हमारा प्रोग्रेस है। सो दैट डिस्टिंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेरी लाइफ में फिलहाल क्या जरूरी है।
0: जी, ओके। अभी बात करते हैं कुछ रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में, क्योंकि आजकल तो ब्रेकअप्स तो आम बात हो गई है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी एकदम हर्ट होती है, और प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसा है कि आजकल फिजिकल बहुत जल्दी हो जाता है, और खासकर लड़कियां बहुत इमोशनल डिपेंडेंट भी हो जाती है कई बार, फिर जब ब्रेकअप होता है और उन्हें लगता है कि क्या मैं एक सिर्फ टॉय थी जो उन्होंने मुझे यूज़ किया और छोड़ दिया, तो उसके कारण हम फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहुत सारे ट्रॉमा से हम गुजरते हैं। तो उस सिचुएशन में रेजिलेंस को यूज करते हुए बाहर कैसे निकले, या कौन से ऐसे और वैल्यूज हैं जो हम ऐड कर सकते हैं?
1: जी, आई थिंक आपने जो सिचुएशन बताई है दैट इज वेरी वेरी कॉमन, और कई बार हम अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के साथ बात करते हैं हु टेंड टू फेस सिमिलर सिचुएशंस। मैंने ये नोटिस किया है कि सबसे पहले तो जो चीज़ें मैंने कॉमन देखी हैं उन लोगों में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, इज दैट द वेरी रीज़न दैट दे गॉट अट्रैक्टेड टू या पुल्ड टूवर्ड समवन हु वॉज इमोशनली अनअवेलेबल, या फिर इमोशनली वो इतने इन्वेस्टेड नहीं थे
0: जी,
1: इज बिकॉज समवेयर देयर वाज अ डीप सेंस ऑफ लोनलीनेस एंड सैडनेस विद इन। जब हमारा जो अंदर एक कहीं ना कहीं अकेलापन होता है, क्योंकि आज जो हम जिस एज में रहते हैं, जिस मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, हमारी लाइफ इतनी

0: इतनी फास्ट हो गई है कि हमें एक दूसरे से कनेक्ट करने का, एक दूसरे के साथ हैप्पीनेस शेयर करने का, जॉय शेयर करने का, सैडनेस शेयर करने का वक्त नहीं मिलता है। और ऐसे में हम अपने आप को इतना अकेला महसूस करते हैं कि कहीं से भी थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट हमें लगता है या इंटरेस्ट लगता है कि आ रहा है, तो हम तुरंत उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कई बार जब हम थेरेपी में, काउंसलिंग में इस पर चिंतन करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो अक्सर ये पाया जाता है कि द पर्सन दैट दे वर अट्रैक्टेड टू और दे वांटेड टू टॉक टू और कनेक्ट विथ वाज नॉट समवन दैट दे एक्चुअली फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। हो सकता है उस व्यक्ति में एक या दो ऐसी चीज़ें थीं जिन्होंने बहुत ज़्यादा आकर्षित किया होगा। मान लीजिए उन्होंने थोड़ा अटेंशन दिया या थोड़ा सा वैलिडेशन दिया, और उसके ऊपर हम कई बार क्या होता है कि वो हमने देखा है कि वो अट्रैक्शन बिल्ड हो जाता है। तो ऐसे में ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका सॉल्यूशन अब ये नहीं है कि आई हैव टू नाउ मूव टूवर्ड्स अ बेटर रिलेशनशिप विथ सम अदर पर्सन। सबसे पहले तो जब ऐसा कुछ हुआ है तो अपने हर्ट को, अपने ग्रीफ को और जो अंदर लॉस की फीलिंग है उसको एक्नॉलेज करना और उसको ठीक तरीके से हील कैसे करना है उस पे हमें अपना फोकस लेकर जाना है। क्योंकि अक्सर जब ऐसा होता है तो खास करके वेमेन, दे फाइंड देमसेल्व्स कम्प्लीटली इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि ये क्या हो गया और इतना बड़ा सिचुएशन या इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे हो गया मेरे साथ। उस शॉक से, उस ग्रीव से उभरने में थोड़ा वक्त लगता है। और ऐसे में अगेन व्हाट्स वेरी हेल्पफुल इज टू रिकग्नाइज दैट कहीं ना कहीं मेरा जो पुल था या अट्रैक्शन था उस व्यक्ति के तरफ वो इसलिए था क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अकेला और लोनली महसूस कर रही थी। और वैसे तो थेरेपी में काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं और हम सिस्टमैटिकली इस पे काम करते हैं, लेकिन अगर ब्रीफ में मैं बताऊं तो अपने इमोशंस को हमें कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। चाहे फिर वो खुद से बात करना हो, जर्नलिंग करना हो, या फिर हम थेरेपी या काउंसलिंग में जाके भी ये सीख सकते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। क्योंकि हम अपने इमोशंस को जितना बॉटल अप करते हैं, जितना निग्लेक्ट करते हैं, हमारे इमोशंस, इमोशन इज नथिंग बट एनर्जी इन मोशन, राइट? सो आपके उसको दबाने से या फिर उसको निग्लेक्ट करने से वो इमोशन चला नहीं जाएगा, बल्कि वो अंदर बिल्डअप होता जाता है और एक बहुत ही डिफिकल्ट फॉर्म ले लेता है एज टाइम पासेस। सो मैंने जो डेफिनेशन ऑफ ट्रॉमा भी सीखा है अपने टीचर्स से, वो ये सीखा है दैट ट्रॉमा इज एनीथिंग दैट डिसकनेक्ट्स यू फ्रॉम योर ओन एसेंस। हमारे अंदर जो परमात्मा ने इतनी सारी क्वालिटीज दी हैं, है ना, हमारे अंदर जो इतनी सारी विशेषताएं हैं, जब ऐसा कुछ होता है तो हम उन विशेषताओं को देख नहीं पाते हैं। सामने वाले ने मुझे जिस नज़रिए से देखा, मान लीजिए सामने वाले ने, जैसे आपने कहा ना, एज एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिफाई किया या एक एक टॉय की तरह देखा, हम अपने आप को भी कहीं ना कहीं उसी लेवल पर लाकर अपनी वैल्यू को उतना ही समझ लेते हैं जितना उस व्यक्ति ने समझा। और ऐसे टाइम पर अपनी वैल्यू को फिर से ढूंढने के लिए, ग्रीफ को प्रोसेस करने के साथ साथ मुझे अपने आप को वक्त देना पड़ेगा, रोज अपने लिए वक्त निकालना पड़ेगा जिसमें मैं अपनी क्वालिटीज को, अपनी वैल्यूज को और मुझे क्या वैल्यूबल बनाता है उन चीजों को हम आइडेंटिफाई करें।
1: लेकिन बार बार फिर वो सिचुएशंस, वो जो हर्ट है वो याद आती है,
0: जी
1: तो उसे मतलब कितना टाइम चाहिए
0: जी,
1: मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये बार बार संकल्प में आते हैं
0: जी।
1: तो कितना धैर्यता रखना है और सबसे पहला सूत्र तो क्या है, मतलब 24 घंटे के अंदर अगर ऐसा हुआ, 24 घंटे के अंदर पहला स्टेप क्या उठाना चाहिए
0: जी। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि इंसान को शौक लग जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति जो है वो कई बार नंबर ब्लॉक कर देते हैं, कई बार वो बिल्कुल कांटेक्ट खत्म कर देते हैं, तो ऐसे में कई लोगों को एंजाइटी होने लगती है और वो जो स्टेट ऑफ शॉक है उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज टू स्टेबलाइज योरसेल्फ, और उस स्टेबलाइजेशन के लिए अगर पॉसिबल है कोई अगर ट्रस्टेड व्यक्ति है
1: जी
0: आपकी लाइफ में, चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर कजिन हो या सिबलिंग हो, फ्रेंड हो, जिसके ऊपर आपको यू नो बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, इफ पॉसिबल उनके साथ शेयर करना कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है, क्योंकि देन यू आर नॉट अलोन विद दैट ग्रीफ। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ऐसे समय में सेल्फ हार्म रिलेटेड थॉट्स आने लगते हैं, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, और इसलिए उस समय पे अपने आप को पहले ही हम लोनलीनेस से गुजर रहे हैं और अपने आप को अकेला कर देना इज नॉट एडवाइजेबल। ऐसे समय पे किसी ट्रस्टेड व्यक्ति को रीच आउट करना जरूरी है, और अगर कोई ट्रस्टेड व्यक्ति नहीं समझ में आ रहा है, देर आर हेल्पलाइन नंबर्स दैट स्पेसिफिकली वर्क विद क्राइसिस, और हम दर्शकों से हेल्पलाइन नंबर्स शेयर भी कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल टेलीमानस इज अ हेल्पलाइन जो निमहंस के द्वारा बनाई गई है, विच इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव वे ऑफ टॉकिंग टू समवन, क्योंकि फोन के उस तरफ एक थेरेपिस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट है, जो आपकी बात को नॉन जजमेंटली समझेंगे और सुनेंगे
1: जी।
0: और आपको एक रास्ता बताएंगे कि आप चाहे आप शॉक से गुजर रहे हैं, चाहे आपको एंजाइटी फील हो रही है, तो उससे कैसे कोप करना है वो आपको समझाएंगे। अल्टरनेटिवली एक ट्रस्टेड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को रीच आउट करना भी इज अ वेरी गुड वे टू गो अबाउट दिस। उस समय पर ये करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस समय पर करेज, यू नो समवेयर टैपिंग इनटू योर ओन करेज एंड अलाउइंग योर सेल्फ टू फील व्हाट यू आर फीलिंग इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ग्रीफ जो होता है, खास करके इस तरह का लॉस जहां पर व्यक्ति जिंदा है लेकिन उन्होंने आपके साथ एकदम कट ऑफ कर दिया है, या फिर आपको रियलाइज हुआ कि उन्होंने चीट किया है, ऐसे समय पर इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू गिव योर सेल्फ स्पेस टू गो थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। हो सकता है कुछ समय शॉक रहे, उसके बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, डिसबिलीफ भी होता है कि
1: सब सिचुएशंस को और थॉट्स को इमोशंस को हमें एक्सेप्ट करना है।
0: एक्सेप्ट इज अ वेरी लेटर स्टेज, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, खास करके फॉर अ फीमेल, फॉर अ गर्ल, कहीं ना कहीं है ना, जैसे हम कहते हैं कि पैर के नीचे से जमीन सरक जाती है, ऐसा उनको इतने लेवल का भी शॉक लग सकता है। तो उस समय पर एक्सेप्टेंस की बजाय वी यूज द टर्म मेकिंग स्पेस,
1: ओके,
0: राइट। मेकिंग स्पेस का क्या मतलब होता है, मैं ये एक्नॉलेज कर रही हूँ कि हाँ इस वक्त मुझे रोना आ रहा है,
1: तो रो लेना चाहिए,
0: तो रो लेना है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं उसे उल्टा सीधा बोलूं, भले ही मैं उससे बात नहीं कर पा रही हूँ, बट आई कैन एक्सप्रेस दैट एंगर आइदर इन राइटिंग। सो कई बार हम रेकमेंड करते हैं कि आप यू नो यू कैन शाउट इनटू अ पिलो, स्क्रीम इनटू अ पिलो, और यू कैन डू सम फिजिकल मूवमेंट, जिससे आपका जो एंगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कहीं ना कहीं उसको स्पेस मिल सके। अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टेक्निक उस टाइम पे जो हम यूज करते हैं, जो जिसको हम कहते हैं ग्राउंडिंग एंड स्टेबलाइजेशन। ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि बार बार मेरे थॉट्स जाएंगे सिचुएशन की तरफ, पर मुझे उसको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आना पड़ेगा जी, कि ठीक है ये हुआ है, इट्स ओके, आई विल नीड माई टाइम टू कोप विद दिस, बट मुझे अपना ध्यान प्रेजेंट में लेकर आना है. सो फॉर दैट आई कैन, इफ आई वॉन्ट टू यू नो जस्ट कनेक्ट बैक विथ माई ब्रेथ, या फिर हम एक टेक्निक सिखाते हैं 5-4-3-2-1. 5-4-3-2-1 इज 5 थिंग्स आई कैन सी, 4 थिंग्स आई कैन हियर, 3 थिंग्स आई कैन टच, 2 थिंग्स आई कैन स्मेल एंड 1 थिंग आई कैन टेस्ट. इसको कई बार ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस करना है ना, जैसे एक और ब्रीदिंग प्रैक्टिस है 4-7-8, जिसमें हम 4 सेकंड्स तक सांस लेते हैं, 7 सेकंड तक होल्ड करते हैं और 8 सेकंड तक छोड़ते हैं. तो बार बार अपना ध्यान प्रेजेंट में लेके आना है. क्यों? क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में आई एम, लेट्स से इन माय रूम या आई एम इन माय स्पेस, फिजिकली मुझे सबसे पहले अपने आप को डेंजर से दूर लेकर जाना है, राइट? सो प्रायोरिटाइजिंग फिजिकल सेफ्टी एंड देन मूविंग टूवर्ड्स ग्राउंडिंग एंड इमोशनल सेफ्टी.
1: जी.
0: और उस मोमेंट में चाहे जितना आपका मन कर रहा हो अपने आप को आइसोलेट या डिस्कनेक्ट करने का, ट्राई टू नॉट डू दैट, राइट? सो मेकिंग स्पेस फॉर योर इमोशंस इज अलाउविंग योर इमोशंस. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, राइट? सो ऐसे में आप उसको स्पेस तो दे रहे हो, लेकिन उसको कंटेन कैसे करना है वो आपको नहीं पता. इसलिए वर्किंग विद अ प्रोफेशनल रियली हेल्प्स, राइट? और अपने थॉट्स को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है.
1: ओके जी, तो निमांस का नंबर आप शेयर कर सकते हैं?
0: जी, सो टेलीमानस का टोल फ्री नंबर है, राइट? इट इज 1-800-891-4416. या फिर ऑल्टरनेटिवली आप 1-4-4-16 पर भी कॉल कर सकते हैं. दिस इज अ 24/7 हेल्पलाइन एंड ये बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. और क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है थ्रू निमहांस, तो जो उनके वॉलंटियर्स हैं दे आर रियली ट्रस्टेड वॉलंटियर्स. सो यू कैन रीच आउट टू देम एट एनी टाइम ऑफ द डे एंड समवन विल पिक अप योर कॉल.
1: जी बिल्कुल. तो दोस्तों, अगर कोई भी परेशानी है, कुछ भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं, तो आप इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इसका टोल फ्री नंबर. तो कुछ ऐसे सुइसाइडल वाला सिचुएशंस आप शेयर करना चाहेंगे?
0: सो कई बार ऐसी सिचुएशंस जब खास करके हम स्टूडेंट्स के साथ काम करते थे, तो ऐसी सिचुएशंस बहुत हम फेस करते थे. ऑलमोस्ट वंस अ वीक तो कोई ना कोई ऐसा केस आता था. और मेरा जो इनिशियल स्टांस होता था इस पे, वो होता था कि मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती थी कि अच्छा अब क्या किया जाए, हाउ टू यू नो फाइंड द सॉल्यूशन. लेकिन जो सुसाइडल आइडिएशन होता है, उसके लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी देर आर सम ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं ऐसी सेल्फ हार्म या फिर सुसाइडल आइडिएशन को यू नो प्रोपेल करते हैं या क्रिएट करने में जिम्मेदार होते हैं. व्हाट वी कॉल एज द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टुवर्ड्स सुसाइडलिटी. और इसमें तीन चीज़ें मुख्य देखी गई हैं. एक है वर्थलेसनेस, दूसरा है होपलेसनेस और तीसरा है हेल्पलेसनेस, है ना? यानी कि अपने आप को वर्दी नहीं समझना कि मेरी कोई वैल्यू है, मेरी कोई वर्थ है. जब हम अपनी वर्थ को कम आंकते हैं या अपने आप को वर्थलेस महसूस करते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज. उसके अलावा निराशा, यानि कि होपलेस हम जब महसूस करते हैं कि इस सिचुएशन में कोई होप ही नहीं है,
1: जी,
0: राइट? दैट अगेन इज़ अ वेरी बिग फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस. और इस वजह से बहुत ज़रूरी होता है कि हम उम्मीद को जिंदा रखें,
1: जी,
0: कि मेरे सामने जो परिस्थिति आई है, चाहे इस वक्त मुझे कितनी भी वो पहाड़ की तरह लग रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर एक आशा की किरण जगाए रखना कि मैं ना केवल इसको फेस कर पाऊंगी लेकिन एक ऐसा दिन आएगा जब मैं बेहतर महसूस करूंगी। वो होप जिंदा रखना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो पिलर है या तीसरा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है उसका, वो है हेल्पलेसनेस, यानी कि अपने आप को असहाय महसूस करना कि देयर इज नो वे दैट आई कैन बी हेल्प्ड। लेकिन हम कितनी भी कठिन सिचुएशन हो, जब हम हेल्पलेस फील करने लगते हैं और लंबे समय तक हेल्पलेसनेस में रहते हैं, तो हमारे अंदर जो जीवन की जो जीवन जीने की जो एक उम्मीद है, जो एक वाइटालिटी है जिसको हम कहते हैं ना लाइफ फोर्स, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश होता जाता है, ख़त्म होता जाता है। इसलिए एक चीज़ हमेशा मैं लोगों से कहती हूँ कि चाहे आपको कितनी भी सिचुएशन ऐसी लग रही हो कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे समय पर भी मेरे पास चॉइस है और उस चॉइस को अपने आप को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन इज़, आई हैव अ चॉइस ऑफ हाउ आई वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन, और ये चॉइस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बाकी सारे फ्रीडम्स किसी से छीने जा सकते हैं, लेकिन आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं और उस सिचुएशन को क्या मीनिंग दे रहे हैं, ये आपसे कोई नहीं ले सकता। सो इन तीन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं जो सुसाइडल आइडिएशन है या सेल्फ हार्म रिलेटेड आइडिएशन है उससे हम बेटर कोप कर पाते हैं। लेकिन सुसाइडल आइडिएशन को कभी भी हमें हल्के में नहीं लेना है। वी हैव टू गिव इट अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस, बिकॉज नॉट जस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेफ्टी, बट बिकॉज सुसाइडल आइडिएशन इज एन इंडिकेशन कि व्यक्ति बहुत समय से जूझ रहा है और उसे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। सो इट्स लाइक द लास्ट रिजॉर्ट। मुझे याद आता है एक क्लाइंट थी जो बहुत समय से, एंड शी इज अ ब्रिलियंट पर्सन, यंग है वो, बहुत ही ब्रिलियंट है अपने फील्ड में, बट बहुत टाइम से, करीब एक डेढ़ साल था कि उनको बार बार ये आइडियाज़ आते रहते थे। और जब कोई बड़ी सिचुएशन आती थी, मान लीजिए जैसे ब्रेकअप हो गया या फिर जॉब में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो ये उनकी जो टेंडेंसी है बहुत बढ़ जाती थी
1: जी।
0: और हमने सब कुछ ट्राई किया हुआ था, उन्होंने अलग अलग तरह से मेडिसिन भी ट्राई की हुई थी। एक दिन ऐसे ही मैं उनसे बात कर रही थी उनके थेरेपी सेशन में, तो अंदर से मुझे ऐसे लगा कि मैं इनसे क्या कहूँ कि इनको जीवन के प्रति और अपने प्रति एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद या एक प्यार इनके मन में जाग जाए। और ऐसे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे मुंह से निकल गया। मैंने उनको देख के कहा, और बहुत सीरियसली उनको देख के कहा कि यू नो यू ऑल्सो डिजर्व टू बी हैप्पी। आई डोंट नो इफ यू एवर थॉट अबाउट दिस, बट यू हैव द राइट टू बी हैप्पी एंड यू ओ इट टू योर सेल्फ। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने लाइफ में खुश रहने के और अपने आप को खुश महसूस कराने के लिए एफर्ट डालो। और पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने उस बात को या शायद उस इंटेंशन को बहुत, उनके वो दिल तक पहुंच गया एंड शी बिगैन टू क्राई, बहुत जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने मुझसे बात कही कि बचपन से लेके आज तक मुझसे बस यही कहा गया था कि तुम्हें मार्क्स लाने हैं, तुम्हें जॉब करना है, तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, लेकिन मुझसे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हें खुश रहने का और खुशी महसूस करने का भी हक है। यू हैव टू ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स हैप्पीनेस। और उस दिन के बाद से, टचवुड, आज कई महीने हो गए उस बात को, उनको कभी ऐसा थॉट फिर से नहीं आया। इनफैक्ट अब वो मुझे हमेशा कहती हैं कि अब मुझे जीना है
1: जी।
0: और उन सालों के लिए भी आई हैव टू कवर अप फॉर द ईयर्स दैट आई हैव नॉट लिव्ड। So I want to live more in the years that I have in front of me. So ये जो बात है ना कि I deserve to be happy, मेरा भी हक बनता है कि मैं खुश रहूं, अपने आप को ये याद दिलाना बहुत जरूरी होता है। लाइफ में हम इतना कुछ अचीव करना चाहते हैं, कितना कुछ बनना चाहते हैं लेकिन हैप्पी भी बन सकते हैं ये हम कभी नहीं सोचते हैं।
1: राइट जी, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं खुश रहूं, अपने आप को खुश रखूं। तो अगर इस नोट को भी हम समझ ले, इसको ही सूत्र बना ले, तो कोई भी सिचुएशंस हो उसे डील करने की ताकत आ जाती है और सॉल्यूशंस भी हमें मिलने लगते हैं। अभी तो थोड़ा वक्त हो रहा है कि इस प्रोग्राम को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसा है कि कई बार सोशल मीडिया पर या फिर बड़े प्लेटफॉर्म पर हमें एम्बैरेसमेंट की फीलिंग्स आती है। फॉर एन एग्जांपल अभी स्पोर्ट्स चल रहा है तो कुछ प्लेयर्स हैं जो जीत रहे हैं, कुछ हैं जो बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं, तो इसका सामना कैसे करेंगे क्योंकि पूरा पब्लिक देख रहा है उसको, है ना, 100 करोड़ से ज़्यादा जनता देख रही है उनको, तो ऐसे सिचुएशंस में कैसे डील करें?
0: जी, जो एक स्पोर्ट्स पर्सन का माइंडसेट होना चाहिए या आइडियली जिसको हम कहते हैं स्पोर्ट्समैन का जो माइंडसेट होता है, दैट इज फोकस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस एंड हाउ मच आई कैन, हाउ कैन आई गिव माय बेस्ट, है ना। आपने बिल्कुल सही कहा, अब आज सोशल मीडिया का ज़माना है, थिंग्स आर गोइंग वायरल, रील्स आ जाती हैं, तुरंत मीम्स बन जाते हैं और एक इंसान को एक प्लेयर के दर्जे से निकाल कर एक मीम का दर्जा सिर्फ मिल जाता है, नो, बिकम्स अ जोक। प्लेयर्स के साथ या जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके साथ जब हम काम करते हैं तो हमने ये चीज़ या जब उनसे बातें करते हैं तो ये समझा है कि इट रियली ऑल बॉयल्स डाउन टू देयर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। मेरी वैल्यू एक गेम के ऊपर या नीचे जाने से मेरी वैल्यू कम नीचे नहीं होती है। देर आर गोइंग टू बी सम डेज दैट विल बी गुड डेज एंड सम डेज दैट विल बी नॉट वेरी गुड डेज, लेकिन जो बदल नहीं रहा है वो है मेरी वैल्यू, मेरी वर्थ। So that is the first thing. उसके अलावा अभी तक जो रिसर्च हुई है उसमें ये पाया गया है कि शेम या एम्बैरेसमेंट कहो, उसका जो एंटीडोट है वो सेल्फ लव भी नहीं है और सेल्फ केयर भी नहीं है, बल्कि वो है सेल्फ कंपैशन। और सेल्फ कंपैशन में तीन एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से जो एक एलिमेंट जो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है वो है कॉमन ह्यूमैनिटी, यानी कि अपने आप को ये याद दिलाना दैट आई एम अ फ्लॉड ह्यूमन बीइंग। हर एक व्यक्ति कभी ना कभी, चाहे कितना भी प्रयास कर ले, चाहे कितनी भी अच्छी प्लानिंग करे या थरली अपना काम करे, देर आर मैनी फैक्टर्स जो उस चीज़ को अफेक्ट करते हैं एंड कॉमन ह्यूमैनिटी सेज दैट वी ऑल हैव कॉमन एक्सपीरियंसेस लाइक फेलियर, लाइक डिसअपॉइंटमेंट्स। तो जो इमोशन मैं महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट इमोशन हो, आई एम नॉट अलोन इन दैट एक्सपीरियंस।
1: जी,
0: और एम्बैरेसमेंट या फिर एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इस दुनिया के हर एक व्यक्ति ने एक्सपीरियंस किया एट सम पॉइंट इन सम फॉर्मेट, सो दैट इमीडिएटली टेक्स ऑफ द बर्डन ऑफ आइसोलेशन, है ना, कि सिर्फ मैंने अकेले ने ये एक्सपीरियंस किया है। हाँ, अगर मैं एक स्टेडियम में हूँ और हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, मे बी द नंबर ऑफ आईज ऑन मी आर मोर,
1: जी,
0: लेकिन जो कोर इमोशन है शेम का या एम्बैरेसमेंट का, वो तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। सो अपने आप को ये याद दिलाना दैट यू नो दिस इज व्हाट इट इज टू बी अ ह्यूमन। देर आर गोइंग टू बी डेज व्हेन आई विल एंड अप यू नो नॉट सक्सीडिंग। और एम्बैरेसमेंट का एक और जो से अगर उभरने के लिए एक और जो फैक्टर काम में आता है वो है नॉट टू टेक योरसेल्फ सो सीरियसली, राइट। खुद पर हंस पाना और है ना, लाइफ अगर जोक कर रही है तो उस जोक के ऊपर हंस पाना, ये भी रेजिलियंस की एक के अंदर एक कला होती है
1: जी।
0: जो हमें चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली और जब हम उसको बहुत जोर से पकड़ के रखते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट करने में कंट्रीब्यूट करती है. लेकिन उस मोमेंट को लेट गो कर पाना, ठीक है मुझे एम्बैरेस्ड फील हुआ बट दिस इमोशन इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर
1: जी,
0: राइट, तो दिस टू शैल पास. उस एटीट्यूड के साथ अगर उस मोमेंट में हम यू नो इफ यू आर एबल टू लाफ इट ऑफ देन इट रियली हेल्प्स. एंड अगेन बीइंग काइंड टू योरसेल्फ, राइट, दैट्स इनक्रेडिबली वैल्यूएबल.
1: ओके जी, थैंक यू सो मच हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए. तो जाते जाते सिर्फ एक मंत्र क्या बताना चाहेंगे, जिंदगी की कोई भी सिचुएशन हो कैसे उभर के आ सकते हैं?
0: एज लॉन्ग एज आई एम कनेक्टेड टू माई ओन एसेंस एंड एज लॉन्ग एज आई एम मेकिंग एफर्ट टू रिमेन कनेक्टेड टू माई ओन सेल्फ एंड टू माई क्वालिटीज, नो सिचुएशन कैन क्रिएट अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन मी. अगर मैं अपने एसेंस से, अपनी क्वालिटीज से, अपनी वैल्यूज से जुड़ी हुई हूँ, सिचुएशंस आएंगी और थोड़े टाइम के बाद चली जाएंगी. लेकिन अगर मैं अपने एसेंस से डिस्कनेक्ट हो रही हूँ तो फिर सिचुएशंस मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है या करेंगी, राइट. सो अपने एसेंस से जुड़े रहना इज द मोस्ट वैल्यूएबल लेसन दैट आई अबाइड बाय.
1: ओके जी, बिल्कुल. तो दोस्तों अपने जो वैल्यूज है, अपने एसेंस है, उसे ढूंढना बहुत ज़रूरी है, उसे नोट डाउन करना भी ज़रूरी है. कभी भी ज़रूरत पड़े तो जैसे आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या फिर अपने मन में उसे सोच सकते हैं. तो स्वरूति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए.
0: बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत मदद मिलेगी इससे.
1: जी, तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आपको बहुत सारे टिप्स ज़रूर मिले होंगे तो हमें कॉल करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर, 9-4-1-4-1-5-1-4-1-5 इस नंबर पर. सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM. मैं हूँ आरजे शुभा, यहीं पर रुकते हैं. नमस्ते.

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

शांति। आज 10 अक्टूबर 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा की मुरली धारणा युक्त मुरली है, जिसमें इस ईश्वरीय परिवार में कैसे रहना है इसकी बाबा समझ देते हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा कभी किसी को दुख नहीं देना है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना है। प्रेम की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा कहते हैं तुम्हें आपस में बहुत प्यार से रहना है, प्यार से किसी को वश भी कर सकते हो। फिर बाबा कहते हैं, अपने आप को डबल सिर ताज का तिलक देना है तो उसके लिए बहुत बहुत मीठा बनना है। भाई भाई की दृष्टि हो, स्वयं ईश्वर बाप हमें पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई में रेगुलर बनना है। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, अपने मैनर्स को सुधारेंगे, उतना बाबा कहते आगे बढ़ते रहेंगे। साथ ही बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तुम न कलयुग में हो न सतयुग में हो, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। जैसे बीच के सागर में तुम्हारी नाव अभी आ गई है, तुम अभी संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण हो। बाबा कहते ब्राह्मण चोटी है, छोटा सा युग है, तो तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। खुशी किस बात की? कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस बात की खुशी होनी चाहिए। और साथ ही साथ बाबा कहते ज्ञान बुद्धि के अंदर घूमता रहे, अर्थात सारे चक्र की नॉलेज बुद्धि में रहे। हम 100 ब्राह्मण हैं, फिर 100 फरिश्ता बनेंगे, फिर 100 देवता बनेंगे। पहले अपने स्वीट होम में जाएंगे तो बाबा कहे तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। ब्राह्मण ही बाजोली खेलते हैं तो सारा दिन बुद्धि में ये बातें सिमरण होती रहे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना है। प्यार बहुत मीठी चीज है, इससे किसी को भी वश कर सकते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप बच्चों को डबल सिरताज विश्व का मालिक बनने की व द बेस्ट बनने की कौन सी युक्ति बताते हैं? उत्तर है, दैवी गुणों को धारण कर बहुत बहुत मीठा बनो। दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनो। एक दो को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक दो। दूसरी बात, बाबा कहते स्वयं ईश्वर बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई में रेगुलर बनो। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, अपने मैनर्स सुधारेंगे, उतना ही द बेस्ट बनेंगे। बाबा की चाहना है मेरा हर बच्चा द बेस्ट हो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे जानते हैं कि अभी हम नरक का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है बीच का। बाबा जैसे मिसाल देते, बीच के दरिये में, बीच के सागर में तुम्हारी बोट है, अर्थात तुम्हारी नाव है। तुम न सतयुगी हो न कलयुगी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी, ये ब्राह्मणों का बहुत छोटा युग है, यह एक ही जन्म का युग है।
यह है तुम्हारी खुशी का युग। बाबा कहते संगम युग यह एक ही जन्म का युग होता है और यह है तुम्हारे खुशी का युग। खुशी किस बात की? किस बात की खुशी का युग है? भगवान हमको पढ़ाते हैं, ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम सो ब्राह्मण है, फिर हम सो देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी है, हम ही ये बाजोली खेलते हैं। बाबा कहते हम ही ये बाजोली खेलते हैं सारे चक्र का, जैसे घुमाओ हम बच्चे ही खेलते हैं। इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बुद्धि में सारा दिन ये बातें सिमरण होनी चाहिए। तुम्हारा ये बहुत बहुत लवली परिवार है, ब्राह्मण परिवार, ईश्वरीय परिवार, बहुत बहुत लवली परिवार है। तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। परिवार इतना लवली है, भगवान पालना दे रहे हैं, तो बाबा कहे तुम बच्चों को भी बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। बाप कभी किसको दुख नहीं देते। जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनते रहेंगे। बस इस याद से ही बेड़ा पार है। यह है याद की यात्रा। याद करते करते वाया शांति धाम, सुख धाम जाना है। बाप आए ही है बच्चों को सदा सुखी बनाने। भूतों को भगाने की युक्ति बाप बतलाते हैं। क्या है युक्ति भूतों को भगाने की? मुझे याद करो तो ये भूत निकलते जाएंगे। कोई में भूत हो तो यहां ही मेरे पास छोड़ कर जाओ। बाबा कहे कोई पुराने संस्कार रूपी भूत हो तो यहां ही मेरे पास छोड़ कर जाओ। तुम कहते भी हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल, पतित से पावन बनाओ। तो बाप कितना गुलगुल बनाते हैं। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। वह है हद के बाप, यह है बेहद के बाप। बाबा कहते वह है दुनिया में हद के बाप और यह है बेहद का बाप। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। सब विकारों का दान देना चाहिए। दे दान तो छूटे ग्रहण। इसमें कोई बहाने आदि की बात ही नहीं। प्यार से तुम किसको भी वश कर सकते हो। प्यार से समझाने दो। प्यार बहुत मीठी चीज है। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। हिंसक ते हिंसक खूंखार जानवरों को भी प्यार से वश कर लेते हैं। वह तो फिर भी आसुरी मनुष्य है। तुम तो अब देवता बन रहे हो, तो दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। हाँ, कितना प्यार से बाबा कहते हैं तुम्हें दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। एक दो को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा को कभी दुख नहीं दे सकती। बाप कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूं। अब तुमको जो चाहिए सो हमसे लो। बाबा की खुली ऑफर है, जो चाहिए सो हमसे लो। हम तो विश्व का मालिक डबल सिर ताज तुमको बनाने आए हैं, परंतु मेहनत तुमको करनी है। मैं किसी पर ताज नहीं रखूंगा। बाबा कहते मैं किसी पर ताज नहीं रखूंगा।
तुमको अपने पुरुषार्थ से ही अपने को राज तिलक देना है। बाप पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल सिरताज अपने को बना सकते हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, कभी भी पढ़ाई को ना छोड़ो। कोई भी कारण से रूठ कर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। घाटे और फायदे को देखते रहो। तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो, तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और मैनर्स सुधारेंगे उतना द बेस्ट बनेंगे। सारी कितनी प्यार से बाबा एक एक बातों की धारणा हमसे कराते हैं और पूरी धारणा युक्त मुरली है। परिवार में कैसे रहना है, कैसे चलना है, यूनिवर्सिटी में हमारे मैनर्स कैसे होने चाहिए, सब बाबा आज समझाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग तक नीचे उतरते आए हो, वैसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो फिर इन कर्मेंद्रिय की चंचलता खत्म हो जाएगी। इसलिए जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएगी, और जितना कट निकलती जाएगी उतना बाप चुंबक की तरह कशिश बढ़ती जाएगी, माना आकर्षण बढ़ती जाएगी। कशिश नहीं होती है तो जरूर कट लगी हुई है ना, जंक लगा हुआ है। कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए, वह है अंतिम कर्मातीत अवस्था। मूल बात मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चे देही अभिमानी बनो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मां में कम याद करो। पावन भी जरूर बनना है। कुमारी जब पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करने से फिर पुजारी बन जाती है। बाबा कहते, शादी करने से फिर वह खुद माथा टेकती है तो फिर पुजारी बन पड़ती है। सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। कन्या पहले पियर घर में होती है तो इतने जास्ती संबंध याद नहीं आते। शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते, फिर पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता है। सासू ससुर आदि सब याद आते रहेंगे। पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मोह होता है, यहाँ तो फिर उन सब संबंधों को भूलना पड़ता है। बाबा कहे, यहाँ तो फिर उन सब संबंधों को भुलाना पड़ता है, क्योंकि ये एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा मात पिता है ना। यह है ईश्वरीय संबंध। गाते भी है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। ये मात पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो। विश्व का मालिक बनाते हैं तो बेहद के बाप को निरंतर याद करो, और कोई भी देहधारी से ममत्व न रखो। ये बेहद का बाप जो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं, ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करते और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इसी याद के बल से ही तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग की मालिक बन जाएंगे। कंचन बन अर्थात सच्चा सोना बन स्वर्ग की मालिक बन जाएंगी। स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाती है। जो निरंतर याद करते और औरों को भी याद कराते रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे।
ये पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी वह अवस्था जम जाएगी। यह दुनिया भी पुरानी है, बाबा कहते यह तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है, देह सहित देह के सब संबंध भी पुराने हैं, उन सब से बुद्धि योग हटाए, एक बाप संग जोड़ना है, जो अंत काल भी उस एक बाप की ही याद रहे, और कोई का संबंध याद होगा तो फिर अंत में भी वह याद आ जाएगा और पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंत काल जो बेहद बाप की याद में रहेंगे वही नर से नारायण बनेंगे। बाप की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं। बाबा कहते बाप की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं। मीठे मीठे सिकिलते बच्चे बेहद के बाप पास आते ही है, इसलिए रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है, ये कब भूलना नहीं चाहिए। वह सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे, ये बैज चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, एकदम हृदय से लगा दो, अहो भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। बस बैज को देखते उनको प्यार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो, तो सदैव स्मृति रहेगी हम बाप द्वारा ये बनते हैं। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। बाबा कहते इस समय बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहे। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए। कौन से बच्चे चाहिए? जो सर्विस बिगर रह न सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है, सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है ना? तुम तो अब बहुत ऊंच टीचर बने हो, जितना अच्छा टीचर वह बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है, ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है, ये यूनिवर्सिटी भी है, ये परिवार भी है, तो बाबा कहे ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं, वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना? सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। ये बड़ा बेहद का व्यापार है, बाप भी बेहद का व्यापारी है, सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं, हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है, अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे, कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सेफ रख करे। बाबा कहते जितना हो सके टाइम सेफ करे। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे, जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे, उधर खूनी नाहक खेल भी चलता रहेगा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है,
जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नजारे भी नजदीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएंगी। बाबा कहते इस रेस में जितना आगे दौड़ते जाएंगे सामने नई दुनिया के नजारे भी सामने आते जाएंगे और खुशी भी बढ़ती जाएंगे। जिनको नजारे नजदीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं रहेगी। अभी तो कलियुगी दुनिया से वैराग्य और सत्युगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। हाँ, दोनों वैसे वर्षा है। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा और स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं, पांव नरक तरफ है, सिर स्वर्ग तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी अवस्था कैसी हो गई है, वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव ये नशा रहता है, ब्रह्मा बाबा को सदैव ये नशा रहता है, ओहो हम जाकर ये बाल कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगाते भी भेजते रहते हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगाते भेजती है, उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है। हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे, कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए। ये बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य, बाबा कहते ये बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। सदैव अथा खुशी में रहो, बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। 5000 वर्ष पहले भी पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नोंद है, जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे, जो श्री कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार करते रहेंगे तो वह बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है, जो विचार सागर मंथन नहीं करते वो गोया अनहेल्दी है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है आज की मुरली से। पहली पॉइंट, ईश्वरीय सर्विस में कभी थकना नहीं है। अच्छा टीचर बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, याद के बल से आत्मा को कंचन बनाना है। कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रखना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में हर समस्या का हल करने वाले एकांतवासी भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में हर समस्या का हल करने वाले एकांतवासी भव। जब कोई भी नई व शक्तिशाली इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। यहाँ एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले कारोबार करते भी, सुनते सुनाते डायरेक्शन देते भी, इस देह की दुनिया और देह के भान से परे साइलेंस में चले जाओ। इस अभ्यास व अनुभव करने कराने की स्टेज हर समस्या का हल कर देंगी। इससे एक सेकंड में
किसी को भी शांति व शक्ति की अनुभूति करा देंगे। जो भी सामने आएगा वह इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प विकल्प से किनारा कर आत्मिक स्थिति में रहना ही योग युक्त बनना है। व्यर्थ संकल्प विकल्प से किनारा कर आत्मिक स्थिति में रहना ही योग युक्त बनना है। आज का व्यक्त इशारा है, परोपकार की भावना से संपन्न बन, अपकारी पर भी उपकार करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, ब्रह्मा बाप ने बच्चों को मालिक बनाया और स्वयं को सेवाधारी के रूप में रखा, मालिकपन का मान भी दिया, शान भी दिया, नाम भी दिया। ब्रह्मा बाप ने बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं सेवाधारी के रूप में रखा और मालिकपन का मान भी दिया, शान भी दिया, नाम भी दिया। कभी अपना नाम नहीं किया, मेरे बच्चे। तो जैसा बाप ने नाम मान शान सबका त्याग किया, परोपकार किया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा, बच्चों की विस्मृति के कारण दुख का अनुभव सो अपना दुख समझा, ऐसे फॉलो फादर कर परोपकार की भावना से संपन्न बनो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। अच्छा,